मह सागर कमन बुझे बिद जान उत कुछ चलत आप कर चीन आपे तत् पछाण ऐसा ज्ञान विचार है कोई तिस्ते मुक्त परम गत होई रहाओ दिन मह रैन रैन मह दिनियर उसन सीत बिद सोई ताकी गतमित अवर न जाने गुर बिन समझ न होई पुरख मह नार नार मह पुरखा बूझो हो ब्रह्म ज्ञानी तुन मह ध्यान ध्यान मह जानिया गुरमुख अकथ कहानी मन मह जोत जोत मह मनुआ पंच मिले गुर पाई नानक तिन कै सद बलिहारी जिन एक शब्द लिव लाई राम कली महला पहला जा हर प्रभ कृपा तारी ता हो मैं विचो मारी सो सेवक राम प्यारी जो गुर शब्दी बीचारी सो हर जन हर प्रभ पावे अहनस भगत करे दिन राती लाज छोड़ हर के गुण गावे रहाओ तुन वाजे अनहद घोरा मन मानिया हर रस मोरा गुर पूरे सच समाया गुर आद पुरख हर पाया सब नाद बेद गुरबाणी मन राता सारंग पानी तह तीर्थ वर्त तप सारी गुर मिलिया हर निस्तारी जह आप गया पौ भागा गुर चरणी सेवक लागा गुर सतगुर परम चुकाया कहो नानक शब्द मलाया राम कली महला पहला साधन भोजन मांगत भागे खुदिया दुष्ट जलै दुख आगे गुरमत नहीं लीनी दुरमत पत खोई गुरमत भगत पावे जन कोई जोगी जुगत सहज घर वासे एक दृष्ट एको कर देखिया भीखिया पाए शब्द त्रिपता सह रहाऊ पंच बैल गडिया देह धारी राम कला निब है पत सारी घर टूटी गाडो सिर भार लकड़ी बिखर जरी मंज भार गुर का शब्द विचार जोगी दुख सुख सम करना सोग बेयोगी भुगत नाम गुर शब्द विचारी असथिर कंध जपे निरंकारी सहज जगोटा बंधन ते छूटा काम क्रोध गुर शब्दी लूटा मन मह मुंदरा हर गुर सरना नानक राम भगत जन तरना एक ओंकार सतगुर प्रसाद राम कली महला तीजा घर पहला सत जोग सच कह सब कोई घर घर भगत गुरमुख होई सतयुग धर्म पैर है चार गुरमुख बूझे को बीचार जुग चारे नाम वडियाई होई जे नाम लागे सो मुक्त होवे गुर बिन नाम ना पावे कोई रहाउ त्रेतै एक कल कीनी दूर पाखंड वर्त्या हर जानन दूर गुरमुख

जीवन दाते, हर संत पगी ले पावे, हों काटो काट बाद सिर राखो, जित नानक संत चढ़ आवे, राम कली महला चौथा, जे वड पाग हो वह वड मेरे, जन मिलदिया ढिल ना लाइए, हर जन अमृत कुंट सरनी के, वड पागी तित नवाइए, राम मुको हर जन कार लाइए, हों पानी पखा पीसो संत आगे, पग मल मल तूर मुख लाइए रहाओ, हर जन वड्डे वड्डे वड ऊचे, जो सतगुर मेल मलाइए, सतगुर जेवड़ अवर ना कोई, मिल सतगुर पुरख त्याइए, सतगुर सरन परे तिन पाया, मेरे ठाकुर लाज रखाइए, एक अपने सवाए आए बह गुर आगे, जो बगल समाध लगाइए, बगला काग नीच की संगत, जाए करंग बिखु मुख लाइए, नानक मेल मेल प्रभ संगत, मिल संगत हंस कराइए, राम कली महला चौथा, सतगुर दया करहो हर मेलो, मेरे प्रीतम प्राण हर राया, हम चेरी होए लग है गुर चरनी, जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाया, राम मैं हर हर नाम मन पाया, मैं हर बिन अवर ना कोई बेली, मेरा पिता माता हर सिखाया रहाओ, मेरे एक खिन प्राण ना रह बिन प्रीतम, बिन देखे मरह मेरी माया, तन तन वड भाग गुर सरणी आई, हर गुर मिल दर्शन पाया, मैं अवर न कोई सूजे बूजे, मन हर जप जपो जो पाया, नाम मीन फिर है से न कटे, तिन कस कस नक वढाया, मोको जग जीवन जवाल लै स्वामी, हृदय अंतर नाम वसाया, नानक गुरु गुरु है पूरा, मिल सतगुर नाम ते आया, राम कली महला चौथा, सतगुर दाता वड्डा वड पुरख है, जित मिले हर उर तारे, जी दान गुर पूरे दिया, हर अमृत नाम सुमारे, राम गुर हर हर नाम कंठ तारे, गुरमुख कथा सुनी मन पाई, तन तन वड भाग हमारे रहाओ, कोट कोट ते तीस त्यावह, ताका अंत ना पावह पारे, हृदय काम कामनी मांगह, हृद मांगह हाथ पसारी, हर जासु जप जप वड्डा वडेरा, गुरमुख रखो उर तारी, जे वड भाग होवह तां जपिए, हर पहो जल पारी उतारी, हर जन निकट निकट हर जन है, हर राखै कंठ जन तारी, नानक पिता माता है हर प्रभु, हम बारक हर प्रित पारी, राग राम कली महला पंजवां घर पहला।

सुख होई, जो इच्छो हो सोई फल पावहु, फिर दुख न व्यापै कोई रहाऊ। काचे भांडे साज नवाजी, अंतर जोत समाई, जैसा लिखत लिखिया धुर करतै, हम तैसी किरत कमाई। मन तन थाप किया सब अपना, एहो आवन जाना, जिन दिया सो चित ना आवै, मोहे अंध लपटाना। जिन किया सोई प्रभ जाने, हर का महल अपारा।

ऊपर आवहु, ऐसी सेव कमावहु, आपस ते ऊपर सब जानहु, तौ दरगाह सुख पावहु। संत हो ऐसी कथो कहानी, सुर पवित्र नर देव पवित्रा, खिन बोलो हो गुरमुख बाणी रहाओ। परपंच छोड़ सहज कर बैसो, झूठा कहो ना कोई, सतगुर मिलो नवे निध पावहु, इन बिद तत बिलोई। परम चकावहु गुरमुख लिव लावहु, आत्म चीनो पाई, निकट कर जान हो सदा प्रभ हाजिर,

पूर भंडारा ऐसा रस अमृत मन चाखिया तृप्त रहे आगाई कहो नानक मेरी आसा पूरी सतगुर की सरनाई राम कली महला पंजवां अंगीकार किया प्रभ अपने बैरी सगले साधे जिन बैरी है इहो जग लूटिया ते बैरी लै बहांदे सतगुर परमेश्वर मेरा अनक राज भोग रस माणी नाउ जपी परवासा तेरा रहाउ चीत न आवस दूजी बाता सिर उपर रखवारा बेपरवाह रहत है स्वामी एक नाम कह आधारा पूर्ण होए मिलियो सुखदाई ऊन न काई बाता तत् सार परम पद पाया छोड़ ना कतहू जाता बरना साकों जैसा तू है साचे अलाखे अपारा अतुल अथाह अडोल स्वामी नानक खसम हमारा राम कली महला पंजवां तू दाना तू अब चल तू ही तू जात मेरी पाती तू अडोल कदे डोलह नाहीं।

गहिरा तुम पूर्ण पूर रहे संपूर्ण हम पी संग अगाए मिलत मिलत मिलत मिल रहया।

ने अगाजा निरत करे कर मनुआ नाचे आनी घूंगर साजा राम को निरतकारी पेख पेखन हार दयाला जेता साज सिंगारी रहाऊ अखार मंडली तरन सबाई ऊपर गगन चंदोवा पवन बचोला करत अकेला जल के ओपत होआ पांच तत कर पुतरा कीना किरत मलावा होआ चांद सूरज दोए जरे चरागा चौहों कुंट पीतर राखे दस पातो पांच संगीता एक पीतर साथे पिन पिन हुए भाव दिखावे सबहु नरारी पाखे कर कर निरत हो दिन राती कट कट वाजे तूरा एक नचाव है एक पवाव है एक आई जाए होए तूरा कहो नानक सो बहुर ना नाचे जिस गुर भेट है पूरा राम कली महला पंजवा ओ अंकार एक धुन एक है एक है राग अलापै।

कब ही एक शब्द बंद पाल नारदी नरहर जान हदूरे पुंगर खड़क त्याग वसूरे सहज आनंद दिखावे पावे एहो नित कारी जन्म ना आवे जे को अपने ठाकुर भावे कोट मद एहो कीर्तन गावे साध संगत की जा

कोई बाछ पिसत कोई सुरगिंदु। कहो नानक जिन हुक्म पछाता प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। राम कली महला पंजवा पवन मैं पवन समाया ज्योति मैं ज्योत रल जाया। माटी माटी हुई एक रोवन हारे की कवन टेक। कौन मुआ रे कौन मुआ ब्रह्म ज्ञानी मिलकर हो बिचारा। एहो तौ चलत भया रहाऊ अगली किश खबर न पाई। रोवन हार पे उठ सदाई परम मोह के बांधे बंद। सुपन भया पखलाए अंध एहो तौ रचन रचिया कर।

जानन हारे कहो बल जाओ। कहो नानक गुर परम चकाया, ना कोई मरे ना आवे जाया।

देव अमृत नाम दियो मुख देव सगली चिंता आप नवारी किस गुर को हौ सद बलिहारी काज हमारे पूरे सतगुर बाजे अनहद तूरे सतगुर रहाओ महिमा जा की गहर गंभीर

कार जिसे सहाई होए भगवान अनक जतन ओआ कै सरंजाम रहाउ करता राखे कीता कौन कीरी जी तो सगला भवन बेअंत महिमा ता की केतक वर्ण बल बल जाइए ता के चरण तिन्ही किया जप तप ध्यान

भोग आपन कर्म आपे ही बंद आवन जावन माया तंद ऐसी जानी संत जनी प्रगास भया पूरे गुर बचनी रहाउ तन तन कलत।

सतूठा घट घट रमैया तिनहीं दीठा राम कलही महला पंजवां पंच शब्द तह पूरन नाद अनहद बाजे अचरज बिस्माद केल करह संत हर लोग पार ब्रह्म पूर्ण निर्जोग सुख सहज आनंद भवन साध संग बै

महापुरुष का संग पया रहाउ। सगल पवित्र सर्व निर्मला जो वरताए सोई भला। जह राखै सोई मुक्त थान जो जपाए सोई नाम। अठ सठ तीरथ जह साध पग तरह तह बैकुंठ जह नाम उच्चरह। सर्व आनंद जब दर्शन पाई राम गुणा नित नित हर गाई। आपे घट घट रहे आपे आप दयाल पुरख प्रगट प्रताप। कपट खलाने

जाग हर हर जाप जपला गुर कृपा ते हृदय वास्ते पौजल पार परला रहाओ नाम निदान त्याए मन अटल ता छूटह माया के पटल गुर का शब्द अमृत रस पियो ता तेरा हुए निर्मल जियो सोदत सोदत सोद बीचारा बिन हर भगत नहीं छुटकारा सो हर भजन साध कै संग मन तन रापै हर कै रंग छोड़ सियाणप बहु चतराई मन बिन हर नावे जाए ना काई दया तारी गोविंद गुसाई हर हर नानक टेक टकाई राम कले महला पंजवां संत कै संग राम रंग केल आग्या।

सुख घर में आया, संत प्रसाद कमल बिगसाया, नाम रतन जिन पाया दान, तिस जन होए सगल निदान।

भूखा रहे, इस संग राचे सो कछु ना लहे, इस त्याग सतसंगत करे, वड भागी नानक ओ तरे। राम कली महला पंजवा, आत्म राम सर्ब मह पेख, पूर्ण पूर रहया प्रभु।

लया, बूढ़त दुख मह काड लया, सुन सुन उपजियो मन मह चाओ, आठ पहर हर के गुण गाओ, गावत गावत परम

पूर्ण परमेश्वर हर ना चेत्यो मन माही रहाओ। अमृत कौरा बिखिया मीठी साकत की बिद नैनो दीठी। कूड़ कपट अहंकार रिझाना नाम सुनत जन बिसूड साना। माया कारण सद ही झूरै मन मुख कबह न उस्तत करै। निरपो निरंकार दातार तिस स्यों प्रीत न करै गवार। सब साहा सिर साचा साह वे मोहताज पूरा पातशाह। मोह मगन लपट्यो भ्रम ग्रह नानक तरिया तेरी मेहर। राम कली महला पंजवां रैन दिनस जपो हर नाम। आगे दरगाह पावो थाम सदा आनंद न होवी सोग। कबू न व्यापै हो मैं रोग। खोजो संत हो हर ब्रह्म ज्ञानी। बिस्मन बिस्म पये बिस्मादा परम गत पावह हर सिमर प्राणी रहाओ। गण में देखो हो सगल बीचार नाम बिना को सके न तार। सगल अपाव न चालह संग पवजल तरिय प्रभ कै रंग। देही तोए न उतरे मैल हम मैं व्यापै दुबदा फैल। हर हर औखद।

नानक की प्रभ शरदा पूर राम कली मोहल्ला पंजवा तेरी शरण पूरे गुरुदेव तुद बिन दूजा नाही कोई तू समरथ पूर्ण पार ब्रह्म सो त्याए पूरा जिस कर्म तरन तारन प्रभ तेरो नाओ एका शरण गही मन मेरा तुद बिन दूजा नाही ठाओ रहाओ जप जप जीवा तेरा नाओ आगे दरगाह पावो ठाओ दुख अंधेरा मन ते जाए दुर्मत बिन सह राचे हर नाए चरण कमल स्यों लागी प्रीत गुरपूरे की निर्मल रीत पौ भागा निरपौ मन बसे अमृत नाम रसना नित जपे कोट जन्म के काटे पाहे पाया लाभ सच्चा धन लाहे टूट ना आवे अखुट भंडार नानक भगत सोह है।

का पूता, हर भगता हवालै होता, मेरे राम को पंडार, खात खर्च कछ तोट ना आवे, अंत नहीं हर पा।

दुष्ट करत तह हरक ना सोग ना जन्म ना मरत कर कृपा जिस आप दिवाया साध संग तिन हर धन पाया दयाल पुरख

नहीं जानह भेद, अवतार न जानह अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत, अपनी गत आप जानह, सुन सुन अवर बखाने रहाउ, संकरा नहीं जानह पेव, खोज तहारे देव, देवियां नहीं जानह मर्म, सब ऊपर अलख पार ब्रह्म, अपने रंग करता केल, आप बिछोड़ै आपे मेल, एक परमे एक भगती लाए।

कोट भव खंडे निमुख ख्याल सगल अराध जंत मिलिए प्रभ गुर मिल मंत जीयन को दाता मेरा प्रभ पूर्ण परमेश्वर स्वामी घट घट राता मेरा प्रभ रहाउ ताकि गहि मन ओट बंधन ते होई छोट हृदय जप परमानंद।

मत सार जित हर सिमरीजै कर कृपा जिस आपे दीजै सुख सहज आनंद हर नाओ नानक जपया गुरु।

आप सगल मटाए मन खिंडे से फल पाए हो सावधान अपने गुरसियों आसा मनसा पूर्ण होवे पावे सगल निदान गुरसियों रहाओ दूजा नहीं जाने कोई सतगुर निरंजन।

मांगन दान ता दरगाह पावे मान। गुर का बचन जप मंत एहा भगत सार तत्। सतगुर पए दयाल नानक दास निहाल। राम कले महला पंजवा होवै सोई पल मान। अपना तज अभमान दिन रैन सदा गुण गाओ। पूर्ण एही सवाओ आनंद कर संत हर जप। छाड़ सियानप बहु चतराई गुर का जप मंत निर्मल रहाओ। एक की कर आस पीतर निर्मल जप नाम हर हर। गुर के चरण नमस्कार पवजले उतर है।

तिसका सब कोए, तिसह अराध सदा सुख होए। काहे भ्रम भ्रम है बेगानी, नाम बिना किस काम ना आवे। मेरा मेरा कर बहुत पछतानी रहाऊ, जो जो करे सोई मान ले हो। बिन माने रल हो वह खेह, किसका पाणा।

जिस चित आए बिन सह दुखा, हलत पलत तेरा पूजल मुखा, कौन कौन उधरे गुण गाए, गणन ना जाई कीम ना पाए, बूढ़त लोह साध संग करै, नानक जिसह प्राप्त करै, राम कली महला पंजवां, मन मा

जाप भगवंत गुरपूरै एहो दीनो मंत मिटे सगल पै त्रास पूर्ण होई आस सफल सेवा गुरदेवा कीमत किछ कहन ना जाई साचे सच अलख।

सुनी जय अपने सेवक को दर्शन दीजै नानक जापी जप जाप सब ते ऊच जाका प्रताप राम कले महला पंजवा बिरथा परवासा लोक ठाकुर प्रभ तेरी टेक अवर छूटी सब आस अचिंत ठाकुर भेटे गुणतास एको नाम त्याए मन मेरे कार्य तेरा होवै पूरा हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ तुम ही कारण करन चरण कमल हर सरन मन तन हर ओही त्याया आनंद हर रूप दिखाया तिस ही की ओट सदीव जाके कीने है जीव सिमरत हर करत निदान राखन हार निदान सर्व की रेण हवीजै आप मटाए मलीजै आनंदेन त्याय नाम सफल ना।

सत आधार वासुदेव बस्त सब ठाए लीला किस लखी ना जाए मेहर दया कर करने हार भगत बंदगी दे सिरजनहार कहो नानक गुर खोए परम के कहो अल्लाह पार ब्रह्म राम कली महल्ला पंजवा कोट जन्म के बिन से पाप हर हर जपत नाही संताप गुर के चरण कमल मन वसे महाविकार तन ते सब नसे गोपाल।

चित लागा तन तन संयोग सुभागा संत की धूर लागी मेरे माथे किल विख दुख सगले मेरे लाथे साध की सच टहल कमानी तब होए मन शुद्ध परानी जन का सफल दर्श डीठा।

हाथी मछली का जाला टूटा, सूखे काष्ट हरे चलूल, ऊंचे थल फूले कमल अनूप, अग्नि नवारी सत गुरुदेव, सेव के अपनी लायो सेव, किरत कणा का करे उदार, प्रभ मेरा है सदा दयार, संत जना का सदा सहाई, चरण कमल नानक सरनाई, राम कली महला पंजवां, पंच सिंह राखे प्रभ मार, दस बिघियाड़ी ले

कर कृपा राखियो दास अपना सदा सदा साचा बख्शिंद रहाउ दाज गए त्रिण पाप सुमेर जप जप नाम पूजे प्रभ पैर अंध रूप

सिंध समायो कट के माही, करनहार को किस अचरज नाही, जो छूटो तो जाए पयाल, जो काडे हो तो नदर निहाल, पाप पुन हमरे बस नाही, रसक रसक नानक गुण गाई, राम कली महला पंजवां।

चिंत जाल काल चक्कर पेल, हर चरण कमल सरनाए मना, राम नाम जप संग सहाई, गुरमुख पावह साच तना रहाउ, ऊणे काज न होवत पूरे, काम क्रोध मद सद ही चूरे, करे बिकार जियरे कै ताई, गाफल संग न तसु आ जाई, तरत तो हो अनक छल जाने, कौडी कौडी को खाक सिर छाने, जिन दिया तिसै न चेतै मूल, मिथ्या लोभ न उतरै सूल, पार ब्रह्म जब पए दयाल, इह मन होआ सादर वाल, हस्त कमल लड़ लीनो लाए, नानक साचै

संग सो पव जल तरै अमृत पीवो हो साध प्यारे मुख उजल साचै दरबारे आनंद करहो तज सगल बिकार नानक हर जप उतरोह पार राम कली महला पंजवा ईंधन ते बैसंतर भागै माटी को जल दह दिस त्यागै ऊपर चरण तले आकाश घट मह सिंध कियो परगास ऐसा समरथ हर जीव आप निमख न बिसरै जी भगतन कै।

बिखैठ गौरी खाए पुलाना, माया मंदिर त्याग गया, निंदा कर कर बहुत विगुता, गर्भ जून में किरत पया, पूर्व कमाणी छोड़ नाही, जमदूत ग्रास्यो महा भया, बोले झूठ कमावे अवरा, कृष्ण ना बूझे बहुत हया, असाध रोग उपजया संत दुखन, देह बलासी महा खया, जिन्ह नवाजे तिन्ही साजे, आपे कीने संत जया, नानक दास कंठ लाए राखे, कर कृपा पार ब्रह्म मया, राम कली महला पंजवा, ऐसा पूरा गुरुदेव सहाई, जाका सिमरन बिरथा न जाई रहाओ, दर्शन पेखत हुए निहाल, जाकी तूर

बिन से अभमान एक त्याई है साध कै संग पाप बनासे नाम कै रंग गुर परमेश्वर सगल निवास काट काट रव रहे आ गुणतास दर्श दे तारू प्रभ्यास नित नानक चितवै सच अरदास राग राम कली महला पंजवां कर दूजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद गावहु राम के गुण गीत नाम जपत परम सुख पाईऐ आवागौण मिटै मेरे मीत रहाओ गुण गावत होवत परगास चरण कमल मह होए निवास संत संगत मह होए उदार नानक भवजन उतरस पार राम कली महला पंजवा गुरपूरा मेरा गुरपूरा राम नाम जप सदा सुहेले सगल मनासे रोग कूरा रहाओ एक अरातो साचा सोए जा की सरन सदा सुख होए नींद सुहेली नाम की लागी भूख हर सिमरत बिन से सब दुख सहज आनंद करहो मेरे भाई गुरपूरै सब चिंत मट

सुख संत भावनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग राम कली महला नौवा ए पदे रे मन ओटले हो हर नामा जाकै सिमरन दुर्मत नासै पावह पद निर्वाणा रहाउ बड भागी ते जन कौ जानहु जो हर के गुण गावै जन्म जन्म के पाप खोए कै हुन बैकुंठ सधावै अजामल को अंत काल में नारायण सुध आई जा गत को जोगी सर्वांशत सो गत शिन मह पाई नाहिन गुण नाहिन कछ विद्या धर्म कौन गज कीना नानक बिरदर।

ते अब कीजै जाते दुर्मत सगल बनासै राम भगत मन पीजै रहाउ मन माया मह उर्ज रहियो है बूझै नह।

निस्बा सुर मह निमख एक उर तार है जम को त्रास मिटे नानक तेहे अपनो जन्म सवार है राम कली महला नवा प्राणी नारायण सुदले छिन छिन औध घटे निस्बासुर बिरथा जात है दे रहाओ तरनापो बिखिन स्यों खोयो बालपन अज्ञाना बिरद भयो अजहू नहीं समझे कौन कुमत उरजाना मानस जन्म दियो जेह ठाकुर सो तै क्यों बिसरायो मुक्त होत नर जा कै सिमरै।

नानक कहत चेत चिंता मन होए है अंत सहाई राम कली महला पहला अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोई चंद चढ़े से तारे सोई दिन यर तपत रह सा धरती सो पौन चुलारे जुग जी खेले थाम कैसे जीवन तलब निवार हुए परवाना करे तिंगाना कल लखन विचार रहाउ कितै देश ना आया सुनिए तीर्थ पास ना बैठा दाता दान करे तह नाही मह

लखन ए जिस सकदारी तिसह खुआरी चाकर के हे डरना जा सिकदार पवै जंजीरी ता चाकर हथों मरना।

वेद अथर्वण करनी कीरत लहया पातविण पूजा सतविण संयम जातविण काहे जनेऊ नावहो धोवहो तिलक चढ़ावहो सोचविण सोच ना होई कल परवान कते बखराण पोथी पंडित रहे पुराण नानक नाओ पया रहमान कर करता तू एको जान नानक नाम मिले वडियाई एदू उपर कर्म नहीं जे घर हुंदे मंगण जाइए फिर ओ लामा मिले तही राम कली महला पहला जग प्रबोध है मड़ी बंधावे है।

दुबदा दुख भागे घर घर मांगत लाज ना लागे रहाउ। गावह गीत ना चीनह आप ज्यों लागी निवरै प्रताप। गुर कै शब्द रचै मन पाए भिख्या सहज विचारी खाए। पसम चढ़ाए करह पाखंड माया मोहे सह जमदंड। फूटै खापर भीख न पाई बंधन बांधिया आवै जाए। बिंद न रख है जति कहावह माई मांगत त्रै लभावह। निर्दया नहीं जोत उजाला बूढ़त बूढ़े।

कैसे उतर सपारी, मुंदरा पटक बनाई कान, मुक्त नहीं विद्या विज्ञान, जेवा इंद्री साध लुभाना, पशु पये नहीं मिटे निशाना, त्रिभिद लोगा त्रिभिद जोगा, शब्द विचार चूक ससोगा, उजल साच सो शब्द होए, जोगी जुगत विचारी सोए, तुझ पह नौ नित तू करने जोग, थाप उथापे करे सो होग, जात सत संयम सच सुचीत, नानक जोगी त्रे पवन मीत, राम कली महला पहला, खट मट देही मन बैरागी, सुरत शब्द धुन अंतर जागी, वाजै अनहद मेरा मन नीना, गुरबचनी सच नाम पतीना, प्राणी राम भगत सुख पाईऐ, गुरमुख हर हर मीठा लागै, हर हर नाम समाईऐ रहाउ, माया मोह विवर्ज समाए, सतगुर भेटै मेल मलाए, नाम रतन निर्मूलक हीरा, तितराता मेरा मन पीरा, हऊ मैं ममता रोग न लागै, राम भगत जम का पौ भागै, जम जंदार न लागै मोहे, निर्मल नाम हृदय हर सोहे, शब्द विचार पय निरंकारी, गुरमत जागे दुरमत परहारी, अन दिन जाग रहे लिवलाई, जीवन मुकत गत अंतर पाई, अलिपत गुफा मह रह निरारी, तस्कर पंचो शब्द संघारी, पार कर जाए ना मन डुलाए, सहज निरंतर रहो समाय, गुरमुख जाग रहे अवतूता, सद बैरागी तत् परोता, जग सूता मारे आवे जाए, बिन गुर शब्द ना सोजी पाए, अनहद शब्द बजै दिन राती, अवगत की गात गुरमुख जाती, तौ जानी जा शब्द पछानी, एको रव रहिया निर्वाणी, सुन समाद सहज मन राता।

राम कली महला पहला हठ निग्रह कर काया सीजै वर्त तपन कर मन नहीं पीजै राम नाम सर अवर ना पूजै गुरसेव मना हर जन संग कीजै।

जय त्रै गुण भिक्षा जन्म मरी जय राम नाम बिन दुख सही जय चारस पवन संघासन पी जय न्योली कर्म खट कर्म करी जय राम नाम बिन बिरथा सासनी जय अंतर पंच अगन क्यों तीर्ज तीजै अंतर चोर क्यों साध लही जय गुरमुख होए काया गढ़ लीजै अंतर मैल तीर्थ परमी जय

दुंदर पास तरी जय तुरकी सेवा राम रवी जय नानक नाम मिले कृपा प्रभु की जय राम कली महला पहला अंतर उत्पुज अवर न कोई जो कही है सो प्रभ ते होई जुगहा जुगंतर साहिब सच सोई उत्पत पर लहो अवर न कोई ऐसा मेरा ठाकुर गहर गंभीर जिन जपया तिन्ही सुख पाया हर कै नाम ना लगे जम तीर रहाऊ नाम रतन हीरा निर्मोल साचा साहिब अमर अतोल जेवा सूची साचा बोल घर दर साचा नाही रोल एक बन मह बैस है डूंगर अस्थान नाम बसार पच है अभमान नाम बिना क्या ज्ञान त्यान गुरमुख पाव है दरगह मान हठ अहंकार करे नहीं पावे पाठ पढ़े ले लोक सुनावे तीरथ परमस ब्याद ना जावे नाम बिना कैसे सुख पावे जतन करे बिंद किवे ना रहाई मनुआ डोले नरके पाई जमपुर बहादो लह सजाई बिन नामे जियो जल बल जाई सिद्ध साधक केते मुन देवा हठ निग्रह ना तृप्तावह पेवा शब्द विचार गह गुर सेवा मन तन निर्मल अभमान अभेवा कर्म मिले पावे सच नाव तुम शरणागत रहो स्वभाव तुम ते उपजेओ भगति पाओ जप जप गुरमुख हर नाव हौ मैं गर्भ जाई मन पीनै झूठ ना पावस पाखंड कीनै बिन गुर शब्द नहीं घर बार नानक गुरमुख तत बीचार राम कली महला पहला ज्यों आया त्यों जावह बौरे ज्यों जन्मे त्यों मरन भया ज्यों रस भोग किए तेता दुख लागे नाम विसार भवजल पया तन तन देखत गर्भ गया कनक कामनी स्यों हेत वधाई हे की नाम वसार है परम गया रहाऊ जत सत संयम सील ना राखिया प्रेत पिंजर मह काष्ट भया पुन दान इशनान ना संयम साध संगत बिन बात जया लालच लागे नाम बसारे ओ आवत जावत जन्म गया जां जम ताई केस गह मारे सुरत नहीं मुख काल गया अहनस निंदा तात पराई हृदय नाम ना सर्ब दया बिन गुर शब्द न गत पत पावह राम नाम बिन नरक गया खिन मैं वेश करह नटुआ ज्यो मोह पाप मह गलत गया हित उत माया देख पसारी मोह माया कै मगन भया करह विकार वथार कनेरे सुरत शब्द बिन भरम पया हौ मैं रोग महा दुख लागा गुरमत लेव हो रोग गया सुख संपत को आवत देखै साकत मन अभमान पया जिसका एहो तन तन सो फिर लेवै अंतर सहसा दुख पया अंतकाल किस साथ ना चालै जो दिसै सब तिसह मया आद पुरख अपरंपर सो प्रभ हर नाम हृदय लै पार पया मुए को रोवह किसे सुनावह पै सागर असराल पया देख कटंब माया ग्रह मंदर साकत जंजाल पराल पया।

दृष्ट समय सर अनहत शब्द रंगीना सात बंद कुपीन भरपुर लीना जेवा रंग रसीना मिलै गुर साचे जिन रच राचे किरत विचार पतीना एक मह सर्ब सर्ब मह एका एह सतगुर देख दिखाई जिन किए खंड मंडल ब्रह्मंडा सो प्रभ लखन ना जाई दीपक ते दीपक परगासिया त्रिपवन जोत दिखाई सच्चे तखत सच महली बैठे निरपव ताड़ी लाई मोहे गया बैरागी जोगी कट कट कुंगरी वाई नानक सरन प्रभु की छूटे सतगुर सच सिखाई राम कली महला पहला आओ हठ हस्त मड़ी कर छाया तरन गगन कल तारी गुरमुख केती शब्द उधारी संत हो रहाओ ममता मार हो मैं सुख है तेरे पवन जोत तुम्हारी मनसा मार मन मह राख है सतगुर शब्द विचारी सिंही सुरत अनाह दवाजे कट कट जोत तुम्हारी परपंच बेन तही मन राखिया ब्रह्म अग्न पर जारी पंच तत् मिल अहनस दीपक निर्मल ज्योत अपारी राव सस लोके इहो तन किंगरी वाजै शब्द निरारी शिव नगरी मह आसन औदू अलख अगम अपारी काया नगरी इहो मन राजा पंच वसह विचारी शब्द रवै आसन घर राजा अदल करे गुणकारी काल बकाल कहे कह बपरी

ना पाखांडे औदु गुरमुख शब्द बिचारी गुरमुख जोग कमावे औदु जात सत शब्द बिचारी शब्द मरे मन मारे औदु जोग जुगत बिचारी माया मोह भवजल है अवधु शब्द तरे कुल तारी शब्द सूर जुग चारे औदु बाणी भगत बिचारी एहु मन माया मोहया औदु निकसै शब्द बिचारी आपे बख्शे मेल मलाए नानक सरन तुम्हारी राम कली महला तीजा अष्टपदियां।

जोग जुगत एव पाए नदरी आवंदा सब किस बिनसै हर सेती चित लाए सतगुर नाल तेरी भावनी लागै ता एह सोझी पाए एहो जोग न होवै जोगी जे कतंब छोड़ पर भवन करहै ग्रह शरीर मह हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रभ लह एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी इसमें रोग वड्डा तृष्णा माया अनेक जतन भेख करे जोगी रोग ना जाए गवाया हर का नाम औखद है जोगी जिसनो मन वसाए गुरमुख होवै सोई बूझै जोग जुगत सो पाए जोगै का मार्ग बिखम है जोगी जिसनो नदर करे सो पाए अंतर बाहर एको वेखै विचों भरम चुकाए बिन

अल्ला तीजा भगत खजाना गुरमुख जाता सतगुर बूझ बुझाई संतो गुरमुख दे वड्याई रहाउ सच रहो सदा सहज सुख उपजै काम क्रोध विचों जाई आप छोड़ नाम लिव लागी ममता शब्द जलाई जिसते उपजै तिसते बिनसै अंते नाम सिखाई सदा हजूर दूर नह देखो रचना जिन रचाई सच्चा शब्द रवै घट अंतर सच्चे स्यों लिवलाई सत संगत मह नाम निर्मोलक वड्डे भाग पाया जाई परम ना भूलो सतगुर सेवो मन राखो एक ठाई बिन नावे सब भूली फिर दी बिरथा जन्म गवाई जोगी जुगत गवाई हंडे पाखंड जोग ना पाई शिव नगरी मह

परम पलाई उपदेश कह किस पाई भगत जना की उत्तम बाणी जुग जुग रही समाई बाणी लागे सो गत पाए शब्दे सच समाई काया नगरी शब्दे खोजे नाम नमंग निद पाई मनसा मार मन सहज समाना बिन रसना उस्तत कराई लोयन देख रहे बिस्मादी एता अदिष्ट लगाई अदिष्ट सदा रह निरालम ज्योति ज्योत मलाई हो गुर सलाही सदा अपना

हर की पूजा दिलंब है संतोहो, कहना कछु ना जाई। संतोहो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई रहाऊ। हर बिन सब किश मैला संतोहो, क्या हो पूज चढ़ाई। हर साचे पावे सा पूजा होए, पाणा मन वसाई। पूजा करे सब लोक संतोहो, मनमुख थाए ना पाई। शब्द मरे मन निर्मल संतोहो, एह पूजा थाए पाई। प्रीत पावन से जन साचे, एक शब्द लिव लाई। बिन नावे होर पूज ना होवी, परम कुली लोकाई। गुरमुख आप पछाणे संतोहो, राम नाम लिव लाई। आपे निर्मल पूज कराए, गुर शब्दी थाए पाई। पूजा करह पर विद नहीं जान है, दूजे पाए मल लाई। गुरमुख हो ऐसो पूजा जाने, पाणा मन वसाई। पाणे ते सब सुख पावे संतोहो, अंते नाम सिखाई। अपना आप ना पछाण है संतोहो, कूड़ करह वड्याई। पाखंड कीने जम नहीं छोड़े, ले जासी पत गुआई। जिने अंतर शब्द आप पछाण है, गत मित तिन ही पाई। एह मनुआ सुन समाध लगावे, ज्योति ज्योत मलाई। सुन सुन गुरमुख नाम वखाण है, सत संग

ऐ भंजन अत पाप निखंजन मेरा प्रभ अंत सखाई सब किसे आपे आप वरतै नानक नाम वडियाई राम कली महला तीजा हम कुचल कचील अत अभमानी मिल शब्दे मैल उतारी संत हो गुरमुख नाम निसतारी सच्चा नाम वस्या घट अंतर करतै आप सवारी रहाउ पारस परसे फिर पारस हुए हर जीव अपनी कृपा तारी एक भेख करह फिर है अभमानी इन जुए बाजी हारी एक अन दिन भगत करह दिन राती राम नाम उरत हारी अन दिन राते सहजे माते सहजे हो मैं मारी पै बिन भगत न होई कब ही पै पाए भगत सवारी माया मोह शब्द जलाया ज्ञान तत बीचारी आपे आप कराए करता आपे बख्श पंडारी तिस क्या गुणा का अंत ना पाया हों गावा शब्द बीचारी हर जियो जपी हर जियो सालाही विच हो आप निवारी नाम पदार्थ गुरते पाया अखुट सच्चे पंडारी अपनिया भगतानो आपे तुठा अपनी कृपा कर कल तारी तिन साचे नाम की सदा भुख लागी गावन शब्द विचारी जियो पिंड सब किश है तिसका आखन बिखम बीचारी शब्द लगे से जन निस्तरे भौजल पार उतारी बिन हर साचे को पार ना पावे बूजै को विचारी जो तुर लिखिया सोई पाया मिल हर शब्द सवारी काया कंचन शब्दे राती साचे नाई प्यारी काया अमृत रही परपूरे पाईए शब्द विचारी जो प्रभ खोजह से ही पाव है होर फूट मुए अहंकारी बादी बिन सह सेवक सेवह गुर कै हेत प्यारी सो जोगी तत ज्ञान बिचारी हम मैं तृष्णा मारी।

अहंकारी जिच्चर अंतर सास तिच्चर सेवा कीचे जाए मिलिए राम रारी अन दिन जागत रह दिन राती अपने प्रिय प्रीत प्यारी तन मन वारी वार कमाई अपने गुर विटो बलिहारी माया मोह बिनस जाएगा उबरे शब्द विचारी आप जगाए से जागे गुर कै शब्द विचारी नानक से मुए जे नाम ना चेत है भगत जीवे विचारी राम कली महला तीजा नाम खजाना गुरते पाया कृपत रहे आघाई संत हो गुरमुख मुक्त गत पाई एक नाम वस्या घट अंतर।

पोतहारी जिन दिए तुद बनता अर मीता तिस ठाकुर को रख ले हो चीता जिन दिया तुद पवन अमोला जिन दिया तुद नीर निर्मोला जिन दिया तुद पावक बलना तिस ठाकुर की रहो मन सरना छत्ती अमृत जिन पूजन दिए अंतर खान ठहरावन को दिए बसदा दियो बर्तन बलना तिस ठाकुर के चित रख चरना देखन को नेतर सुनन को करना हस्त कमावन बासन रसना चरण चलन को सिर कीनो मेरा मन तिस ठाकुर के पूजो पैरा अपवित्र।

काहू बिहावै रंग रस रूप काहू बिहावै माए बाप पूत काहू बिहावै राज मिलख वपारा संत बिहावै हर नाम अधारा रचना साच बनी सबका एक तनी रहाऊ काहू बिहावै वेद अर बाद काहू बिहावै रसना साध काहू बिहावै लपट संग नारी संत रचे केवल नाम मरारी काहू बिहावै खेलत जुआ काहू बिहावै अमली हुआ काहू बिहावै पर दर्ब चुराए हर जन बिहावै नाम त्याय काहू बिहावै जोग तप पूजा काहू रोग सोग परमीजा काहू पवन धार जात बिहाए संत बिहावै कीर्तन गाए काहू बिहावै दिन रहन चालत काहू बिहावै सो पिड़ मालत काहू बिहावै बाल पढ़ावत संत बिहावै हर जस गावत काहू बिहावै नट नाटक निरते काहू बिहावै जिया एह हिरते काहू बिहावै राज मह डरते संत बिहावै हर जस करते काहू बिहावै मता मसूरत काहू बिहावै सेवा जरूरत काहू बिहावै सोदत जीवत संत बिहावै हर रस पीवत।

पंजवां दावा अगन रहे हर बूट मात गर्भ संकट ते शूट जा का नाम सिमरत पहु जाए तैसे संत जना राखे हर राय ऐसे राखन हार दयाल

अंधेर बंजाई, करण कारण समरथ स्वामी, नानक तिस सरनाई, बंधन तोड़ चरण कमल दिरडाई, एक शब्द लिवलाई, अंधकूप बिख्या ते काढ्यो, साच शब्द बने आई, जन्म मरण का सहसा चूका, बहुत

जन्म मरण की टेक, मुख उज्जल सदा सुखी, नानक सिमरत एक, मन तन राता राम प्यारी, हर प्रेम भगत बन आई संतो, सतगुरु खेप निबाही संतो, हर नाम लाहा दास को दिया, सगली तृष्ण उलाही संतो, रहाउ खोजत खोजत लाल एक पाया, हर कीमत कह

हर सिमरत तृप्त अगाई संतो हो। आत्म राम रविया सभ अंतर कत आवे कत जाई संतो हो। आद जुगादि है पी होसी सब जिया का सुखदाई संतो हो। आप बेअंत अंत नहीं पाई है पूर रहया सब ठाई संतो हो। मीत साजन माल जोगन सुत हर नानक बाप मेरी माई संतो हो। राम कली महला पंजवा मन बच क्रम राम नाम चितारी घूमन घेर महा अत बिखड़ी गुरमुख नानक पार उतारी रहाओ। अंतर सूखा बाहर सूखा हर जप मलन भये दुष्टारी जिसते लागे तिन्ह निवारी प्रभ जीओ अपनी कृपा तारी। उदरे संत परे हर सरनी पच बिन से महा अहंकारी साधु संगत एहो फल पाया एक केवल नाम अधारी। ना कोई सूर ना कोई हीना सब प्रगटी जोत तुम्हारी। तुम समर्थ अकथ अगोचर रविया एक मरारी कीमत कौन करे तेरी करते प्रभ अंत न पारा वारी। नाम दान नानक वडियाई तिरिया संत जना रे नारी। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइया। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया शब्दो तांगा वो हरि केरा मन जिन्नी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले।

विचारिया। एक भरम भूले फिर दह देश, एक नाम लाग सुआरिया। गुर प्रसादी मन भया निर्मल, जिन्ना पाणा पावे। कह नानक जिस देह प्यारे, सोई जन पावे। आव हो संत प्यारे हो, अकथ की करह कहानी। करह कहानी कथ केरी, कित द्वारे पाई है। तन मन तन सब सौंप गुर को, हुक्म मन्ने है पाई है। हुक्म मन्ने हो गुरु केरा, गाव हो सच्ची बाणी। कह नानक सुनो संत हो, कथे हो अकथ कहानी।

सुरलार मुन जाने अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया, जी जंत सब तुद उपाय, एक वेख परसन आया, लब लोभ अहंकार चूका, सतगुरु भला पाया, कह नानक जिसनु आप तुठा, तिने अमृत गुर ते पाया, भगतां की चाल नराली, चाला नराली भगतां केरी, विखव मार्ग चलना, लब लोभ अहंकार तज त्रिशना, बहुत नाही बोलना, थन्यो तिखी वालो निकी, एक मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिनी आप तजिया, हर वास ना समाणी, कह नानक चाल भगतां, जुग हो जुग निराली।

जिन्नी गुरमुख हर हर त्याया, कर्मी सहज ना उपजै, विन सहजै सहसा ना जाय, नह जाय सहसा कितै संयम, रहे कर्म कमाय, सहसै जीव मलीन है, कित संयम धोता जाय, मन तो वो शब्द लागो, हर सिंह रहो चित लाय, कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै, इहो सहसा इव जाय, जियो मैले बाहर हो निर्मल, बाहर हो निर्मल जियो ता मैले, तिन्नी जन्म जू है हारिया, ए तिसना वड्डा रोग लगा।

सेती सनमुख होवै, होवै ता सनमुख सिख कोई, जियो रहे गुर नाले, गुर के चरण हिरदय त्याई, अंतर आत्मै सुमाले, आप छड सदा रहे परनै, गुर बिन अवर न जाने कोई, कह नानक सुनो संत हो, सो सिख सनमुख होए, जे को गुर ते गे मुख होवै, बिन सत

नित करह रसना कहया कछु ना जानी चित जिनका हिरलया माया बोलन पए रवाणी कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाऊ शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ समाऊ शब्द सेती मन मिलिया सच्चे लाया पाऊ आपे हीरा रतन आपे जिसनो दे बुझाई कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाऊ सेव सकते आपे उपाय कै करता आपे हुक्म वरताए हुक्म वरताए आप वेखे गुरमुख किसह बुझाई तोड़े बंधन होए मुक्त शब्द मन वसाई गुरमुख जिसनो आप करे सो होवे एकस स्यों लिवलाई कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाई सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तै सार ना जानी तत्तै सार ना जानी गुरु बाजो तत्तै सार ना जानी तिही गुणी संसार भ्रम सुत्ता सुतिया रैन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसिया बोलह अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनो अन दिन हर लिव लागे।

वरदाता जे अग्न मह आहार पहुंचावे उसनो केहो पोहे ना सकी जिसनो अपनी लिभ लावे अपनी लिव आपे लाई गुरमुख सदा सुमहली है कह नानके वरदाता सो क्यों मनो विसारी है जैसी अग्न उधर मह तैसी बाहर माया माया अग्न सब इको जे ही करतै खेल रचाया जां तिस पाणा तां जम्मिया परवार भला पाया लिव चुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया एह माया जित हर विसरै मोह उपजै भाउ दूजा लाया कह नानक गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी तिन्नी विचे माया पाया हर आप अमुल कह मुल ना पाया जाए मुल ना पाया जाए किसे विटहु रहे लोक बिल लाए ऐसा सतगुर जे मिले तिसनों सिर सौंपिए विचो आप जाए।

प्यास न जाए, प्यास न जाए हूत कितै, जिचर हर रस पल्ले न पाए, हर रस पाए पल्ले पीए हर रस, बहुड़ ना तृष्णा लागे आए, एहो हर रस करमी पाईए, सतगुर मिले जिसे आए, कह नानक होर आन रस सब विसरे, जा हर वसे मन आए, ए शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी, ता तू जग मह आया, हर जोत रखी तुद विच, ता तू जग मह आया, हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो उपाए जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया, ता चलत हुआ चलत नदरी आया, कह नानक सृष्ट का मूल रखिया, जोत राखी ता तू जग मह आया, मन चाहो पया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनिया, हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख ना व्यापे, गुर चरण लागे दिन सभागे, अपना फिर जापे, अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो।

तुद कर्मक माया ते कर्मक माया तुद शरीरा जा तू जग मह आया जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया कह नानक एहो शरीर परवान हुआ जिन सतगुर स्यों चित लाया ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम मह जोत धरी हर बिन अवर ना देखो कोई हर बिन अवर ना देखो कोई नदरी हर ने हालिया एहो विश संसार तुम देख दे एहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर ना कोई कह नानक एह नेत्र अंध से सतगुर मिले दे बदृष्ट हो।

भय सरसे पूरे गुरते जानी। सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रहे आप पूरे विद्वंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। राम कली सत एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगदाता सोए भगत वसल त्यो लोए जियो। गुर शब्द समावे अवर ना जाने कोई जियो अवरो ना जाने शब्द गुर कै एक नाम त्यावहे। प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावहे आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया। जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रभ पास जियो। सतगुर करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो। पैज राखो हर जनह केरी हर देहो नाम निरंजनो। अंत चल दिया हुए बेली जमदूत काल निखंजनो। सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो। हर धार कृपा सतगुर मिलाया तन तन कह साबास जियो। मेरे सिख सुनो पुत भाई हो मेरा हर भाणा आओ मैं पास जियो। हर भाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो। भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ पाणा पावे आनंद अनहद वजह वाजे हर आप गल मिलावे। तुसी पुत भाई परवार मेरा मन वेखो कर निरजास जियो। तुर लिखिया परवाणा फिरे नाही गुर जाए हर प्रभ पास जियो। सतगुर पाणे अपने बह परवार सदाया मत मैं पिछे कोई रोसी सो मैं मूल ना पाया। मित पैजै मित बिगसै जिस मित की पैज पावे। तुसी विचार देखो पुत भाई हर सतगुरु पैनावे। सतगुरु परतख हुंदे बहराज आप टकाया सब सिख बंधप पुत भाई रामदास पैरी पाया। अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो। केसो गोपाल पंडित सद्यो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबाण हर रंग गुर पावे। पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल हर सर पावे। हर पाया सतगुर बोलिया हर मिलिया पुरख सुजान जियो। रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो। सतगुर पुरख जे बोलिया गुरसिखा मन लई रजाए जियो। मोहरी पुत सनमुख होया रामदासै पैरी पाए जियो। सब पवै पैरी सतगुरु केरी जिथे गुरु आप रखिया। कोई कर बखीली निवै नाही फिर सतगुरु आन निवाया। हर गुरह भाणा दी वडियाई तुर लिखिया लेख रजाए जियो। कह सुंदर सुनो संतो सब जगत पैरी पाए जियो। राम कली महला पंजवां शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोयड़ा मेरा साजनड़ा। जानियड़ा हर जानियड़ा नैन अलोयड़ा हर जानियड़ा। नैन अलोया कट कट सोया हत अमृत पै गूड़ा। नाल होवंदा लह ना सकंदा सुआओ ना जाने मूड़ा। माया मद माता होची बाता मिलन न जाई भरम धड़ा। कहो नानक गुरबिन नाही सूजै हर साजन सब कै निकट खड़ा। गोविंदा मेरे गोविंदा

सुगड़ सुजान। सुगड़ सुजाना सद परधाना, अमृत हर का नामा, चाक अगानी सारंग पाने, जिनके भाग मथाना। तिन ही पाया तिन्ह ते आया, सगल तिसे का माणु, कहो नानक थिर तख्त निवासी, सच तिसे दी बाणु। मंगला हर मंगला, मेरे प्रभ कह सुनिए मंगला, सोहिलड़ा प्रभ सोहिलड़ा, अनहद तुनिए सोहिलड़ा, अनहद वाजे शब्द अगाजे, नित नित जिसे वधाई, सो प्रभ त्याईए सब किश पाईए, मरे ना आवे जाई। चूकी प्यासा पूर्ण आसा, गुरमुख मिल निर्गुणी।

खिनना विसारी है, राम रामा राम रमा कंठ उर तारी है, उर तार हर हर पुरख पूरन पार ब्रह्म निरंजनो, पै दूर करता पाप हरता दुसह दुख भव खंडनो, जगदीश ईश गोपाल माधो गुण गोविंद विचारी है, बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरैन चितारी है, चरण कमल आधार जन का आसरा माल मिलक भंडार नाम अनंत धरा, नाम नरहर निदान जिनकै रस भोग एक नारायणा, रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास त्याणा, किल विख हरना नाम पुनः चरना, नाम जम की त्रास हरा बिनवंत नानक रास जन की, चरण कमल है आसरा गुण बेअंत स्वामी तेरे कोई ना जाने, देख चलत दयाल सुन भगत बखाने, जी जंत सब तुझ त्यावह पुरख पत परमेश्वरा, सर्व जाचक एक दाता करुणा मैं जगदीशरा, साधु संत सुजान सोई जिसे प्रभ जी माने, बिनवंत नानक करहो कृपा सोए तुझे पछाने, मोहे निर्गुण अनाथ सरनी आया बल बल बल गुरुदेव जिन नाम दृढ़ाया, गुरु नाम दिया कुशल थिया सर्व इच्छा पुनिया, जल ने बुझाई शांत आई मिले चिरी बछुनिया, आनंद हरख सहज साचे महा मंगल गुण गाया, बिनवंत नानक नाम प्रभ का गुरपुरे ते पाया, राम कली महला पंजवा रुण चुनो शब्द अनाहद, नेत्र उठ गाइय संतन कै किल वेख सब दुख बनासन, हर नाम जपिय गुरमंतन कै हर नाम लीजै अमयो पीजै, रैन दिनस अराधिय जोग दान अनेक क्रिया लग चरण कमल है साधी है, पाओ भगत दयाल मोहन दुख सगले पर हरै, बिनवंत नानक तरै सागर त्याए स्वामी नर हरै, सुख सागर गोविंद सिमरन भगत गावह गुण तेरे राम, अंध मंगल गुर चरणी लागे पाए सुख कनेरे राम, सुख निदान मिलया दुख हरिया कृपा कर प्रभ राखिया, हर चरण लागा भ्रम पौ भागा हर नाम रसना भाखिया, हर एक चितवै प्रभ एक गावै हर एक दृष्टि आया, बिनवंत नानक प्रभ करी कृपा पूरा सतगुर पाया, मिल रही है प्रभ साध जना मिल हर कीर्तन सुनिए राम, दयाल प्रभु दामोदर माधो अंत न पाइय गुनिए राम, दयाल दुख हर सरण दाता सगल दुख निवारनो, मोह सोग बकार बिखड़े जपत नाम उदारनो, सब जी तेरे प्रभु मेरे कर कृपा सब रेण थीवा, बिनवंत नानक प्रभ मया कीजै नाम तेरा जप जीवा, राख लिए प्रभ भगत जना अपनी चरणी लाए राम, आठ पैर अपना प्रभ सिमरह एको नाम त्याए राम, त्याए सो प्रभ तरे भवजल रहे आवन जाना, सदा सुख कल्याण कीर्तन प्रभ लगा मीठा पाना, सब इच्छ पुन्नी आस पूरी मिले सतगुर पूरिया, बिनवंत नानक।

प्रकार चरण कमल शरणागति आनंद मंगल गुण गाम नानक प्रभ आराधी है विपत निवारण राम संत प्राभ विपत निवारणो तिस बिन अवर ना कोई जियो सदा सदा हर सिमरी है जल थल महियल सोए जियो जल थल महियल कूर रहया एक निमख मनहो ना विसरै गुर चरण लागे दिन सा भागे सर्व गुण जगदीसरै कर सेव सेवक दिन सरैणी तिस भावै सो होए जियो बल जाए नानक सुख है दाते परगास मन तन होए जियो सलोक हर सिमरत मन तन सुखी बिनसी दुतिया सोच नानक टेक गोपाल की गोविंद संकट मोच संत पै संकट काटे नारायण दयाल जियो हर गुण आनंद गाए प्रभ दीना नाथ प्रतपाल जियो प्रतपाल अचुत पुरख एको तिसह स्यो रंग लागा कर चरण मस्तक मेल लीने सदा अन दिन जागा जियो पिंड ग्रह थान तिसका तन जोबन धन माल जियो सदा सदा पल जाए नानक सर्ब जिया प्रतपाल जियो सलोक रसना उचरै हर हरि गुण गोविंद वखियान नानक पकड़ी टेक एक परमेश्वर रखै निदान संत सो स्वामी प्रभ रख को अंचल तां कै लाग जियो भज साधु संग दयाल देव मन की मत त्याग जियो एक ओट की जय जियो दीजै आस एक धरनी धरै साध संगे हर नाम रंगे संसार सागर सब तरै जन्म मरण बेकार छूते फिर ना लागै दाग जियो बल जाए नानक पुरख पूरन फिर जाका सुहाग जियो सलोक धर्म अर्थ हर काम मोख मुक्त पदार्थ नाथ सगल मनोरथ पूरिया नानक लिखिया माथ संत सगल इच्छ मेरी पुनिया मिलिया निरंजन राय जियो आनंद भया वडभागी हो ग्रह प्रगटे प्रभ आए जियो ग्रह लाल आए पुरब कमाए ताकि उपमा क्या गणा बेअंत पूर्ण सुख सहज दाता कवन रसना गुण भणा आपे मलाए गह कंठ लाए तिस बिना नहीं जाए जियो बल जाए नानक सदा करते सब मह रहया समाए जियो राग राम कली महला पंजवां रण झुंझनड़ा गाओ सखी हर एक त्यावो सतगुरु तुम सेव सखी मन चिंदियाड़ा फल पावो राम कली महला पंजवां रुति सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद कर बंधन प्रभ पार ब्रह्म बांछो साधा धूर आप निवार हर हर भजो नानक प्रभ भरपूर किलविख काटन भय हरन सुख सागर हर राय दीन दयाल दुख भंजनो नानक नीत त्याए संत जस गाव हो वडभागी हो कर कृपा भगवंत जियो रुति महा मूर्त घड़ी गुण उचरत शोभावंत जियो गुण रंग राते तन तेजन जिन्नी एक मन त्याया सफल जन्म भया तिनका जिन्नी सो प्रभ पाया पुन दान ना तुल किरिया हर सर्ब पापा हंत जियो बिनवंत नानक सिमर जीवा जन्म मरण रहंत जियो सलोक उदम अगम अगोचरो चरण कमल नमस्कार कथनी सात उदभाव सी नानक नाम आधार संत सरण साजन परहो स्वामी सिमर अनंत सूके ते हरिया थिया
नानक जप भगवंत शंत रुत सरस बसंत माह चेत वसाख सुख मास जियो हर जियो नाह मिलिया मौलिया मन तन सास जियो कर नाह निश्चल आनंद सखिए चरण कमल पर फुल्लिया सुंदर सुगड़ सुजान बेता गुण गोविंद अमुल्या वड भाग पाया दुख गवाया पई पूर्ण आस जियो बिनवंत नानक सरन तेरी मिति जम की त्रास जियो सलोक साध संगत बिन भ्रम मुई करती कर्म अनेक कोमल बंधन बांधिया नानक करम है लेख जो पाणे से मेलिया विछोड़े पी आप नानक प्रभ सरनागती जा का वड प्रताप संत ग्रीख मरुत अत गाखड़ी जेठ अखाड़ काम जियो प्रेम बशोह दहागनी दृष्ट ना करी राम जियो नह दृष्ट आवै मरत हावै महा गर्भ मुठिया जल बाज मछली तड़फड़ावै संग माया रुठिया कर पाप जोनी पै पीत होई दे सासन जाम जियो बिनवंत नानक ओट तेरी राख पूर्ण काम जियो सलोक शरदा लागी संग प्रीत में एक तिल रहन ना जाए मन तन अंतर रव रहे नानक सहज सुभाए कर गहलीनी साजन है जन्म जन्म के मीत चरणहा दासी कर लई नानक प्रभ हित चीत शंत रुत बरस सुहेलिया सावन पादवे आनंद जियो धान उन्नम बुठे जल तल पूरिया मकरंद जियो प्रभ पूर रहिया सर्ब ठाई हर नाम नव निध ग्रह भरी सिमर स्वामी अंतर जामी कुल समूहा सब तरे प्रिय रंग जागे नह शिदर लागे कृपाल सद बख्शिंद जियो बिनवंत नानक हर कंत।

है कोई साजन संत जन नानक प्रभ मेलन हार बिन मिल बे शांत ना उपजै तिल पल रहन ना जाए हर साध शरनागति नानक आस पुजाय संत रोत शरद अडम्बरु असु कटके हर प्यास जियो खोजंती दर्शन फिरत तब मिलिए गुणतास जियो बिन कंत प्यारे नह सूख सारे हार कंगन त्रिक बना सुंदर सुजान चतुर बेती सास बिन जैसे तना ईत उत दह दिस अलोकन मन मिलन की प्रभ प्यास जियो बिनवंत नानक तार कृपा।

नानक प्रभ पूरन मिले, दुतिया बिनसी प्रांत साध पठाए आप हर, हम तुम ते नाही दूर, नानक भ्रम पै मिट गए, रमण राम भरपूर शंत, रुत सिसियर सीतल हर प्रगटे मंगर पोह जियो, जलन बुझी दर्श पाया बिनसे माया त्रोह जियो, सब काम पूरे मिल हजूरे, हर चरण सेवक सेवया, हार डोर शिंगार सब रस, गुण गाओ अलख अपेवया, पाओ भगत गोविंद बांछत, जमना साकै जोए जियो, बिनवंत नानक प्रभ आप मेली, तहना प्रेम बशोह जियो। श्लोक हर तन पाया सुहागिनी, डोलत नाही कीत, संत संजोगी नानका ग्रह प्रगटे प्रभ मीत, नाद विनोद आनंद कोट, प्रिय प्रीतम संग बने, मन बांछत फल पाया, हर नानक नाम भने संत, हिम कर रुत मन भावती, माघ फगण गुणवंत जियो, सखी सहेली गाओ मंगलो, ग्रह आए हर कंत जियो, ग्रह लाल आए मन त्याए, सेज सुंदर सोहिया, वन त्रिण त्रिपहुण भये हरिया, देख दर्शन मोहिया, मिले स्वामी इच्छ पुन्नी, मन जपया निर्मल मंत जियो, बिनवंत नानक नित करो रलिया, हर मिले श्री धर कंत जियो। श्लोक संत सहाई जी के भवजल तारन हार, सब ते उचे जानिए नानक नाम प्यार, जिन जानिया से तरे से सूरे से वीर, नानक तिन बलिहार ने हर जप उतरे तीर, संत चरण बराजत सब उपरे, मिटिया सगल कलेश जियो, आवन जावन दुख हरे, हर भगत किया प्रवेश जियो, हर रंग राते सहज माते, टिलना मन ते बिसरे, तज आप सरनी परे चरनी, सर्व गुण जगदीसरे, गोविंद गुण निद श्री रंग स्वामी, आद कौ आदेश जियो, मिनवंत नानक मया तारहो, जुग जुगो एक वेश जियो। राम कली।

वेद निर्मय ओंकार शब्द उधरी ओंकार गुरमुख तरी उनमें अखर सुनो विचार उनमें अखर त्रि भवन सार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाउ सत्सै सब जग सहज उपाया तीन भवन एक ज्योति गुरमुख वस्त प्राप्त होवे चुन लै माणक मोती समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै अंत निरंतर साचा गुरमुख देखै साथ संभाले बिन साचे जग काचा तद्दै धर्म धरे धर्मापुर गुणकारी मन पीरा तद्दै धूल पड़ै मुख मस्तक कंचन भय मनूरा तन धरनी तर आप अज

गुरु गोपाला उगव्या असरूप दिखावे कर कृपा अपन है घर आवे ऊनव बरसै नी चर तारा उत्तम शब्द सुहार नहारा इस एके का जाने पेव आपे करता आपे देव उगवै सूर असुर संघार ऊचो देख शब्द बीचार ऊपर आदि अंत त्यो लोय आपे करे कथै सुने सोय ओह बधाता मन तन दे ओह बधाता मन मुख सोय रब जग जीवन अवर ना कोय नानक नाम रते पत होय राजन राम रवै हितकारी।

ज्यों कंचन सुहागा ढालै कस कसवटी सह सोताऊ नदर सराफ बन्नी सचड़ाऊ जगत पशु अहंकाल कसाई तर कर तै करनी कर पाई जिन कीती तिन कीमत पाई होर क्या कहिए किस कहन ना जाई खोजत खोजत अमृत पिया खिमा गही मन सतगुर दिया खरा खरा आखै सब कोए खरा रतन जुग चारे होए खात पी अंत मुए नहीं जानिया हिन मह मुए जा शब्द पछानिया अस्थर चीत मरन मन मानिया गुर किरपा ते नाम पछानिया गगन गंभीर गगन अंतर वास गुण गावै सुख सहज निवास गया न आवै आए न जाय गुर प्रसाद रह लिवलाय गगन अगम अनाथ अजोनी अस्थिर चीत समाद सुगोनी हर नाम चेत फिर पवह ना जूनी गुरमत सार होर नाम बिहूनी घर दर फिर थाकी बहु तेरे जात असंख अंत नहीं मेरे केते मात पिता सुत धिया केते गुर चेले फुन हुआ काचे गुरते मुक्त ना हुआ केती नार वर एक संभाल गुरमुख मरण जीवन प्रभ नाल दह दिस ढूंढ कर मह पाया मेल भया सतगुरु मलाया गुरमुख गावे गुरमुख बोले गुरमुख तोल तलावे तोले गुरमुख आवे जाए न संग पर हर मैल जलाए कलंक गुरमुख नाद वेद विचार गुरमुख मज्जन चज आचार गुरमुख शब्द अमृत है सार नानक गुरमुख पावे पार चंचल चीत न रही ठाई चोरी मिर्ग अंगूरी खाए चरण कमल उर तारे चीत चिर जीवन चेतन नित नीत चिंतत ही दिसै सब कोए चेतह एक तही सुख होए चित वसै राचै हर नाय मुक्त भया पत स्यों घर जाए सीजै दे खुलै एक गंड छिया नित देखो जग हंड धूप शाम जे सम कर जान बंधन काट मुक्त कर आण छाया शूशी जगत भुलाना

जागत जाग रहा तुद पावा, जा तू मेलहै ता तुझै समावा, जय जयकार जपो जगदीश, गुरमत मिलिया बीस अकीस, चख बोलन क्या जग स्यों वाद, झूर मरे देखै परमाद, जन्म मुए नहीं जीवन आसा, आए चले पय आस मरासा, चुर चुर चख माटी रल जा।

पूजै, गुर का कहया अंक समावै, निर्मल सूचे साचो पावै, गुर सागर रतनी नहीं तोट, लाल पदार्थ साची अखोट, गुर कहया साकार कमाव हो, गुर की करनी काहे ताव हो, नानक गुरमत साच सम

के बोलह सही। टूटे बाहा दुहू दिस गही, टूट परीत गई बुर बोल, दुर्मत पर हर छाडी ढोल, टूटे गंठ पड़े विचार, गुर शब्दी घर कारज सार, लाहा साच न आवे टोटा, त्रे पवन ठाकुर प्रीतम मोटा, ठाको मनुआ राखो ठाई, ठहक मुई अब गुण पछताई, ठाकुर एक सबाई नार, बहुते वेश करे कूड़ियार, पर घर जाती ठाक रहाई, महल बलाई ठाक न पाई, शब्द सवारी साच प्यारी, साई सुहागन ठाकुर तारी, डोलत डोलत हे सखी, फाटे चीर सिंगार, दाहपन तन सुख नहीं, बिन डर बिन ठी डार, डरप मुई घर आपने, दीठी कंत सुजान, दर राख्या गुरे आपने, निरपहु नाम बखान, ढूंगर वास तिखा कनी, जब देखा नहीं दूर, तिखा नवारी शब्द मन, अमृत पिया भरपूर, देह देह आखे सब कोई, जय भावे तै दे, गुरु द्वारे देवसी, तिखा नवारे सोई, टंडोलत टूंडत हौ फिरी, तह तह पवन करार, पारे तहते तह पई, हौले निकसे पार, अमर अजाची हर मिली, तिनकै हौ बल जाऊं, तिनकी धूड़ अकुली है, संगत मेल मलाऊं, मन दिया गुरे अपने, पाया निर्मल नाऊं, जिन नाम दिया तिस सेवसा, तिस बलिहारे जाऊं, जो असारे सो ढासी, तिस बिन अवर ना कोई, गुर प्रसादी तिस सम्मला, तां तन दुख ना होए, ना को मेरा किस गही, ना को हुआ ना हुआ।

कंध गरंत विण नावे क्यों छूटी है जायर सातल अंत गणत गणावे अखरी अगणत साचा सोए अज्ञानी मतहीन है गुर बिन ज्ञान ना होए टूटी तंत्र बाब की वाजे नहीं वियोग विछड़िया मेले प्रभु नानक कर संयोग तरवर काया पंख मन तरवर पंखी पंच तत चुगह मिले एक से तिनको फास नारंच।

फिरै झूठ बुरा खै काल मन जंजाली वेड़िया पी जंजाला माही बिन लावे क्यों छूटी है पापे पचह पचाही फिर फाही फासे कौआ फिर पछताना अब क्या हुआ हाथा चोग चुगै नहीं बूझै सतगुर मिले ता आखी सूझै ज्यों मछली फाथी जम जाल बिन गुर दाते मुक्त ना पाल फिर आवे फिर जाए एक रंग रचै रह लिवलाए इव छूटै फिर फास ना पाए बीरा बीरा कर रही बीर भये बैराय बीर चले घर अपने बहन बिरह जल जाय बाबुल कै घर बेटड़ी बाली बालै ने जे लोड़ वर कामणी सतगुर सेवह ते बिरलो ज्ञानी बूझण सतगुर साच मिले ठाकुर हाथ वडाइया जय भावै तैं दे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए पन पन खड़िया कर कर भजै ताहे उसारै उसरे ताहै सर पर सुख है पी पर पुख है समरथ वे परवाह है परम भलाने भये दीवाने विण भागा क्या पाइयै गुरमुख ज्ञान डोरी प्रभ पकड़ी जिन खिंचै तिन जाइयै हर गुण गाए सदा रंग राते बहुड़ न पछो ताइयै पब्बै भल है गुरमुख बूझै ता निज कर वासा पाइयै पब्बै भौजन मार्ग विखड़ा।

पुन आए गए पछताहे, लख चौरासी मेदनी कटै न वधै उताहे। सेजन उभरे जिन हर पाया,

अपना तन मन आगे देव अस्त्र करता तू धनी तिस ही की मैं ओट गुण की मारी हो मुई शब्द रत्ती।

राह गुरा पेहावला सर ढूंगर असगाहा मैं तन अवगुण झुर मुई विन गुण क्यों कर जाह गुणिया गुण ले प्रभ मिले क्यों किन मिलो प्यार तिन्ही जैसी थी रहा जप जप हृदय मुरार अवगुणी भरपूर है गुण पी वसह नाल बिन सतगुर गुण ना जापनी जिचर शब्द ना करे बीचार नस करिया घर संभले आए वजह लिखाए कार कमाव है सिर धनी लाहा पल्ले पाए लब लोभ बुरे आईया छोड़े मनो विसार गढ़ दोही पातशाह की कदे ना आवे हार चाकर कहिए खसम का सौहे उत्तर दे वजहो गवाए अपना तख्त ना बैसह से प्रीतम हाथ वडियाईया जय पावे तैं दे आप करे किसे आखिए अवर ना कोई करे बीजो सूजै को नहीं बह दलीचा पाए नरक नवारन नरह नर साचो साचै नाय वण तृण ढूंढत फिर रही मन मह करो विचार लाल रतन बहु मान की सतगुर हाथ भंडार उत्तम होआ प्रभ मिले एक मन एक पाए नानक प्रीतम रस मिले लाहा ले परथाई रचना राच जिन रची जिन सिरिया आकार गुरमुख बेअंत त्याई अंत ना पारावार हड़ाड़े रूड़ा हर जियो सोई तिस बिन राजा अवर ना कोई हड़ाड़े गारड़ तुम सुनो हर वस्ते मन माहि गुर प्रसादी हर पाई है मत को भरम पलाहि सो साहो साचा जिस हर धन रास गुरमुख पूरा तिस साबास रूड़ी बाणी हर पाया गुर शब्दी विचार आप गया दुख कटिया हर वर पाया नार सोयना रूपा संची है धन का चा बिखशार साहो सदाए संच धन दुबदा हुए खुआर सचियारी सच संचिया।

साचो ठाकुर मन वसै हौ बलिहारी तिस माया ममता मोहनी जिन कीती सो जान बिख्या अमृत एक है बूझै पुरख सुजान खिमा विहूणे खप गए हूहन लख असंख गणत न आवै क्यों गणी खप खप मोए बिसंख खसम पछाणे अपना खूले बंद न पाई शब्द महली खरा तू खिमा सच सुख पाई खर्च खरा तन ध्यान तू आपे वसह शरीर मन तन मुख जापै सदा गुण अंतर मन धीर हौ मैं खपै खपाए सी बीजो वथ बेकार जंत उपाय विच पायन करता अलग अपार सृष्टि प्यो न जाने कोए सृष्टा करै सुनिश्चो होए संपै को ईश्वर त्याई संपै पुरब लिखे की पाई है संपै कारण चाकर चोर संपै साथ ना चालै होर बिन साचे नहीं दरगाह मान हर रस पीवै छुटै निधान हेरत हेरत हे सखी होए रही हैरान हौ हौ करती मैं मुई शब्द रवै मन ज्ञान हार डोर कंकन घने कर था की शिंगार मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गलहार नानक गुरमुख पाई हर स्यों प्रीत प्यार हर बिन किन सुख पाया देखो हो मन बीचार हर पढ़ना हर बुझना हर स्यों रखो प्यार हर जपिए हर त्याई हर का नाम आधार लेख न मिटई हे सखी जो लिखिया करतार आपे कारण जिन किया कर कृपा पग धार करते हथ वडियाईया बूझो हो गुर बीचार लिखिया फेर न सकी है ज्यों भावी त्यों सार नदर तेरी सुख पाया नानक शब्द विचार मनमुख भूले पच मोए उबरे गुर बीचार जे पुरख नदर ना आवे तिसका क्या कर कहया जाए बलिहारी गुर अपने जिन हिरदै दिता दिखाए पांदा पढ़िया आखी विद्या विचरै सहज सुभाए विद्या सोधै तत लहै राम नाम लिवलाए मनमुख विद्या बिकरदा बिख खटै बिख खाए मूर्ख शब्द ना चीनई सूझ बूझ नह काए पांदा गुरमुख आखी चाटड़िया मत दे नाम संभालो नाम संग्रहो लाहा जग महली सच्ची पट्टी सच मन पढ़िए शब्द सो सार नानक सो पढ़िया सो पंडित बीना जिस राम नाम गलहार राम कली महला पहला सिद्ध गोष्ट एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारू तिस आगै रह रास हमारी साचा अपर अपारू मस्तक काट तरी तिस आगै तन मन आगै देऊ नानक संत मिले सच पाईए सहज पाई जस लेऊ क्या भविए सच सूचा होए साच शब्द बिन मुक्त ना कोए रहाओ कौन तुम्हें क्या नाओ तुम्हारा कौन मार्ग कौन सुआओ साच कहो अरदास हमारी हौ संत जना बल जाओ कह बैसो हो कह रही है बाले कह आवो कह जाओ नानक बोले सुन बैरागी क्या तुम्हारा राहु घट घट बैस निरंतर रही है चल है सतगुर भाई सहजे आई हुक्म सुधाई नानक सदा रजाई आसन बैसन फिर नारायण ऐसी गुरमत पाई
गुरमुख बूझै आप पछाणै, सच्चे सच समाए, दुनिया सागर दुत्तर कहियै, क्यों कर पाइयै पारो, चरपट बोलै औदू नानक, देहो सच्चा बीचारो, आपे आखै आपे समझै, तिस क्या उत्तर दीजै, साच कहो तुम पार गरामी, तुझ क्या बैसन दीजै, जैसे जल मह कमल नरालम, मुर्गाई नैसाणी, सुरत शब्द भव सागर तरियै, नानक नाम वखाणी, रह एकांत एको मन वसिया, आसा माही निरासू, अगम अगोचर देख दिखाए, नानक ताका दासू, सुन स्वामी अरदास हमारी।

मन मटाया, अनहद राति इह मन लाया, मनसाया सा शब्द जलाई, गुरमुख जोत निरंतर पाई, त्रै गुण मेटे खाइए सार, नानक तारे तारन हार, आज को कवन विचार कथियले, सुन कहां घर वासो, ज्ञान की मुंदरा कवन कथियले, घट घट कवन निवासो, काल का ठींगा क्यों जलाइयले, क्यों निरभउ घर जाइए, सहज संतोख का आसन जाने, क्यों छेदे बैर आइए, गुर कै शब्द हउमै बिख मारे, ता निज कर होवै वासो, जिन रच रचिया तिस शब्द पछाणे, नानक ताका दासु, कहां ते आवै, कहां एहो जावै, कहां एहो रह समाई, एस शब्द को जो अर्थावै, तिस गुर तिल ना कमाई, क्यों तत्तै अवगत्तै पावै, गुरमुख लगै प्यारू, आपे सुरताया।

आवे गत मित शब्दे पाई आद को विस्माद विचार कथियली सुन निरंतर वासलिया अकलपत मुंदरा गुरु ज्ञान विचारियली कट कट साचा सर्ब जिया गुरु बचनी अवगत समाई है।

गुर कै शब्द सो मुक्त भया, नानक तारे तार नहारा, हम मैं दूजा पर हरिया, मन मुख भूलै जम की कान, पर कर जो है हाने हान, मन मुख भरम पवै बेबान, वे मार्ग मूसै मंत्र मसान, शब्द ना चीनै लवै कुबान, नानक साच रते सुख जान, गुरमुख साचे का पौ पावै, गुरमुख बाणी अखाड़ कढ़ावै, गुरमुख निर्मल हर गुण गावै, गुरमुख पवित्र परम पद पावै, गुरमुख रोम रोम हर त्यावै, नानक गुरमुख साच समावै, गुरमुख परचै वेद बीचारी, गुरमुख परचै तरियै तारी, गुरमुख परचै सो शब्द ज्ञानी, गुरमुख परचै अंतर बिद जानी, गुरमुख पाईऐ अलाखे अपार, नानक गुरमुख मुक्त द्वार, गुरमुख अकथ कथै बीचार, गुरमुख निबहै सब परवार, गुरमुख जपियै अंतर प्यार, गुरमुख पाईऐ शब्द अचार, शब्द भेद जाणै जानाई, नानक हम मैं जाल समाई, गुरमुख धरती साचै साजी, तिसमह ओपत खपत सो बाजी, गुर कै शब्द रपै रंग लाई, साच रतो पत स्यो घर जाय, साच शब्द बिन पत नहीं पावै, नानक बिन नावै क्यों साच समावै, गुरमुख अष्ट सिद्धि सब बुद्धि, गुरमुख भवजल तरियै सच सुधि, गुरमुख सारे अपसर बिद जानै, गुरमुख पर विरत नर विरत पछाणै, गुरमुख तारे पार उतारी, नानक गुरमुख शब्द निसतारी, नामे राते हम मैं जाए, नाम रते सच रही समाई, नाम रते जोग जुगत बीचार, नाम रते पावह मूख द्वार, नाम रते त्रे भवन सोजी होए, नानक नाम रते सदा सुख होए, नाम रते सिद्ध गोष्ट होए, नाम रते सदा तप होए, नाम रते सच करनी सार, नाम रते गुण ज्ञान बीचार, बिन नावै बोलै सब वेकार, नानक नाम रते तिनको जयकार, पूरे गुरते नाम पाया जाई, जोग जुगत सच रह समाई, बारह मह जोगी परमाई, सन्यासी छे चार, गुर कै शब्द जो मर जीवै, सो पाए मूख द्वार, बिन शब्द सब दूजै लागे, देखो हृदय बीचार, नानक वड्डे से वड भागी, जिन्नी सच रखिया उर धार, गुरमुख रतन लह लिवलाई, गुरमुख परखै रतन सुभाय, गुरमुख साची कार कमाए, गुरमुख साचे मन पतियाए, गुरमुख अलख लखाए तिस भावै, नानक गुरमुख चोट ना खावै, गुरमुख नाम दान इशनान, गुरमुख लागै सहज ध्यान, गुरमुख पावै दरगाह मान, गुरमुख पौ भंजन प्रधान, गुरमुख करनी कार कराई, नानक गुरमुख मेल मलाई, गुरमुख शास्त्र सिमरत वेद, गुरमुख पावै घट घट भेद, गुरमुख वैर विरोध गवावै, गुरमुख सगली गणत मटावै, गुरमुख राम नाम रंग राता, नानक गुरमुख खसम पछाता, बिन गुर भरमै आवै जाई, बिन

अपना पुन्नंग घट घट सुन का जाने पेव आदि पुरख निरंजन देव जो जन नाम निरंजन राता नानक सोई पुरख विधाता सुनो सुन कह सब कोई अनहत सुन कहां ते होई अनहत सुन रते से कैसे जिस ते उपजे तिस ही जैसे कोई जन्म ना मरह ना आवह जाहि नानक गुरमुख मन समझाहि नौ सरस भार दसवै पूरे तह अनहत सुन बजावह तूरे साचै राचे देख हजूरे घट घट साच रहिया पर पूरे गुप्ती बाणी प्रगट होए नानक परख लए सच सोए सहज भाई मिलिए सुख होवे गुरमुख जागे नींद ना सोवे सुन शब्द अपरंपर तारै कहते मुक्त शब्द निस्तारै गुर की दीखिया से सच राते नानक आप गवाए मिलन नहीं प्रांते कबुद्ध चुआवे सो के तठाए क्यों तत न बूझे चोटा खाए जम दरबादे कोई न राखे बिन शब्द नाहीं पत साखे क्यों कर बूझे पावे पार नानक मन मुख ना बुझे गवार कबुद्ध मिटे गुर शब्द बीचार सतगुर भेटे मुख द्वार तत न चीने मन मुख जल जाए दुरमत विछड़ चोटा खाए माने हुक्म सबे गुण ज्ञान नानक दरगाह पावे मान साच वखर धन पल्ले होए आप तरै तारे पी सोए सहज रत्ता बूझे पत होए तां की कीमत करे ना कोई जह देखा तह रहिया सुमाए नानक पार परे सच पाए सो शब्द का कहां वास कथियले जित तरिया भवजल संसारो त्रै सत अंगुल वाई कही है तिस कहो कवन अधारो बोले खेले अस्थिर होवे क्यों कर अलख लखाए सुन स्वामी सच नानक प्रणवे अपनी मन समझाए गुरमुख शब्दे सच लिव लागे कर नदरी मेल मलाए आपे दाना आपे बीना पूरे भाग समाई सो शब्द को निरंतर वास अलखं जह देखा तह सोई पवन का वासा सुन निवासा अकाल कला धर सोई नदर करे शब्द घट मह वसै विचो भरम गवाई तन मन निर्मल निर्मल बाणी नामो मन वसाई शब्द गुरु भव सागर तरिया इत उत एको जाने जेहन वर्ण नहीं छाया माया नानक शब्द पछाने त्रै सत अंगुल वाई औदू सुन सच आहारू गुरमुख बोले तत बिरोले चीने अलख अपारू त्रै गुण मेटे शब्द वसाई ता मन चूके अहंकारू

नानक त्यों ते ऊपर साचा सतगुर शब्द समाय मन का जियो पवन कथि अले पवन कहां रस खाई ज्ञान की मुद्रा कवन औदू सिद्ध की कवन कमाई बिन शब्द रस न आवे औदू हम मैं प्यास न जाई शब्द रत्ते अमृत रस पाया साचे रहे अगाई कमल बुद्ध जित अस थिर रही है कित भोजन तृपता सह नानक दुख सुख सम कर जापै सतगुर ते काल ना ग्रासै रंग ना राता रस नहीं माता बिन गुर शब्द है जल बल ताता बिंद ना राखिया शब्द ना भाखिया पवन ना साध्या सच ना अराध्या कथ कथा ले सम कर रह तो नानक आत्म राम कौल है।

आत्म सुख धारी सच आराध्या गुरमुख तर तारी नानक बूझै को विचारी इहो मन मैगल कहां बसियले कहां बसै इहो पवना कहां बसै सो शब्द औदू ताको चूकै मन का पवना नदर करे ता सतगुर मेले ता निज करवासा इहो मन पाए आपे आप खाए ता निर्मल होए तावत वर्ज रहाए क्यों मूल पछाणे आत्म जाने क्यों सस कर सूर समावे गुरमुख मैं विचों खोवे तव नानक सहज समावे इहो मन निश्चल हृदय बसियले गुरमुख मूल पछाण रह नाभ पवन घर आसन बैसै गुरमुख खोजत तत लह सो शब्द निरंतर निज घर आसै त्रे भवन जोत सो शब्द लह।

सच सपाखै सच र रंग कबहू न जावे जा एहो हिरदा दे न होती तो मन कैठ रहता नाभ कमल अस्थंभ न हो तो ता पवन कमन घर सहता रूप ना हो तो रेख न काई ता शब्द कहां लिवलाई रखत बिंद की मड़ी ना होती मित कीमत नहीं पाई वर्ण भेख असरूप ना जापी क्यों कर जापस साचा नानक नाम रते बैरागी इब तब साचो साचा हिरदा दे न होती ओदू तौ मन सुन रह बैरागी नाब कमल असथंभ न हो तो ता निज कर बस तौ पवन अनरागी रूप न रेखिया जात न होती तौ अकुल लीन रह तो शब्द सोसार गौन गगन जब तब है न हो तो त्रे पवन ज्योत आपे निरंकार वर्ण भेख असरूप सो एको एको शब्द वडाणी साच बिना सूचा को नाही नानक अकथ कहानी कित कित बिद जाग उपजै पुरखा कित कित दुख बिन सजाई हम मैं विच जग उपजै पुरखा नाम विसरै दुख पाई गुरमुख होवै सो ज्ञान तत बीचारै हम मैं शब्द जलाई तन मन निर्मल निर्मल बाणी साचै रह समाई नामे नाम रह बैरागी साच रखिया उर धारी नानक बिन नावै जोग कदे ना होवै देखो हृदय बीचारी गुरमुख साच शब्द बीचारै कोई गुरमुख सच बाणी प्रगट होए गुरमुख मन भीजै बिरला बूझै कोई गुरमुख निज घर वासा होए गुरमुख जोगी जुगत पछाणै गुरमुख नानक एको जाणै बिन सतगुर सेवे जोग ना होए बिन सतगुर भेटे मुक्त ना कोई बिन सतगुर भेटे नाम पाया ना जाई बिन सतगुर भेटे महा दुख पाई बिन सतगुर भेटे महा गर्भ गोबार नानक बिन गुर मुआ जन्म हार गुरमुख मन जीता हूं मैं मार गुरमुख साच रखिया उर धार गुरमुख जग जीता जम काल मार बिदार गुरमुख दरगाह ना आवै हार गुरमुख मेल मलाए सो जाने नानक गुरमुख शब्द पछाणे शब्द कान बेड़ा सुन तू औदू बिन नावे जोग ना होई नामे राते अन दिन माते नामे ते सुख होई नामे ही ते सब प्रगट होवे नामे सोजी पाई।

है सहसा गया बलाई ना किस बीजे ना उगवै जो बख्शे सो खाए अंब है सेती अंब रलिया बहुड़ ना निकसिया जाए नानक गुरु।

जिस वसिया मन माई महला तीजा मनमुख दुख का खेत है दुख बीजे दुख खाए दुख विच जम्मै दुख मरे हूं मैं करत विहाय आवन जान ना सुजई अंधा अंध कमाई जो देवै तिसे ना जानी दिते को लपटाई नानक पूर्व लिखिया कमावना अवर ना करना जाई महला तीजा सतगुर मिले सदा सुख जिसनो आपे मेले सोए सुख है एहो विवेक है अंतर निर्मल होए अज्ञान का भ्रम कटी है

कूई, राम कसौटी सो सहै, जो मर जीवा होए महला तीजा। क्यों कर इहो मन मारिए, क्यों कर मृतक होए, कहया शब्द ना मानी, हऊ मैं छड्डै ना कोई, गुर प्रसादी हऊ मैं छुट्टै, जीवन मुक्त सो होए। नानक जिसनो बख्शे तिस मिलै, तिस बिघन ना लागै कोई, महला तीजा। जीवत मरना सब को कहै, जीवन मुक्त क्यों होए, भय का संयम जे करे, दान भाउ लाए, अन दिन गुण गावै सुख सहजे, बिख भउ जल नाम तरे, नानक गुरमुख पाइयै, जा कौ नदर करी पौड़ी, दूजा भाउ रचायो, त्रै गुण वरतारा, ब्रह्मा विष्णु महेश उपायन, हुक्म कमावन कारा, पंडित पढ़ दे जोत की, ना बूझह बिचारा, सब किश तेरा खेल है, सच सिरजन हारा, जिस भावै तिस बख्श लै, सच शब्द समाई। सलोक महला तीजा, मन का झूठा झूठ कमावै, माया नू फिरै तपा सदावै, परमे भूला सब तीर्थ गह, ओह तपा कैसे परम गत लह, गुर प्रसादी को सच कमावै, नानक सो तपा मूखंतर पावै। महला तीजा, सो तपा जे इहो तप काले, सतगुर नो मिलै शब्द संभाले, सतगुर की सेवा इहो तप परवान, नानक सो तपा दरगह पावै मान। पौड़ी, रात दिन स उपायन संसार की वर्तन, गुरमति घट चानना अनेर बनासन, हुक्मे ही सब साजियन, रबिया सब वन त्रिन, सब किसे आपे आप है, गुरमुख सदा हर भन, शब्दे ही सोजी पई, सच्चै आप बुझाई। सलोक महला तीजा, अभ्यागत ए नायाखियन, जिनके चित में भरम, तिस दै दितै नानका, तेहो जेहा धर्म, अपै निरंजन परम पद, ताका भूखा होए, तिसका भोजन नानका, विरला पाए कोई। महला तीजा, अभ्यागत एहे ना आखियन, जे पर कर भोजन करेन, उदरै कारण अपने, बहले भेख करेन, अभ्यागत से नानका, जे आत्म गौण करेन, पाल लहन सहो अपना, निज कार रहन करेन। पौड़ी, अंबर धरत विछोड़ियन, विच सच्चा असराव, घर दर सबो सच है, जिस विच सच्चा नाव, सब सच्चा हुक्म वर्तदा, गुरमुख सच समाव, सच्चा आप तखत सच्चा, वह सच्चा करे नियाव, सब सचो सच वर्तदा, गुरमुख अलख लखाई। सलोक महला तीजा, रैना आयर माहे अन

लोग रत विचों जाए, ज्यों बैसंतर धात सुध होए, त्यों हर का पौ दुरमत मैल गुआई। नानक तेजन सोहनी जो रते हर रंग लाए, महला तीजा राम कली राम मन वसिया, ता बने आशिंगार गुर कै शब्द कमल बिगसिया, ता सौंपिया भगत भंडार।

सो जाए सियाण होर पकड़ हिंदू मुसलमान सबना का दर लेखा होए करनी बाजो तरे ना कोई सचो सच बखाने कोई नानक अगे पुछ ना होए पौड़ी हर का मंदर आखिए काया कोटगढ़ अंदर लाल जवेरी गुरमुख हर नाम पढ़ हर का मंदर शरीर अत सोहना हर हर नाम देड़ मनमुख आप खुआयन माया मोह नित काढ़ सबना साहिब एक है पूरे भाग पाया जाई श्लोक महला पहला ना सत दुखिया ना सत सुखिया ना सत पानी जंत पिरह ना सत मूंड मडाई केसी ना सत पढ़िया देश फिरह ना सत रुखी बिरखी पत्थर आप तशाव है दुख सह ना सत हस्ती बदे संगल ना सत गाई काहु चरह जिस हथ सिद्ध देवे जे सोई जिसनो दे तिसे आए मिले नानक ताको मिले बढ़ाई जिस घट भीतर शब्द रवे सब घट मेरे हो सबना अंदर जिसे खवाई तिस कौन कह जिसे दिखाला वाटड़ी किसे पलावे कौन जिसे पलाई पंध सिर किसे दिखावे कौन महला पहला सो गिरही जो निग्रह करे जप तप संयम भीख्या करे।

संताप औ हट पट्टन में है भीख्या करे सो अवधूती शिवपुर चढ़े बोले गोरख सत स्वरूप परम तंत मह रेख न रूप महला पहला सो उदासी जे पाले उदास अर्ध उर्ध करे निरंजन वास चंद सूरज की पाए गंड जिस उदासी का पड़े न कंद बोले गोपी चंद सत स्वरूप परम तंत मह रेख न रूप महला पहला सो पाखंडी जे काया पखाली काया की अगन ब्रह्म पर जाली सुपने बिंद न दे झरना तिस पाखंडी जरा न मरना बोले चरपट सत स्वरूप परम तंत मह रेख न रूप महला पहला सो बैरागी जे उल्टे ब्रह्म गगन मंडल मह रूपै थम अहनस अंतर रह ध्यान

मूर्ख के क्या लक्षण है, क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओह जे मुग्ध है अहंकारे मरना, एत कमाणे सदा दुख दुख ही मह रहना। अत प्यारा पवै खूह केहो संयम करना, गुरमुख होए सो करे विचार उस अलिप्तो रहना। हर नाम जपै आप उधरे उस पिछे डुब दे पी तरना, नानक ज्योतिष पावे सो करे जो दे सो सहना। महला पहला नानक आखै रे मना, सुनिए सिख सही लेखा रब मगेसिया, बैठा कड वही तलबा पौसन आकिया, बाकी जिना रही अजराइल फरिश्ता होसी आए तई। आवन जान ना सुजई पीड़ी गली फही, कूड़न खुटे नानका ओड़क सच रही। पौड़ी हर का सब शरीर है, हर रब रहया सब आपै, हर की कीमत ना पवै किस कहन ना जापै। गुर प्रसादी सलाही है हर भगती रापै, सब मन तन हरिया होया अहंकार गुआपै।

काया हंस तुर मेल करता लिख पाया, सब मैं गुप्त वर्तदा गुरमुख प्रगटाया। गुण गावे गुण उच्चरै गुण माही सुमाया, सच्ची बाणी सच है सच मेल मलाया। सब किसे आपे आप है आपे दे वड़ियाई, श्लोक महला दूजा नानक अंधा होए कै रत्ना।

तावत्तर वक्त संयोग नाव बीज बख्शीस बोल दुनिया सगल दरोग नानक नदरी कर्म होए जाव है सगल विजोग पौड़ी मनमुख मोग बार है दूजे पाए बोले दूजे पाए सदा दुख है नित नीर बरोले गुरमुख नाम त्याई है मत तत कडोले अंतर परगास घट चानना हर लद्दा टोले आपे परम पुलाए दा किछ कहण ना जाई। श्लोक महला दूजा नानक के

नानक सोई सेविया जित सेविया दुख जाय अवगुण वंजन गुण रवह मन सुख वसै आय पौड़ी आपे आप वरतदा आप ताड़ी लायन आपे ही उपदेश दा गुरमुख पतियायन एक आपे उजड़ पायन एक भगती लायन जिस आप बुझाए सो बुझसी आपे नाए लायन नानक नाम ते आई है सच्ची वड्याई शुद्ध राम कली की वार महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला पंजवां जैसा

आपे रंग रटिया कुदरत कीम ना पाए अलख ब्रह्म टिया अगम अथाह बेअंत परै परटिया आपे वड पातशाह आप वजीर टिया कोई ना जाने कीम केवड़ मटिया सच्चा साहिब आप गुरमुख प्रगटिया सलोक महला पंजवा सुन सज्जन प्रीतम मेरिया मैं सतगुर देहो देखाल हूं तिस देवा मन अपना नित हिरदय रखा संभाल इकस सतगुर बाहरा त्रिग जीवन संसार जन नानक सतगुर तिना मलायुन

कर रखण गांड जित दिन किछ ना होवई तित दिन बोलण गंद जी की सार ना जाननी मनमुख ज्ञानी अंद कूड़ा गंड ना चलई।

उबरे जो सतगुर सरन परे पौड़ी जो रते दीदार से सच हाक जिन्नी जाता खसम क्यों लभे तिना खाक मन मैला वेकार होए संग पाक दिसे सच्चा महल खुले भरम ताक जिसे दिखाले महल तिस ना मिले ताक मन तन हुए निहाल बिंदक नदर झाक नौ निद नाम निदान गुर कै शब्द लाग किसे मिले संत खाक मस्तक जिसे भाग सलोक महला पंजवा हरनाखी को सच वैन सुनाई जो तौ करे उदाहरण सुंदर बचन तुम सुनो छबीली फिर तैढा मन साधारण दुर्जन सेती निहुर चायू।

सब काज सुवारिया जिस तू आवह चित्त सो परवान जन जिस तू आवह चित्त बहुता तिस धन जिस तू आवह चित्त सो वड परवारिया जिस तू आवह चित्त तिन कुल उधारिया।

हर हर कहावे, वैष्णो नाम कर्म हो जुगता, तोह कुटे क्या फल पावे, हंसा विच बैठा बग न बनी, नित बैठा मच्छी नो तार लावे, जां हंस सभा विचार।

बगला मत हुए मन लखावे जित को लाया तित ही लागा किस दोष दिच्चे जां हर एवें पावे सतगुर सर्वर रतनी परपूरे जिस प्राप्त सो पावे सिख हंस सर्वर इकट्ठे होए सतगुर कै हुक्मावे रतन पदार्थ माणक सर्वर परपूरे खाए खर्च रहे टोट न आवे सर्वर हंस दूर न होई करते एवें पावे जन नानक जिस दे मस्तक भाग तुर लिखिया सो सिख गुरु पह आवे आप तरिया कुटंब सब तारी सभा।

पुत्र सत्र समाने औगण कटे करे सुध देहा नानक जिस तुर मस्तक होवै लिखिया तिस सतगुर नाल सनेहा अमृत बाणी सतगुर पूरे की जिस कृपाल होवै तिस हृदय बसेहा आवण जाना तिसका कटिया सदा सदा सुख होहा पौड़ी जो तुद पाणा जंत सो तुद बुझई जो तुद पाणा जंत सो दरगाह सिजई जिसनो तेरी नदर हो मैं तिस गई जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई जिसकै स्वामी वल निरभउ सो भई जिसनो तू कृपाल सच्चा सो थी जिसनो तेरी मया ना पोहै अग्नई किसनो सदा दयाल जिन गुर ते मत

जाहि पौजल बिखमसगाह गुर शब्दी पार पाहि जिनको लगी प्यास अमृत से खाहि काल मह एहो पुन गुण गोविंद गाहि सब सहनो कृपाल।

आई अवर से आड़ पछाड़ दे नानक उदरस नाई पौड़ी ना तू आवे वस बहुत कनावणे ना तू आवे वस बेद पढ़ावणे ना तू आवे वस तीर्थ नाइय।

सखाएन नानक जिस मन वसै तिसके सब दुख मटाएन। महला पंजवा हुक्म उचलै हुक्मे रहै हुक्मे दुख सुख सम कर सहै हुक्मे नाम जपै दिन रात।

होगा हरक आनंद। हुक्मे जपे निरोधर गुरमंत, हुक्मे आवन जान रहाय। नानक जाको भगती लाई पौड़ी, हौ तिस ढाडी कुर्बान। जे तेरा सेवदार, हौ तिस ढाडी बलिहार। जे गावे गुण अपार, सो ढाडी धन धन। जिस लोड़े निरंकार, सो ढाडी भागठ। जिस सत्या द्वार बार, वो ढाडी तुद त्याई। कलाने दिन रैनार, मंगै अमृत नाम। ना आवे कदे हार, कपड़ भोजन सच। रहंदा लिवै तार, सो ढाडी गुणवंत।

मन तन हृदय सिमर हर आठ पहर गुण गाओ। उपदेश सुनो तुम गुर सिखो सच्चा यह सुआउ। जन्म पदार्थ सफल हुए मन में लायो पाओ। सुख सहज आनंद घना प्रभ जपत्या दुख जाए। नानक नाम जपत सुख उपजे दरगाह पाईए थाउ। महला पंजवा नानक नाम त्याई है गुरपुरा मत दे। भाणे जप तप संयम भाणे ही काढ ले। भाणे जून पवाई है भाणे बख्श करे। भाणे दुख सुख भोगी है भाणे कर्म करे। भाणे मिट्टी साज कै भाणे जोत तरे। भाणे भोग पगाए दा भाणे मनह करे। भाणे

सीलवंत प्रधान हृदय सचाविया अंतर बाहर एक एक रीताविया मन दर्शन की प्यास चरण दसाविया शोभा बनी सिंगार खसम जा राविया मिलिया आए संजोग जा तिस पाविया।

मेरा अंदर ठंडा गुरदर्शन देख निहाली महला पंजवा हठ मंजाहू मैं मानक लद्दा मुल ना किदा मैं कु सतगुर दिता ढूंढ वजाई थिया थिता जन्म पदार्थ नानक जिता पौड़ी जिसका मस्तक कर्म होए सो सेवा लागा जिस गुरमिल कमल परगासिया सुवन दिन जागा लगा रंग चरनार बिंद सब भ्रम पौ भागा आत्म जिता गुरमति आगंजित पागा जिसह त्याया पार ब्रह्म सो कल मह तागा साधु संगत निर्मला अठ सठ मज नागा जिस प्रभ मिलिया आपना सो पुरख सुभागा नानक तिस बलिहार ने जिस एवड भागा।

मन में लो। गुर का शब्द गुण की नरे, तृष्णा काम क्रोध मद मत्सर, काट काट कस दी नरे। कोई है रे संत सहज सुख अंतर, जाको जप तप देव दलाली रे। एक बूंद भर तन मन देवो, जो मद दे कलाली रे। रहाउ पवन चतर दस भाठी कीनी, ब्रह्म यगन तन जारी रे। मुंदरा मदक सहज धुन लागी, सुखमन पोचन हारी रे। तीर्थ बरत नेम सुच संयम, रव सस गहन देओ रे। सुरत प्याल सुधा रस अमृत, एहो महारस पेओ रे। निचार धार चोवै अत निर्मल, एह रस मनुआ रातो रे। कह कबीर सगले मद छूछै, एह महारस साचो रे। गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ, पौ पाठी मन धारा। सुख मन नारी सहज समानी, पीवै पीवन हारा। औदू मेरा मन मतवारा, उन मद चढ़ा मदन रस चाखिया। त्रे भवन भया उजियारा, रहाउ दोए पुर जोर रसाई पाठी। पियो महारस भारी, काम क्रोध द्वे किए जलेता। छूट गई संसारी, प्रगट प्रगास ज्ञान गुर गम्मत। सतगुर ते सुध पाई, दास कबीर तास मत माता। उचक ना कबहू जाई, तू मेरो मेर प्रभत स्वामी।

कह कर जानी हम निर धन ज्यो एहो धन पाया मरते फूट गमानी करै गमान चुभ तिस सूला को काढ़न को नाही अजै सो चोभ को बिलल बलाते नरके घोर पचाई कवन नरक क्या सुर्ग बिचारा संतन दो रादे हम काहू की कान ना कटते अपने गुर पर सादे अब तो जाए चढ़े सिंघासन।

सो रन मैं जूझ बिन धागे भग जाई साधु होए सो भगत पछान हर लए खजान पाई कोठरे मह कोठरे परम कोठी बीचार गुरदीनी बस्त कबीर को लेव हो बस्त समार कबीर दी संसार को लीनी जिस मस्तक भाग अमृत रस जिन पाया फिर ता का सुहाग जेहे मुख बेद गायत्री निकसै सो क्यों ब्राह्मण बिसर करै जाके पाए जगत सब लागै सो क्यों पंडित हर ना कह काहे मेरे बामन हर ना कह राम ना बोलह पांडे दोजक पर है रहाव अपनी ऊच नीच कर भोजन हठे कर्म कर उदर पर है चौदस मावस रच रच मांग है कर दीपक लै कूप पर है तू ब्राह्मण मैं कांसिक जुल्हा मोहे तोहे बराबरी कैसे कै बन है हमरे राम नाम कह उबरे वेद परोसे पांडे डूब मर है तरवर एक अनंत डार साखा पोहप पत्र रस भरिया ए अमृत की बाड़ी है रे तिन हर पूरे करिया जानी जानी रे राजा राम की कहानी अंतर ज्योत राम परगासा गुरमुख बिरले जानी रहाव पवर एक पोह परस बीदा बारह ले उर तरिया सोरह मदे पवन च कोरिया आकाशे फर फरिया सहज सुन एक बिरवा उपजिया धरती

जप तप संयम गुरमुख भोगी रहाउ बुद्ध बेपूत चढ़ावो अपनी सिंगी सुरत मलाई कर बैराग फिरो तन नगरी।

जग भीतर जन्म कवन फल पाया भावनित धर्म तारन चिंतामन एक निमुख नायो मन लाया गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन प्रभ जियो पिंड था दिया तिसकी भाउ भगत नहीं साधी रहा पर तन परती निंदा पर अपवाद ना छूटै आवागमन होत है फुन फुन एहो प्रसंग ना टूटै जे घर कथा होत हर संतन एक निमख ना कीनो मैं फेरा लंपट चोर दूत मतवारी।

तार काम क्रोध बिख काडी ले मार जेहे सिमरन तेरी गत होए सो सिमरन राख कंठ परोए सो सिमरन कर नहीं राख उतार गुर प्रसाद।

जाहि भलाई जे सिमरन तुझ पूहै नाम आई। सिमर सिमर हर हर मन गाइए एहो सिमरन सतगुर ते पाइए। सदा सदा सिमर दिन रात उठत बैठत सास ग्रास। जाग सोए सिमरन रस भोग हर सिमरन पाइए संयोग। जेहे सिमरन नाही तुझ भार सो सिमरन राम नाम आधार।

बंधन पाया, मुख तै गुरे अनल बुझाया, जब नक सिख इहो मन चीना, तब अंतर मज्जन कीना, पवन पत उन मन रहन खरा, नहीं मृत ना जन्म जरा रहाऊ, उल्टी ले सकत सहारं, पैसी ले गगन मजारं, बेदी अले चक्र पुवंगा, पेटी अले रायन संगा, चूकी अले मोह मै आसा, सस कीनो सूर ग्रासा, जब कुंभक पर फुर लीना, तह बाजे अनहद बीना, बकतै बक शब्द सुनाया।

ने गुडी आकाश मदे परम यले पंच जना स्यो बात बतौआ चीत सो डोरी राखी अले मन राम नामा वेदी अले जैसे कनक कला चित मांदी अले रहाउ आनी ले कुंभ पराई ले उदक राजकुमार पुरंदरिये हस्त बनोद विचार करती है चीत सो गागर राखी अले मंदर एक द्वार दस जाके गऊ चरावन छाडी अले पांच कोस पर गऊ चरावत चीत सो बशरा राखी अले कहत नाम देव सुनो तलोचन बालक पालन पौडी अले अंतर बाहर काज विरुद्धी चीत सो बारक राखी अले वेद पुराण शास्त्र अनंता गीत कबेतना गावो गो अखंड मंडल निरंकार मह अनहद बीन बजावो गो वैरागी रामह गावो गो।

दोए सम कर राखो ब्रह्म जोत मिल जाओगो तीर्थ देख ना जल मह पैसो जी जंत ना सतावोगो अठ सठ तीर्थ गुरु दिखाए घट ही भीतर नाओगो पंच सहाई जन की सोबा पलो पलो ना कहावोगो नामा कह चित हर सिंह राता सुन समाद समाओगो माए ना होती बाप ना होता कर्म ना होती काया हम नहीं होते तुम नहीं होते कवन कहां ते आया राम कोई ना किसी केरा जैसे तरवर पंख।

पूजै छोड़ छोड़ रे पाखंडी मन कपट ना कीजै हर का नाम नित नित है लीजै रहाउ गंगा जो गोदावर जाइय कुंभ जो केदार नाइय गोमती सहस गऊ दान कीजै कोट जो तीर्थ करै तन जो हिवाले।

परम पुरुष की घाटी ऊपर हाट हाट पर आला आले पीतर खाती जागत रह सो कबहो ना सोए तीन तलोक समाध पलोवे बीज मंत्र

हारी असुर नदी का बंदे मूल पच्छम फेर चढ़ावे सूर अजर जरे सो निचर चरे जगन्नाथ स्यो गोष्ट करे चौ मुख जीवा ज्योत द्वार पल्लू अनत मूल बिचकार सर्ब कला ले आपे रह मन मानक रतना मह गुह मस्तक पदम द्वाले मणि माही निरंजन त्रे पवन धनी पंच शब्द निर्मायल बाजे तुलके चवर शंख कान गाजे।

जप एहन सुनाम हरे, कोट कोट दोख बहु कीने, सब पर हर पास तरे रहाउ, हर हर नाम जपह अराध, सेवक पाए खरे, किल बिख दोख गए सब नीकर, ज्यो पानी मैल हरे, खिन खिन नर नारायण गाव है, मुख बोल है नर नर हरे, पंच दोख असाध नगर में है, एक खिन पल दूर करे, वड भागी हर नाम त्याव है, हर के भगत हरे, तिनकी संगत देहे प्रभ जाच्यों, मैं मूड मुग्ध निस्तरे, कृपा कृपा तार जग जीवन, रख ले वो सरन परे, नानक जन तुमरी सरनाई, हर राख हो लाज हरे, नट महला चौथा, राम जप जन, राम नाम रले, राम नाम जप्यो गुरबचनी, हर तारी हर कृपले रहाउ, हर हर अगम अगोचर स्वामी, जन जप मिल सलल सलले, हर के संत मिल राम रस पाया, हम जन कै बल बलले, पुरखोत्तम हर नाम जन गायु, सब दालद दुख दलले, विच देही दोख असाध पंच धातु, हर किए खिन परले, हर के संत मन प्रीत लगाई, ज्यों देखै सस कमले, उनवै कन कन कन हर गरजै, मन बिगसै मोर मुरले, हमरे स्वामी लोच हम लाई, हम जीव है देख हर मिले, जन नानक हर अमल हर लाई, हर मेल हो आनंद भले, नट महला चौथा, मेरे मन जप हर हर नाम सखे, गुर प्रसादी हर नाम त्यायु, हम सतगुर चरण पखे रहाउ, उत्तम जगन्ना जगदीश्वर, हम पापी सरन रखे, तुम वड पुरख दीन दुख भंजन, हर दियो नाम मुखे, हर गुण ऊच नीच हम गाए, गुर सतगुर संग सखे।

अवगनियारी पाथर भारी हर तारी संग जनखे जिनको तुम हर राखो स्वामी सब तिनके पाप क्रिखे जन नानक के दयाल प्रभ स्वामी तुम दुष्ट तारी हर नखे नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर राम रंगे हर हर कृपा करी जगदीश्वर हर त्यायो जन पग लगे रहाओ जन्म जन्म के भूल चूक हम अब आए प्रभ शरण गे तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी हम राखो वड पाप गे तुमरी संगत हर को ना उधरियो प्रभ किए पतत पवगे गुण गावत शीपा दुष्टारियो प्रभ राखी पैज जनगे जो तुमरे गुण गाव है स्वामी हौ बल बल बल तिनगे पवन पवन पवित्र सब किए जह धूर परी जन पगे तुमरे गुण प्रभ कह ना सकह हम तुम वड वड पुरख वडगे जन नानक को दया प्रभ धारो हम सेव है तुम जन पगे।

प्रभ तारी मत गुरमत नाम बने रहाउ हर जन हर जस हर हर गायु अपदेश गुरु गुर सुने किल बिख पाप नाम हर काटे जिव खेत किरसान लुने तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानहु हम कह ना सकह हर गुने जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही गुण जानहु प्रभ अपने माया फास बंद बहु बंदे हर जप्यो खुल खुलने ज्यों जल कुंचर तंदुए बांधियो हर चेतियो मोख मुखने स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो हो जुग जुगने तुमरी था पाई नहीं पावे जन नानक के प्रभ वडने नट महला चौथा मेरे मन काल कीर्त हर प्रवणे हर हर दयाल दया प्रभ धारी लग सतगुर हर जपने रहाउ हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी सब त्याव है हर रुड़ने जिनको तुमरे वड कटाख है ते गुरमुख हर सिमरने इहो प्रपंच किया प्रभ स्वामी सब जग जीवन जुगने ज्यों सलल सलल उठह बहु लहरी मिल सलल सलल समणे जो प्रभ किया सो तुम ही जानो हम नह जानी हर गहने हम बारक कौर देवस्तत तार हो हम करह प्रभु सिमरणे तुम जल निद हर मान सरोवर जो सेवे सब फलने जन नानक हर हर हर हर बांछ है हर देव हो कर कृपणे नट नारायण महला चौथा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन सेव सफल हर काल ले गुर पगरे नरवाल सब दाल पांच दुख दाल हर हो नदर निहाल रहाउ हर का ग्रह हर आप सवारियु हर रंग रंग महल बेअंत लाल लाल हर लाल हर अपनी कृपा करी आप ग्रह आयु हम हर की गुर की है बसीठी हम हर देखे पई निहाल निहाल निहाल निहाल हर आपते की खबर गुर पाई मन तन आनंद आनंद पय हर आपते सुने मेरे लाल हर लाल जन नानक हर हर मिले पय गलतान हाल निहाल निहाल नट महला चौथा मन मिल संत संगत शुभवंती सुन कथ कथा सुखवंती सब किल बिख पाप लहंती हर हो लिखत लखंती रहाउ हर कीरत कल युग विति उत्तम मत गुरमत कथा पजंती जिन जन सुनी मनी है जिन जन तिस जन कै हो कुर्बानंती हर कथ कथा का जिन रस चाखिया तिस जन सब भूख लहंती नानक जन हर कथा सुन तृप्ति जप हर हर हर होवंती नट महला चौथा कोई आन सुनावे हर की हर गाल तिस को हो बल बल बाल सो हर जन है पल पाल हर हो मेल निहाल रहाउ हर का मार्ग गुर संत बतायु गुर चाल बिखाई हर चाल अंतर कपट चकाव हो मेरे गुर सिख हो निह कपट कमाव हो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाई जिन्ना हर प्रभ जानियो मेरा नाल जन नानक को मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट हदूर निहाल निहाल निहाल निहाल राग नट नारायण।

मन प्यास बहुत दर्शावे रहाउ। सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुचि आवे, कृपा करहु जिस पुरख बधाते सो सदा सदा तुद त्यावे। कमन योग कमन ज्ञान ध्याना

साध संग नानक परगासियो आन नाही रे बियो नट महला पंजवा जाको पई तुम्हारी धीर जम की त्रास मिटी सुख पाया निकसी हम मैं पीर रहाऊ तप्त बुझानी अमृत बानी तृप्ते ज्यो बारक खीर मात पिता साजन संत मेरे संत सहाई भी।

अपना जन आपह आप उधारियो, आठ पैर जन कै संग बस्यो, मन ते नाही बसारियो रहाउ, वर्ण चिन्ह नाही किश पेखियो, दास का कुल ना बेचारियो, कर कृपा नाम हर दियो, सहज सुपाए सुवारियो, महा बिखम अग्न का सागर, तिस ते पार उतारियो, पेख पेख नानक बिगसानो, पुनः पुनः बलिहारियो, नट महला पंजवा, हर हर मन में नाम कहियो, कोट अपराध मिट है खिन पीतर, ताका दुख न रहियो रहाउ, खोजत खोजत पयो बैरागी, साधु संग लहियो, सगल त्याग एक लिव लागी, हर हर चरण गहियो, कहत मुकत सुनते निस्तारी, जो जो शरण पयो, सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, कहो नानक आनंद पयो, नट महला पंजवा, चरण कमल संग लागी डोरी, सुख सागर कर परम गत मोरी, रहाउ अंचला गहायो जाने अपने को, मन बीदो प्रेम की खोरी, जस गावत भगत रास उपजियो, माया की जाली तोरी, पूर्ण पूर रहे कृपा निद, आना पेखो होरी, नानक मेल लियो दास अपना।

ते आठ पहर गुण गायन रहाओ साधु तूर करो नित मज्जन सब किल बिख पाप गवायन पूर्ण पूर रहे कृपा निद घट घट दिष्ट समायन जाप ताप कोट लख पूजा हर सिमरन तुल न लायन दुए कर जोड़ नानक दान मांगै तेरे दासन दास दसायन नट महला पंजवा मेरा सर्बस नाम निदान कर कृपा साधु संग मिलियो सतगुर दीनो दान रहाओ सुख दाता दुख भंजन हारा गाओ कीर्तन पूर्ण ज्ञान काम क्रोध लोभ खंड खंड कीने बिनस्यो मूड अभमान क्या गुण तेरे आख बखाना प्रभ अंतर जामी जान चरण कमल सरन सुख सागर नानक सद कुर्बान।

दहलिस हर मुश्की मुश्क गंधारी तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी गुरनी के बचन संहारी गावत गावत हर गुण गाई गुण गावत गुर निस्तारी विवेक गुरु गुरु समदर्शी तिस मिलिए संक उतारी सतगुर मिलिए परम पद पाया हम सतगुर कै बलिहारी पाखंड कर कर भरमी लोभ पाखंड जग बुरियारी हलत पलत दुखदाई होवे जम काल खड़ा सिर मारी उगवे दिनस आल जाल संभाले बिख माया के बिस्थारी आई रहन भया सुपनंतर बिक सुपने भी दुख सारी कल्लर खेत लै कूड़ जमाया सब कूड़े के खलवारी साकत नार सब भूख पुखानी दर ठाढ़े जम जंदारी मनमुख करज चढ़िया बिख भारी उतरे शब्द विचारी जितने करज करज के मंगिए कर सेवक पग लगवारी जगन्नाथ सब जंतर अपाई नक खीनी सब नथहारी नानक प्रभ खी।

हर अमृत सर नावारे, सतगुरु ज्ञान मज्जन है नीको, मिल कलमल पाप उतारे रहाउ, संगत का गुण बहुत अधिकाई, पढ़ सुआगन के उधारी, परसन परस भय कुबिजा को, लै बैकुंठ सधारी,

एका नगर निहारी हर प्रभ ठाकुर रविया सब ठाई सब चेरी जगत समारी आप दयाल दया दान देवे विच पाथर कीरे कारी अंतरवास बहुत मुचकाई ब्रह्म भूला मिर्ग सिंघारी।

जन माने प्रतख गुरु निस्तारी सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया मन बीजिया खवारी ज्यों जन चंद्र हांस दुखिया त्रिष्ट बुद्धि अपना घर लूकी जारी प्रभ को जन अंतर रिद लोचे प्रभ जन के सास निहारी कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए जन पीछे जग निस्तारे अपने आप आप प्रभ ठाकुर प्रभ आपे सिष्ट सवारी जन नानक आपे आप सब वरते कर कृपा आप निस्तारी नट महला चौथा राम कर कृपा लेहो उभारी जो पकर द्रौपदी दुष्टायानी हर हर लाज निवारी रहाउ कर कृपा जाचक जन तेरे एक मांगो दान प्यारे सतगुर की नित श्रद्धा लागी मोह को हर गुर मेल सवारी साकत कर्म पानी ज्यो मथी है नित पानी झोल चुलारे मिल सत संगत परम पद पाया कड माखन के गटकारी नित नित काया मजन किया नित मल मल दे सवारी मेरे सतगुर के मन बचन ना पाए सब फोकट चार शिंगारी मटक मटक चल सखी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारी गुरमुख सेवा मेरे प्रभ पाई मैं सतगुर अलख लखारी नारी पुरख पुरख सब नारी सब एको पुरख मरारी संत जना की रेन मन पाई मिल हर जन हर निस्तारी ग्राम ग्राम नगर सब फिरिया हृदय अंतर हर जन पारी श्रद्धा श्रद्धा अपाई मलाई मोह को हर गुर गुर निस्तारी पवन सूत सब नीका करिया सतगुर शब्द विचारी निज कर जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारी तौ गुण ईस वर्ण नहीं साको तुम मंदर हम निक कीरे नानक कृपा करो गुर मेलो मैं राम जपत मन तीरे नट महला चौथा मेरे मन भज ठाकुर अगम अपारी हम पापी बहु निर्गुण यारे कर कृपा गुर निस्तारे रहाउ साधु पुरख साध जन पाए एक बिनो करो गुर प्यारे राम नाम धन पूंजी देव हो सब तिसना भूख निवारे पचै पतंग मृग प्रिंग कुंचर मीन एक इंद्री पकर संघारे पंच भूत।

सतसंगत गुर निस्तारी, प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी, जिव सूरज कमल निहारी, मेर समेर मोर बहु नाचै, जब उनवै कन कन हारी, साकत को अमृत बहु सिंचो, सब डाल फूल बिस्कारी, ज्यो ज्यो निवह साकत नर सेती, छेड़ छेड़ कड्डै बिख खारी, संतन संत साध मिल रही है, गुण बोले है पर उपकारी, संतै संत मिले मन बिगसै, ज्यो जल मिल कमल सवारी, लोभ लहर सब सुवान हलक है, हलकियो सबह बिगारी, मेरे ठाकुर कै दिबान खबर हुई, गुर ज्ञान खड़ग लै मारी, राख राख राख प्रभ मेरे, मैं राखो किरपा तारी, नानक मैं

आदि अनक जतन कर रहे हर अंत नाही पाया हर अघम अगम अगाध बोध अदेश हर प्रबराया रहाऊ काम क्रोध लोभ मोह नित झगरते झगराया हम राख राख दीन तेरे हर शरण हर प्रभ आया शरणागति प्रभ पालते हर भगत वचल नाया प्रहलाद जन हर नाख पकरियो

हर ठाकुर हर गुरमति प्रभ पाया हर पतत पावन नाम स्वामी पौ भगत भंजन गाया हर हार हर

राम नाम सुखदाता, सत संगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पछाता रहाउ, वडभागी गुर दर्शन पाया, गुर मिलिया हर प्रभ जाता, दुर्मत मैल गई सब नीकर, हर अमृत हर सरनाता, तन तन साध जिन्नी हर प्रभ पाया, किन पूछो हर की बाता, पाए लगो नित करो जुदरिया, हर मेलो कर्म वधाता, ललाट लिखे पाया गुर साधु, गुर बच

राम रसायन जिन गुरमत पाया, इनकी उत्तम बाता, इनकी पंक पाई बड़भागी, जन नानक चरण पराता, माली गौड़ा महला चौथा, सब सिद्ध साधक मुन जना, मन भावनी हर त्यायो, अपरंपरो पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो रहाओ, हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेतेओ हर रायो, हर आन मेलेओ सतगुरु, खिन बंद मुक्त करायो, प्रभ मस्तके तुर लिखिया, गुरमति हर लिवलायो, पंच शब्द दरगाह।

पतत पावन नाम हरि कोट भगत उधार करी हरदास दासा दीन सरन नानक माथा संत चरण माली गौड़ा महला पंजवा ऐसो सहाई हर को नाम साध संगत भज पूर्ण काम रहाउ बूढ़त कौ जैसे बेड़ी मिलत बूजत दीपक मिलत तिलत जलत अग्नि मिलत नीर जैसे बारक मुख है खीर जैसे रण में है सखा प्रात जैसे भूखे भोजन मात जैसे किरख है बरस मेघ जैसे पालन सरन सेंग गर्ण मुख नहीं सरपत रास सुआ पिंजर नहीं खाए बिलास जैसो आंडो हिरदे माहे जैसो दानो चकी दराहे बहुत उपमा थोर कही हर अगम अगम अगाध तुही ऊच मूचो बहु अपार सिमरत नानक तरे सार माली गौड़ा महला पंजवा यही हमारे सफल काज अपने दास को लेहो निवाज रहाओ चरण संत है माथ मोर नैन दर्श पेखो निसपोर हस्त हमरे संत टहल प्राण मन तन संत बहल संत संग मेरे मन की प्रीत संत गुण बस है मेरे चीत संत आग्या मन है मीत मेरा कमल बिकस है संत डीत संत संग मेरा होए निवास संतन की मोहे बहुत प्यास।

धार, चरण संतन के मेरे हृदय मझार, माली गौड़ा महला पंजवा, सब कै संगी नाही दूर, करन करावन हाजरा हजूर, रहाउ सुनत जियो जास नाम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम, सगल निद हर हर हरे, मुन जनता की सेव करे, जां कै घर सगले समाहे, तिस्ते बिरथा कोए नाहे, जी जंतर करे प्रतपाल, सदा सदा सेवो कृपाल, सदा धर्म जाकै दीवान, बे मोहताज नहीं किश कान, सब किश करना अपने आप, रे मन मेरे तू तां को जाप, साध संगत को हों बलिहार, जास मिल हुए उधार।

सदा सुख पाई जीवन का मूल रव रहे सरबत ठाई सुख मोह असथूल आल जाल बिकार तज सब।

जन नानक सद बलिहार माली गौड़ा महला पंजवा मन तन बस रहे गोपाल दीन बांधव भगत वच्छल सदा सदा कृपाल रहाउ आदि अंते मद तू है प्रभ बिना नाही कोई।

सलाहिया जिन कर देखिया खेल संजोगी मेलावड़ा इन तन कीते भोग वे जोगी मिल विछड़े नानक भी संजोग मारू महला पहला मिल मात पिता पिंड कमाया तिन करता लेख लिखाया लिख दात जोत वड़ियाई मिल माया सुरत गुआई मूर्ख मन काहे कर सहमाना उठ चलना खसमै भाणा रहाउ तज साध सहज सुख होई घर छड़ने रह ना कोई किस खाजै किस धर जाइए जे बहुड़ दुनिया आइए सज काया पट हंडाई फरमाइश बहुत चलाई कर सेज सुखाली सोवै हथी पौंदी काहे रोवै घर घूमण वाली पाई

मारू महला पहला कर पहला करनी कागद मन मसवाणी बुरा पला दुहि लेख पई ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चली है तौ गुण नाही अंत हरे।

माही तेती रस रस चोग चुगह नित पासह सूटस मूड़े कमन गुणी काया आरन मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही कोले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत भई।

पहला बिमल मुझार बसस निर्मल जल पदमन जावल री पदमन जावल जल रस संगत संग दुख नहीं रे दादर तू कबह ना जान सरे पक्षस बाल बसस निर्मल जल अमृत ना लक्षरे रहाव बस जल नेतना वस्त अलियल मेर चचा गुण रे चंद कुमुंदनी दूरों निवसस

का पतत पनीत असंख होहे हर चरनी मन लाग अठसठ तीरथ नाम प्रभ नानक जिस मस्तक भाग शब्द सखी सहेली गर्भ गहेली सुन सह की एक बात सहेली जो मैं बेदन सा किसे आखा माई हर बिन जियो न रह कैसे राखा माई रहाओ हौ दुहागन खरी रजानी गया सो जोबन तन पछताणी।

दर ढोई झूठा आवण जान साचा नाम सलाही है साचे ते तृप्त होए ज्ञान रतन मन मांजी है बहुड़ न मैला होए जब लग साहिब मन वसै तब लग बिघन न होए नानक सिर दे छुटी है मन तन साचा सोए।

नाम अजाची एको हाट साहो सबना सिर बनजारी एक भांति दोए सिरे सतगुरु नबेड़े सो बूझै जिस एक लिव लागी जियो रह ने परांती।

तोड़े परम चुकाए, सहजे सिफती तनख चढ़ाई, गुर कै शब्द मरे मन मारी, सुंदर जोगा तारी जियो, हम है जलिया मनो विसारी।

मारू महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जह बसाल है तह बैसा स्वामी जह भे

गुर कै शब्द त्याए तू सत लगी प्यार रहाओ ऐथे नाम भुलिया फिर हाथ कथाऊ ना पाए जोनी सब पवाईयन बिष्टा माहे समाए वड भागी गुर पाया पूर्ब लिखिया माए अण दिन सच्ची भगत कर सच्चा लय मनाए आपे सिष्ट सब साजियन आपे नदर करे नानक नाम वडियाईया जय पावै तैं दे मारू महला तीजा पिछले गुनाह बख्शाए जियो।

जप्यो नाम सुख जनक गुर बचनी हर हर सरन परे दालद पंज सुदामे मिलियो भगती पाए तरे भगत वच्छल हर नाम किरतारथ गुरमुख कृपा करे मेरे मन नाम जपत उदरे ध्रुव प्रहलाद बिदर दासी सोता गुरमुख नाम तरे रहाओ कलयुग नाम प्रधान पदारथ भगत जना उदरे नामा जय देव कबीर त्रिलोचन सब दुख गए चमरे गुरमुख नाम लगे से उदरे सब किल विख पाप टरे जो जो नाम जपे अपराधी सब तिनके दुख पर हरे बेसवा रवत अजामल उदरेओ मुख बोले नारायण नर हरे नाम जपत उगर सैन गत पाई तोड़ बंधन मुक्त करे जन को आप अनुग्रह किया हरे अंगीकार करे सेवक पैज रखे मेरा गोविंद सरल परे उदरे जन नानक हर कृपा तारी उर तरेओ नाम हरे मारू महला चौथा सिद्ध समाद जप्यो लिवलाई साधक मुन जपया जति सती संतोखी त्याया मुख इंद्रादक रवया सरन परे जप्यो ते पाई।

हरे गण गंधर बे जपयो रिख बपरै हर गाया शंकर ब्रह्म देवी जपयो मुख हर हर नाम जपया हर हर नाम जिन्ना मन पीना ते गुरमुख पार पया कोट कोट ते तीस त्यायो हर जपत्या अंत ना पाया वेद पुराण सिमरत हर जपया मुख पंडित हर गाया नाम रसाल जिन्ना मन वसया ते गुरमुख पार पया अनंत तरंगी नाम जिन जपया मैं गणत ना कर सकया गोविंद कृपा करे थाए पाए जो हर प्रभ मन पाया।

आए सतगुर पुरख दयाल प्रभु हर मेले ढिल ना पाए जिन हर हर नाम ना चेतेओ से भागहीन मर जाए ओए फिर जोन पवाई है मर जमह आवै जाए ओए जमदर बदे मारी है हर दरगाह मिले सजाए तू प्रभ हम शरणागति मोको मेल लहो हर राय हर तार कृपा जग जीवना गुर सतगुर की सरनाई हर जियो आप दयाल हुए जन

प्रभ मैं मन तन वडड़ी आस गुर भावै सुन बेनती जन नानक की अरदास मारू महला चौथा हर हर कथा सुनाई प्रभ गुरमत हर हृदय सुमाणी जप हर हर कथा बडभागिया हर उत्तम पद निर्वाणी गुरमुखा मन प्रतीत है गुरपूरै नाम सुमाणी मन मेरे मैं हर हर कथा मन पाणी हर हर कथा नित सदा कर गुरमुख अकथ कहानी रहाऊ मैं मन तन खोज टंडोलिया क्यों पाईऐ कथ कहानी संत जना मिल पाया सुन अकथ कथा मन पाणी मेरा मन तन नाम आधार हर मैं मेले पुरख सुजानी गुरपुरख है पुरख मलाए प्रभ मिल सुरती सुरत समाणी बड़ भागी गुर सेविया हर पाया सुगड़ सुजानी।

सुगुण सुजानी जन नानक शरणागती कर कृपा नाम सुमानी। मारू महला चौथा हर भाव लगा बैरागिया वडभागी हर मन राख मिल संगत शरदा उपजै गुर शब्दी हर रस चाख।

हर हर भगत परे पंडहारा, गुरमुख राम करे निसतारा, जिसनो कृपा करे मेरा स्वामी, सो हर के गुण गावे जियो, हर हर कृपा करे बनवाली, हर हृदय सदा सदा संभाली, हर हर नाम जपो मेरे जियड़े, जप हर हर नाम छुडावे जियो, रहाओ सुख सागर अमृत हर नाओ, मंगत जन जाचा हर देहु पसाओ, हर सत सत सदा हर सत मेरे मन पावे जियो, नवे सिदर सर्व है अपवित्रा, बोल हर नाम पवित्र सब किता, जे हर सो प्रसन्न होवे मेरा स्वामी, हर सिमरत मन लह जावे जियो, माया मोह भिकम है भारी, क्यों तरिये दुत्तर संसारी, सतगुरु बोहित दे प्रभ साचा, जप हर हर पार लगावे जी।

पर हर का मन मानिया सो सेवक चौ जुग चौ कुंट जानिया जे उसका बुरा कह कोई पापी तिस जम कंकर खाई जियो सब मह एक निरंजन करता सब कर कर वेख अपने चलता जिस हर राख है तिस कौन मारे जिस करता आप छाई दियो हम अन दिन नाम लई करतारी।

सो सुखिया सो सदा सुहेला, जो गुर में गाए दुनी रहाउ। देह धार अर देवा दर्पह, सिद्ध साधक डर मोया। लख चौरासी ही मर मर जन्मे, फिर जो नी जोया। राजस सातक तामस डरपह, केते रूप उपाया। छल बपरी ये कौला डरपै, आत डरपै धर्म राया। सगल समगरी डरह ब्यापी, बिन डर करने हारा। कहो नानक भगतन का संगी, भगत सोह है दरबारा। मारू महला पंजवा, पांच बरख को अनाथ ध्रुव बारक। हर सिमरत अमरे अटारी, पुत्र हेत नारायण कहियो। जम कंकर मार बदारी, मेरे ठाकुर केते अगणत उधारी। मोहे दीन अल्प मत निर्गुण, परयो सरद द्वारी रहाओ। वाल्मीक सुपचारो तरियो, वदक तरे बेचारी। एक निमख मन माहे अरादेव, गजपत पार उतारी। कीनी रखिया भगत प्रहलाद, हरनाखस नखह बेदारी। विदर दासी सुत भयो पनीता।

तिस को कबू ना गाव सरी छोड़ जाए खिन पीतर ताको वा को फिर ताव सरी अपने प्रभ को क्यों ना समार सरी बैरी संग रंग रस रचिया।

सुनत भव तरी ता स्यो रंग ना लाभ सरी। थोरी बात अल्प सुपने की बहुर बहुर अटकावस।

भ्रम छूटा जो प्रभ भये सहाय मारू महला पंजवा अंतर जामी सब बिद जाने तिसते कहां दुलारियो हस्त पाम चरे खिन पीतर अग्न संग लै जा रियो मूड़े तै मन ते राम बसारियो लून खाए करह हराम खोरी पेखत नैन बिदारियो रहाओ असाद रोग उपजे तन पीतर।

तुम बावर दलाब जन्म अकारथ रे नार ऐसी करह यानथ ताज सारंग तार प्रम तू भूला मोहे लपट्यो दासी संग सानथ रहाओ धरनी तर त्याग नीच कुल सेवह हौ हौ करत बेहावथ हो कट कर्म करह अज्ञानी मन मुख अंध कहावथ सत होता असत कर मानिया जो बिन सत सो निह चल जानथ पर की कहो अपनी कर पकरी ऐसे भूल पलानथ खतरी ब्रह्म।

भोगह तपत थम गल लाय रे नर काय पर ग्रह जाय कुचल कठोर काम गर्धब तुम नहीं सुनियो धर्म राय रहाओ विकार पात्र गलह बांदी निंद पोट सिराय महासागर समुंद लंघना पार न परना जाय काम क्रोध लोभ मोह व्यापियो नेत्र रखे फिराय सीस उठावन न कबहू मिलई महादुत्तर माय सूर मुक्ता ससी मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी अलिपाय स्वभावत जैसे बैसंतर अलिप्त सदा निर्मलाय जिस कर्म खुलिया तिस लहया पड़दा जिन गुर पह

परम का मन पयो परगास काटी बेरी पगहती गुर कीनी बंद खलास आवन जान रहे हो तपत कड़ाहा बुझ गया गुर शीतल नाम दियो रहाओ जब ते साधु संग पया तो छोड़ गए निगहार जिसकी

मुख राग अलापे मन नहीं हर हर गावा हर कसोग लोभ मोह रहत है निर्मल हर के संता।

सब किस जाना मेरे जी का प्रीतम, बिसर गए बकबाया रहा दूजा, मारू महला पंजवा कोट लाख सर्ब को राजा, जिस हृदय नाम तुम्हारा जाको नाम ना दिया मेरे सतगुर, से मर जन्म है गावारा, मेरे सतगुर ही पत राख, चीत आव है तब ही पत पूरी, बिसरत रलिया खाक रहाओ, रूप रंग खुशियां मन।

माया रंग बिरंग खिना मह ज्यों बादर की छाया से लाल पये गूढ़े रंग राते जिन गुर मेल हर हर गाया ऊच मूच अपार स्वामी अगम दरबारा नामो वड्याई सुबा नानक खसम प्यारा मारू।

मात गर्भ में जिन प्रित पारिया जियो पिंड दे साज सवारिया सोई बधाता खिन खिन जपिया जिस सिमरत अवगुण सब ढकिया चरण कमल उरे अंतर तारू बिठिया बन ते जियो उधारू।

मूढ़ अज्ञानी, काम क्रोध लोभ मद माता, कौडी बदले जन्म गवाता, अपना छोड़ पराया राता, माया मद मन तन संग जाता, तृष्ण ना बूझे करत कलोला, ऊनी आस मिथ्या सब बोला, आवत अकेला जात अकेला, हम तुम संग झूठे सब बोला, पाए ठगौरी आप पलायो, नानक किरत ना जाए मटायो, पास पंखी पू

उठ उठ फिर तावे, मन तन बासना बहुत बिस्थारा, अहम में मूठो बेचारा, अनक दुख अर बहुत सजाई, तां की कीमत कहन ना जाई, प्रभ बिसरत नरक में पाया, तह मात ना बंद ना मीत ना जाया, जिस को होत कृपाल स्वामी, सो जन नानक पार ग्रामी, प्रमत प्रमत प्रभ सरनी आया, दीना नाथ जगत पित माया, प्रभ दयाल दुख दर्द बदारन, जिस पावे तिस ही निस्तारन, अंधकूप ते काड नहारा, प्रेम भगत होवत निस्तारा, साध रूप अपना तन तारिया, महा अग्न ते आप उबारिया।

पंजवा पतत उदारन तारन बल बल बले बल जाइए ऐसा कोई भेटै संत जित हर हरे हर त्याइए।

मोहन अलख अपारा दान पावो संता संग नानक रेन दसारा मारू महला पंजवां।

सगल तिहानु तजियो मन ते अभिमानु निश्चल तिनका ठाणा गुर ते महल पछाणा अन दिन गुर मिल जागी हर की सेवा लागी पूरन तृप्त अगहाई सहज समाध सुपहाई हर भंडार हार।

होशे अमर जुग जुग जियो रहाओ। नाम एक रस रंग नामा नाम लागी लियो। मीत साजन सखा बंदप हर एक नानक कियो। मारू महला पंजवा प्रितपाल माता।

देखा, सिमर हर हर सदा नानक, तरे कई अनेक, मारू महला पंजवा, पतत पावन नाम जाको, अनाथ को है नाथ, महा भोजन माहे तुलहो, जाको लिखियो माथ, डूबे नाम बिन कन साथ, करण कारण चेतना आवे, देकर राखे हाथ, रहाऊ साध संगत गुण उच्चारण।

वैदो न वाई भैनो न पाई एको सहाई राम ही कीता जसो हुए पापा मलो धोवे सो सिमरहो प्रधान ही कट कटे वासी सर्ब निवासी।

बढ़ाई, जेहे नर जस कृपा निध गायो, ताको भयो सहाय। कहो नानक मैं एही परोसै, गही आन सरनाई। मारू महला नौवां, अब मैं कहां करौं री माई। सगल जन्म बिथियन सिउं खोया, सिमर्यो नाहीं कनाई रहाओ। काल पास जब गर्भ मेली, तेहे सुध सब बिसराई। राम नाम बिन या संकट मह, को अब होत सहाय। जो संपत अपनी करमानी, सिन मह पई पराई। कहो नानक यह सोच रही मन, हर जस कबहू न गाय। मारू महला नौवां, माई मैं मन को मान ना त्यागियो। माया के मद जन्म सरायो।

करै पछताए, छूटत नाहिन भाग्यो, एह चिंता उपजी घट मह, जब गुर चरणन अनुराग्यो, सफल जन्म नानक तब हुआ, जो प्रभ जस मह पाग्यो, मारू अष्टपदियां महला पहला कर पहला।

अठ सठ तीर्थ बहु कणा ब्रह्म था के भेखा साचो साहिब निर्मलो मन मान एका तू अजरावर अमर तू सब चालन हारी नाम रसायन पाए ले पर हर दुख भारी रहाओ हर पढ़िए हर बुझिए

दिया समुंद मजार कंदी देसना आवई ना उरवार ना पार वंजी हाथ ना खेवटू जल सागर असराल बाबा जग पाता महाजाल गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम संभाल रहाउ सतगुरु है बोहिथा शब्द लगावन हार तिथे पवन ना पाव को

सो भर गुण नहीं, बिन गुण क्यों घर जाओ। सहज शब्द सुख उपजै, बिन भागा तन नाही। जिनकै नाम ना मन वसै,

रखै सुख नहीं गाडे लादे शार विछड़िया मेला नहीं दुख कणो जम द्वार अगे क्या जाना नाही मैं भूले तू समझाए भूले मार्ग जो दसे

देख मुख तमान तन खड़ी गुरमुख आखी देख तुध भावे तू मन वसै नदरी कर्म वसेख भूख प्यासो जे पवै

मनहु विसारिया नित देवै चढ़ै सुआया जियो पिंड सब तिसदा साहु तिनह विच पाया जां कृपा करे ता सेवी सेव सच समाया लाला सो जीवत मरे मर विचो आप गवाए वंदन तूटै मुक्त होए तृष्णा अग्न बुझाए सब मह नाम निदान है।

चलना मुखे अमृत नाव मेरे ठाकुर हथ वडियाइया मेल है मन चाओ कीता क्या सलाही है कर देख सोई जिन की आसु मन वसै मैं अवर ना कोई सो साचा सलाही है साची पत होई पंडित पढ़ना पहुंचई बहुआल जंजाला पाप पुन दोए संग में खुदिया जमका।

खार समुंदर कंडो लिए एक मनिया पावे दोए दिन चार सोहावना माटी तिस खावे गुरसागर सत

कर हीरै ग्रह धर्म गवाए सतगुर ना पेटै दुर्मत कुमन केरै दसंतर भवै पाठ पढ़ थाका तृष्णा हुए बधेरै काची पिंडी शब्द ना चीनै उधर भरै जैसे ढूरै बाबा ऐसी रवत रवै सन्यासी गुर कै शब्द एक लिव लागी तेरे नाम रते त्रिपतासी रहाओ कोली गेरू रंग चढ़ाया वस्त्र पेख पेखारी कापड़ फार बनाई खिंथा चोली माया तारी घर घर मांगे जग प्रबुद्ध मन अंधे पतहारी परम फलाना शब्द ना चीने जुए बाजी हारी अंतर अगन ना गुर बिन बूजे बाहर कुवर तापे गुर सेवा बिन भगत ना होवी क्यों कर चीन से आपे निंदा कर कर नरक निवासी अंतर आत्म जापे अठ सठ तीरथ परम बगूचे है क्यों मल धोपै पापै छाणी खाक बेभूत चढ़ाई

दिस तावे बिन रत आत्म ज्ञाना अमृत छोड़ महाबिख पीवे माया का देवाना कितना मिटई हुक्म ना बूझे पशुआ माहे समाना हाथ कमंडल कापड़िया मन तृष्णा उपजी पारी स्त्री तज कर काम व्यापिया चित

पानी गगन पताली जनता जोत तुम्हारी सब सुख मुकत नाम धुन बाणी सच नाम उरतारी नाम बिना नहीं छूटस नानक साची तर तू तारी मारू महला पहला मात पिता संजोग उपाय रकत बिंद मिल पिंड करे।

हौ मैं कर भूले, मेरी मेरी करते शीन खरे, तन धन बिन सह सह सह सहसा, फिर पछतावे मुख धूर परे, बिरद पया जो बन तन खिसिया, कप कंठ बरू दो नैनोह नीर धरे, चरण रहे कर कंपन लागे, साकत राम न हृदय हरे, सुरत गई काली हूं तौले, किसे न पावे रखियो करे, बिसरत नाम ऐसे दुख लागे, जम मार समारे नरक खरे, पूरब जन्म को लेख न मितई, जन्म मरे का कौ दोष तरे, बिन गुर बाद जीवन होर मरना, बिन गुर शब्द जन्म जरे, खुशी खुआर पय रस भोगण, फोकट कर्म विकार करे, नाम बसार लोभ मूल खोयो, सिर धर्म राय का दंड परे, गुरमुख राम नाम गुण गावे, जां को हर प्रभ नदर करे, ते निर्मल पुरख अपरंपर पूरे, ते जग में गुर गोविंद हरे, हर सिमरो हो गुर बचन समारोह, संगत हर जन पाव करे।

नानक नाहो ना विछड़े तिन सच्चै रतड़िया मारू महला पहला ना भैणा परजाइया ना से ससुड़िया सच्चा साक ना तुटई गुर मेले सहिया बलिहारी गुर अपने सद बलिहारे जाऊं गुर बिन एता भव थकी गुर पिर मेल।

सखी हमारू कंत सच विछोड़ा ना थी सो सहो रंग रवंत सबे रुती चंगिया जित सच्चे सिहने सा धन कंत पछाणिया सुख सुती निसडे पत्तन कूके पातनी वंजो त्रुक बलाड़ पार पवंदड़े डिठ मैं सतगुर बोहित चाड़ हिकनी लद्या हिक लद गए।

देव दृष्ट जागे परम चकाई, गुर प्रसाद परम पद पाई, सो जोगी एह जुगत पछाणे, गुर कै

जन सोई सतगुर मिले मरे मंदा होवे ज्ञान बिचारी जियो। एहो शब्द सार जिसनो लाए गुरमुख कृष्णा भुख गवाए। आपन लिया किशु ना पाईए कर कृपा कल तारी जियो। अगम निगम सतगुरु दिखाया कर कृपा अपने घर आया। अंजन माहि निरंजन जाता जिनको नदर तुम्हारी जियो। गुरमुख होवे सो तत पाए अपना आप विचो गवाए। सतगुर बाजो सब धंद कमावे वेखो मन विचारी जियो। एक भ्रम भूले फिरे अहंकारी

अष्टपदियां एक ओंकार सतगुरु प्रसाद लाख चौरासी भ्रमते द्राब जन्म अब पायो रे मुंडे तू हो छह रस लपटायो अमृत संग बस्त है तेरे बिख्या स्यों उरजायो रहाओ रत्न जवे हर बन जन आयो कालर लाद चलायो जे कर्म है तुद रहना बसना सो कर कीत न आयो अटल अखंड प्राण सुखदाई एक निमुख नहीं तुझ गायो जहां जाना सो थान वसारियो एक निमुख नहीं मन लायो पुत्र कलत्तर ग्रह देख समग्री इस ही मैं उर जायो जित को लायो तित ही लागा तैसे कर्म कमायो जो भयो कृपाल ता साध संग पाया जन नानक ब्रह्म ते आयो।

प्रभु की गही गुर प्रसादी प्रभु आराधी जम कंकर किसना कही मोख मुकत द्वार जाके संतरिदा पंडार जी जुगत सुजान स्वामी सदा राखनहार दुख दर्द कलेश बिन सह जिस बसै मन माहे मृत नरक अस्थान बिखड़े।

अगम अगाह सिद्ध साधक देव मुन जान वेद करह ओचार सिमर स्वामी सुख सहज पुंचह नहीं अंत पारावार अनक परासत मिटह खिन मह हृदय जप भगवान पाम नाते महापावन कोट दान इशनान बाल बुद्ध शुद्ध पुराण।

मित्र सत्धर ना कछु जान सर्ब जी समत कर परगास प्रचंड प्रगट्यो अंधकार बनास पवित्र अपवित्र है किरण लागी मन

कामान सुपाए अपाए जो निकट आवे सीत ता का जाए आप पर का कछ न जाने सदा सहज सुपाई चरण सरन सनाथ इहु मन रंग राते लाल गोपाल गुण नित गाऊ नानक पए प्रभ कृपाल मारू महला पंजवा घर चौथा अष्टपदियां।

का हर जस गुर ते मांगना जागना जागन नीका हर कीर्तन मह जागना लागना लागन नीका गुर चरणी मन लागना एह बिदत सह प्राप्ति जा कै मस्तक भागना कहो नानक तिस सब किशनी।

हर जस श्रवन सुनावना रहाउ तुदे आवत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम संग गावना संत कृपा ते हृदय वासै दूजा पाओ मिटावना भगत दया ते बुद्ध परगासै दुर्मत दुख तजावना दर्शन भेट तो होत पनीता पुनरप गर्भ ना पावना नौ निद रिद सिद पाई जो तुमरे मन पावना संत बिना मैं थाओ ना कोई अवर ना सूजै जावना मोहे निर्गुण को कोई ना राखे संता संग सुमावना कहो नानक गुर चलत दिखाया मन मदे हर हर रावना मारू महला पंजवा जीवना सफल जीवन सुन हर जप जप सद जीवना रहाउ पीवना जित मन आघावे नाम अमृत रस पीवना खावना जित भूख ना लागे संतोख सदा तृप्तीवना पहनना रख पत परमेश्वर फिर नांगे नहीं थीवना भोगना मन मदे हर रस संत संगत महलीवना बिन तागे बिन सोई आनी मन हर भगती संग सीवना मातिया हर रस महराते तिस बहुड़ना कबहू औखीवना मिलियो तिस सर्ब निदाना प्रभ कृपा।

ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिर परमंता, दुहु व्यवस्था तेजो मुक्ता, सोई सोहेला पाली है, ग्रह राज मह नरक उदास करोदा, बहु विद वेद पाठ सब सोदा, देही मैं जो रह अलिपता, तिस जन की पूर्ण काली है, जागत सूता परम भगूता, बिन गुर मुक्त न होइए मीता, साध संग टुट है हो बंधन, एको एक निहाली है, कर्म करे ता बंदा, नह करे ता निंदा, मोह मगन मन व्यापिया चिंदा, गुर प्रसाद सुख दुख सम जाने।

भओ मन माही। इस ही मह जिसकी पत राख है, तिस साधु चौर टाली है। जो सूरा तिस ही होए मरना, जो भागै तिस जो नी फिरना। जो वरताए सोई पल मानै, बुझ हुक्मै दुरमत जाली है। जित जित लाव है तित तित लगना।

सब जनते इकट्ठे एक तत्ते एक बोलन मिठे हस्त अधोत पया उठ चले ज्यो ज्यो औद बिहानिया पाप करेंदड़ सर पर मुठे अजराइल फड़े फड़ कुठे दोजक पाए सिर जनहार लेखा मंगै बाणिया संग न कोई भैया बेबा माल जोबन तन छोड़ वंजेसा करन करीम ना जाटो करता तिल पीड़े ज्यो कहानिया खुश खुश लैंदा वस्त पराई वेखै सुने तेरे नाल खुदाई दुनिया लब पया खाते अंदर अगली गल ना जानिया जम जम मरे मरे फिर जम्मे बहुत सजाए पया देश लम्मे जिनकी

अनाह ध्यान देन कट कट शब्द रजाई हे। आपे रतन अनूप अमोलो, आपे परखे पूरा तोलो, आपे किस ही कस बक

भये देवानी शब्द सहज रस अंतरमानी आपे मुकत तृप्त वरदाता भगत भाए मन भाई आप निरालम गुरगम ज्ञाना।

साहिब सबना सिर भाए मिले भौ जाई है भूले चूके मार्ग पावह आप भलाए तू है समझावह।

बहराई है। जिस बख्शे तिस दे वड्याई, सब सहदाता तिल ना तमाई। परपुर धार रहया ने केवल, गुप्त प्रगट सब ठाई है। क्या सलाही अगम अपार है।

तन जलै पड़कारी मनमुख तके कुंडा चारी बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाईए साचे हाथ वडाई हे काम क्रोध अहंकार निवारी तस्कर पंच शब्द संघारी ज्ञान खड़ग लै मन स्यों लूजै मनसा मन है समाई हे माँ की रकत पिता बिद धारा मूरत सूरत।

क्या जम्मण मरना, गुर के समझ पड़ी क्या डरना। तू दयाल दया कर देख, दुख दर्द शरीर हो जाई है। निज कर बैस रहे पहु खाया, तावत राखे ठाक रहाया। कमल विगास हरे सरस पर,

खेल तमाशा तुंडू कारी, बाजी खेल गए बाजीगर, ज्यो निस सुपने पखलाई है, तिनको तख्त मिली बड़ियाई, निरपो मन वस्या लिवलाई, खंडी ब्रह्मंडी पताली पुरी, त्रे पवन ताड़ी लाई है, साची नगरी तख्त सचावा, गुरमुख साच मिले सुख पावा, साचे साचे तख्त बढ़ाई।

जुग जुग बिरली गुरमुख जाता, साचा रव रहया मन राता, तिसकी ओट गही सुख पाया, मन तन मैल ना काई हे, जीव रसायन साचे राती, हर प्रभ संगी पहो ना परांति, श्रवण स्रोत रज्जे गुरबाणी, ज्योति ज्योत मलाई हे, रख रख पैर तरे पहु तरना, जत कत देखो तेरी सरना, दुख सुख दे तू है मन भाव है।

साच परम पौ पंजन गुरमुख साच सखाई रेतै धर्म कला एक चूकी तीन चरण एक दुबदा सूकी गुरमुख हो सो साच पछाने मनमुख पचै अवाई हे मनमुख कदे ना दरगाह सीजै बिन शब्द क्यों अंतर रीजै बांधे आवह बांधे जावह सोजी बूझ ना काई हे दया दुआ पर अद्धि होई गुरमुख विरला चीन कोई दोए पग धर्म।

ठाके कर्म कमाई है। कर्म धर्म कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ शब्द सलाही, बिन गुर शब्द मुक्त ना हुई, परपंच कर परमाई है। माया ममता छोड़ी ना जाई, से छूटे सचकार कमाई, अहनस भगत रते विचारी, ठाकुर स्यों बन आई है। एक जप तप कर कर तीरथ नावे है, ज्यों तुद भावे तिवें चलावे है, हठ निग्रह अपतीज ना पीजे, बिन हर गुर किन पत पाई है। कली काल में एक कल राखी, बिन गुर पूरे किने ना पाखी, मनमुख

तारी गुरमुख कोट असंख्य उधारी सर्ब जिया जग जीवन दाता निरपह मैल ना काई हे सगली जाचह गुर पंडारी आप निरंजन अलख अपारी ना

बोले शब्द मलाई जांत सिपाणा सहज समाई त्रे पवन जोत तरी परमेश्वर अवर न दूजा पाई है जिसके चाकर तिसकी सेवा शब्द पतीजै अलख अपेवा भगतां का गुण।

गुरमुख सुरत समाई है, कूड़ मुठी ठगी ठगवाड़ी, ज्यो वाड़ी ओजाड़ उजाड़ी, नाम बिना किस साधना लागे, हर बिसरे दुख पाई है, भोजन साच मिले।

अर्प मिलै जग जीवन हर सिंह बणत बनाई प्रभ की गत मित कोई ना पावे जे को वड्डा कहाए वडाई खावे साके साहेब तोट ना दाती सगली तिन्ह अपाई है।

प्राणी हर जप जप रिजै त्याई हे छोड़ो प्राणी कूड़ कबाड़ा कूड़ मारे काल उशाहाड़ा साकत कूड़ पचह मन हमै दोह मार्ग पचै पचाई हे छोड़ो हो निंदा तात पराई पड़ पड़ दज है शांत न आई मिल सत संगत नाम सलाहो आत्म राम सखाई हे छोड़ हो काम क्रोध बुरियाई हो मैं तंद छोड़ हो लंपटाई सतगुर सरन पर हो ता उबर हो यो तरिय पव जल पाई हे आगे बिमल नदी अगन बिख झेला तिथै अवर न कोई।

कहो कर नंदर विघ्न नाही गुरमुख तर तारी क्यों पव जल पार लंघाई है। देही अंदर नाम नवासी आपे करता है अबनासी ना जियो मरे ना मारिया जाई कर देखे शब्द रजाई है। ओह निर्मल है ना ही अंधियारा ओह आपे तख्त बह सत्यारा साकत कूड़े बंद पवाई है मर जन्म है आई जाई है। गुर के सेवक सत गुर प्यारे वही वैसह तखत।

कर वास न पाई, पेयड़ सिर माराही, खाजे पेंजे रली करीजे, बिन अब भगती बाद मरीजे, सार

शब्द कर जाने, किसे ही मंदा आख न चले, सच खरा सचियारा ही, साच बिना दर सिजे न कोई, साच शब्द पेंज है पत होई, आपे बख्श लए किस पावे, हम मैं गर्भ निवारा ही, गुर कृपा ते हुक्म पछाणे।

अमृत रस पाई जम जगात नाही कर लागे जिस अग्न बुझी ठर सीनाई काया हंस प्रीत बहुतारी ओह जोगी पुरख ओह सुंदर नारी अहनस भोगै चोज बिनोदी उठ चलतै मता ना की नाही श्रिष्ट उपाय रहे प्रभ साजै पौन पानी बह संतर गाजै मनुआ डोलै दूत संगत मिल सो पाए जो किछ की नाही नाम विसार दोख दुख सही है हुक्म भया चलना क्यों रही है नरक कूप मह गोते खावे ज्यों जल ते बाहर मीना है चौरासी ही नरक साकत पोगाई है जैसा की कहतै सो पाई है सतगुर बाजो मुक्त ना हुई किरत बांधा ग्रस दीना है खंडे धार गली अत पीड़ी लेखा लीजै तिल ज्यो पीड़ी मात पिता कलत्तर सुत बेली नाही बिन हर रस मुक्त ना की नाही मीत सखे केते जग माही बिन गुर परमेश्वर।

कर लै चलुहु दर्शन पावहु सहज महलुहु गुरमुख खोज लह जन पूरे इयों समदर्शी चीना है प्रभ बेअंत गुरमत को पावह गुर कै शब्द मन को समझावह सतगुर की बाणी सत सत कर मानुहु।

नाही। एक दर सेव है दर्द बुझाई, कोई दरगाह पैंदे सतगुरु छडाई। हौ मैं बंधन सतगुरु तोड़े, चित चंचल चलन ना दीना है। सतगुरु मिलहो चीनो बिद साई, जित प्रभ पावो गणत ना काई। हौ मैं मार करो गुर सेवा, जन नानक हर रंग पीना है। मारू महला पहला, असुर संघारण राम हमारा।

शरण तुम्हारी, कर कृपा प्रभ पार उतारी। अगन पानी सागर अत गहरा, गुर सतगुर पार उतारा ही। मनमुख अंदले सो जी नाही, आवह जाहे मरह मर जाही। पूर्व लिखिया लेख न मिटई, जम दारे अंध खुआरा ही। एक आवह जावह कर वास न पावह, किरत के बांधे पाप कमावह। अंदले सोजी बूझ न काई, लोभ बुरा अहंकारा ही। फिर बिन क्या तिस धन सिंगारा, पर फिर राती खसम बसारा। ज्यो बेसवा पूत बाप को कही है, त्यों फोकट कार विकारा ही। प्रेत पिंजर मह दुख कनेरे, नरक पचह अग

अगन बेख चाला अपथ पशु मन मुख बेताला आसा मनसा कूड़ कमावह रोग बुरा पुरिया राही मस्तक पहार कलर सिर पहारा क्यों कर भवजल लंगस पारा।

राम जपहु अंतरगत ध्याने, लालच छोड़ रचहु अपरंपर। यूं पावहु मुक्त द्वारा ही, जिस बिसरै जम जोहन लागै। सब सुख जाहे दुखां पुन आगै, राम नाम जप गुरमुख जी अड़ी।

जिस को सतगुर मेल मलाई तिस चूका जम पै पारा ही पंच तत् मिलकाया कीनी तिस महराम रतन लै चीनी आत्म राम राम है आत्म हर पाइये शब्द विचाराई सत संतोख रहो जन पाई।

गर्भजोनी नरक मजारा ही साकत जम की कान ना चूकै जम का डंड ना कबहू मूकै बाकी धर्म राय की लीजै सिर अफरे ओ पार अपारा ही बिन गुर साकत कहो को तरिया हम मैं करता पव जल परिया बिन गुर पार ना पावे कोई हर जपिय पार उतारा ही गुर की दात ना मेटे कोई जिस बख्शे तिस तारे सोई जन्म मरण दुख नेड़ ना आवे मन सो प्रभ अपरे अपारा ही गुर ते भूले आवो जावो जन्म मरहो फुन पाप कमावो साकत मूड अचेत ना चेत है दुख लागे ता राम पकारा ही सुख दुख पूर्व जन्म के किए सो जाने जिन दाते दिए किसको दोष दे तू प्राणी सहु अपना किया करारा ही हम मैं ममता करदा आया आसा मनसा बंद चलाया मेरी मेरी करत क्या ले चाली बिखला दे शार बिकारा ही हर की भगत करो जन पाई अकथ कथो मन मन समाई उठ चलता ठाक रखो घर अपने दुख काटे काटन हारा ही हर गुरपूरे की ओट पराती गुरमुख हर लेब गुरमुख जाती।

मुक्त रहता ही। चार नदी ही अग्नि असराला, कोई गुरमुख बूझे शब्द नराला। साकत दुर्मत डूबह ताज है, गुर राखे हर लिवराता ही। अप तेज वाए पृथ्वी अकासा, तिन मह पंच तत् घर वासा। सतगुर शब्द रह रंग राता, तज माया हो मैं प्रांता ही। इह मन पीजै शब्द पतीजै, बिन नावै क्या टेक टकीजै। अंतर चोर मोह घर मंदर, इन साकत दूत ना जाता ही। दुंदर दूत भूत पीहाले, खिंचो तान करह बेताले। शब्द सुरत बिन आवै जावै,

कहो क्यों लखिया जिस बख्शे तिसह पछाता ही अंतर प्रेम परापत दर्शन गुरबाणी स्यों प्रीत सो परसन अहनस निर्मल ज्योत सुबाई।

बैरागी मन मनसा मार समाताही सतगुर सेवह से परधाना तिन घट घट अंतर ब्रह्म पछाना नानक हर जस हर जन की संगत दीजै जिन सतगुर हर प्रभ जाताही मारू महला पहला साचे साहेब सिरजनहारी जिन तार चक्कर

अंत न जानी जा को अलख लखाए आपी अकथ कथा बुद्धताहाए जन्मे को वाजह वाधाई सोहे लड़े अज्ञानी गाई जो जन्म है तिस सर पर मरना किरत पया सिर साहाई संजोग वजोग मेरे प्रभ किए।

जाने जो किस करे सो अपन भाणे। लख चौरासी जी अपाई भाणे सहा लवाईंदा। जो तिस पावे सो निहचो होवे मनमुख आप गणाई रोवे।

अटल अडोल अतोल मरारी खिन मैं ताहे फेर उसारे रूप नारे ख्या मित नहीं कीमत शब्द भेद।

कोई, गुर बिन सो जी किना ना होई, साच मिलै सो साचे पाई, ना विछड़ दुख पाईंदा, तुरहों विछुन्ने ताही रुन्ने, मर मर जन्म है मोहलत पुन्ने, जिस बख्श

ना ताद सिद्ध साधक सुखवासी, जोगी जंगम भेख ना कोई, ना को नाथ कहाएंदा, जप तप संयम ना व्रत पूजा, ना

सह बुझाईंदा नदर करे पूरा गुर पीटै जम जंदार न मारै फेटै ज्यों जल अंतर कमल बिगासी आपे बिगस त्याईंदा आपे वरखै अमृत धारा रतन जवेहर लाल अपारा सतगुर मिलै ता पूरा पाईऐ।

सुख पाया जिसनो कृपा करे हर गुरमुख गुण चौथा मुक्त कराईंदा सुनो उपजे दास अवतारा श्रेष्ठ उपाय किया पासारा देव दानव गण गंधर्व साजी सब लिखिया कर्म कमाईंदा गुरमुख समझै रोग ना होई ए गुर की पौड़ी जाने जन कोई जुगा जगंतर मुक्त परायण सो मुक्त भया पत पाईंदा पंच तत् सुनो परगासा देह संजोगी कर्म अभ्यासा बुरा भला दोए मस्त कलीखे पाप पुन भी जाएंदा उत्तम सतगुर पुरख निराली शब्द रत्ते हर रस मतवाले रिद बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाईए पूरे भाग मलाएंदा इस

अंदर जुगत समाई रहे ओ निराल मराया जग पिसकी छाया जिस बाप ना माया ना तिस भैन ना भराउ कमाया ना तिसे उपत खपत कुल जाती ओह अज रावर मन पाया।

शब्द अत शीतल सहज पाए लिवलाया त्रै वरताए चौथे घर वासा काल बिकाल किए एक ग्रासा निर्मल ज्योत सर्व जग जीवन गुर अनहद शब्द दिखाया उत्तम जन संत भले हर प्यारी हर रस माते पार उतारी नानक रेण संत जन संगत

गुरु ज्ञान रतन दी पाया, पंच तत् मिल एहो तन किया, आत्म राम पाए सुख तिया, कर्म करतूत अमृत फल लागा, हर नाम रतन मन पाया, ना तिस भूख प्यास मन मानिया, सर्ब निरंजन घट घट जानिया, अमृत रस राता केवल बैरागी, गुरमत पाए सो पाया, अध्यात्म कर्म करे दिन राती, निर्मल ज्योत निरंतर जाती, शब्द रसाल रसन रस रसना, बेण रसाल बजाया, बेण रसाल बजावे सोई, जाकी त्रे पवन सो जी होई, नानक बूझो हो एह बिद गुरमत, हर राम नाम लिव लाया, ऐसे जन बिरले संसारे, गुर शब्द विचार है रह निरारी, आप तरह संगत कुल तार है, इन सफल जन्म जाग आया, घर दर मंदर जान सोई, जिस पूरे गुरते सोजी होई, काया गढ़ महल महली प्रभ साचा, सच साचा तख्त रचाया, चतर दस हाट दीवे दोए साखी, सेवक पंच नाही बिख चाखी, अंतर वसत अनूप निर्मोलक, गुर मिले हर तन पाया, तख्त बह तख्त की लायक, पंच समाए गुरमत पायक, आद जगादी है पी होसी, सहसा परम चुकाया, तख्त सलाम होवै दिन राती, एहो साच वडाई गुरमत लिव जाती।

लख लखाया पुरख अलेख सच्चे दीवाना हुक्म चलाए सच निशाना नानक खोज लहो घर अपना।

निरंजन राया, दुख भय भंजन प्रभ अविनाशी, रोग कटे काटी जम फासी, नानक हर प्रभ सो पौ भंजन, गुर मिले हर प्रभ पाया, काल कवल निरंजन जाने, बूझे कर्म सो शब्द पछाण, आपे जाने आप पछाण, सब तिसका चोज सबाया, आपे साहु आपे वणजारा, आपे परखे परखण हारा, आपे कस कस वट्टी लाए, आपे कीमत पाया, आप दयाल दया प्रभतारी, घट

मन निरंजन गाया हूं मैं अमित शब्द सुख होई आप विचारे ज्ञानी सोई नानक हर जस हर गुण लाहा सत संगत सच फल पाया मारू महला पहला सच कहो सच्चे कर रहना जीवत मरहो भवजल जग तरना गुर बोहित गुर बेड़ी तुलहा मन हर जप पार लंघाया।

सरना सच गुर शब्द जित लग तरना कथ कथ देख अपरंपर हुन गर्भ ना जो नी जाया सच बिन सत संतोख ना पावे बिन गुर मुक्त न आवे जावे मूल मंत्र हर नाम रसायन कहो नानक पूरा पाया सच बिन पव जल जाए ना तरिया यो समुंद अथाह महा बिख भरिया।

गुरमुख बूजै शब्द पतीजै उस्तत निंदा किस की कीजै तीनों आप जपो जगदीसर हर जगन्नाथ मन पाया जो ब्रह्मांड खंड सो जानो गुरमुख बूजो शब्द पछाणो कट कट भोगे भोगण हारा रह अतीत सबाया गुरमत बोलो हर जस सूचा गुरमत आखी देखो ऊचा सरवणी नाम सुने हर बाणी नानक हर रंग रंग।

हरे अंतर हर रस पाया, निस दामन ज्यो चमक चंदायन देखै, एहन सजोत निरंतर पेखै, आनंद रूप

निवलागी सब त्रे पवन ब्रह्म सबाया अमृत रस पाए तृष्णा पहु जाए अनपहु पद पावे आप गुआए ऊंची पदवी ऊंचो ऊंचा निर्मल शब्द कमाया अदृष्ट अगोचर नाम अपारा अतरस मीठा नाम प्यारा नानक को जुग जुग हर जस दीजै हर जपिया अंत ना पाया अंतर नाम परापत हीरा हर जपते मन मन ते तीरा दुकट कट पौ पंजन पाइए बहुड़ जन्म ना जाया भगत हेत गुर शब्द तरंगा हर जस नाम पदार्थ मंगा हर पावे गुर मेल मलाए हर तारे जगत सबाया जिन जप जपे हो सतगुर मतवा के जम कंकर काल सेवक पगता के उत्तम संगत गत मित उत्तम जग पौजल भारत राया एहो पौजल जगत शब्द गुर तरी अंतर की दुबदा अंतर जरिए पंच बाण ले जम को मारे गगनंतर तनख चढ़ाया साकत नर शब्द सुरत क्यों पाइए शब्द सुरत बिन आइए जाइए नानक गुरमुख मुक्त परायण हर पूरे पहाग मलाया निरपो सतगुर है रखवाला भगत परापत गुर गोपाला तुन आनंद अनाहद वाजे गुर शब्द निरंजन पाया।

नानक गुरमत सो पाया। अंतर की गत सत गुर जाने, सो निरभउ गुर शब्द पछाने। अंतर देख निरंतर बूझे, अनत ना मन डोलाया। निरपौ सो आबे अंतर वसिया, अहनस नाम निरंजन रसिया। नानक हर जस संगत पाई है, हर

आपे सिर सिर हुक्म चलाया, हुक्म चलाए रहया पर पूरे, किस नेड़े किस आखा दूरे, गुपत प्रगट हर कट कट देखो, वरतै ताक सुबाया, जिसको मेले सुरत समाए, गुर शब्दी हर नाम ते आए, आनंद रूप अनूप अगोचर, गुर मिले है परम जाया, मन तन तन ते नाम प्यारा, अंत सखाए चलन वारा, मोह पसार नहीं संग बेली, बिन हर गुर किन सुख पाया, जिसको नदर करे गुर पूरा, शब्द मलाए गुरमत सूरा, नानक गुर के चरण सरेव हो, जिन पूला मार्ग पाया, संत जना हर तन जस प्यारा, गुरमत पाया नाम तुम्हारा, जाचक सेव करे दर हर कै, हर दरगाह जस गाया, सतगुर मिले त महल बुलाए, साची दरगाह गत पत पाए, साकत ठोर नाही हर मंदर।

साची भावै तिस वडियाई, कौन सो दूजा तिस समझाई। हर गुरु मूरत एका वरतै, नानक हर गुर पाया। वाचह पुस्तक वेद पुराना, एक बह सुनह सुनावह काना। अजगर कपट कहो क्यों खुलै, बिन सतगुर तत ना पाया। करह विभूत लगावह पसमै, अंतर क्रोध चंडाल सो हौमै। पाखंड कीने जोग ना पाईऐ, बिन सतगुर अलख ना पाया। तीर्थ वर्त नेम करह उदयाना, जत सत संजम कथह ज्ञाना। राम नाम बिन क्यों सुख पाईऐ, बिन सतगुर परम ना जाया। न्योली कर्म पुयंगम पाठी, रेचक कुंभक पूरक मनहाठी। पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर सौ, गुर शब्द महारस पाया। कुदरत देख रहे मन मानिया, गुर शब्दी सब ब्रह्म पछानिया। नानक आत्म राम सबाया, गुर सतगुर अलख लखाया। मारू सोले महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हुक्मी सहजे सृष्टि उपाई,

नाम रतन पाया, मनसा मार मन माए समाया, आपे खेल करे सब करता, आपे दे बुझाई है।

तिस जोहे ना साकै साचे स्यों बने आई हे। तृष्णा अग्न जलै संसारा जल जल खपै बहुत विकारा। मन मुख ठौर न पाए कबहू सतगुर बूझ बुझाई हे। सतगुर सेवन से वडभागी साचै नाम सदा लिभ लागी। अंतर नाम रव्या नेह केवल तृष्णा शब्द बुझाई हे। सच्चा शब्द सच्ची है बाणी गुरमुख विरलै किनै पछाणी। सच्चा शब्द रत्ते बैरागी आवण जान रहाई हे। शब्द बुझै सो मैल चुकाई निर्मल नाम वसै मन आई। सतगुर अपना सद ही सेवह हम मैं विचों जाई हे। गुर ते बूझै तां दर सूझै नाम मिहूणा कथ कथ लूझै।

ना किशु ना सूजै गुर की दात सदा मन अंतर बाणी शब्द बजाई है जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया कोई ना मेटै तुर फुरमाया सत संगत मह तिन्ही वासा जिनको तुर लिख पाई।

सब सोई गुरमुख विरला बूझै कोई एको रब रहया सब अंतर तिस बिन अवर ना कोई है लख चौरासी जी उपाय ज्ञानी ध्यानी आख सुनाए सबना रिजक समाहे आपे कीमत होर ना होई है माया मोह अंध अंधारा हम मैं मेरा पसरिया पासारा अन दिन जलत रह दिन राती गुरबिन शांत ना होई है।

हंस बैरागी निज कर ताड़ी लाई हे शब्द मरे सोई जन पूरा सतगुर आख सुनाए सूरा काया अंदर अमृत सर साचा मन पीवे पाए सुपाई हे पढ़ पंडित अवरा समझाए घर जलते की खबर ना पाई बिन सतगुर सेवे नाम ना पाई है पढ़ था के शांत ना आई हे एक भस्म लगाए फिर भेख तारी बिन शब्द होमै किन मारी अन दिन जलत रह दिन राती परम पेख परमाई हे एक ग्रह कटम मह सदा उदासी शब्द मोए हर नाम निवासी हर दिन सदा रह रंग राती पै पाए भगत चित लाई हे मन मुख निंदा कर कर विगुत्ता अंतर लोभ भौंकै जिस कुत्ता।

पावे कोई, बिन सतगुरु को नाव ना पाए, रब ऐसी बणत बनाई है। एक सिद्ध साधक बहुत विचारी, एक अहनस नाम रते निरंकारी, जिसनो आप मलाए सो बूझै, भगत पाए पहु जाई है। इस्नान दान करह नहीं बूझै,

सो सब को जासी दूजे भाए बहदा जम फासी सतगुर राखे से जन उबरे साचे साच समाई है आपे करता कर कर वेख जिसनो नदर करे सोई जन लेख गुरमुख ज्ञान तिस सब किस सूजे अज्ञानी अंध कमाई है मनमुख सहसा बूझ ना पाई मर मर जमे जन्म गवाई गुरमुख नाम रते सुख पाया सहजे साच समाई है धंधे धावत मन भया मनूरा फिर हुए कंचन भेटे गुरपूरा आपे बख्श लए सुख पाए पूरे शब्द मलाई है दुर्मत झूठी बुरी बुरियार औगण यारी औगण यार कच्ची मत फीका मुख बोले दुर्मत नाम ना पाई है औगण यारी कंत ना पावे मन की झूठी झूठ कमावे फिर का साहु ना जाने मूरख बिन गुर बूझ ना पाई है दुर्मत खोटी खोट कमावे सिंगार करे फिर खसम ना पावे

न पाई, बिन सतगुर सुख ना पाई। किसनो कहिए जा आप कराई, जित पावे तित राहि चलाई। आपे मेहरवान सुखदाता, जो पा

बिनसै तहत न लागे बारा कंचन काया गुरमुख बूजै जिस अंतर नाम नवासी है सच्चा चौका सुरत की कारा हर नाम पूजन सच आधारा सदा त्रिपत पवित्र है पावन जित घट हर नाम नवासी है हों तिन बलिहारी जो साचै लागे हर गुण गावे अन दिन जागे साचा सूख सदा तिन अंतर रसना

सब सच दिखाया सच्चै नाम निवासी हे ब्रह्म ब्रह्म जोनी फिर आया आप भूला जा खसम भुलाया हर जियो मिलै ता गुरमुख बूजै चीनै शब्द अबनासी हे काम क्रोध भरे हमें अपराधी क्या मुंह लै बोल है ना हम गुण ना सेवा साधी डुब

होएगा। आपे बख्श लह सुख पाई सद ही नाम नवासी है। एहो तन धरती शब्द बीज अपारा हर साचे सेती वणज वापारा।

ਤੀਜੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਪਤ ਪਾਏ ਇਕਤ ਨਾਮ ਨਵਾਸੀ ਅੰਤਰ ਹਰ ਧਨ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਈ।

जम काल घड़ी मोहत निहाली अन दिन हार जासी जाय अंतर लोभ करे नहीं बूझे श्री ऊपर जम काल ना सूझे ऐसे कमाणा सो अगे आया अंत काल क्या की जाय जो सच लागे तिन साची सोए दूजे लागे मन मुख रोए दोहा सिरिया का खसम है आपे आपे गुण मह पी जय ही गुर कै शब्द सदा जन सो है नाम रसायन इहो मन मोह है माया मोह मैल पतंग ना लागे गुरमति हर नाम पी जय ही सबना विच वरत है एक सोई गुर प्रसादी प्रगट होई हौं मैं मार सदा सुख पाया नाए साचै अमृत पी जाहि किल बिख दुख निवारण हारा गुरमुख सेविया शब्द विचारा संकच आपे आप वरतै गुरमुख तन मन पी जाहि माया अग्न जलै संसारी गुरमुख निवारै शब्द विचारी अंतर शांत सदा सुख पाया गुरमति नाम लीजै ही इंद्र इंद्रासन बैठे जम का भौ पावे है जम ना छोड़ै बहु कर्म कमावे है सतगुर भेटै ता मुक्त पाईऐ हर हर रसना पीजै ही मनमुख अंतर भगत ना होई गुरमुख भगत

कृष्ण महेश विचारी त्रै गुण बधक मुक्त निरारी गुरमुख ज्ञान एको है जाता अन दिन नाम रवि जय ही वेद पढ़ है हर

सच कमावे साची करनी सारी है। कार कमाई जो मेरे प्रभ भाई हम मैं तृष्णा शब्द बुझाई गुरमत सद ही अंतर शीतल हम मैं मार निवारी है। सच लगे तिन सब किछ पावे सच्चे शब्दे सच सुहावे एथे साचे ते दर साचे नदरी नदर सवारी है। बिन साचे जो दूजे लाया माया मोह दुख सबाया बिन गुर दुख सुख जापे नाही माया मोह दुख भारी है। साचा शब्द जिन्ना मन पाया पूरब लिखिया तिनी कमाया सचो सेव है सच त्याव है सच रते विचारी है। गुर की सेवा मीठी लागी अन दिन सूख सहज समाधि हर हर करत्या मन निर्मल होआ गुर की सेव प्यारी है। सेजन सुखिए सतगुर सच्चे लाए आपे भाणे आप मलाए सतगुर राखे सेजन उबरे होर माया मोह खुआरी है। गुरमुख साचा शब्द पछाता ना तिस कटंब ना तिस माता एको एक रव्या सब अंतर सबना जिया काया धारी है। हम मैं मेरा दूजा पाया किशना चल तुर खसम लिख पाया।

तन साचा भगत परे भंडारी हे। आपे वेखै हुक्म चलाए अपना भाणा आप कराए। नानक नाम रते बैरागी मन तन रसना।

जिन अपनाया तो पछाता ही जिन ब्रह्मा विष्णु महेश उपाई सिर सिर तंदै आपे लाई जिस पावै

ज्यों भावै त्यों राखै रहना। गुरमुखै को जाता ही जात भाणा ता सच्ची कारै लाई। अवगण छोड़ गुण माही समाई, गुण मह एको निर्मल साचा। गुर कै शब्द पछाता ही जह देखा तह एको सोई। दूजी दुर्मत शब्द खोई, एक समह प्रभ एक समाना। अपने रंग सद राता ही काया कमल है कुमलाना। मनमुख शब्द ना बुझे एयाना, गुर प्रसादी काया खोजे। पाई जग जीवन दाता ही कोट गही के पाप निवारे। सदा हर जीओ राखे उर तारी।

ना कोई। गुरमुख ज्ञान सदा सलाही, जुग जुग को जाता ही। मनमुख कार करे सब दुख सबाई, अंतर शब्द नाही क्यों दर जाई। गुरमुख शब्द वसै मन साचा, सद सेवे सुख दाता ही। जह देखा तू सबनी थाई, पूरै गुर सब सोजी पाई। नामो नाम त्याई है सदा सा।

पाई, सच्ची भगति आपे लाई, साची बाणी सदा गुण गावे, इस जन्म में काला हाही, गुरमुख वणज करह पर आप पछाण है, एक सबिन को अवर ना जान है, सच्चा साहु सच्चे वणजारी, पूंजी नाम वसाहाही, आपे साजे सिरते अपाई, विरले को गुर शब्द बुझाई, सतगुर सेव है से जन साची, काते जम का पाही, पन्ने कड़े सवारे साजी, माया मोहे दूजे जंत पाजी, मन मुख फिर है सदा अंध कमाव है, जम का जेवड़ा गल फाही, आपे बख्शे गुर सेवा लाई।

सच्ची नाई, गुरमुख देव मन वसाई, जिन मन वसया से जन सो है, तिन सिर चूका काहाई, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, गुर प्रसादी मन वसाई, सदा शब्द सलाह।

सारा मनमुख हुक्म न जाने सारा हुक्मे मन्ने हुक्मे वड़ियाई हुक्मे वे परवाहाई गुर प्रसादी हुक्म पछाण तावत राखे इकत कर आने नामे राता सदा बैरागी नाम रतन मन ताहाई सब जग मह वरतै इको सोई गुर प्रसादी प्रगट होई शब्द सलाह है से जन निर्मल निज करवासा ताहाई सदा भगत तेरी सरनाई अगम अगोचर कीमत नहीं पाई ज्यों तुद भावै त्यों त्यों राख है गुरमुख नाम त्याहाई।

पूरै सतगुर बूझ बुझाया, हुक्मे ही सब जगते पाया, हुक्म मन्ने सोई सुख पाए, हुक्म सिर चाह पात चाहाई, सच्चा सतगुर शब्द अपारा।

सुन सुने आख बखाने ज्ञानी हो ऐसो गुरमुख बूझे साची सिफत सलाहाही देही अंदर वस्ते अपारा आपे कपट खलावन हारा गुरमुख सहजे अमृत पीवे तृष्णा यगन बुझा।

ता पद हुए गुर कै शब्द रस ताहाई आप पछाण सो सब गुण जाने गुर कै शब्द हर नाम बखाण अन दिन नाम रत्ता दिन राती माया मोह चुकाहाई गुर सेवा ते सब किश पाए हम मैं मेरा आप गवाई आपे कृपा करे सुखदाता गुर कै शब्द सुहाहे गुर का शब्द अमृत है बाणी अन दिन हर का नाम बखाणी हर हर सच्चा वसै घट अंतर सो घट निर्मलता हाहे सेवक सेव है शब्द सलाह है सदा रंग राते हर गुण गाव है आपे बख्शे शब्द मलाई परमल वास मन ताहाई शब्दे कथ कथे सलाही मेरे प्रभ साचे वे परवाही आपे गुणदाता शब्द मलाई शब्द का रस ताहाई मनमुख भूला ठौर ना पाई जो तुर लिखिया सो कर्म कमाई बिख्या राते बिख्या खोजै

संसारा सब जग बिन सह नाम वसारा बिन सतगुर सेवे नाम ना पाई है नाम सच्चा जग लाही सच्चा अमर शब्द सुहाया पंच शब्द मिल वाजा वाया सदा कारज सच नाम सुहेला बिन शब्द है कारज के हाही खिन मह हस्त है खिन मह रोवै दूजा

जीवन मुक्त गुर शब्द कमाई, हर सिंह सद ही रह समाई, गुर कृपा ते मिले बड़ियाई, हम मैं रोग न ताहाई, रस कस खाए पिंड वडाई, भीख करे गुर शब्द ना कमाई।

दुख भारी, बिस्ता माहे समाहाई, वेद पढ़े पढ़ बाद बखान है, काट मह ब्रह्म तिस शब्द ना पछाण है, गुरमुख हो वैसो तत् बलोवे, रसना हर रस ताहाई, तर वत छोड़ है बाहर तावे है, मन मुखे अंधे साधना पावे है, अनरस राती रसना फीकी बोले, हर रस मूल ना ताहाई, मन मुख देही परम पतारू, दुर्मत मरै

बैरागी निज करवा सा पाएंदा गुर की साखी अमृत पाखी सच्चा शब्दे सच सुपाखी सदा सच रंग राता मन मेरा सच्चे सच सुमाएंदा गुरमुख मन निर्मल सत सर नावे मैल न लागे सच सुमावे सचो सच कमावे सद ही सच्ची भगत दिरड़ाएंदा गुरमुख सच बैणी गुरमुख सच नैणी गुरमुख सच कमावे करनी सद ही सच कह दिन राती अवरा सच कहाएंदा गुरमुख सच्ची उत्तम बाणी गुरमुख सचो सच वखाणी गुरमुख सद सेव है सचो सच्चा गुरमुख शब्द सुनाएंदा गुरमुख होवै सो सोजी पाए हम मैं माया परम गवाए गुर की पौड़ी उत्तम उची दर सच्चै हर गुण गाएंदा गुरमुख सच संजम करनी सार गुरमुख पाए मोख द्वार पाए भगत सदा रंग राता आप गवाए समाएंदा गुरमुख होवै मन खोज सुनाए सच्चै नाम सदा निभलाए जो तिस भावै सोई करसी जो सच्चे मन पाएंदा जां तिस भावै सतगुरु मलाए जां तिस भावै तां मन वसाए अपने भाणे सदा रंग राता भाणे मन वसाएंदा मन हथ कर्म करे सो सीजै बहुते भेख करे नहीं पीजै भिखिया राते दुख कमावै दुखे दुख समाएंदा गुरमुख होवै सो सुख कमाए मरण जीवन की सोजी पाए मरण जीवन

दुख पाए, मन ही मन समाएंदा। सेवड भागी जिन्नी सतगुर पाया, हम मैं विचो मोह चकाया। मन निर्मल फिर मैल ना लागे, दर सच्चे सोभा पाएंदा। आपे करे कराए आपे, आपे वेखे थापे उथापे। गुरमुख सेवा मेरे प्रभ पावे, सच सुन लेखे पाएंदा। गुरमुख सचो सच कमावे,

का पसारा। सतगुर सेवहै से सुख पावहै, सच्चै शब्द मलाइंदा। पौण पानी है बै संतर, माया मोह वरतै सब अंतर।

खबर न पाई अंत गया पछताईंदा जिन अपाए सो बिद जाने गुरमुख देवे शब्द पछाने नानक दास कह बेनंती सच नाम चित लाईंदा मारू महला तीजा आद जगाद दया पत दाता पूरे गुर कै शब्द पछाता तुदनो सेव है से तुझ संभाव है तू आपे मेल मलाईंदा अगम अगोचर कीमत नहीं पा।

पाई, सब खेल तमाशा तेरी वड्याई। आपे वेख करे सब साचा, आपे पन कढ़ाएंदा, बाजीगर इक बाजी पाई, पूरे गुर ते नदरी आई। सदा अलिपत रह गुर शब्दी, साचे स्यों चित लाएंदा, बाजह बाजे धुन अकारा, आप बजाए बजावन हारा, कट कट पौन वह इक रंगी, मिल पवन सब बजाएंदा, करता करे सो निश्चौ होवे, गुर कै शब्दे हो मैं खोवे, गुर प्रसादी किसे दे वड्याई, नामो नाम त्याएंदा।

ना सेवह क्यों सुख पाई है, बिन नावह दुख पाईंदा, आप करे तै आप कराई, गुर प्रसादी किसे बुझाई, गुरमुख होवह से बंधन तोड़ है।

गणत चकाए सच सच समाएंदा जे सच दे ता पाए कोई गुर प्रसादी प्रगट होई सच नाम सलाहे रंग राता गुर कृपा ते सुख पाएंदा जप तप संयम नाम प्यारा।

नानक नाम संभाल सदा तू गुरमति मन वसाईंदा मारू महला तीजा हर जियो दाता अगम अथाह ओस किल न तमाए वे परवाह तिसनो अपन ना सकै कोई आपे मेल मलाईंदा जो

फिर दया आए बुट्ठा गोविंदा, सहजे भगत करे दिन राती, आपे भगत कराएंदा। सतगुर ते विछड़े तिन्नी दुख पाया, आन दिन मारिया है दुख सबाया। मत्थे काले महल ना पावे, दुख ही विच दुख पाएंदा। सतगुर सेव है से वड भागी, सहज पाए सच्ची लिव लागी। सचो सच कमावे सद ही, सच्चा मेल मलाएंदा। जिसनो सच्चा दे सो पाए, अंतर साच परम चुकाए। सच सच्चे का

जो तिल कहानी पीड़ाएंदा पूरा भाग गुर सेवा होई नदर करे ता सेवे कोई जम काल तिस नेड़ ना आवे महल सच्चा सुख पाएंदा किन सुख पाया जो तुद पाई।

तुझाई जिस भाणा भावै सो तुझै समाई भाणे विच वड्डी वड्याई भाणा किसह कराईंदा जां तिस भावै तां गुरु मलाई गुरमुख नाम पदारथ पाई तुदे आपणे भाणै सब सृष्टि अपाई जिसनू भाणा देहि तिस भाईंदा मनमुख अंध करे चतराई भाणा ना मन्ने बहुत दुख पाई परमे फूला आवे जाए कर महल न कबहू पाईंदा सतगुर मेले दे वड्याई सतगुर की सेवा तुर फरमाई।

वा पारा निश्चल वा सा पाईला अंतर कर बंके थान सुहाया गुरमुख विरलै किने थान पाया इत साथ निभै सलाही सच्ची हर सच्चा।

अनदिन हर सेव्यो सच्ची बाणी हर जियो शब्द मलाएंदा हर चेत है तिन बलिहार है जाऊ गुर कै शब्द तिन मेल मलाऊ तिनकी धूर लाई मुख मस्तक सत संगत बह गुण गाएंदा हर के गुण गावा जे हर प्रभ पावा अंतर हर नाम शब्द सुहावा गुरबाणी चहो कुंडी सुनिए साचै नाम समाएंदा सो जन साचा जे अंतर पाले गुर कै शब्द हर नदर निहाले ज्ञान अंजन पाए गुर शब्दी नदनी नदर मलाएंदा वड्डे भाग इहो शरीर पाया मानस जन्म शब्द चित लाया बिन शब्द है सब अंध अंधेरा गुरमुख किसै बुझाएंदा एक केत आए जन्म गवाए मनमुख लागे दूजे पाए एह वेला फिर हाथ ना आवे पग खिसे।

गुर शब्द निवारी, हर जियो हृदय रखो उरतारी, गुर कै शब्द सदा सलाई, मिल साचे सुख पाईंदा, सो चेते जिस आप चिताई, गुर कै शब्द वसै मन आई, आपे वेख आपे बूझे, आपे आप समाईंदा, जिन मन विच वत पाई सोई जाने, गुर कै शब्दे आप पछाणे, आप पछाणे सोई जन निर्मल, बाणी शब्द सुनाईंदा, ए काया पवित है शरीर, गुर शब्दी चेता गुणी गहीर।

दूजे पाए परम पलाया, हरना चेते सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाएंदा, जे सतगुर सेवे सो परवान, काया हंस निर्मल दर सच्चे जान, हर सेवे हर मन वसाई, सो है हर गुण गाएंदा, बिन भागा गुर सेविया न जाई, मन मुख भूले मोए बिल लाए, जिन को नदर होवे गुर केरी, हर जियो आप मलाएंदा, काया कोट पक्के हट नाले, गुरमुख लेवे वस्त संभाले, हर का नाम त्याए दिन राती, उत्तम पदवी पाएंदा, आपे सच्चा है सुख दाता, पूरे गुर कै शब्द पछाता, नानक नाम सलाहे साचा, पूरे भाग को पाएंदा, मारू महला तीजा, निरंकार आकार उपाया, माया मोह हुक्म बनाया, आपे खेल करे सब करता, सुन साचा मन वसाएंदा, माया माई त्रै गुण परसूत जमाया, चारे वेद ब्रह्मे नू फरमाया, वरे महावार तिथि कर, इस जग मह सोजी पाएंदा, गुर सेवा ते करनी सार, राम नाम राखो उरतार, गुर बाणी वरती जागे अंतर, इस बाणी ते हर नाम पाएंदा, वेद पढ़े हन दिन वाद समाले, नाम ना चेते बद्दा जम काले, दूजे पाए सदा दुख पाए, त्रै गुण परम पलाएंदा, गुरमुख एक कस स्यों लिवलाए, त्रिविध मनसा मन

गुरमुख वणज सदा सुख पाई सहजी सहज मलाएंदा सच्चा महल सच्चे पंडारा।

रस न हर रस पाया, शब्द मर है से मरन सवार है, हर के गुण हृदय उरतार है, जन्म सफल हर चरणी लागी, दूजा भाव चुकाया, हर जियो मेले आप मलाई, गुर कै शब्द आप गुआई, अन दिन सदा हर भगती राती, इस जग महला पाया।

सारा मनमुख अज्ञानी अंधारा धंधे धावत जन्म गवाया बिन नावै दुख पाया कर्म होवै ता सतगुर पाई हउमै महल शब्द जलाई मन निर्मल ज्ञान रतन चानन अज्ञान अंधेर गवाया तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई।

कर्म त्याया जात सत संयम जे सच कमावे एह मन निर्मल जे हर गुण गावे इस बिख मह अमृत प्राप्त होवे हर जीओ मेरे पाया जिसनो बजाए सोई बूझे हर गुण गावे अंदर सूझे हम मैं मेरा ठाक रहाई सहजे ही सच पाया बिन कर्मा होर फिरे कनेरी मर मर जम्मे चुके ना फेरी बिख का राता बिख कमावे सुख ना कबू पाया बहुते भेख करे भेख तारी बिन शब्द हूं मैं किने ना मारी जीवत मरे ता मुक्त पाई सच्चा ना ए समाया अज्ञान तृष्णा इस तनह जलाई किस दी बूझे जे गुर शब्द कमाई।

भेटे गुरपूरा अंतर अज्ञान शब्द बजाए सतगुर ते सुख पाया मन मुखे अंधा अंध कमाए बहु संकट जोनी परमाए जम का जेवड़ा कदे ना काटे अंते बहु दुख पाया आवन जाना शब्द निवारे सच नाम रखे उरतारी।

पंख तो हुए पांच दूत वास आया। बाज गुरु है मोह गुबारा फिर डुबे वारू वारा। सतगुर भेटे सच दृढ़ाई सच नाम मन पाया। साचा दर साचा दरबारा सच्चे सेव है शब्द प्यारा। सच्ची धुन सच्चे गुण गावा सच्चे माही समाया। घरे अंदर को घर पाई गुर कै शब्द सहज सुपाई। उथे सोग वजोग ना व्यापे सहजे सहज समाया। दूजे पाए दुष्टा का वासा पौंदे फिर है बहु मोह प्यासा। कुसंगत बह सदा दुख पाव है दुखो दुख कमाया। सतगुर बाजो संगत ना हुई बिन शब्दे पार ना पाए कोई। सहजे गुण रवह दिन राती ज्योति ज्योत मलाया। काया बिरख पंखी विच वासा अमृत चुगह गुर शब्द निवासा। उड़ह ना मूले ना आवह ना जाई निज कर वासा।

लाभ रतन धन पाया, सतगुर की सेवा पाई। बिन सतगुर जो दूजे लागे, आवह जाहे भ्रम मरह अभागी। नानक तिनकी फिर गत हुए, जे गुरमुख रह सरनाई। गुरमुख प्रीत सदा है साची, सतगुर ते मांगो नाम अजाची। हो दयाल कृपा कर हर जियो, रख लेवो गुर सरनाई। अमृत रस सतगुरु चवाया, दसवें द्वार प्रगट होए आया। तह अनहद शब्द बजह धुन बाणी, सहजे सहज समाई। जिनको करतै तुर लिख पाई, अन दिन गुर गुर करत विहाई। बिन सतगुर को सी जय नाही, गुर चरनी चित लाई। जिस भावै

ज्ञान रतन मन परगट भया, नाम पदार्थ सहजे लया। एह वडे आई गुरते पाई, सतगुर कहो सद बल जाई। प्रगटिया सूर निस मिटिया अंधियारा, अज्ञान मिटिया गुर रतन अपारा। सतगुर ज्ञान रतन अत भारी,

सोवै गुरमुख नाम समाए समावै नानक नाम त्याई भगता मुख अमृत है बाणी गुरमुख हर नाम आख वखाणी हर हर करत सदा मन बिगसै हर चरणी मन लाई हम मूर्ख अज्ञान ज्ञान किश नाही सतगुर ते समझ पड़ी मन माही हो दयाल कृपा करा हर जीव सतगुर की सेवा लाई है जिन सतगुर जाता तिने एक पछाता।

भरपूर समाही सूके ते फुल हरिया कीतन हर त्यावो हो चोज वडाणी हे जो जिया की वेदन जाने तिस साहिब कै हों कुर्बान तिस आगे जन कर बेनंती जो सर्व सुखा का दानी हे जो जिया की सार ना जाने किस स्यों किस ना कहिए अजाने मूरख स्यों नह लूज पराणी हर जपिय पद निर्वाणी हे ना कर चिंत चिंता है करते हर देवै जल थल जनता सब तै अचिंत दान दे प्रभ मेरा विच पाथर कीट पखाणी हे ना कर आस मीत सुत पाई ना कर आस किसै सहा व्यवहार की पराई बिन हर नावै को बेली नाही हर जपिय सारंग पाणी हे अन दिन नाम जप हो बनवारी सब आसा मनसा पूरै थारी जन नानक नाम जप हो भव खंडन सुख सहजे रैन विहाणी हे जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया जो शरण परै तिसकी पत राखै जाए पूछो वेद पुराणी हे जिस हर सेवा लाए सोई जन लागै गुर कै शब्द परम भव भागै विचे ग्रह सदा रह उदासी ज्यों कमल रह विच पाणी हे।

समझै तै करते हर अनदेन नाम बखाणी हे। किस ही जोर अहंकार बोलन का किस ही जोर देबान माया का। मैं हर बिन टेक तारे अवर ना काई तू करते राख मैं निमाणी हे। निमाणे माण करह तुद पावे होर केती चक चक आवे जावे। जिनका पख करह तू स्वामी किनकी ऊपर गल तुद आणी हे। हर हर नाम जिन्नी सदा त्याया तिन्नी गुर प्रसाद परम पद पाया। जिन हर सेविया तिन सुख पाया बिन सेवा पछो ताणी हे। तू सब मह वरत है हर जगन्नाथ सो हर जपै जिस गुर मस्तक हाथ। हर की शरण पया हर जापी जन नानक दास दसाणी हे। मारू सोले महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कला उपाय तरी जिन धरना गगन रहाया हुक्मे चरना। अगन उपाय ईंधन मैं बांदी सो प्रभ राखे पाई हे। जी जंत को रिजक संबाहे करण कारण समरथ अपाहे। खिन मह थाप यथापन हारा सोई तेरा सहाई हे। मात गर्भ मह जिन प्रित पालिया सास ग्रास होए संग संभालिया। सदा सदा जपिया सो प्रीतम वड्डी जिस वडे आई हे। सुल्तान खान करे खिन कीरे गरीब नवाज करे प्रभ मीरे। गर्भ निवारण सर्ब सुधारन किस कीमत कही ना जाई हे। सो पतवंता सो तनवंता जिस मन वस्या हर भगवंता। मात पिता सुत बंद पपाई जिन एह सृष्ट उपाई हे। प्रभ आए सरना पौ नहीं करना साध संगत निश्चौ है तरना। मन बच कर्म अरादी करता तिस नाही कदे सजाई हे। गुण निदान मन तन मह रविया जन्म मरण की जोन ना पविया। दुख बनास किया सुख डेरा जा तृप्त रहे आगाई है।

कोट लख बाहा, हर जस कीर्तन संग धन ताहा, ज्ञान खड़ग कर कृपा दीना, दूत मारे कर ताई, हर का जाप जप हो जप जपने, जीत आव हो वस हो घर अपने, लख चौरासी नरक ना देखो, रसक रसक गुण गाई हे, खंड ब्रह्मांड उधार नहारा, ऊच अथाह अगम अपारा, जिसनो कृपा करे प्रभ अपनी, सो जन तिसह त्याई हे, बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले, कर

बनी प्रभ तेरी बिनस गई हम मैं मत मेरी अंगीकार किया प्रभ अपने जग मह सोभ सुहाई है जय जयकार जपो जगदीश बल बल जाई प्रभ अपने ईसै तिस बिन दूजा अवरना दिसै एका जगत सबाई है सत सत सत प्रभ जाता गुर प्रसाद सदा मन राता सिमर सिमर जीवह जन तेरे एकंकार समाई है भगत जना का प्रीतम प्यारा सबै उदाहरण खसम हमारा सिमर नाम पुन्नी सब इच्छा जन नानक पैज रखाई है मारू सोले महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद संगी जोगी नार लपटाणी उर्ज रही रंग रसमाणी किरत संजोगी पय इकतरा करते भोग बलासा है जो पिर करै सो तन तत मानै पिर तन है शिंगार रखै संगानै मिल एकत्र वसह दिन राती प्रियो दे तनह दलासा ही धन मांगै प्रियो बहु बिद धावै जो पावै सो आनंद खावै एक वस्त को पहुँच ना साकै धन रहती पू

ग्रह पीतर जित उतरै भूख प्यासा ही सगले कर्म धर्म जुग साधा बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा पई कृपा नानक सत संगे तौ धन फिर आनंद उलासा ही तन अंधी फिर चपल सियाना पंच तत् कारच नरचाना जिस वखर को तुम आए हो सो पायो सतगुर पासाई तन कह तू वस मैं नाली प्रिय सुखवासी बाल गोपाली तुझे बिना हौ कित ही ना लिख है वचन देह छोड़ ना जासाही फिर कहया हो हुक्मी बंदा ओ भारू ठाकुर जिस कान ना छंदा जिचर राखै तिचर तुम संग रहना जा सदे ता ऊठ सदा साहे जो प्रिय बचन कहे तन साचे तन कशु ना समझै चंचल काचे बहोर बहोर फिर ही संग मांगै ओह बात जानै कर हासा ही आई आग्या फिर हो बुलाया ना तन पुछी ना मता पकाया ऊठ सदायो छूटर माती देख नानक मिथन मुहासा ही रे मन लोभी सुन मन मेरे सतगुर सेव दिन रात सदेरे बिन सतगुर पचमुए साकत नगुरे गल जम फासा ही मनमुख आवै मनमुख जावै मनमुख फिर चोटा खावै जितने नरक से मनमुख भोगै गुरमुख लेप ना मासा ही गुरमुख सोए जे हर जियो पाया तिस कौन मिटावै जे प्रभ पहराया सदा आनंद करे आनंदी जिस सिर पाओ पया गल खासा ही हौं बलिहारी सतगुर पूरे शरण के दाते बचन के सूरे ऐसा प्रभ मिलिया सुख दाता विचड़ना कत ही जासा ही गुण निदान किश कीम ना पाई कट कट पूर रहयो सब ठाई नानक सरन दीन दुख भंजन हौं रेण तेरे जो दासाई मारू सोलहे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद करे आनंद आनंदी मेरा कट कट पूरन सिर सिरै नबेरा सिर साहा कै सच्चा साहिब अवर नाही को दूजा ही हर कवंत आनंत दयाला प्रगट रहो प्रभ सर्ब उजाला रूप करे कर देखै बिगसै आपे ही आप पूजा ही आपे कुदरत करे विचारा आपे ही सच करे पसारा आपे खेल खलावै दिन राती आपे सुन सुन पीजा ही साचा तखत सच्ची पातशाही सच खजीना साचा साही आपे सच तारियो सब साचा सच्चे सच वरती जाहि सच

तू है बड राजा, हुक्म सच्चे कह पूरे काजा, अंतर बाहर सब किस जाने, आपे ही आप पति जाहे।

जिस चीते आवह तिस पहु केहा, हवर कहा किस की जाहे। तृष्णा बूझी अंतर ठंडा, गुर पूरे ले टूटा गंडा। सुरत शब्द हृदय अंतर जागी, हमयो चोल चोल पी जाहे। मरे नाही सद सद ही जीवे, अमर भया अबनासी।

कटै सवाया नित नित रंगा, कटै नाही तोली जाहि। बारहा कंचन शुद्ध कराया, नदर सराफ बन्नी सचड़ाया, परख खजाना।

गुरु पवित्र अस्थान नाही, गुर सिमरत सब किल विख नास है, गुर सिमरत जम संग ना फास है, गुर सिमरत मन निर्मल होवे, गुर काटे अपमान नाही, गुर का सेवक नरक ना जाई, गुर का सेवक पार ब्रह्म त्याई, गुर का सेवक साध संग पाई, गुर करता नित जी दानाई, गुर द्वारे हर कीर्तन सुनिए, सतगुर भेट हर जस मुख भणिए, कल कलेश मटाए सतगुर हर दरगाह देवे मानाई, अगम अगोचर गुरु दिखाया, भूला मार्ग सतगुर पाया, गुर सेवक को बिघन ना भगती, हर पूर दरड़ाया ज्ञान नाही, गुर दृष्टाया सबनी ठाई, जल थल पूर रहया गोसाई, ऊच ऊन सब एक समाना, मन लागा सहज ध्यानाई, गुर मिले सब तृष्ण बुझाई, गुर मिले नह जो है माई, सत संतोख दिया गुर पूरे, नाम अमृत पी पानाही, गुर की बाणी सब माहे समाणी, आप सुनी ते आप बखाणी, जिन जिन जपी तेई सब निस्तरे, तिन पाया निचल थानाही, सतगुर की महिमा सतगुर जाने, जो किछ करे सो आपन पाणे, साधु तूर जाच है जन तेरे, नानक सद कुर्बानाही, मारू सोले महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आद निरंजन प्रभ निरंकारा, सब मह वरतै आप नरारा, वर्ण जात चिन्ह नहीं कोई, सब हुक्मे सृष्ट उपाएंदा, लख चौरासी जोन सबाई, मानस को प्रभ दी वड़ियाई, इस पौड़ी ते

पदार्थ लहिए, जिसे आप पलाए सोई भूले, सो बूझे जिसह बुझाएंदा, हर कसोग का नगर एहु किया, से उभरे जो सतगुर सरनिया, त्रिहा गुणा ते रह निरारा, सो

प्रभ भी परवाह काठ सिलक जिस मार्ग पाई सो विच संगत वासा पाएंदा हुक्म बूझे सो सेवक कही है बुरा भला दुए समसर सही है हउ मैं जाए ता एको बूझे सो गुरमुख सहज समाएंदा हर के भगत सदा सुखवासी बाल सुपाए अतीत उदासी अनक रंग करह बहु भांति।

मिलिए जा लई मलाई। गुरमुख प्रगट भया तिन जन को, जिन तुर मस्तक लेख लखाएंदा। तू आपे करता कारण करना, श्रिष्ट उपाय धरी सब धरना। जन नानक शरण पया हर द्वारे।

श्रवण सुनिए दूजी अवरना जाप सकाई सगल तुम्हारी तारना आप चितारे अपना किया आपे आप आप प्रवथिया आप उपाय रच्यों पसारा आपे कट कट सारना एक उपाय वड दरबारी एक उदासी एक करबारी एक भूखे एक तृप्त अगाए सबसे तेरा पारना आपे सत सत सत साचा पोत पोत भगतन संग राचा आपे गुपत आपे है प्रगट अपना आप पसारना सदा सदा सद होवनहारा।

दीता कर्ण करामन सब तू है नाही किस असाड़ा तुम है पठाई ता जग मह आई जो तुझ पाणा से कर्म कमाई तुझ ते बाहर किशु ना हुआ ता भी नाही किस काड़ा ऊहा हुक्म तुम्हारा सुनिए इहां हर जस तेरा भणिए आपे लेख अलेख है आपे तुम सियो नाही किस झाड़ा तू पिता सब बार कथारे ज्यो खलावे है त्यो खेलन हारे उजड़ मार्ग सब तुम ही कीना चले नाही कोवे पाड़ा एक बसाए रखे ग्रह अंतर एक पठाए देश दसंतर एक ही कौ कास एक ही कौ राजा इन मैं कही है क्या कूड़ा कमन सो मुक्ति कमन सो नरका कमन संसारी कमन सो भगता कमन सो दाना कमन सो होछा कमन सो सुरता कमन जड़ा हुक्मे मुक्ति हुक्मे नरका हुक्म संसारी हुक्मे भगता हुक्मे होछा हुक्मे दाना दूजा नाही अवर धड़ा सागर कीना आत तुम पारा एक खड़े रसातल कर मनमुख गावारा एक ना पार लंघावह आपे सतगुर जिनका सच बेड़ा कौतक काल एहो हुक्म पठाया जी जंत उपाए समाया विखै विगसै सब रंग माणी रचन कीना एक अखाड़ा वड्डा साहिब वड्डी नाई वड दा तार वड्डी जिस जाई अगम अगोचर बे अंत अतोला है नाही किस आहाड़ा कीमत कोई ना जाने दूजा आपे आप निरंजन पूजा आप सो ज्ञानी आप त्यानी आप सतवंता अत गाड़ा केतड़िया दिन गुप्त कहाया केतड़िया दिन सुन समाया केतड़िया दिन धुंधू कारा आपे करता प्रगटड़ा आपे शक्ति सबल कहाया आपे सूरा अमर चलाया आपे शिव वरताई नियंतर आपे शीतल ठार गड़ा जिसह नवाजे गुरमुख साजे नाम वसै तिस अनहद वाजे तिस ही सुख तिस ही ठकुराई तिसह न आवे जम नेड़ा कीमत तागद कही ना जाई कहो नानक बे अंत गुसाई आद मद अंत प्रभ सोई हाथ तिसह कह निबेड़ा तिसह शरीक ना ही रे कोई किस ही बुतै जवाब ना होई नानक का प्रभ आपे आपे कर कर वेखै चोज खड़ा मारू महला पंजवा अचुत पार ब्रह्म परमेश्वर अंतर जामी मद सूदर दामोदर स्वामी रिखि केस गोवर्धन तहारी मुरली मनोहर हर रंगा मोहन माधव कृष्ण मरारे जगदीश्वर हर जियो असुर संघारी जग जीवन अबनासी ठाकुर घट घट वासी है संगा धरनी तर ईस नरसिंह नारायण दाड़ा अगरे प्रथम तरायण बावन रूप किया तुद करते सब ही सेती है चंगा श्री राम चंद जिस रूप नारिखिया बनवाली चक्र पान दर्श अनूपिया सहस नेत्र मूर्त है सहसा एक दाता सब है मंगा भगत वचल अनाथ है नाथे गोपी नाथ सगल है साथे वासुदेव नरंजन दाते वर्ण ना साको गुण अंगा मकंद मनोहर लक्ष्मी नारायण द्रौपदी लज्जा निवार उदाहरण कमला कंत करह कंतूहल आनंद बनोदी निसंगा मोग दर्शन आजूनी संभव अकाल मूरत जिस कदे नाही खो अवनासी अवगत अगोचर सब किश तुझ ही है लगा श्री रंग बैकुंठ के वासी मछ कछ कूरम आग्या अवतरासी केशव चलत करह निराले कीता लोड़ है सो होएगा
निराहारी निरवैर समाया, धार खेल चतुर्भुज कहाया, सावल सुंदर रूप बनावह, देन सुनत सब मोह है।

सतसंगा पीत पितंबर त्रेपवन तनी जगन्नाथ गोपाल मुख पणी सारंग धर भगवान बीठला मैं गणत न आवै सरबंगा निह कंटक निह केवल कही है तनंजय जल थल है मही है मृत लोक पै आल समीपत अस्तर थान जिस है अपगा पतत पावन दुख पै पंजन हंकार निवारण है पव खंडन भक्ति तोखत दीन कृपाला गुणे न कित ही है पिगा निरंकार अशल अडोलो ज्योत स्वरूपी सब जग मौलो सो मिले जिसे आप मलाही आप हो कोहे ना पावेगा आपे गोपी आपे काना आपे गहू चरावे बाना आप उपावे है आप खपावे है तुझ लेप नहीं एक तिल रंगा एक जी ही गुण कमन बखान सहस फनी सेख अंत न जान नवतन नाम जपै दिन राती एक गुण नाही प्रभ कह संगा ऊट गही जगत पित सरनाया पै भयानक जमदूत दुतर है माया हो कृपाल इच्छा कर राख हो साध संतन कह संग संगा दृष्ट मान है सगल मतेना एक मांगो दान गोविंद संतरेना मस्तक लाए परम पद पावो जिस प्राप्त सो पावेगा जिनको कृपा करी सुख दाती तिन साधु चरण लै हृदय पराती सगल नाम निधान तिन पाया अनहद शब्द मन वाजंगा कीर्तम नाम कथे तेरे जिहवा सत नाम तेरा परा पूर्बला कहो नानक भगत पये सरनाई देहो दर्श मन रंग लगा तेरी गत मित तू है जान है तू आपे कथ है तै आप बखान है नानक दास दासन को करियो हर भाव है दासा राख संगा मारू महला पंजवा अल्लाह अगम खुदाई बंदे छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे हुए पै खाक फकीर मुसाफर एहो दरवेश कबूल दरा सच निवाज यकीन मसल्ला मनसा बार निवार हुआसा देह मसीत मन मौलाना कलम खदाई पाक खरा सरासरयत लेख मावहु तरीकत तर्क खोज टलावहु मारफत मन मारहु अबदाला मिलहु हकीकत जित फिर न मरा करान कतेब दिल माहे कमाही दस औरात रखो बदराही पंच मर्द सिदकले बंद हो खैर सबूरी कबूल परा मक्का मेहर रोजा पै खाका पिसत पीर लफज कमाए अंदाजा पूर नूर मुस्क खुदाया बंदगी अल्लह आला हुजरा सच कमावे सोई काजी जो दिल सोदे सोई हाजी सो मुल्ला मलऊन निवारे सो दरवेश जिस सिफत तरा सबे वक्त सबे कर वेला खालक याद दिले महमौला तस्बी याद करहु दस मर्दन सुन्नत सील बंधान बरा दिल मह जानहु सब फिलहाला खिलखाना बिरादर हमू जंजाला मीर मलक उमरे फानाया एक मकाम खुदाए दरा अवल सिफत दूजी साबूरी तीजै हलेमी चौथै खैरी पंजवै पंजे इकत मकामै एह पांज वक्त तेरे अपर परा सगली जान करो मौदीफा बद अमल छोड़ करो हाथ पूजा खुदाए एक बुझ देव हो बांगा बुरगु बर खुरदार खरा हक हलाल बखोरो खाना दिल दरियाओ तो वह मैं लाना पीर पछाण पिस्ती सोई अजराइल ना दोज ठरा काया किरदार औरत यकीना रंग तमाशे मान हकीना नपाक पाक कर हदूर हदीसा साबत सूरत दस्तार सिरा मुसलमान मोम दिल होवे अंतर की मल दिल ते धोवे
दुनिया रंग ना आवै नेड़ै, ज्यो कुसम पाट घ्यो पाक हरा, जा को मेहर मेहर मेहरवाना, सोई मर्द मर्द मर्दाना, सोई सेख मसाय कहाजी, सो बंदा जिस नजर नरा, कुदरत कादर करन करीमा, सिफत महबत अथाह रहीमा, हक हुकम सच खुदाया, बुझ नानक बंद खलास तरा, मारू महला पंजवा, पार ब्रह्म सब ऊच बराजी, आपे थापे थापे साजी, प्रब की शरण गहत सुख पाई है, किस भौ न व्यापै बालका, गर्भ अगन मह जिन्ह उभारिया, रक्त किरम मह नहीं संघारिया, अपना सिमरन दे प्रतपालिया, ओहो सगल कटा का मालका, चरण कमल शरण आई आया, साध संग है हर जस गाया, जन्म मरण सब दुख नवारे, जप हर हर भौ नहीं काल का, समरथ अकथ अगोचर देवा, जी जंत सब तां की सेवा, अंडज जेरज सेतज उत्पुज, बहु परकारी पालका, किसह प्राप्त तो

आदि अंत मद प्रभ सोई, आपे करता करे सो होई। ब्रह्म पो मिटिया साध संगते, गालत ना कोई काल का। उत्तम बाणी गाओ गोपाला, साध संगत की मंगो होर वाला। बासन मेट न बासन होई है, कल मल सगले जाल का। संता की एह रीत नराली, पार ब्रह्म कर देख नाली। सास सास आराधन हर हर, क्यों सिमरत की जय आल का। जह देखा तह अंतर जामी, निमख न विसरहो प्रभ मेरे स्वामी। सिमर सिमर जीव है तेरे दासा, बन जाल पूर्ण थाल का। तत्ती वाओ ना ता को लागे, सिमरत नाम अन दिन जागे। आनंद बनोद करे हर सिमरन, तिस माया संग ना ताल का। रोग सोग दुख तिस नाही, साध संग हर कीर्तन गाही। अपना नाम देहे प्रभ प्रीतम, सुन बेनंती खाल का। नाम रतन तेरा है प्यारे, रंग रते तेरा।

जिन विसरह नाही काहू बेरा, तिनकै संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अहंकार जाए, किस जन को उपदेश निर्माल का, तुद विण नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभ के पैरा, हौ बलिहारी सतगुर पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रभ बिसरै नाही, आठ पहर हर हर को त्याई, नानक संत तेरे रंग राती, तू समरथ वडाल का, मारू महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, चरण कमल हृदय नित तारी, गुरपूरा खिन खिन नमचकारी, तन मन अर्प धरी सब आगे, जग मह नाम सुहावना, सो ठाकर क्यों मनो वसारी, जियो पिंड दे साज सवारी, सास ग्रास संभाले करता, कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पहर हर रख मन माही, साध संग पाजे चुत स्वामी, दरगाह सोभा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निद,

पराणी। काम क्रोध निंदा पर हरिय हर रसना नानक गावना। जिस रूप ना रेखिया कुन नहीं जाती, पूर्ण पूर रहे दिन राती। जो जो जपै सोई बड़ भागी, बहुड़ना जूनी पावना। जिसनो बिसर पुरख बधाता, जलता फिर रह नितता। किरत कण को रख ना कोई, नरक कोर मह पावना। जियो प्राण तन धन जिन साजिया, मात गर्भ मह राख निवाजिया। किस स्यो प्रीत छाड़िया नराता, काहू सिरे ना लावना। तार अनग्रहो स्वामी मेरे, कट कट वस है सबन कै नेरे। हाथ हमारे कछु है नाही, जिस जनाए है किसे जनावना। जा कै मस्तक तुर लिख पाया, किस ही पुरख ना व्यापे माया। नानक दास सदा सरनाई, दूसर लवे ना लावना। आगया दुख सुख सब कीने,

सोई पूर्ण पुरख बधाता, बाल सहाय सोई तेरा, जो तेरे मन पावना, मृत दुख सुख लिख पाए, तिल नहीं बध कट है ना कटाए, सोई होए जे करते पावे, कह कह आप मनावना, अंध कूप ते सेई काडे, जन्म जन्म के टूटे गांडे, कृपा धार रखे कर अपने, मिल साधु गोविंद त्यावना, तेरी कीमत कहन ना जाई, अचरज रूप बड़ी वड्याई, भगत दान मंगे जन तेरा, नानक बल बल जावे।

पहला विण गाहक गुण वेची है तो गुण सहगो जाए गुण का गाहक जे मिले तो गुण लाख बकाए गुण ते गुण मिल पाई है जे सतगुर माहि समाए मोल अमोल ना पाई है बन जना लीजै हाथ नानक पूरा तोल है।

एक बांधे एक ढीलिया एक सुखिए हर प्रीता नानक सच्चा मन ले सच करनी सच रीत पौड़ी गुरते ज्ञान पाया अत खड़ग करारा दूजा भ्रम गढ़ कटिया मोह लोभ अहंकारा हर का नाम मन वसिया गुर शब्द विचारा सच संजम मत उत्तम हर लगा प्यारा सब सचो सच वर्तदा सच सिरजनहारा सलोक महला तीजा केदारा रागा विच जानिए भाई शब्दे करे प्यार सत संगत स्यों मिल दूर है सच्चे तरे प्यार विच्चों मल कटे अपनी कुल्ला का करे उदार गुणा की रास संग्रह अवगण कड्डै वडार नानक मिलिया सो

सहज बनस्पत फुल फल पवर वसै पह खंड नानक तरवर एक है एको फुल रंग पौड़ी जो जन लूजह मने सिंह से सूरे प्रधाना हर सेती सदा मिल रहे जिन्नी आप पुछाना ज्ञानिया का एहो महत है मन माहे समाना हर जियो का महल पाया सच लाए ध्याना जिन गुर प्रसादी मन जीतया जग तिन्ह जिताना सलोक महला तीजा जोगी होवा जग भवा कर कर भीख्या लेओ दरगाह लेखा मंगी है किस किस उत्तर देओ भिख्या नाम संतोख मड़ी सदा सच है नाल भेखी हाथ ना लदिया सब बद्दी जमकाल नानक गल्लां झूठियां सच्चा नाम समाल महला तीजा जित दर लेखा मंगी है सो दर सेवे हो ना कोय ऐसा सतगुर लोड़ लहो जिस जे वड़े अवर ना कोय किस सरनाई छूती है लेखा मंगे ना कोय सच दृढ़ाए सच दृढ़ सच्चा ओ शब्द दे हृदय जिस दे सच है तन मन भी सच्चा होए नानक सच्चा हुक्म मन्ने है सच्ची वड्याई दे सच्चे माहे समावसी जिसनो नदर करे पौड़ी सूरे एह ना आखी है अहंकार मर है दुख पाव है अंधे आप ना पछाणनी दूजे पच जावे है हत क्रोध स्यों लूज दे।

अंदर मुश्क चुकोलिया कीमत कही ना जाय। पौड़ी इस जुग मह नाम निदान है नामो नाल चल है एहो अखुट कदे नान खुटई खाए खर्चो पल हर जन नेड़ ना आवई जम कंकर जम कल से साहा सच्चे बन जा रहा जिन हर तन पल हर कृपा ते हर पाई है जा आप हर कल। सलोक महला तीजा मन मुख व्यापार है सार ना जाननी बिक विहाज है बिक संग्रह बिक स्यों तर है प्यार बाहर हो पंडित सदाए दे मनहो मूर्ख गावार हर स्यों चेतना लाएनी वादी धर्म प्यार वादा किया कर्म कहानियां कूड़ बोल कर है आहार जग मह राम नाम हर निर्मला होर मैला सब आकार नानक नाम ना चेतनी हुए मैले मरह गवार। महला तीजा दुख लगा बिन सेवे है हुक्म मन्ने दुख जाए आपे दाता सुखै दा आपे दे सजाए। नानक एवै जानिए सब किश तिसै रजाए। पौड़ी हर नाम बिना जगत है निर्धन बिन नामै तृप्त नाही दूजै परम पलाया हौ मैं दुख पाही बिन कर्मा किशु ना पाईए जे बहुत लुचाही आवै जाए जम्मै मरै गुर शब्द छुटाही आप करै किसे आखिए दूजा को नाही। श्लोक महला तीजा इस जग मह संती धन खटिया जिन्ना सतगुर मिलिया प्रभ आई सतगुर सच दृढ़ाया इस धन की कीमत कही ना जाय। इत धन पाया भुख लथी सुख वस्या मन आई जिन्ना को तुर लिखिया तिन्नी पाया आय। मनमुख जगत निर्धन है माया नो बिल लाय अन दिन फिरदा सदा रह भुख ना कदे जाय शांत ना कदे आवई नह सुख वसै मन आय। सदा चिंत चित वधा रह सहसा कदे ना जाय नानक बिन सतगुर मत पवी सतगुर नो मिलै ता शब्द कमाय। सदा सदा सुख मह रह सच्चे माहे समाय। महला तीजा जिने उपाई मेदनी सोई सार करे एको सिमरहु पाई रहो तिस बिन अवर ना कोई। खाना शब्द चंगियाईया जित खादै सदा तृप्त होए पैनन सिफत सुनाए है सदा सदा ओह ऊजला मैला कदे ना होए। सहजे सच धन खटिया थोड़ा कदे ना होए देही नो शब्द शिंगार है जित सदा सदा सुख होए। नानक गुरमुख बुझिए जिसनो आप बखाले सोए। पौड़ी अंतर जप तप संजमो गुर शब्दी जापै हर हर नाम त्याई है हौ मैं अज्ञान गुआपै। अंदर अमृत भरपूर है चाखियां साध जापै जिन चाखिया से निरपो भय से हर रस त्रापै हर कृपा तार पी आया फिर काल ना व्यापै। सलोक महला तीजा लोक अवगणा की बन्नै गंठड़ी गुण ना व्याजै कोई गुण का गाहक नानका विरला कोई होए। गुर प्रसादी गुण पाइन जिसनो नदर करे। महला तीजा गुण अवगुण समान है जे आप कीते करतार नानक हुक्म मन्ने सुख पाईए गुर शब्दी विचार। पौड़ी अंदर राजा तख्त है आपे करे नियाऊ गुर शब्दी दर जानिए अंदर महल असराव खरे परख खजाने पाइन खोटिया नाही थाऊ सब सचो सच वर्तदा सदा सच नियाऊ अमृत का रस आया
मन वसया नाहू सलोक महला पहला हौ मैं करी ता तू नाही तू हो है हौ नाही बूझो ज्ञानी बूझना ए अकथ कथा मन माहे बिन गुर तत न पाईए अलख वसै सब माहे सतगुर मिलै ता जानिए जां शब्द वसै मन माहे आप गया भ्रम पहु गया जन्म मरण दुख जाहे गुरमत अलख लखाईए उत्तम मत तराहे नानक सोहं हंसा जप जापहु त्रे भवन तिसै समाहे महला तीजा मन माणक जिन परखिया गुर शब्दी विचार से जन विरले जानिए है कल युग विच संसार आपै नो आप मिल रहिया हौ मैं दुबदा मार नानक नाम रते दुत्तर तरे भौजन बिकम संसार पौड़ी मनमुखे अंदर ना भालनी मुठे अहमते चारे कुंडा भव थके अंदर तिख तत्ते सिमरत सास्त ना सोधनी मनमुख विगुते बिन गुर किनै ना पायो हर नाम हर सत्ते तत् ज्ञान विचारिया हर जप हर गते सलोक महला दूजा आपे जाने करे आप आपे आने रास किसै अगै नानका।

पावड़ी मन लोचै हर मिलन कौ क्यों दर्शन पाइया मैं लख विड़ते साहेबा जे बिंद बुलाइया मैं चारे कुंडा पालिया तुद जेवड़ ना साइया मैं दस्यो हो मार्ग संत हो क्यों प्रभु मिलाइया मन अर्प्य हो हौ मैं तजो हो इत पंत जलाइया नित सेवे हो साहेब अपना सतसंग मलाइया सबे आसा पूरिया गुरमहल बुलाइया तुद जेवड़ होर ना सुजई मेरे मित्र गुसाइया दखणे महला पंजवा मूथिया तख्त प्री महिंजे पातशाह पाव मलावे कोल कमल जिवै बिगसाम दो महला पंजवा प्रिया संदड़ी भुख मूलावण थी वितरा जान मठाई एक बे पीड़े ना हुटे महला पंजवा ठगा नीहो मतरोड़ जान गंधर्बा नगरी सुख कटाऊ डुए इस पंधाणु घर कणी पौड़ी अकल कला न पाई है प्रभ अलख अलेखं खट दर्शन भ्रमते फिर है नह मिलिय भेखं वर्त करह चंद्रायणा से कितै ना लेखं वेद पढ़ह संपूर्णा तत सार ना पेखं तिलक कढ़ह इशनान कर अंतर का लेखं भेखी प्रभु ना लभई बिन सच्ची सिखं भूला मार्ग सो पवै जिस तुर मस्तक लेखं किन जन्म सवारिया अपना जिन गुर अखी देखं दखणे महला पंजवा सो निवाहू गड जो चलाऊ ना थीऐ कार कूड़ा भी छड संभल सच धनी महला पंजवा हब समाणी जोत ज्यो जल कटाऊ चंद्रमा प्रगट थी आयाप नानक मस्तक लिखिया महला पंजवा मुख सहावे नाम चौ आठ पहर गुण गाव नानक दरगाह मनी है मिली न थावे थाव पौड़ी बाहर भेख ना पाई है प्रभ अंतर जामी इक सहार जियो बाहरी सब फिरै निकामी मन रता कटंब स्यों नित गर्भ फिरामी फिर है गमानी जग मह क्या गर्भ है दामी चलदिया नाल ना चलई खिन जाए बिलामी विचर दे फिर है संसार मह हर जी हो कामी कर्म खुला गुर पाया हर मिलिया स्वामी जो जन हर का सेव को हर तिस की कामी दखणे महला पंजवा मुखो अलाए हब मरण पछाणन दो कोई नानक तिन्ना खाक जिन्ना यकीना हिक सियो महला पंजवा जान वसंदो मांझ पछाणु को हिकड़ो तैं तन पड़दा नाही नानक जय गुर भेटिया महला पंजवा मतड़ी कांडक आह पाव तवंदो पीवसा मूह तन प्रेम अथाह पसन कु सच्चा धनी पौड़ी निरपो नाम वसारिया नाल माया रचा आवै जाए पवाई है बहु जोनी नचा बचन करे तै खिसक जाए बोले सब कच्चा अंदर हो थोथा कूड़े यार कूड़ी सब खचा वैर करे निरवैर नाल झूठे लालचा मारिया सच्चै पातशाह वेख तुर कर मचा जम दूती है हेरिया दुख ही मह पचा हुआ तपावस धर्म का नानक दर सच्चा दखणे महला पंजवा परभाते प्रभ नाम जप गुर के चरण ते आए जन्म मरण मले उतरै सच्चे के गुण गाए महला पंजवा देह अंधारी अंध सुन्नी नाम विहूनिया नानक सफल जन्म जय कट बुट्ठा सच तनी महला पंजवा लोइन लोई डिठ प्यास ना बुझै मूह घणी नानक से अखणिया बयान जिन्नी दसंदो मापिरी पौड़ी जिन जन गुरमुख सेवया
तिन सब सुख पाई ओह आप तरिया कतंब सियो सब जगत तराई ओ न हर नामा धन संचया सब तिखा बुझाई ओन छड़े लालच दुनी के अंतर लिव लाई ओस सदा सदा कर आनंद है हर सखा सहाई ओन वैरी मित्र सम कीतिया सब नाल सुखाई होआ ओही अल जग मह गुर ज्ञान जपाई पूर्व लिखिया पाया हर स्यों बन आई दखणे महला पंजवा सच सुहावा कांडी है कूड़ै कूड़ी सोए नानक विरले जानी है जिन सच पल्लै होए महला पंजवा सज्जन मुख अनूप अठे पैर निहाल सां सुतड़ी सो सहो डिठ तैं सुपने हौ खनिए महला पंजवा सज्जन सच परख मुख अलावण थोथरा मन मजाहू लख तुदहो दूर ना सो पिरी पावड़ी तरत आकाश पताल है चंद सूर बिनासी बादशाह सहा उमराव खान ताहे डेरे जासी रंग तुंग गरीब मस्त सब लोक सदासी काजी सेख मसाए का सबे उठ जासी पीर पै कांबर औलिए को थिर ना रहासी रोजा बांग नवाज कतेब बिन बुझे सब जासी लख चौरासी मेदनी सब आवै जासी निश्चल सच खुदाए एक खुदाए बंदा अवनासी दखणे महला पंजवा डिठी हब टंडोल हिक सबाज ना कोई आओ सज्जन तू मुख लग मेरा तन मन ठंडा होए महला पंजवा आशक आसा बारा मूह मन वड्डी आस आस निरासा हिक तू हौ बल बल बल गई आस महला पंजवा विछोड़ा सुने दुख बिन डिठे मरियोद बाज प्यारे अपने बिरही ना तिरोद पौड़ी तट तीरथ देव देवालिया केदार मथुरा कांसी कोट ते तीसा देवते सन इंद्रै जासी सिमरत शास्त्र वेद चार खट दर्स समासी पोथी पंडित गीत कवित कवते पी जासी जति सती सन्यासिया सब काल है वासी मुन जोगी दिगंबरा जमै सन जासी जो दीसै सो बिनसना सब बिनस बनासी फिर पार ब्रह्म परमेश्वरो सेवक थिर होसी सलोक दखणे महला पंजवा सह नंगे नह नंग भुखे लख ना भुखिया दुखे कोड़ ना दुख नानक प्री पिखंदो शुभ दिष्ट महला पंजवा सुख समूहा भोग भूम सबाई को तनी नानक हब्बो रोग मृतक नाम विहूणिया महला पंजवा हिक सकून तू आहे पाशाणु पी हिक कर नानक आसड़ी निबाहे मनुख परथाई लजीवंदो पौड़ी निश्चल एक नारायण हर अगम अगादा निश्चल नाम नान है जिस सिमरत हर लादा निश्चल कीर्तन गुण गोबिंद गुरमुख गावादा सच धर्म तप निश्चलो दिन रहन अरादा दया धर्म तप निश्चलो जिस कर्म लखादा निश्चल मस्तक लेख लिखिया सो टलै ना टलादा निश्चल संगत साध जन बचन निश्चल गुर साधा जिनको पूर्व लिखिया तिन सदा सदा आराधा सलोक दखणे महला पंजवा जोड़ बंदे आप सो तराए किनखे तारे दड़ो पी तार नानक पिर स्यों रत्या महला पंजवा जिथै कोई कथन नाऊ सुनंदो मां पिरे मूह जलाऊ तत् नानक प्री पसंदो हरियो थियो स महला पंजवा मेरी मेरी क्या करह पुत्र कलत्र स्नेह
नानक नाम विहूणिया निमुण आंदी देह पौड़ी नैनी देखो गुर दर्शनो गुर चरणी मत्था पैरी मार्ग गुर चलदा पखा फेरी हत्था अकाल मूर्त हृदय त्याएंदा दिन रहन जपंथा मैं छड़िया सगल अपायणु प्रवासै गुर समरथा गुर बख्शिया नाम निधान सबो दुख लथा भुग हो पुंच हो भाई हो पल्ले नाम अगथा नाम दान इशनान दिड़ सदा करहु गुर कथा सहज भया प्रभु पाया जम का पहो लथा सलोक डखने महला पंजवा लगड़िया पिरियन पेखंदियां ना तिपियां हब मजाहू सो तनी ब्याह ना डिठो कोई महला पंजवा कथनियां संतहां ते सुखाऊ पंदियां नानक लदनियां तिन्हा जिन्ना भाग मथाड़े महला पंजवा डूंगर जला थला भूम बना फल कंदरा पाताला आकाश पूर्ण हब घटा नानक पेख जियो इकत सूत परोतियां पौड़ी हर जी माता हर जी पिता हर जी ओ प्रतपालक हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक सहजे सहज खलाएंदा नहीं करदा आलक औगण को ना चितारदा गल सीती लायक मुह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक ज्ञान रास नाम धन सौंपे उन इस सौदे लायक सांझी गुरु नाल बहालिया सर्ब सुख पायक मैं नालू कदे ना बिछड़ै हर पिता सबना गल्ला लायक सलोक डखने महला पंजवा नानक कच्चड़िया स्यो तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्या ओए जीवंदे विछड़ै ओए मोया ना जाही छोड़ महला पंजवा नानक बिजलिया चमकन कुरन घटा अतकालिया बरसन मेघ अपार नानक संगम पिरी सोहंदिया महला पंजवा जल फल नीर भरे शीतल पवन चलार दे सेजनिया सोएन हीरे लाल जड़ंदिया सुपार कपड़ भोग नानक पिरे विहूणी तत्तियां पौड़ी कारण करता जो किया सोई है करना जे सौ तावह प्राणिया पावह तुर लहना बिन कर्मा किशु ना लभई जे फिर है सब धरना गुर मिल पौ गोविंद का भय डर दूर करना भय ते बैराग उपजै हर खोजत फिरना खोजत खोजत सहज उपजया फिर जन्म ना मरना हे आए कमाए ते आया पाया साध सरना बोहित नानक देव गुर जिस हर चढ़ाए तिस भौजल तरना सलोक महला पंजवां।

प्रसाद अनभव किनै ना देखिया बैरागी अड़े बिन पै अनभव होए बना हम्बे सहो हदूर देखै ता भव पवै बैरागी अड़े हुक्मै बूझै ता निरपो होए बना हम्बे हर पाखंड ना कीजई बैरागी अड़े पाखंड रत्ता सब

कहो कबीर एक बेनती बराजी अड़े, मोको भौजल पार उतारवना हम्बे, राजन कौन तमारे आवे, ऐसो भाव बिदर को देखियो, ओहो गरीब मोहे पावे रहाओ, हस्ती देख परम ते पूला, श्री भगवान ना जानिया, तुमरो दूध बिदर को पानो, अमृत कर मैं मानिया, खीर समान साग मैं पाया, गुण गावत रहन बेहानी, कबीर को ठाकुर आनंद बनोदी, जात ना काहू की मानी। श्लोक कबीर गगन दमामा बाजियो, परियो निशान काओ, खेत जो मांडियो सूरमा, अब जूजन को दाव, सूरा सो पहचान।

मूर्ख मुग्ध ग्वार राम नाम जान्यो नहीं कैसे उतरस पार राग मारू बाणी जय देव जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद चंद सत भेदया नाद सत पूरिया सूर सत खोड़ सा दत किया अबाल बाल तोड़िया अचल चल थपिया अकड़ घड़िया तहां अपियो पिया मन आद गुण आद वखाणिया तेरी दुबदा दृष्ट समानिया रहाओ अर्ध को अर्धया सर्द को सर्दया सलल को सलल सम्मान आया बदत जय देव को रम्या ब्रह्म निर्वाण लिवलीन पाया कबीर मारू राम सिंह।

राग मारू बाणी रविदास जीओ की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा, माता शतर तरै रहाओ। जाकी शोत जगत को लागे, ता पर तुही तरै, नीचे है ऊंच करै मेरा गोविंद, काहू ते ना डरै। नाम देव कबीर तलोचन सद

सागर सुर तर चिंता मन काम तेन बस जा कीरी चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध नव निध कर तल कै हर हर हर ना जपस रसना अवर सब छाड बचन रचना रहाव नाना ख्यान प्राण वेद विद चौतीस अक्षर माही व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सर नाही सहज समाध अपाद रहत होए बड़े भाग लिव लागी कह रविदास उदास दास मत जन्म मरन पै भागी।

पुरब कमाया, सिर सिर सुख सहमा, देह सो तू भला, हर रचना तेरी क्या गत मेरी, हर बिन घड़ी ना जीवा, प्रिय बाज दहेली कोए ना बेली, गुरमुख अमृत पीवा, रचना राच रहे निरंकारी, प्रभ मन कर्म सुकर्मा, नानक पंथ निहाले सा धन, तू सुन आत्म रामा, बाबीहा प्रियो बोले को किल बाणिया, सा तन सब रस चोले अंक समाणिया, हर अंक समाणी जा प्रभ पाणी, सा सुहागण नारी, नव कर थाप महल कर ऊंचो, निज कर वास मरारी, सब तेरी तू मेरा प्रीतम, निसबासुर रंग रावे, नानक प्रियो प्रियो चवे बबीहा, कोकिल शब्द सुहावे, तू सुन हर रस भिन्ने प्रीतम अपने, मन तन रवतर वन्ने, घड़ी ना बिसरे, क्यों घड़ी बिसारी हौ बलिहारी, हौ जीवा गुणगाई, ना कोई मेरा हौ किस फेरा, हर बिन रहन ना जाए, ओट गही हर चरण निवासी, भये पवित्र शरीरा, नानक दृष्ट धीरग सुख पावे, गुर शब्दी मन तीरा, बरसै अमृत धार बूंद सुहावनी, साजन मिले सहज सुभाए, हर सिओ प्रीत बणी, हर मंदर आवै जा प्रभ पावै, तन उभी गुण सारी, घर घर कंत रवै सुहागण, हौ क्यों कंत वसारी, उन्नव घन छाए बरस सुपाए, मन तन प्रेम सुखावै, नानक वरसै अमृत बाणी, कर कृपा कर आवै, चेत बसंत भला भवर सुहावड़ी, बन फूले मंज भार, मैं फिर घर बहुड़ै, फिर घर नहीं आवै, तन क्यों सुख पावै, बिरह विरोध तन सीजै, कोकिल अंब सुहावी बोलै, क्यों दुख अंक सहीजै, पवर पवंता फूली डाली, क्यों जीवा मर माए, नानक चेत सहज सुख पावै, जे हर वार कर तन पाए, वैसाख भला साखा वीस करी।

देख दिखावे ढोलू, दूर ना जाना अंतर माना, हर का महल पछाना, नानक वै साखी प्रभ पावे, सुरत शब्द मन माना, माह जेठ भला प्रीतम क्यों बिसरे, थल तप है सर भार, सा तन बिनो करे, तन बिनो करेंदी गुण सारेंदी, गुण सारी प्रभ पहावा, साचे महल रह बैरागी, आवन देहे ता आवा, ने माणी ने ताणी, हर बिन क्यों पावे सुख महली, नानक जेठ जाने तिस जैसी, कर्म मिले गुण गहली, असाड़ पला सूरज गगन तपे, धरती दुख सह सुख है अगन पख है, अगन रस सुख है मरिए दुख है, पी सो किरत नहारे, रथ फिरे छाया तन ताके, तीद लवे मंज बारी, अवगण बांध चली दुख आगे, सुख किस साच संभाले, नानक जिसनो एहो मन दिया, मरण जीवन प्रभ नाले, सावन सरस मना, कण वरस है रूते आई, मैं मन तन सहो पावे, फिर परदेस सिधाई, फिर घर नहीं आवे, मरिए हावे, दामन चमक डराई, सेज अकेली खरी दोहेली, मरन पया दुख माए, हर बिन नींद भूख कहो कैसी, कापड़ तन ना सखावे, नानक सा सुहागन कंती, फिर कै अंक सुमावे, पादो परम पुली, पर जोबन पछताणी, जल थल नीर भरे, बरस रुते रंग माणी, बरसै निसकाली क्यों सुख बाली, दादर मोर लवंते, प्रियो प्रियो चवे बबीहा बोले, पोयंगम फिर संते, मच्छर डंग शायर भर सपर, बिन हर क्यों सुख पाईए, नानक पूछ चलो गुरे अपनी, जह प्रभु तह ही जाइए, असन आओ पिरा सातन चूर मुई, ता मिलिए प्रभ मेले, दूजे पाए खुई, झूठ बिगुती ता फिर मुती, कुकाहा कहा से फुले, अगै काम पिछे रुत जाडा, देख चलत मन डोले, दह दिस साख हरी हरियावल, सहज पक्कै सो मीठा, नानक असुन मिलो प्यारे, सतगुर पए बसीठा, कत्तक किरत पया जो प्रभ पाया, दीपक सहज बलै तत जलाया, दीपक रस तेलो तन पिर मेलो, तन अमा है सरसी, अवगुण मारी मरै ना सीजै, गुण मारी ता मरसी, नाम भगत दे निज कर बैठे, अजहो तनाड़ी आसा, नानक मिल हो कपट दर खुल हो, एक घड़ी खट मासा, मगर माहो भला, हर गुण अंक समावे, गुणवंती गुण रवे, मैं फिर निश्चल पावे, निश्चल चतुर सुजान बधाता, चंचल जगत सवाया, ज्ञान ध्यान गुण अंक समाणे, प्रभ पाणे ता पाया, गीत नाद कवित कवे सुन, राम नाम दुख भागै, नानक सा तन नाह प्यारी, अब भगती फिर आगै, पोख तखार पड़ै, वन तृण रस सुख है, आवत की नाही, मन तन वसह मुखे, मन तन रव रहे आ जग जीवन, गुर शब्दी रंग माणी, अंडज जेरज सेतज उत्पुज, कट कट जोत समाणी, दर्शन देहो दया पत दाते, गत पावो मत देहो, नानक रंग रवै रस रसिया, हर सिओ प्रीत स्नेहो, माग पनीत पई, तीरथ अंतर जानिया, साजन सहज मिले, गुण गह अंक समानिया, प्रीतम गुण अंके सुन प्रभ बंके, तुद पावा सर नावा, गंग जमन तह बेणी संगम, सात समुंद समावा,
पुन दान पूजा परमेश्वर जुग जुग एको जाता नानक माघ महारास हर जप अठ सठ तीरथ नाता फल गुण मन रहसी प्रेम सुभाया अन दिन रहस भया आप गुआया मन मोह चुकाया जा किस फाया कर कृपा कर आऊ बहुते वेस करी पिर बाजू महली लहा ना थाऊ हार डोर रस पाट पटंबर पिर लोड़ी सिंगारी नानक मेल लई गुर अपने घर वर पाया नारी दे दस महारुति थिती वार भले घड़ी मूर्त पल साचे आए सहज मिले प्रभ मिले प्यारे कारज सारे करता सब बिद जाने जिन सिंगारी तिसह प्यारी मेल भया रंग माने कर सेज सुहावी जा फिर रावी गुरमुख मस्तक भागो नानक ऐन सरावै प्रीतम हर वार फिर सुहागो। तुखारी महला पहला पहले पहरे नैन सलो नड़िए।

नानक मूर्ख कबह ना चेतै, क्या सूझै रैन अंधेरिया, दूजा पहर भया, जाग अचेती राम, वखर राख मुइये, खाजै खेती राम, राखो खेती हर गुरहेती, जागत चोर ना लागै, जम मग ना जावहु ना दुख पावहु, जम का डर पहु भागै, राव सस दीपक गुरमत द्वारै, मन साचा मुख त्यावै, नानक मुख

चूकी अभमानी राम अन दिन भोर भया साच समानी राम साच समानी गुरमुख मन भानी गुरमुख साबत जागे साच नाम अमृत गुर दिया हर चरणी लिव लागे प्रगति जोत जोत मह जाता मनमुख परम पलानी नानक भोर भया मन मानिया।

ते मन मानिया जिन जल थल त्रे भवन घट घट थापिया सो प्रभ गुरमुख जानिया करन कारण समरथ अपारा त्रे विद मेट समाई नानक अवगुण गुण।

घर जाइए साची सच मत तेरी साजन देश वदेसियड़े सनेहड़े देंदी सार संभाले तिन सजना मुंद नैन परेंदी मुंद नैन परेंदी गुण सारेंदी क्यों प्रभ मिला प्यारी मार्ग पंथ ना जानो विखड़ा क्यों पाई है पिर पारे सतगुर शब्दी मिले विशुन्नी तन मन आगे राखे नानक अमृत बिरख महारस फलिया मिल प्रीतम रस चाखे महल बुलाएड़िए बिलम ना कीजे अनदिन रतड़िए सहज मलीजे सुख सहज मलीजे रूस ना कीजे गर्भ निवार समाणी साचे राती मिले मलाई मनमुख आवन जानी जब नाची तब घूंघट कैसा मटकी फोड़।

रंगीले हम लालन के लाले गुर अलख लखाया हवर ना दूजा पाले गुर अलख लखाया जा तिस पाया जा प्रभ कृपा धारी जग जीवन दाता पुरख बदाता सहज मिले बनवारी नदर करह तू तार है तरिय सच देव हो दीन दयाला प्रणवत नानक दासन दासा तू सर्व जिया प्रतपाला भरपुर धार रहे अत प्यारे शब्दे रव रहया गुर रूप मरारे त्रे भवन धारी

मूल नरारी नानक ज्योति ज्योत समाणी जा मिलिया अत प्यारी सच कर खोज लहे साचा गुर थानो मनमुख नह पाईए गुरमुख ज्ञानो देवै सच दानो सो परवानो सद दाता वड दाना

साच्य राजा गुरमुख तरिय तारी तुखारी महला पहला ए मन मेरिया तू समझ अचेत अणिया राम ए मन मेरिया छड अवगण गुणी समाणिया राम बहु साद लुभाने किरत कमाणी विछड़िया नहीं मेला क्यों दुत्तर तरिय जम डर मरिय जम का पंथ दहेला मन राम नहीं जाता सांझ पर भाता अब कट रुदा क्या करी बंधन बांधे।

राम गुण गाए राम रसाए रसीय है गुर ज्ञान अंजन सारे त्रैलोक दीपक शब्द चानन पंच

सुरत लंघावे मिल साध संगत करह रलिया फिर ना पछोतावे कर दया दान दयाल साचा हर नाम संगत पावो नानक पयम पै सुनो प्रीतम गुर शब्द मन समझावो तुखारी।

राम जब लग दर्श ना होए क्यों अमृत पीवी है राम क्यों अमृत पीवी है हर बिर जीवी है तिस बिन रहन ना जाए अन दिन प्रियो प्रियो करे दिन राती फिर बिन प्यास ना जाए अपनी कृपा करो हर प्यारी हर हर नाम सद सारिया गुर कै शब्द मिलिया मैं प्रीतम हों सतगुर विट हों।

अन दिन गुरु गोपाल त्याई, हम सतगुरु बिटहु कुमाए, हम पाथर गुर नाव, बिक भवजल तारिय राम, गुरुदेव हो शब्द सुपाए।

अनेक जन्म पाप कर भरमी हुण तौ शरणागत आई दया करहु रख ले वो हर जियो हम लाग है सतगुर पाए गुर पारस हम लोह मिल कंचन होया राम ज्योति ज्योत मलाई काया गढ़ सोहया राम काया गढ़ सोहया मेरे प्रभ मोहया क्यों सास ग्रास वसारी है अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी हों सतगुर कै बलिहारी है सतगुर आगे सीस भेट देउ जे सतगुर साचे पावे आपे दया करहु प्रभ दाती नानक अंक समावे तुखारी महला चौथा हर हर अगम अगाध अपरंपर अपर परा जो तुम प्यावे जगदीश ते जन पौ बिखम तरा बिखम पौ तिन तरिया सुहिला जिन हर हर नाम त्याया गुरवाक सतगुर जो पाए चले तिन हर हर आप मलाया ज्योति ज्योत मिल ज्योत समाणी हर कृपा कर धरनी तरा हर हर अगम अगाध अपरंपर अपर परा तुम स्वामी अगम अथाह तू घट घट पूर रहया तू अलख अपेहो अगम गुर सतगुर बचन लहया धन धन ते जन पुरख पूरे जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे विवेक बुद्ध विचार गुरमुख गुर शब्द खिन खिन हर नित चवे जा बह गुरमुख हर नाम बोलह जा खड़े गुरमुख हर हर कहया तुम स्वामी अगम अथाह तू घट घट पूर रहया सेवक जन सेवह ते प्रवान जिन सेविया गुरमत हरे तिनके कोट सब पाप खिन पर हर हर दूर करे तिनके पाप दुख सब बिनसे जिन मन चित एक अराध्या तिनका जन्म सफलियो सब किया करतै जिन गुरबचनी सच भाखिया ते धन जन वड पुरख पूरे जो गुरमत हर जप पौ बिखम तरे सेवक जन सेवह ते प्रवान जिन सेविया गुरमत हरे तू अंतर जामी हरे आप ज्यो तू चलावह प्यारे हो तिवै चला हमरे हाथ किश नाही जा तू मेलह ता हों आए मिला जिनको तू हर मेलह स्वामी सब तिनका लेखा छुटक गया तिनकी गणत ना करे ओहो को पाई जो गुरबचनी हर मेल लया नानक दयाल हुआ तनी ऊपर जिन गुर का पाणा मन्या भला तू अंतर जामी हर आप ज्यो तू चला वह प्यारे हो तिवै चलना तुखारी महला चौथा तू जग जीवन जगदीश सब करता श्रिष्ट नाथ तिन तू त्याया मेरा राम जिन कै तुर लेख माथ जिन को तुर हर लिखिया स्वामी तिन हर हर नाम अराध्या तिनके पाप एक निमख सब लाथे जिन गुरबचनी हर जापया तन तन ते जन जिन हर नाम जपया तिन देखे हो भया सनाथ तू जग जीवन जगदीश सब करता श्रिष्ट नाथ तू जल थल मही अल भरपूर सब ऊपर साच धनी जिन जपया हर मन चीत हर जप जप मुक्त घणी जिन जपया हर ते मुक्त पराणी तिनके उजल मुख हर द्वार ओए हल्त पल्त जन भये सोहेले हर राख लिए रखन हार हर संत संगत जन सुनो पाई गुरमुख हर सेवा सफल बनी तू जल थल मही अल भरपूर सब ऊपर साच धनी तू थान थरंतर हर एको एक रविया वण त्रिण त्रे भवन सब श्रेष्ठ मुख हर हर नाम चवया सब चवह हर हर नाम करते असंख अगणत हर त्यावे सो धन तन हर संत साधु जो हर प्रभ करते पावे सो सफल दर्शन देहो करते जिस हर हृदय नाम सद चवया तू थान तनंतर हर एक हर एको एक रवया।
तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देव है मेरे स्वामी तिस मिल है जिसका मस्तक गुर हाथ तिस हृदय हर गुण टिक है हर गुण हृदय टिक है तिस कह जिस अंतर भव भावनी होई बिन भय किने ना प्रेम पाया बिन भय पार ना उतरिया कोई भव भावो प्रीत नानक किसह लागे जिस तू अपनी कृपा करहे तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देव है मेरे स्वामी तिस मिल है तुखारी महला चौथा नावण पुरब अपीच गुर सतगुर दर्श भया दुर्मत मैल हरी अज्ञान अंधेर गया गुर दर्श पाया अज्ञान गवाया अंतर ज्योत परगासी जन्म मरण दुख खिन मह बिनसी हर पाया प्रभ अवनासी हर आप करत पुरब किया सतगुरु कुल खेत नावण गया नावण पुरब अपीच गुर सतगुर दर्श भया मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा अन दिन भगत बणी खिन खिन निमुख विखा हर हर भगत बणी प्रभ केरी सब लोक वेखण आया जिन दर्श सतगुर गुरु किया तिने आप हर मेलाया तीर्थ उदम सतगुरु किया सब लोक उदरन अर्था मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व हुआ खबर भई संसार आए त्रै लोआ देखने आए तीन लोक सुर नर मुन जन सब आया जिन परसया गुर सतगुरु पूरा तिनके किल विख नास गुआया जोगी दिगंबर सन्यासी खट दर्शन कर गए गोष्ट ढोआ प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पुरब हुआ दुतिया जमन गए गुर हर हर जपन किया जगाती मिले दे भेट गुर पिछे लंघाए दिया सब छुट्टी सतगुरु पिछे जिन हर हर नाम त्याया गुर बचन मार्ग जो पंथ चाले तिन जम जगाती नेड़ ना आया सब गुरु गुरु जगत बोले गुर कै नाए लै सब छुटक गया दुतिया जमन गए गुर हर हर जपन किया तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत भया सब मोही देख दर्शन गुर संत किने आड़ ना दाम लया आड़ दाम किस पया ना बोलक जगातिया मोहन मुंदन पई भाई हम करहें क्या किस पास मांग है सब

तह कौतक चलत भया, मिले आए नगर महाजना। गुर सतगुरु उठ गही, गुर सतगुरु गुर गोविंद पुछ, सिमरत कीता सही, सिमरत शास्त्र सबनी सही कीता। सुख प्रहलाद श्री राम कर गुर गोविंद त्याया, देही नगर कोट पंच चोर बटवारी, तिनका थाऊ थेहो गुआया। कीर्तन पुराण नित पुन हो वह, गुर बचन नानक हर भगत लही। मिल आए नगर महाजना, गुर सतगुर ओट गही। तुखारी संत महला पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कोल कमाई लालना, गुर मन दीना, सुन शब्द तुम्हारा मेरा मन पीना। एहो मन पीना ज्यों जल मीना, लागा रंग मरारा, कीमत कही ना जाई ठाकुर।

सुन प्रभ मेरे निमक दृष्ट पेख जीवा अमृत नाम सुनिजै तेरा कृपा करह ता पीवा आस प्यासी पिरकै ताई ज्यों

कहो नानक जीअड़ा बलिहारी, जियो पिंड तौ दिता निर्गुण राख लिया, संतन का सदका सतगुर ढाक लिया, मोहे पापी पड़दा ढाकन हारे प्रभु हमारे, जी प्राण सुख दाते अवनाशी अवगत स्वामी, पूर्ण पुरख बिधाते उस्तत कहन न जाए तुम्हारी, कौन कह तू कद का नानक दास तां कह बलिहारी, मिले नाम हर निमका केदारा महला चौथा कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन राम नाम नित गावी, अगम अगोचर ना जाई हर लखिया, गुरपुरा मिले लखावी रे रहाओ, जिस आपे कृपा करे मेरा स्वामी, तिस जन को हर लिव लावी रे, सब को भगत करे हर केरी, हर पावै सो थाए पावी रे, हर हर नाम अमो

देख गऊ सुख माने क्यों नानक हर गल लावी रे। केदारा महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन हर हर गुण कहो रे। सतगुरु के चरण धोए धोए पूजो इन बिद मेरा हर प्रभ लहो रे। रहाओ काम क्रोध लोभ मोह अभिमान बिखै रस इन संगत ते तू रहो रे। मिल सत संगत की जय हर गोष्ट साधु।

अंतर का अवमान जोर तू किस किस किस जानता, ये दूर करहो आपन गहोरे, जन नानक को हर दयाल हो स्वामी।

माई संत संग जागी प्रिय रंग देखै जपती नाम निधानी रहाउ दर्शन प्यास लोचन तार लागी बिसरी त्यास बडानी अव गुर पायो है सहज सुखदायक दर्शन पेखत मन लपटानी देखत मोदर रहस मन उपजेउ नानक प्रिय अमर।

दोखी एक मन अनाथ नाथ रात हो कृपाल रहाओ अनक जतन गवन करूं खट कर्म जुगत ध्यान धरूं अपाव सगल कर हारियो नह नह हुटह बिकराल शरण बंधन करना पति भाव हरन हर हर हर हर।

और रहाउ अधिक गर्त संसार सागर कर दया चारुह तूर संत संग हर चरण बोहित उदर तेले मोर गर्भ कुंट मह जिनह तारियो नहीं बिखै बन मह होर हर सकत सरन समरत नानक।

त्याग चलना सगल संपत काल सिर पर जान मितन मोह दुरंत आसा झूठ सर परमान सतपुरख अकाल मूरत हृदय धारो ध्यान नाम निधान लाभ नानक बस्त एह परवान केदारा महला पंजवा हर के नाम को आधार कल कलेश ना कश व्यापै संत संग व्यवहार रहाउ कर अनुग्रह आप राखियो नह उपज तो बेकार जिस प्राप्त हुए सिमरै तिस दहत नह संसार सुख मंगल अना

जीवन रूप बसार जीव है, तेहे कत जीवन होत रहाओ। खात पीत अनेक बिंजन, जैसे भार बाहक खोत। आठ पहर महाश्रम पाया, जैसे बिरख जंती जोत। ताज गोपाल जे आन लागे, से बहु

पूर रहया सर्वत्र में सो पुरख बधाता मार्ग प्रभ का हर किया संतन संग जाता संतन संग जाता पुरख बधाता घट घट नदर निहालिया जो सरनी आवे सर्ब सुख पावे तिल नहीं भन्ने घालिया हर गुण निद गाई।

पुरख बधाता हर प्रेम भगत जन बेदया सियान कत जाही मीन बशोहा ना सह जल बिन मर पाही हर बिन क्यों रही है दुख किन सही है चातरक बूंद प्यासिया कबरैन बिहावे चकवी सुख पावे सूरज किरण परगासिया हर दर्श मन लागा दिन सुस भागा अन दिन हर गुण गाही नानक दास कह बेनंती कत हर बिन प्राण टकाही सास बिना ज्यो देहुरी कत सोभा पावे दर्श बिहूना साध जन खिन टिकन ना आवे हर बिन जो रहना नरक सो सहना चरण कमल मन बेदया हर रसक बैरागी नाम लिव लागी कतोह ना जाए न खेदया हर स्यो जाए मिलना साध संग रहना सो सुख अंक ना मावे ओहो कृपाल नानक के स्वामी हर चरण है संग समावे खोजत खोजत प्रभ मिले हर करुणा धारी निर्गुण नीच अनाथ में नहीं दोख बिचारी नहीं दोख बिचारी पूर्ण सुख सारी पावन बिरद बखानिया भगत वशल सुन अंचलो गहया कट कट पूर समानिया सुख सागरो पाया सहज सुपाया जन्म मरण दुख हारी कर गह लीने नानक दास अपनी।

चौथे पद को जो नर चीन्है तिन ही परम पद पाया। तीर्थ वर्त नेम सुच संयम सदा रह निहकामा। तृष्णायर माया भ्रम चूका चितवत आत्म रामा। जेहे मंदर दीपक परगासिया अंधकार तह नासा। निरपो पूर रहे भ्रम भागा कह कबीर जन दासा। किन्ही बन जिया कांसी तांबा किन्ही लौंग सुपारी। संतो बन गया नाम गोबिंद का ऐसी खेप हमारी। हर के नाम के व्यापारी हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक छूट गई संसारी। रहाओ साचे लाए तो सच लागे साचे के व्यवहारी। साची बस्त के पार चलाए पहुंचे जाए भंडारी। आपे रतन जवाहर मानक आपे है पासारी। आपे दह दिस आप चलावे निश्चल है व्यापारी। मन कर बैल सुरत कर पेंडा ज्ञान गुण भर डारी। कहत कबीर सुनहो रे संत हो निभही खेप हमारी। री कलवार ग्वार मूड मत उल्टो पवन फरावो। मन मतवार मेर सर पाठी अमृत धार चुआवो। बोलो भैया राम की दोहाई पीवो संत सदा मत दुर्लभ। सहजे प्यास बुझाई रहाओ पै बिच पाओ पाए को बूझ। हर रस पावे पाई जेते घट अमृत सब ही मह। पावे तिसह प्याई नगरी एक नौ दरवाजे तावत बरज रहाई। त्रिकुटी छूटे दसवां दर खूले ता मन खीवा पाई।

बिन पानी चलत कत टेडे टेडे टेडे हस्त चरम बिस्टा के मुंडे दुर्गंध ही के बेटे रहाओ राम ना जप हो कमन भ्रम भूले तुम ते काल ना दूरे अनक जतन कर एहो तन राख हो रह अवस्था पूरे आपन किया कछु ना होवे क्या को करे प्राणी जा तिस भावे सतगुर भेटै एको नाम बखानी बलुआ के करुआ मह बसते फुलवत देह आया।

क्या कहिए किस कही ना जाए, जो किस अह सब तेरी रजाए, रहाओ जो किस करना सो तेरे पास।

मन समझै है गुण गाई, गुर ते मन मारिया शब्द विचारिया, ते विरले संसारा, नानक साहिब भरपुर लीना, सात शब्द निसता।

रूप रंग रहस नहीं साचा, क्यों छोड़े जम जालु प्राणी हर जप जन्म गयो। साच शब्द बिन कभू ना छूटस, बिरथा जन्म पयो रहाओ। तन मह काम क्रोध हों ममता, कठिन पीर अत भारी। गुरमुख राम जपो रस रसना, इन बिद तर तू तारी। बहरे करन अकल पई होशी, शब्द सहज नहीं बूझिया। जन्म पदार्थ मन मुख हारिया, बिन गुर अंध ना सूझिया। रह उदास आस नरासा, सहज ध्यान बैरागी। प्रणवत नानक गुरमुख छूटस, राम नाम लिव लागी। भैरों महला पहला, पूंडी चाल चरण कर खिसरे। तुचा देह कुमलानी, नेत्री धुंद करन पए बहरे। मन

आदिशु घट घट अंतर सर्ब निरंतर रव रहिया सच वेसु साच रते सच अमृत जिहवा मिथिया मैल न राई निर्मल नाम अमृत रस चाखिया शब्द रते पत पाई गुणी गुणी मिल लाहा पावस

निःफल मर भ्रम ना रहाउ। पुस्तक पाठ व्याकरण वखाणे, संध्या कर्म तिकाल करे, बिन गुर शब्द मुक्त कहां प्राणी। राम नाम बिन उर्ज मरे, दंडक मंडल सिखा सूत धोती, तीर्थ गमन अत भ्रमण करे। राम नाम बिन शांत ना आवे, जप हर हर नाम सो पार परे। जटा मुकट तन भस्म लगाई, वस्त्र छोड़ तन नग्न भया। राम नाम बिन तृप्त न आवे, किरत कै बांधे भीख भया। जेते जी जंत जल थल महियल, जतर कतर तू सर्ब जिया। गुर प्रसाद राख ले जन को, हर रस नानक झोल पिया। राग भैरो महला तीजा, चौप दे घर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जात का गर्भ ना करियो कोई। ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई, जात का गर्भ ना कर मूर्ख गवारा। इस गर्भ पे चल है बहुत बेकारा रहाउ। चारे वर्ण आख सब कोई, ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई। माटी एक सगल संसारा, बहु विद भांडे घड़े कुमारा। पंच तत् मिल देही का अकारा, घट वध को करे बीचारा। कहत नानक एहो जियो कर्म बंद होई, बिन सतगुर भेटे मुक्त ना होई। भैरो महला तीजा, जोगी गिरही पंडित भेख धारी। ए सूते अपने अहंकारी, माया मद माता रहया सोए। जागत रह ना मूसे कोई रहाउ। सो जागे जिस सतगुर मिले, पंच दूत ओह वसगत करे। सो जागे जो तत बीचारे, आप मरे अवरा नह मारे। सो जागे जो एको जाने, परकिरत छोड़े तत।

दुबदा मारे दुबदा मार ब्रह्म बिचारे। इस मन को कोई खोजो हो पाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। रहाओ मूल मोह कर करत जगत अपाया, ममता लाए भरम भुलाया। इस मन ते सब पिंड पराणा, मन कै विचार हुक्म बुझ समाणा। कर्म होवै गुर कृपा करै, एहो मन जागै इस मन की दुबदा मरै। मन का सुभाओ सदा बैरागी, सब मह वसै अतीत अनरागी।

आप उदरे सब कुल उदाहरण हार बिन नावे मन मुख जम पुर जाहे औखे हो वह चोटा खाहे आपे करता देवे सोए नानक नाम प्राप्त होए भैरू महला तीजा गोविंद प्रीत सनकादिक उधारे राम नाम शब्द बीचारे हर जियो अपनी कृपा तार गुरमुख नामे लगे प्यार रहाउ अंतर प्रीत भगत साची होए पूरे गुर मेलावा होए निज कर वसै सहज सुपाए गुरमुख नाम वसै मन आए आपे वेखै वेखणहार नानक नाम रखो उर धार भैरू महला तीजा कल युग मह राम नाम उर धार बिन नावे माथे पावे शार राम नाम दुलभ है भाई गुर प्रसाद वसै मन आई रहाउ राम नाम जन पालह सोए पूरे गुरते प्राप्त होए हर का पाणा मन है से जन परवान गुर कै शब्द नाम निशान सो सेव हो जो कल रहे आतार नानक गुरमुख नाम प्यार भैरू महला तीजा कल युग मह बहु कर्म कमाहे ना रुत ना कर्म थाए पाहे कल युग मह राम नाम है सार गुरमुख साचा लगे प्यार रहाउ तन मन खोज करे मह पाया गुरमुख राम नाम चित लाया ज्ञान अंजन सतगुर ते होए राम नाम रव रहया तेहो लोए कल युग मह हर जियो एक होर रुत ना काई नानक गुरमुख हिरदै राम नाम लेहो जमाई भैरों महला तीजा कर दूजा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद दुबदा मनमुख रोग व्यापे तृष्णा जलह अधकाई मर मर जमह ठौर ना पावह बिरथा जन्म गवाई मेरे प्रीतम कर कृपा देहो बुझाई औ मैं रोगी जगत उपाया बिन शब्द रोग ना जाई रहाउ सिमरत शास्त्र पढ़ मुन केते बिन शब्द सुरत ना पाई

हर का नाम निधानो पाया सुख वसिया मन आई। चौथी पदवी गुरमुख वरत है तिन निज घर वास्ता पाया। पूरे सतगुरु कृपा कीनी विचो आप गवाया। एक सकी सिरकार एक जिन ब्रह्मा विष्णु रुद्र उपाया। नानक निहचल साचा एको ना ओह मरे ना जाया। पैरू महला तीजा मनमुख दुबदा सदा है रोगी रोगी सगल संसारा। गुरमुख बूझे है रोग गवाव है गुर शब्दी विचारा। हर जियो सत संगत मेलाए नानक तिसनो दे वडियाई। जो राम नाम चित लाए रहाउ ममता काल सब रोग व्यापे। तिन जम की है सिरकारा गुरमुख प्राणी जम नेड़ ना आवै। जिन हर राखिया उर तारा जिन हर का नाम न गुरमुख जाता। से जग मह काहे आया गुर की सेवा कदे ना कीनी बिरथा जन्म गवाया। नानक से पूरे वडभागी सतगुर सेवा लाए। जो इच्छ सोई फल पावे गुरबाणी सुख पाए। भैरों महला तीजा दुख विच जम्मे दुख मरे दुख विच कार कमाए। गर्भ जोनी विच कदे ना निकले बिस्टा माहे समाए। त्रिग त्रिग मन मुख जन्म गवाया पूरे गुर की सेवना कीनी। हर का नाम ना पाया रहाउ गुर का शब्द सब रोग गवाए। जिसनो हर जियो लाए नामे नाम मिले वडियाई। जिसनो मन वसाए सतगुर भेटे तां फल पाए। सच करनी सुख सार से जन निर्मल जो हर लागे। हर नामे तरह प्यार तिनकी रेण मिले ता मस्तक लाई। जिन सतगुरु पूरा त्याया नानक तिनकी रेण पूरे भाग पाई है। जिन्नी राम नाम चित लाया भैरों महला तीजा। शब्द बीचारी सो जन साचा जिनकै हृदय साचा सोई। साची भगत करै दिन राती तां तन दुख ना होई। भगत भगत कह सब कोई बिन सतगुर सेवे भगत ना पाईए। पूरे भाग मिले प्रभ सोई रहाउ। मनमुख मूल गवाव है लाभ मांग है लाहा लाभ किड्डू होई। जम काल सदा है सिरि ऊपर दूजे पाए पत खोई। बाहले भेख पवै दिन राती हमे रोग ना जाई। पढ़ पढ़ लूजे है बाद बखान है मिल माया सुरत गवाई। सतगुर सेव है परम गत पाव है नाम मिले वडियाई। नानक नाम जिन्ना मन वसिया दर साचे पत पाई। भैरों महला तीजा मनमुख आसा नहीं उतरे दूजे भाए खुआई। उदर नै सान ना परिये कबहू तृष्णा अग्न पचाई। सदा आनंद राम रस राती हिरदय नाम दुबदा मन भागी। हर हर अमृत पी त्रिपताते रहाउ। आपे पार ब्रह्म सृष्ट जिन साजी सिर सिर तंदै लाए।

मन वसाई आप तरे सगले कुल तारी जिन्नी राम नाम लिवलाई मेरा प्रभ है गुण का दाता अवगुण शब्द जलाई जिन मन वसिया से जन सोहे हृदय नाम वसाई घर दर महल सतगुरु दिखाया रंग सोरलिया माण जो किश कह सो भला कर मान नानक नाम वखाण भैरों महला तीजा मनसा मन है समाए लै गुर शब्दी विचार गुर पूरे ते सो जी पवे फिर मरे ना वारो वार मन मेरे राम नाम आधार गुर प्रसाद परम पद पाया सब इच्छ पजामन हार रहाओ सब मह इको रव रहिया गुर बिन बूझ ना पाई गुरमुख प्रगट हुआ मेरा हर प्रभ अन दिन हर गुण गाई सुख दाता हर एक है होर थै सुख ना पाए सतगुर जिनी ना सेविया दाता से अंत गए पछताए सतगुर सेव सदा सुख पाया फिर दुख ना लागे ताए नानक हर भगत प्राप्त होई ज्योति ज्योत समाए भैरों महला तीजा बाज गुरु जगत बौराना भूला चोटा खाई मर मर जमे सदा दुख पाई डर की खबर ना पाई मेरे मन सदा रहो सतगुर की सरना हृदय हर नाम मीठा सद लागा गुर शब्दे भवजल तरना रहाउ पेख करे बहुत चित डोले अंतर काम क्रोध अहंकार अंतर तिसा भूख अत बहुती भौंकत फिरे दर बार गुर कै शब्द मरह फिर जीव है तिनको मुक्त द्वार अंतर शांत सदा सुख होवे हर राखिया उरतार ज्यों तिस भावे तिवें चलावे करना किछु ना जाई नानक गुरमुख शब्द संभाले राम नाम वडियाई भैरों महला तीजा हम मैं माया मोहे खोआया दुख खटे दुख खाए अंतर लोभ हलक दुख भारी बिन विवेक परमहाय मन मुख त्रिक जीवन संसार राम नाम सुपने नहीं चेतिया हर स्यों कदे न लागे प्यार रहाउ पशुआ कर्म करे नहीं बूझै

कुल उधारी, गुर कै शब्द हम मैं भिखमारी, नानक राम नाम संत निस्तारी, भैरू महला तीजा, आपे दैत लाए दिते संत जना को, आपे राखा सोई, जो तेरी सदा सरनाई, तिन मन दुख ना होई, जुग जुग भगता की रखदा आया, दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री तर्पण किसु ना जाने, शब्दे मेल मलाया रहाउ, अन दिन भगत करह दिन राती, दुबदा शब्दे खोई, सदा निर्मल है जो सच राते, सच वस्या मन सोई, मूर्ख दुबदा पढ़े मूल ना पछाण है, बिरथा जन्म गवाया, संत जना की निंदा करह, दुष्ट दैत चढ़ाया, प्रहलाद दुबदा ना पढ़े, हर नाम ना छोड़े, डरे ना किसे दा डराया।

नानक हर लाख नखी बजारिया अंधे दर की खबर ना पाई। राग भैरो महला चौथा चौपदी घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर जन संत कर कृपा पग लाइन गुर शब्दी हर भज सुत समायन मेरे मन हर भज नाम नारायण हर हर कृपा करे सुख दाता गुरमुख भवजल हर नाम तरायन रहाउ संगत साध मेल हर गायन गुरमति ले राम रसायन गुर साधु अमृत ज्ञान सरनायन सब किलविख पाप गए गवायन तू आपे करता सृष्ट तरायन जन नानक मेल तेरा दास दसायन भैरो महला चौथा बोल हर नाम सफल सा करी गुर उपदेश सब दुख पर हरी मेरे मन हर पज नाम नरहरी कर कृपा मेलो गुर पूरा सत संगत संग सिंध भौ तरी रहाउ जगजीवन त्याए मन हर सिमरी कोट कटंतर तेरे पाप पर हरी सत संगत साध धूर मुख परी इस नानकियो अठसठ सुरसरी हम मूर

फेर चलै तुद नाली, हर हर नाम जपो बनवाली, कर कृपा मेलो सत संगत, टूट गई माया जम जाली, रहाउ गुरमुख सेवा काल जिन काली, तिस घड़ियै शब्द सच्ची टकसाली, हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली, विच काया नगर लद्दा हर पाली, हम बारक हर पिता।

जाप। हौ तुद सलाही तू मेरा हर प्रभ बाप रहाऊ, जह जह देखा तह हर प्रभ सोई, सब तेरे वस दूजा अवर ना कोई, जिस कौ तुम हर राखिया पावे तिसकै नेड़ै कोई ना जावे, तू जल थल महियल सब तै भरपूर, जन नानक हर जप हाजरा हजूर, भैरों महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर का संत हर की हर मूरत, जिस हिरदय हर नाम मरार, मस्तक भाग होऐ जिस लिखिया, सो गुरमत हिरदय हर नाम सुमार, मधसूदन जपिया उरतार, देही नगर तस्कर पंच धातु, गुर शब्दी हर काढे मार रहाउ, जिनका हर सेती मन मानिया, तिन कारज हर आप सवार, तिन चूकी मोहताजी लोकन की, हर अंगीकार किया करतार, मता मसूरत तां किश कीजै, जे किश होवै हर बाहर, जो किश करे सोई भल होसी, हर त्यावहु अन दिन नाम मरार, हर जो किश करे सो आपे आपे, ओह पूछ ना किसै करे बीचार, नानक सो प्रभ सदा त्याई, जिन मेलिया सतगुर कृपा धार, भैरों महला चौथा ते साधु हर मेलो स्वामी, जिन जपिया गत होए हमारी, तिनका दर्स देख मन बिगसै, खिन खिन तिनको हों बलिहारी, हर हिरदय जप नाम मरारी, कृपा कृपा कर जगत पित स्वामी, हम दासन दास की जय पनेहारी रहाउ, तिन माते उत्तम तिन पाते उत्तम, जिन हिरदय वसिया बनवारी, तिनकी सेवा लाए हर स्वामी, तिन सिमरत गत होए हमारी, जिन ऐसा सतगुर साधना पाया, ते हर दरगाह काढे मारी, ते नर निंदक सोभ ना पावह, तिन नक काटे सिरजनहारी, हर आप बलावे आपे बोलै, हर आप निरंजन निरंकार निराहारी, हर जिस तू मिल है सो तुद मिलसी, जन नानक क्या एह जंत विचारी, भैरों महला चौथा, सत संगत साई हर तेरी, जित हर कीरत हर सुनने, जिन हर नाम सुनिया मन भीना, तिन हम सरेवह नित चरने, जग जीवन हर त्याए तरने, अनेक असंख नाम हर तेरे, ना जाई जेवायत गनने रहाउ, गुरसिक हर बोलो हर गावहु, ले गुरमत हर जपने, जो उपदेश सुने गुर केरा, सो जन पावे हर सुख कने, धन सो वंश धन सो पिता धन सो माता, जिन जन जने, जिन सास ग्रास त्याया मेरा हर हर, से साची दरगाह हर जन बने, हर हर अगम नाम हर तेरे, विच भगता हर धरनी, नानक जन पाया मत गुरमत, जप हर हर पार पवनी।

सोए अचिंता जाग अचिंता, जहां कहां प्रभ तू वर्तनता। कर सुख वसया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। भैरु महला पंजवां, वर्त ना रहो ना महरम दाना, तिस सेवी जो रखे निधाना। एक गुसाई अल्लोह मेरा, हिंदू तुर्क दुहान बेरा। रहाओ हज काबे जाओ ना तीर्थ पूजा, एको सेवी अवर ना दूजा। पूजा करो ना निवाज गुजारो, एक निरंकार ले हृदय नमस्कारो। ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड प्राण। कहो कबीर एहो किया वखाना, गुर पीर मिल खुद खसम पछाना। भैरू महला पंजवा, दस मिर्गी सहजे बंद आनी, पांच मिर्ग बेदे शिव की बानी। संत संग ले चढ़ियो शिकार, मृग पकड़े बिन घोर हथियार। रहाओ अखेर बिरत बाहर आयो ताए, अहेरा पायो कर कह गाए। मृग पकड़े कर आने हाट, चुख चुख ले गए बांडे बाट। एहो अहेरा कीनो दान, नानक कह कर केवल नाम। भैरू महला पंजवा, जे सौ लोच लोच खावाया, साकत हर हर चीत ना आया। संत जना की लेहो मते, साध संग पावो परम गते। रहाओ पाथर को बहु नीर पवाया, नह पीजे अधिक सुकाया। खट शास्त्र मूर्ख है सुनाया, जैसे दह दिस पवन चुलाया। बिन कण खलहान जैसे गाहन पाया, त्यों साकत ते को ना ब्रासाया। कित ही लागा जित को लाया, कहो नानक प्रभ बणत बढ़ाया। भैरू महला पंजवा, जियो प्राण जिन रतियो शरीर, जिन्ह अपाए तिस को पीर। गुर गोबिंद जी कै काम, हलत पलत जाकी सद शाम। रहाओ प्रभ आराधन निर्मल रीत, साध संग बिनसी विपरीत। मीत हीत धन नह पारना, धन

नारायण मद भाग हर प्रेम रसायन प्रभु हमारे शास्त्र सोण सुख सहज आनंद ग्रह पौन रहाउ रसना नाम करण सुन जीवे प्रभु सिमर सिमर अमर थिर थीवे जन्म जन्म के दुख निवारे अनहद शब्द बजे दरबारे कर कृपा प्रभ लिए मलाए नानक प्रभ शरणागत आए पैरों महला पंजवा कोट मनोरथ आवह हाथ जम मार्ग कै संगी पाक गंगा जल गुरु गोविंद नाम जो सिमरै तिसकी गत होवै।

नानक दास एहो किया बीचार, बिन हर नाम मिथ्या सब शार। भैरो महला पंजवां, लेप न लागो तिनका मूल, दुष्ट ब्राह्मण मूल।

सोभा पावे प्रभ कै द्वार, सर्व कल्याण चरण प्रभ सेवा, धूर बांछ सब सुर नर देवा, नानक पाया नाम निदान, हर जप जप उदरिया सगल जहान, भैरो महला पंजवा, अपने दास कहो कंठ लगावे, निंदक कहो अगन मह पावे, पापी ते राखे नारायण, पापी की गत कत हूं नाही, पापी पचिया आप कमाए रहाउ, दास राम जियो लागी प्रीत, निंदक की होई विपरीत, पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगटाया, दुखी अपना कीता पाया, आए न जाई रहया समाई, नानक दास हर की सरनाई, राग भैरो मोहल्ला पंजवा, चौपदी घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्री तर मोहन सगल उपावन, निरंकार सुखदाता, ऐसा प्रभ छोड़ करह अन सेवा, कमन बिख्या रस माता, रे मन मेरे तू गोविंद भाज, अवर उपाव सगल मैं देखे, जो चित भी है तित बिगरस काज रहाउ, ठाकुर छोड़ दासी को सिमरह, मनमुख अंध अज्ञान, हर की भगत करह तिन

अहम बुद्ध दुर्मत है मैली बिन गुर पव जल फेरा होम जग जप तप सब संयम तट तीर्थ नहीं पाया मिटिया आप पय सरनाई गुरमुख नानक जगत तराया पहरो महला पंजवा बन मह पेखियो तृण मह पेखियो ग्रह पेखियो उदासाई दंड धार जट धारै पेखियो।

आई तपी तपी सर मुन मह पेखियो नट नाटक निरताई चहो मह पेखियो खट मह पेखियो दस अस्ती सिमरताई सब मिल एको एक वखान है तौ किस्ते कहो दुराई अगह अगह बेअंत स्वामी नह कीम कीम कीमाई जन नानक तिन कह बल बल जाई जेह घट प्रगति आई भैरू महला पंजवा निकट बुझै सो बुरा क्यों करै बिक संचै नित डरता फिरै है निकते अर भेद ना पाया बिन सतगुर सब मोही माया।

परग्रह जाय दरबे रह मिथ्या कर खाय पैठ गौरी हर संग न जानिया बाज गुरु है परम पुलानिया निकट न जाने बोले कूड़ माया मोहि मूठा है मूड़ अंतर वस्तु संतर जाए बाज गुरु है परम पुलाय जिस मस्तक कर्म लिखिया लिलाट।

जिन सेविया निरपहो सुखदाता, तिन पहो दूर किया एक प्राता, जो तू करह सोई फुन होए, मारे न राखे दूजा कोई। क्या तू सोचे है मानस बाण, अंतर जामी पुरख सुजान, एक टेक एको आधार, सब किस जान है सिरजनहार, जिसे ऊपर नदर करे करतार, तिस जन के सब काज सुवार, तिसका राखा एको सोए, जन नानक अपड़ ना साके कोए। पहरों महला पंजवा, तव कड़िया जे हुवे बाहर, तव कड़िया जे विसरे नरहर, तव कड़िया जे दूजा भाई, क्या कड़िया जा रहया समाय, माया मोहे कड़े कड़ पचिया, बिन नामे प्रम प्रम प्रम खपिया रहाओ। तव कड़िया जे दूजा करता, तव कड़िया जे अन्याय को मरता, तव कड़िया जे किस जाने नाही, क्या कड़िया जा भरपूर समाही, तव कड़िया जे किस होए तिंगाने, तव कड़िया जे फूल रिजाने, गुर कहया जो हुए सब प्रभते, तब काड़ा छोड़ अचिंत हम सोते, प्रभ तू है ठाकुर सब को तेरा, ज्यो पावे त्यो करह निबेरा, द्वितीया नास्त इक रहया समाए, राखो पैज नानक सरनाई। पहरू महला पंजवा, बिन बाजे कैसो निर्तकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी, जील बिना कैसे बजै रबाब, नाम बिना बिरते सब काज, नाम बिना कहो को तरिया, बिन सतगुर कैसे पार परिया रहाओ, बिन जिहवा कहां को बकता।

कहा कोई पंडत बिन अमरे कैसे राज मंडत बिन बूझे कहा मन ठहराना नाम बिना सब जग बोराना बिन बैराग कहा बैरागी बिन हौ त्याग कहा को त्यागी बिन बस पंच कहा मन चूरे नाम बिना सद सद ही चूरे बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान बिन पेखे कहो कैसो ध्यान।

दृष्ट रोग पच मोए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा, जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी।

फिर जोनी परमै रोग बंद रहन रती ना पावै बिन सतगुर रोग कतह ना जावै पार ब्रह्म जिस कीनी दया बाहा पकड़ रोगों काड लया टूटे बंधन साध संग पाया कहो नानक गुर रोग मटाया भैरों महला पंजवां चीत आवै ता महा आनंद चीत आवै ता सब दुख भंज चीत आवै ता श्रद्धा पूरी चीत आवै ता कबह ना झूरी अंतर राम राय प्रगटे आए गुरपूरै दियो रंग लाए रहाउ चीत आवै ता सर्ब को राजा चीत आवै ता पूरे काजा चीत आवै ता रंग गुलाल चीत आवै ता सदा निहाल चीत आवै ता सद तनवंता चीत आवै ता सद निपरंता चीत आवै ता सब रंग माणे चीत आवै ता चूकी काणे चीत आवै ता सहज घर पाया चीत आवै ता सुन समाया चीत आवै सद कीर्तन करता मन मानिया नानक भगवंता पैरों महला पंजवां बाप हमारा सद चिरंजीवी भाई हमारे सद ही जीवी मीत हमारे सदा अविनाशी कुटुंब हमारा निज घरवासी हम सुख पाया।

हे अंते अपूछे राज हमारा सद ही निश्चल माल हमारा अखूट अबेचल शोभा मेरी सब जोगे अंतर बाज हमारी थान थनंतर कीरत हमारी कर कर होई भगत हमारी सबनी लोई पिता हमारे प्रगटे माज पिता पूत रल कीनी सांझ कहो नानक जो पिता पतीने पिता पूत एक रंग लीने भैरो महला पंजवां निर्वैर पुरख सतगुर प्रभदाते हम अपराधी तुम बख्शाते जिस पापी को मिले ना टोई शरण आवे ता निर्मल होई सुख पाया सतगुरु मनाए सब फल पाए गुरु त्याए रहाऊ पार ब्रह्म सतगुर आदेश मन तन तेरा सब तेरा देश चूका पड़दा ता नदरी आया खसम तू है सबना केराया तिस भाणा सूके काष्ट हरिया तिस भाणा ता थल सिर सरिया तिस भाणा ता सब फल पाए चिंत गई लग सतगुर पाए हराम खोर निर्गुण कौ तूठा मन तन सीतल मन अमृत बूठा पार ब्रह्म गुर भये दयाला नानक दास देख भये निहाला भैरो महला पंजवां सतगुर मेरा बेमोहताज सतगुर मेरे सच्चा साज सतगुर मेरा सब सका दाता सतगुर मेरा पुरख बधाता गुर जैसा नाही को देव जिस मस्तक भाग सो लागा सेव रहाउ सतगुर मेरा सर्ब प्रतपाल सतगुर मेरा मार जीवाल सतगुर मेरे की वडियाई प्रगट पई है सबनी थाई सतगुर मेरा तान नितान सतगुर मेरा कर दीवान सतगुर कह हो सद बल जाया प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया जिन गुर सेवया तिस पौ ना व्यापै जिन गुर सेवया तिस दुख ना संतापै नानक सोधे सिमरत बेद पार ब्रह्म गुर नाही भेद भैरो महला पंजवा नाम लैत मन प्रगट भया नाम लैत पाप तन ते गया नाम लैत सगल पुरबाया नाम लैत अठसठ मजनाया तीर्थ हमरा हर को नाम गुर उपदेसिया तत् ज्ञान रहाव नाम लैत दुख दूर पराना नाम लैत अत मूड सो ज्ञाना नाम लैत

दरगाह सुख पावे। नाम लैत प्रभ कहे साबास, नाम हमारी साची रास। गुर उपदेश कहियो इहो सार, हर कीरत मन नाम आधार। नानक उदरे नाम पुनः चार, अवर कर्म लोकह पतियार। भैरु महला पंजवा, नमस्कार ताको लख बार। इहो मन दीजै ताको वार, सिमरन ताकै मिटह संताप। होए आनंद न व्यापह ताप, ऐसो हीरा निर्मल नाम। जास जपत पूर्ण सब काम, रहाउ जाकी दृष्ट दुख डेरा तह। अमृत नाम शीतल मन गह, अनक भगत जाके चरण पुजारी। सगल मनोरथ पूरन हारी, खिन मै ऊणे सुपर भरिया। खिन मह सूके कीने हरिया, खिन महन थावे को दीनो थान। खिन महन माने को दीनो मान, सब मह एक रहया पर पूरा। सो जा पै जिस सत गुर पूरा। हर

मोहे दुहागने आप शिंगारी रूप रंग दे नाम सवारी मिटयो दुख अर सगल संताप गुर होए मेरे माई बाप सखी सहेरी मेरा ग्रस्त आनंद कर कृपा भेटे मोहे कंत रहाउ तपत बुझी पूर्ण सब आसा मिटे अंधेर भये परगासा अनहद शब्द अचरज बिस्माद।

की आवे, बेसवा भजत किस नह शरमावे, सारो दिन समजूरी करे, हर सिमरन की वेला बजर सिर पर, माया लग भूलो संसार, आप भलाया भलावन हार, राज रहिया बिरथा व्यवहार, रहाउ देखत माया रंग बिहाई, गड़बड़ करे कौडी रंग लाए, अंध व्यवहार बंद मन तावे, करने हार न जी मह आवे, करत करत इव ही दुख पाया, पूर्ण होत न कारज माया, काम क्रोध लोभ मन लीना, तड़फ मुआ ज्यो जल बिन मीना, जिसके राखे होए हर आप, हर हर नाम सदा जप जाप, साध संग हर के गुण गाया, नानक सतगुर पूरा पाया, भैरों महला पंजवा, अपनी दया करे सो पाए, हर का नाम मन वसाए, साच शब्द हिरदे मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाए, राम नाम जी को आधार, गुर प्रसाद जप हो नित पाई, तार लए सागर संसार, रहाउ जिनको लिखिया हर एहो निदान, सीजन दरगाह पावह मान, सुख सहज आनंद गुण गाओ, आगे मिले न थावी थाओ, जुगह जगंतर एहो तत सार, हर सिमरन साचा विचार, जिस लड़ लाए लए सो लागे, जन्म जन्म का सोया।

रोम रोम रलया हर नाम, सतगुर पूरे कीनो दान, नाम रतन मेरे पंडार, अगम अमोला अपर अपार, रहाओ नाम हमारे निश्चल तनी, नाम की महिमा सब मह बनी, नाम हमारे पूरा साह, नाम हमारे बेपरवाह, नाम हमारे भोजन पाओ।

की आस्था, दुख सुख हमरा तिस ही पासा, राख लीनो सब जन का पड़दा, नानक तिसकी उस्तत करदा, पैरों महला पंजवा, रोवन हारी रोज बनाया, बलन बर्तन को संबंध चेते आया, बूझ बैराग करे जे कोई, जन्म मरण फिर सोग ना होई, बिख्या का सब तंद पसार, विरले कीनो नाम आधार रहाऊ, त्रेविद माया रही व्याप, जो लपटानो तिस दुख संताप, सुख नाही बिन नाम त्याए, नाम निदान बड़ भागी पाए, स्वांगी स्यों जो मन रिझावै,

एक मन तन नानक हर गुण गाओ साधु संग जिस देवै नाऊ भैरो महला पंजवा निर्धन को तुम देव हो तना अनक पाप जाहे निर्मल मना सगल

संत मंडल मह जन्म मरण रह, संत मंडल मह जम किशु ना कह, संत संग होए निर्मल बाणी, संत मंडल मह नाम वखाणी, संत मंडल का निह चले आसन, संत मंडल मह पाप बनासन, संत मंडल मह निर्मल कथा, संत संग हौ मैं दुख नसा, संत मंडल का नहीं बनास, संत मंडल मह हर गुण तास, संत मंडल ठाकुर विश्राम, नानक ओत पोत भगवान, भैरो महला पंजवां, रोग कवन जा राखै आप, तिस जन होए ना दुख संताप, जिस ऊपर प्रभु कृपा करै, तिस ऊपर ते काल पर हरै, सदा सखाई हर हर नाम, जिस चीत आवै तिस सदा सुख होवै, निकट न आवै ता कै जाम रहाउ, जब एहो ना सो तब किन्ह उपाया, कवन मूल ते क्या प्रगटाया, आपह मार आप जीवालै, अपने भगत को सदा प्रतपालै, सब किछ जान हो तिस कै हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, दुख भंजन ताका है नाउ, सुख पावे है तिसके गुण गाओ, सुन स्वामी संतन अरदास, जियो प्राण धन तुमरे पास, एहो जग तेरा सब तुझे त्याए।

अहम बुद्ध का छोड़िया संग, काम क्रोध का उतरिया रंग, नाम ते आए हर हर हरि, साध जना कै संग निस्तरि, बैरी मीत होए सम्मान, सर्ब मह पूर्ण भगवान।

वसह मन आई सिमर मना तू साचा सोए हलत पलत तुमरी गात हुए रहाव पुरख निरंजन सिरजनहार जी जंत देवे आहार कोट खते खिन बख्शन हार भगत पाए सदा।

बंधन का मूल, हर के भजन बिन बिरथा पूल, बिन खाए दूजे नहीं भूख, रोग जाए ता उतर है दुख, काम क्रोध लोभ मोह व्यापिया, जिन प्रभ कीना सो प्रभ नहीं जापिया, तन तन साध तन हर नाओ, आठ पहर कीर्तन गुण गाओ, तन हर भगत तन करण हार, शरण नानक प्रभ पुरख अपार, भैरो महला पंजवा, गुरसो प्रसन्न होए पौ गए, नाम निरंजन मन मह लई, दीन दयाल सदा किरपाल, बिनस गए सगले जंजाल, सुख सहज आनंद घने, साध संग मिटे भय भरमा, अमृत हर हर रसन भने रहाओ, चरण कमल स्यों लागो हेत, खिन मह बिन स्यों महापरेत, आठ पहर हर हर जप जाप, राखन हार गोविंद गुरे आप, अपने सेवक को सदा प्रित पारे, भगत जना के सास निहारे, मानस की कहो के तक बात, जम ते राख दे कर हाथ,

नानक पाया नाम निदान पैरों महला पंजवा करन कारण समरथ गुर मेरा जी प्राण सुखदाता नेरा पै भंजन अवनासी राय दर्शन देखे है सब दुख जाए जत कत देखो तेरी सरना बल बल जाई।

रोग सब किस तेरा तू करने हार पार ब्रह्म गुरे अगमे अपार निर्मल सोभा आचर्य बाणी पार ब्रह्म पूर्ण मन पाणी जल थल महियल रवे आसोए नानक सब किस प्रभ ते होए पैरो महला पंजवा मन तन राता राम रंग चरने सर्ब मनोरथ पूरन करने आठ पहर गावत भगवंत।

सूजन आया प्रभ की सरना, आप पवित्र पावन सब कीने, राम रसायन रसना कीने। भैरो महला पंजवा, नाम लैत किश बिघन ना लागै, नाम सुनत जम दूर हो भागै, नाम लैत सब दुख नास, नाम जपत हर चरण निवास, निर्विघ्न भगत भज हर हर नाउ, रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ।

ਆਪੇ ਘਟ ਘਟ ਜਾਣੈ ਭੇਦ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਜਾਤੀ ਸਭ ਵੱਥ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੂਰਨ ਸਮਰੱਥ।

नित सुख प्रतपाल अपने दास कहो दे राखे हाथ निमख न छोड़े सद ही साथ हर सा प्रीतम अवर न कोए सार संभाले साचा सोए मात पिता सुत बंद नारायण आदि जुगाद भगत गुण गायन।

त्रिहो गुण की दास के होए पूर्ण काम रहाव। हर के लोक सदा गुण गावह तिनको मिलिया पूर्ण ताम। जन का दर्श बांछे दिन राती

नहीं पांग पैरों महला पंजवा निंदक को फिटके संसार निंदक का झूठा व्यवहार निंदक का मैला आचार दास अपने को राखनहार निंदक मुआ निंदक कै नाल पार ब्रह्म परमेश्वर जन राखे निंदक कै सिर कड़के ओ काल रहाओ निंदक का कहया कोई ना माने निंदक झूठ बोल पछताने हाथ पछोर है सिर धरन लगाहे निंदक को दई छोड़े नाही हर का दास किस बुरा ना मांगे।

जाकै ग्रह मह सगल निदान, जाकी सेवा पाई मान, सगल मनोरथ पूरन हार, जी प्राण भगतन आधार, कट कट अंतर सगल परगास, जप जप जीव

प्रभु ते आया, गुरपूरे डर सगल चुकाया, सब ते वड समरथ गुरुदेव, सब सुख पाई तिसकी सेव, रहाउ जाका किया सब किछ होए, तिसका

मनमुख फूले गुरमुख बुझाया, कारण करता कर दाया, गुर का शब्द मेरा अंतर ध्यान, हम कबहू ना छोड़ो हर का नाम रहाओ। पिता प्रहलाद पढ़न पठाया, लै पाती पांदे कह आया, नाम बिना नह पढ़ो अचार, मेरी पटिया लिख दे हो गोबिंद मरार। पुत्र प्रहलाद स्यों कहया माए, परवित ना पढ़ो रही समझाए,

सब लगरी मह भगत बिरड़ाई, दुष्ट सभा का किसना वसाई, संडे मरके की पुकार, सभे दैत रहे चाख मार, भगत जना की पत राखे सोई, कीते कह कहे क्या होई, किरत संजोगी दैत राज चलाया, हर ना बूझे तिने आप पलाया, पुत्र प्रहलाद स्यो वाद रचाया, अंधा ना बूझे काल नेड़े आया, प्रहलाद कोठे विच राखिया, बार दिया ताला, निरपो बालक मूल ना डरई, मेरे अंतर गुरु गोपाला, कीता हुए श्री की करे, अनहोंदा ना उतराया, जो तुर लिखिया सो आई पहुता, जन स्यो वाद रचाया, पिता प्रहलाद स्यो गुरजे उठाई, कहां तुम्हारा जगदीश गुसाई, जग जीवन दा

माता नरसिंह का रूप निवार। लक्ष्मी भौ करै ना साकै जाए, प्रहलाद जन चरणी लागा आए। सतगुर नाम निदान बिरडाया, राज माल झूठी सब माया। लोभी नर रहे लपटाए।

हउमै तृष्ण बुझाई हर का नाम हृदय मन बसिया मनसा मन है सुमाई हर जियो कृपा करो मेरे प्यारे अन दिन हर गुण दीन जन मांगे गुर कै शब्द उधारे रहाओ संत जना को जम जोहे ना साके रत्ती।

दे आई। जन्म जन्म के किल विख दुख काट है, दुबदा रती ना राई। हम मूड मुगद किस बूझ नाही, तू आपे देह बुझाई। जो तुद पावै सोई करसी, अवर न करना जाई। जगत अपाए तुद

अवतार कोट ब्रह्मांड जाके धर्मशाल कोट महेश उपाय समाए कोट ब्रह्मे जग साजन लाए ऐसो धनी गोविंद।

नाम चार कोट पुजारी करते पूजा कोट विस्थारन अवर ना दूजा कोट महमा जाकी निर्मल हंस कोट उस्तत जाकी करत ब्रह्मंस कोट परलो ओपत निमख माहे कोट गुणा तेरे गणे ना जाहे कोट ज्ञानी कथह ज्ञान कोट त्यानी तरत त्यान कोट तपीसर तप ही करते कोट मनीसर मोन मह रहते अवगत नाथ अगोचर स्वामी पूर रहया घट अंतर जामी।

विनोद चोज अनंता, नानक को प्रभ मिलियो अचिंता। कहो नानक कीरत हर साची, बहुर बहुर पिस संग मन राची। रहाओ अचिंत हमारे भोजन पाओ, अचिंत हमारे लीचे नाओ। अचिंत हमारे शब्द उदार, अचिंत हमारे परे पंडार। अचिंत हमारे कार्य पूरे, अचिंत हमारे लथे वसूरे। अचिंत हमारे बैरी मीता, अचिंतो ही इहो मन वस कीता। अचिंत प्रभु हम किया दलासा, अचिंत हमारी पूर्ण आसा। अचिंत हमा को सगल सिद्धांत, अचिंत हम को गुर दीनो मंत। अचिंत हमारे बिन से बैर, अचिंत हमारे मिटे अंधेर। अचिंतो ही मन कीर्तन मीठा, अचिंतो ही प्रभ घट घट दीठा। अचिंत मिट्यो है सगलो परमा, अचिंत वस्यो मन सुख बिसरामा। अचिंत हमारे अनहत वाजै, अचिंत हमारे गोविंद गाजै। अचिंत हमारे मन पतियाना, निश्चल तनी अचिंत पछाना। अचिंतो उपजियो सगल बिबेका, अचिंत चरी हाथ हर हर टेका। अचिंत प्रभु तुर लिखिया लेख, अचिंत मिलियो प्रभ ठाकुर एक। चिंत अचिंता सगली गई, प्रभ नानक नानक नानक मई। भैरों बाणी भगतां की, कबीर जियो घर पहला।

राम राजा नौ निध मेरा संपहित कलत धन तेरे रहाओ आवत संग न जात संगाती कहां पयो दर बांधे हाथी लंका गढ़ सोने का पया मूर्ख रावण क्या ले गया कह कबीर किस गुण बिचार चले जुआरी दोए हाथ चार।

मुस मुस मनुआ सहज समाना, गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा हुए निबरी, बिगरियो कबीरा राम दोहाई, साच पयो अल कतह ना जाई, रहाउ चंदन कै संग तरवर बिगरियो, सो तरवर चंदन हुए निबरियो, पारस कै संग तांबा बिगरियो, सो तांबा कंचन हुए निबरियो।

जो निर्तन सर तन कह जाए आगे बैठा पीठ फुराए। जो सर धन निर्धन कह जाए दिया आदर लिया बुलाए। निर्धन सर धन दो

सो देही पज हर की सेव भजो गोविंद भूल मत जाहो मानस जन्म का एही लाहो रहाओ जब लग जरा रोग नहीं आया जब लग काल ग्रसी नहीं काया जब लग बिकल भई नहीं बानी भज लेह रे मन सारिंग पानी अब ना भजस भजस कब भाई

रावी ऊपर गहरा ख्या चंद पच्छम द्वार सूरज तपै मेर डंड सिर ऊपर बसै पश्चिम द्वारे

करे आने गगन मंडल मह लश्कर करे सो सुरतान सत्तर सिर तरे जोगी गोरख गोरख करे हिंदू राम नाम उच्चरे मुसलमान का एक खुदाई कबीर का स्वामी रहे आसमाई। महला पंजवा जो पाथर को कहते देव ताकि बिरता हो सेव जो पाथर की पाई पाई तिसकी काल अजाई जाई ठाकुर हमरा।

महराती साकर माखी अधिक संतापी तुरे उष्ट माया मह पीला सिद्ध चौरासी ही माया मह खीला शे जति माया के बंदा नवे नाथ सूरज अरचंदा तपे खीसर माया मह सूता माया मह काल अर पंच दूता स्वान स्याल माया मह राता बंतर चीते अर सिंगाता मां जार गाडर अर लूंभरा बिरख मूल माया मह परा माया अंतर पीने देव सागर इंद्रा

गढ़ बंका पाई, दोवर कोट अर तेवर खाई, रहाउ पांच पचीस मोह मद मत्सर, आडी पर बल माया, जन गरीब को जोर ना पहुंचे, कहां करो रघुराया, काम कवारी दुख सुख दरवानी, पाप पुन दरवाजा, क्रोध प्रधान महाबड़ दुंदर, तह मन मावासी राजा, स्वाद सनाहा टोप ममता को, कबुद्ध कमान चढ़ाई, तिसना तीर रहे काट पीतर, यों गाड़ लियो ना जाई, प्रेम पलीता सुरत हवाई, गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म अगन सहजे पर जाली, एक है चोट सजाया, सत संतोख ले लरने लागा, तोरे दुए दरवाजा, साध संगत अर गुर की कृपा ते, पकरियो गढ़ को राजा, भगवत पीर सकत सिमरन की, कटी काल पै फासी, दास कमीर चढ़ियो गढ़ ऊपर, राज लियो अबनासी, गंगा गुसाइन गहर गंभीर, जंजीर

कीता। अनहद शब्द होत चुनकार, जिह पौड़े प्रभ श्री गोपाल। खंडल मंडल मंडल मंडा, त्रया स्थान तीन त्रया खंडा। अगम अगोचर रहया अभ्यंत, पार न पावे को धरनी तर मंत। कदली पोहप धूप परगास, रस पंकज महलियो निवास। द्वादस दल अब अंतर मंत, जह पौड़े श्री कमला कंत। अर्ध उर्द मुख लागो कास, सुन मंडल मह कर परगास। ऊहा सूरज नाही चंद, आद निरंजन करे आनंद। जो ब्रह्मांड पिंड सो जान, मान सरोवर कर इशनान। सोहंग सो जाको है जाप, जाको

पासक कोट सेज बिस्थर है, समुंद कोट जाके पानी हार, रमावल कोट अथारह पार, कोट कमेर परह पंडार, कोटक लक्ष्मी करै श्रृंगार, कोटक पाप पुन बहु हिरह, इंदर कोट जाके सेवा करह, छप्पन कोट जाके प्रतिहार, नगरी नगरी खेत अपार, लट छूटी वरतै बिकराल, कोट कला खेलै गोपाल, कोट जग जाके दरबार, गंधर्व कोट करह जयकार, विद्या कोट सब

संडा मरका जाए पुकारी, पड़े नहीं हम ही पाचहारी। राम कहे करताल बुझावे, चटिया सब बिगारी। राम नामा जप भो करे, हृदय हर जी को सिमरन तरे। रहाउ बसदा बस कीनी सब राजी, बिनती करे पटराणी। पूत प्रहलाद कहया नहीं माने, तिन तो और ठानी। दुष्ट सभा मिल मंत्र उपाया, कर सह औध कनेरी। गिर तर जल ज्वाला पै राखियु, राजा राम माया फेरी। काड खड़ग काल पै कूपियो, मोहि बताओ जो तुहे राखे। पीत पितांबर त्रे पवन तनी, थंब माहे हर पाख है। हर नाखश जिन नखह बदारे हो, सुर नर किए सनाथा। कह नाम देहो हम नर हर त्याव है। राम अपै पद दा।

नातर गर्दन मारो ठाए, बादशाह ऐसी क्यों हुए, बिस्मिल किया न जीवे कोई, मेरा किया कछु न होए, कर है राम हुए है सोए, बादशाह चढ़ो अहंकार, गज हस्ती दीनो चमकार, रुदन करे नामे की माए, छोड़ राम की ना भजै खुदाए, ना हूं तेरा पूंगड़ा, ना तू मेरी माए, पिंड पड़े तो हर गुण गाए।

गोपाल गंग जमन जोल्टी बह तो नामा हर करता रह सात घड़ी जब बीती सुनी अजो ना आयो त्रे पवन धनी पाखन तन बाज बुझाएला गरुड़ चढ़े गोविंद आएला अपने भगत पर की प्रतपाल गरुड़ चढ़े आए गोपाल कह।

मोहे जब मटकी भरी, ले बादशाह के आगे तरी, बादशाह महल में जाई, औकट की कट लागी आई, काजी मुल्ला बिनती फरमाए, बख्शी हिंदू मैं तेरी गाय, नामा कह सुनो बादशाह, एहो

वैकुंठ तरै, जो गुरदेव ता जीवत मरै। सत सत सत सत सत गुरदेव, झूठ झूठ झूठ झूठ।

सहज निकसाई। जो गुरुदेव ता अठ सठ नहाया, जो गुरुदेव तन चक्र लगाया। जो गुरुदेव ता द्वा दस सेवा, जो गुरुदेव सबै बेख मेवा। जो गुरुदेव ता संसार टूटै, जो गुरुदेव ता जम के छूटै। जो गुरुदेव ता भोजन तरै, जो गुरुदेव ता जन्म ना मरै। जो गुरुदेव अठ दस व्यवहार, जो गुरुदेव अठारह भार। बिन गुरुदेव अवर नहीं जाई, नाम देव गुर की शरणाई। भैरो बाणी रविदास जियो की कर दूजा,

कोई पारस परसै दुबदा ना हुई रहाउ सो मन मन की दुबदा खाई बिन द्वारे त्रै लोक सुमाई मन का स्वभाव सब कोई करे करता हुए सो अन पै रह फल कारण फूली बन राई फल लागा तब फूल बुलाई ज्ञान कारण कर्म अभ्यास ज्ञान भया तह कर्म है नास कृत कारण दद मथै सयान जीवत मुकत सदा निर्वाण कह रविदास परम बैराग हृदय राम की ना जपस अपाग नाम देव आओ कलंदर केसवा कर अबदाली भेसवा रहाउ जिन आकाश कुलह सिर कीनी कौसै सपत पयाला चमर पोस का मंदर तेरा एह बिद बने गोपाला छप्पन

पहला घर पहला चौपदे दो तुके एक ओंकार सतनाम करता पुरुख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह भंगुर प्रसाद महा महाम मारखी चढ़िया सदा बसंत परपड़ चित संभाल सोए सदा सदा गोविंद भोलिया हऊ मैं सुरत वसार हऊ मैं मार बिचार मन गुण विच गुण लै सार रहाऊ कर्म पेड़ साखा हरी धर्म फुल फल ज्ञान पत प्रापत शाम घणी चूका मन अभमान अखी कुदरत कन्नी बाणी मुख आखण सच नाम पत का धन पूरा हुआ लागा सहज ध्यान महारुती आवना वेखो कर्म कमाए नानक हरे ना सूकहे जे गुरमुख रहे समाए महला पहला बसंत रुत आई ले सरस बसंत माए रंग राते रंग है से तेरे चाए किस पूज चढ़ावो लगो पाए तेरे दासन दासा कहो राए जग जीवन जुगत ना मिले काए रहाउ तेरी मूर्त एका बहुत रूप किस पूज चढ़ावो देओ धूप तेरा अंत ना पाया कहां पाए तेरा दासन दा

काजी मुल्ला हुवै सेख, जोगी जंगम भगवे पेख। को गिरही कर्मा की संद, बिन बूजे सब खड़ियस बंद। जेते जी लिखी सिरकार, करनी ऊपर होवग सार। हुक्म करह मूर्ख गावार, नानक साचे के सिफत भंडार। बसंत महला तीजा, बस्तर उतार दिगंबर होग। जटा धार क्या कमावै जोग।

बिन साधना पाई है हर का संग, बिन गुर महल मलीन अंग, बिन हर नाम ना शुद्ध होवे, गुर शब्द सलाहे साच सोए। जा को तू राख है रखन हार, सतगुरु मलावह करह सार, बेकहु मैं ममता पर हराए, सब दुख

रह सेव परम सुख पावह आत्म देव रहाउ कर्म हुआ ता सेवा करे गुर प्रसादी जीवत मरे अन दिन साच नाम उचरे इन विद प्राणी दुत्तर तरे देखे अमृत करतार पाई संसार बिरख को दोए फल लाई आपे करता करे कराई जो तिस पावे तिसे खुआई नानक जिसनो नदर करे अमृत नाम आपे दे विख्या की बासना मन है करे अपना पाना आप करे बसंत महला तीजा राते साच हर नाम निहाला दया करो प्रभ दीन दयाला तिस बिन अवर नहीं मैं कोई ज्यों

लोभ लुभाना, राम विसार बहुर पछताना, विसरत मलाए गुर सेव रांगी, हर नाम दियो मस्तक वड भागे, पौन पानी की एह दे शरीरा, हऊ मैं रोग कठन तन पीरा, गुरमुख राम नाम दारू गुण गाया, कर किरपा गुर रोग गवाया, चार नदियां अग्नि तन चारी, तृष्णा जलत जले अहंकारी, गुर राखे वड भागी तारे, जन नानक उर हर अमृत धारी।

हर मन माहि, मर मर जम्मह पी मर जाहि। से जन जीवे जिन हर मन माहि, साच सुमालह साच सुमाहि रहाउ। हर ना सेवह ते हर ते दूर, दसंतर भवह सिर पावह धूर। हर आपे जन लिए लाए, तिस सदा सुख है तिल ना तमाए। नदर करे चूकै अभमान, साची दरगाह पावै मान। हर जियो वेखै सद हजूर, गुर कै शब्द रहया परपूर। जी जंत की करे प्रतपाल, गुर प्रसादी सद संभाल। दर साचै पत स्यों घर जाए, नानक नाम वडाई पाए। बसंत महला तीजा, अंतर पूजा मन ते होए। एको वेखै और ना कोई, दूजै लोकी बहुत दुख पाया।

पाई, तौ जग जीवन वसै मन आई। भगत करे सद वेखै हजूर, मेरा प्रभ सद रहया भरपूर। इस भगती का कोई जाने पियो, सब मेरा प्रभ आत्म देव। आपे सतगुर मेल मलाई, जग जीवन स्यो आप चित लाई। मन तन हरिया सहज सुपाई, नानक नाम रहे लिव लाई। बसंत महला तीजा, भगत वचल हर वसै मन आई। गुर कृपा ते सहज सुपाई, भगत करे विचों आप खोए। तद ही साच मलावा होए, भगत सोह है सदा हर प्रभ द्वार। गुर कै हित साचे प्रेम प्यार, रहाउ भगत करे सो जन निर्मल होए। गुर शब्दी विचों

मन तन हरिया रव गुण गोविंद बिन नावे सूका संसार अग्न तृष्णा जले वारो वार सोई करे जे हर जियो पावे सदा सुख शरीर पाणे चित लावे अपना प्रभ सेवे सहज सुपाई नानक नाम वसै मन आई बसंत महला तीजा माया मोह शब्द जलाई मन तन हरिया सतगुर पाई सफलो बिरख हर कै द्वार साची बाणी नाम प्यार ए मन हरिया सहज सुपाई सच फल लागे सतगुर पाई रहाउ आपे नेड़ आपे दूर गुर कै शब्द वेखै सद हजूर शाम घणी फूली बन राई गुरमुख बिबसै सहज सुपाई अन दिन कीर्तन करह दिन रात सतगुर गवाई विचों झूठ परांत परपंच वेख रहया विस्माद गुरमुख पाईऐ नाम प्रसाद आपे करता सब रस भोग जो किछ करे सोई परोग वड्डा दाता तिन नात माई नानक मिलिया शब्द कमाई बसंत महला तीजा पूरै भाग सचकार कमावे एको चेता फिर जोन ना आवे सफल जन्म इस जग में आया।

गुर कै शब्द हर दर निशान है, दर साचै सच सोभा होए, निज कर वासा पावै सोए, आप अकुल सच्चा सच सोए,

बहु अभमान अपनी पत खोए। सेवड भागी जिन शब्द पछाणिया, बाहर जांदा घर मह आणिया। घर मह वस्त अगमे अपारा, गुरमत खोजह शब्द बीचारा। नाम नव निद पाई घर ही माही, सदा रंग राते सच समाए। आप करे किस करण ना जाए, आपे भावे लए मलाई। तिस्ते नेड़े नाही को दूर, नानक नाम रहया भरपूर। बसंत महला तीजा, गुर शब्दी।

अंग तुम साच त्यावो मुग्ध मना ता सुख पावो मेरे मना रहाउ इत मन मौल्य है पया आनंद अमृत फल पाया।

करे आप पाई, जिन हरिया किया सब कोए। नानक मन तन सुख सद वसै पाई, शब्द मलावा होए। राग बसंत महला चौथा कर पहला, एक तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ज्यों पसरी सूरज किरण ज्योत, त्यों घट घट रमैया ओत पोत। एको हर रविया सर्ब थाए, गुर शब्दी मिलिया मेरी माए। रहाओ घट घट अंतर एको हर सोए, गुर मिलिया एक प्रगट होए। एको एक रहिया भरपूर, सागत नर लोभी जान है दूर। एको एक वरतै हर लोए, नानक हर एको करे सो होए। बसंत महला चौथा, रैन दिनस दोए सदे पए। मन हर सिमर हो अंत सदा रख लए, हर हर चेत सदा मन मेरे। सब आलस दुख भंज प्रभ पाया, गुरमत गावो गुण प्रभ केरे। रहाओ मन मुख फिर फिर हो मैं मुए, काल दैत संघारे जमपुर गए। गुरमुख हर हर हर लिव लागे, जन्म मरण दो दुख भागे। भगत जना को हर कृपा तारी, गुरु नानक तुठा मिलिया बनवारी। बसंत हंडोल महला चौथा घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राम नाम रतन कोठड़ी, गढ़ मंदर एक लुकानी। सतगुर मिले ता खोजिया, मिल ज्योति ज्योत समानी। माधो साधु जन देहो मलाई, देखत दर्श पाप सब नासह। पवित्र परम पद पाए रहाउ, पंच चोर मिल लागे नगरिया। राम नाम तन हिरिया, गुरमत खोज परे तब पकरे। तन साबत रास उबरिया, पाखंड भरम अपाव कर थाके। हृदय अंतर माया माया, साधु पुरख पुरख पत पाया। अज्ञान अंधेर गवाया, जगन्नाथ जगदीश गुसाई। कर कृपा साध मलावे, नानक शांत होए मन अंतर। नित हृदय हर गुण गावे, बसंत महला चौथा हिंडोल। तुम वड पुरख वड अगम गुसाई, हम कीरे किरम तुम मनशे। हर दीन दयाल करहो प्रभ कृपा, गुर सत गुर चरण हम बनशे। गोविंद जीओ सत संगत मेल कर कृपसे। जन्म जन्म के किल विकमल भरिया, मिल संगत कर प्रभ हमसे। रहाउ तुमरा जन जात अव जाता, हर जप्यो पतत पवीसे। हर कियो सगल भवन ते ऊपर, हर सुबा हर प्रभ दिन से। जात अजात कोई प्रभ ते आवे, सब पूरे मानस तिन से। से तन वड्डे वड पूरे हर जन, जिन हर धारियो हर उरसे। हम ढींदे ढीम बहुत अत पारी, हर धार कृपा प्रभ मिलसे। जन नानक गुर पाया हर तूठे, हम किए पतत पवीसे। बसंत हंडोल महला चौथा, मेरा एक खिन मनुआ रह ना सकै। नित हर हर नाम रस गीदे, ज्यों बारक रसक पर्यो थन माता। थन काढे बिलल बलीदे, गोविंद जीओ मेरे मन तन नाम हर बीदे। वड्डै भाग गुर सत गुर पाया, विच काया नगर हर सीधे। रहाउ जन के सास सास है जेते, हर बिरह प्रभु हर बीदे। ज्यों जल कमल प्रीत अत भारी, बिन जल देखे सुख लीदे। जन जपयो नाम निरंजन नर हर, अपदेश गुरु हर प्रीदे। जन्म जन्म की हम मैं मल निकसी, हर अमृत हर जल नीदे। हमरे कर्मना बिचर हो ठाकुर, तुम पैज रखो हो अपनीदे। हर भावे सुन बिनो बेनती, जन नानक सरण पवीदे। बसंत हंडोल महला चौथा,
मन खिन खिन परम परम बहुत आवे तिल घर नहीं वासा पाई है। गुरे अंकस शब्द दारू सिर धारियो घर मंदर आन वसाई है। गोविंद जियो सत संगत मेल हर त्याई है। हो मैं रोग गया सुख पाया हर सहज समाज लगाई है। रहाओ कर रतन लाल बहुमानक लादी मन भ्रमया लह ना सकाई है। ज्यो ओडा कूप गोहज खिन काढ़े त्यो सतगुर वस्त लहाई है। जिने ऐसा सतगुर साधना पाया ते त्रिग त्रिग नर जीवाई है। जन्म पदार्थ पुन फल पाया कौडी बदले जाई है। मद सूदन हर धार प्रभ कृपा कर कृपा गुरु मिलाई है। जन नानक निर्वाण पद पाया मिल साधु हर गुण गाई है। बसंत हंडोल महला चौथा आवन जान पया दुख बिखिया।

दयाल नाम जपत होवत निहाल मेरे प्रीतम कारण करण जोग हौ पावो तुम ते सगल थोक रहाउ नाम जपत होवत उधार नाम जपत सुख सहज सार नाम जपत पत सोबा होई नाम जपत बिघन नाही कोई जा कारण एह दलभ दे

तम प्राण आधार मन जियो प्राण सब तेरो धन रहाउ जां को खोजह सुर नर देव मुन जन सेख ना लह भेव जां की गतमित कही ना जाए घट घट घट घट रहे आसमाए जां के भगत आनंद मै जा के भगत को नाही खै जा के

मीन अगम अगम ऊंचा ते ऊंचा हम थोरे तुम बहुत मूचा जिन तू त्याया से गनी जिन तू पाया से तनी जिन तू सेव्या सुखी से संत सरन नानक परे बसंत महला पंजवा तिस तू सेव जिन तू किया तिस अराध जिन जियो दिया तिसका चाकर होहे फिर डान ना लागे तिसकी कर पोत दारी फिर दुख ना लागे एवड भाग होहे जिस प्राणी सो पाए इहो पद निर्वाणी रहाउ दूजी सेवा जीवन बिरथा कछु ना होई है पूर्ण अर्था मानस सेवा खरी दोहेली साध की सेवा सदा सुहेली जे लोड़ है सदा सुख पाई।

जह गोविंद भगत सो धन देस, हर भगत हीन उद्यान थान, गुर प्रसाद घट घट पहचान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग, निकट पेख प्रभ करनहार, ईत ऊत प्रभ कार्ज सार, चरण कमल स्यों लगो

जन प्रभु आप रखी दुष्ट दूत सब भ्रम थके बिन गुर साचे नहीं जाए दुख देश दसंतर रहे ताय किरत ओना का मिटस नाही वे अपना बीजिया आप खाए जन का रखवाला आप सोए जन को पहुँच ना सकस कोए प्रभ दास रखे कर जतने आप

पंजवा गुर चरण सरेवत दुख गया पार ब्रह्म प्रभ करी मया सर्व मनोरथ पूर्ण काम जप जीवै नानक राम नाम सारुत सुहावी जित हर केते आवे बिन सतगुर दीसै बिल लांती साकत फिर आवे जावे रहाउ से तनवंत जिन हर प्रभ रास काम क्रोध गुर शब्द नास पै बिन से निरपै पद पाया गुरमिल नानक खसम त्याया साध संगत प्रभ कियो निवास हर जप जप होई पूर्ण आस जल थल मही अल रव रहिया गुरमिल नानक हर हर कहिया अष्ट सिद्ध नव निध एह कर्म परापत जिस नाम दे प्रभ जप जप जीव है तेरे दास गुरमिल नानक कमल परगास बसंत महला पंजवा घर पहला एक तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल इच्छा जप पुनिया प्रभ मेले चिरी वछुनिया तुम रवहु गोबिंद रमण योग जित रवे सुख सहज भोग रहाउ कर कृपा नदर निहालिया अपना दास आप संभालिया सेज सुहावी रस बनी आए मिले प्रभ सुख धनी मेरा गुण अवगुण ना बिचारिया प्रभ नानक चरण पूजारिया बसंत महला पंजवा किल बिख बिन से गाए गुना अन दिन उपजी सहज धुना मन मौल्यो हर चरण संग कर कृपा साधु जन भेटे नित रातो हर नाम रंग रहाउ कर कृपा प्रगटे गोपाल लड़ लाए उधारे दीन दयाल एहो मन होआ साध तूर नित देखै स्वामी हजूर काम क्रोध तृष्णा गई नानक प्रभ कृपा पई।

कल्याण रूप जप हर हर मंत्र रहाउ, सोग संताप कटे प्रभ आप, गुरे अपने को नित नित जाप, जो जन तेरा जपे नाउ, सब फल पाए निश्चल गुण गाओ, नानक भगतां।

पकर पवजल निसतारियु प्रभ काट मैल निर्मल करे गुरपूरे की सरनी परे आप करह आप करन हारी कर कृपा।

फूल फूल फूले अहं त्याग त्यागे चरण कमल पागे तुम मिलो हो प्रभ सुभागे हर चेत मन मेरे रहाओ सजन बास कूले एक रहे सूख कठूले बसंत रुत आई पर फूलता रहे अब कलू आयो रे एक नाम बोवहो अन रूत नाही नाही मत परम भूलो गुर मिले हर पाए जिस मस्तक है लेखा मन रुत नाम रे गुण कहे नानक हर हरे बसंत महला पंजवा कर दूजा हिंडोल एक ओंकार सतगुर प्रसाद होए एकत्र मिलो मेरे भाई दुबदा दूर करहो लिवलाई हर नामै के हो वो जोड़ी गुरमुख बैसो सत

कर्म धर्म तुम चौपड़ साजो सत करहो तुम सारी काम क्रोध लोभ मोह जीतो ऐसी खेल हर प्यारी उठ इशनान करहो प्रभाते सोए हर अरादे बिखड़े दाओ लंगावे मेरा सतगुर सुख सहज सेती घर जाते हर आपे खेल आपे देखे हर आपे रचन रचाया जन नानक गुरमुख जो नर खेल सो जिन बाजी घर आया।

बसंत हंडोल महला पंजवां मूल ना बूझै आप ना सूझै भरम व्यापी अहं मनी पिता पार ब्रह्म प्रभ धनी मोहे निस्तार हो निर्गुणी रहाउ ओपत परलो प्रभ ते होवै एह बिचारी हर जनी नाम प्रभु के जो रंग राते कलम है सुखिये से जनी अवर अपाओ न कोई सूझै नानक तरियै गुर बचनी एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद राग बसंत हंडोल महला नौवा साधो ए तन मिथ्या जानो जा भीतर जो राम बसत है साचो ताहे पछानो रहाओ एहो जग है संपत सुपने की देख कहां ऐडानो संग तिहारै कछु ना चालै ताहे कहां लपटानो उस्तत निंदा दो पर हर हर कीरत उरियानो जन नानक सब ही मैं पूरन एक पुरख भगवानो बसंत महला नौवा पापी ही है मैं काम बसाए मन चंचल याते गहयो ना जाए रहाउ जोगी जंगम अर संन्यास सब ही पर डारी एह फास जेह देह हर को नाम समार ते भव सागर उतरे पार जन नानक हर की सरनाए दीजै नाम रह गुण गाए।

संग तेरे हर बसत मीत निस बासर भज ताहे मीत बार अंत की हुए सहाय कहो नानक गुण ता के गाए बसंत महला पहला अष्टपदियां घर पहला दो तुकिया

गाछुह पुत्री राजकुवार, नाम भणहु सच दूत सवार, प्रियो सेवहो प्रभ प्रेम आधार, गुर शब्दी बिख त्यास निवार, मोहन मोहे लिया मन मोहे, गुर कै शब्द पछाना तोहे, नानक ठाडे चाह प्रभु द्वार, तेरे नाम संतोखे कृपा धार, बसंत महला पहला, मन भूलो भरम से आए जाए, अत लुब्ध लुभानो बिखम माए, नह अस्थर दिसै एक पाए, ज्यो मीन कुंडलिया कंठ पाए, मन भूलो समझस साच नाए, गुर शब्द बिचारे सहज पाए, रहाओ मन भूलो परमस पवर तार, बिल बिरथे चाहे बहु बेकार, मैगल ज्यो फासस काम हार, कड़ बंधन

तारा दुख घणो मरिए करतारा बिन प्रीतम को करे ना सारा सब उत्तम किसे आखो ही ना हर भगती सच नाम पतीना रहाउ औखद कर थाकी बहु तेरे क्यों दुख चूकै बिन गुर मेरे बिन हर भगती दुख कनेरे दुख सुख दाते।

थाप आपे बशरु गऊ खीर आपे मंदर थम शरीर आपे करनी करणहार आपे गुरमुख कर विचार तू कर कर देख करनहार जोत जी असंख दे आधार तू सर सागर गुण गहीर तू अकुल निरंजन परम हीर तू आपे करता करण जोग नेह केवल राजन सुखी लोग नानक त्रापे हर नाम स्वाद बिन हर गुर प्रीतम जन्म वाद बसंत हंडोल महला पहला कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नौ सत चौदह तीन चार कर महलत चार बहाली चारे दीवे चौ हथ दिए एकाएका वारी मेहरवान मधुसूदन माधो ऐसी सकत तुम्हारी रहाओ कर कर लश्कर पावक तेरा धर्म करे सिकदारी

पार पवै नित मुदगर पाप करे कोटवारी पावे चंगा पावे मंदा जैसी नदर तुम्हारी आद पुरख को अल्लाह कही है सिखा आई वारी देवल देवतियां कर लागा ऐसी कीरत चाली कूजा बांग निवाज मुसल्ला नील रूप बनवारी कर कर मिया सबना जिया बोली अवर तुम्हारी जे तू मीर महीपत साहेब कुदरत कौन हमारी चारे कुंत सलाम करेंगे कर कर सिफत तुम्हारी तीरत सिमरत पुन दान किश लाहा मिले दिहाड़ी नानक नाम मिले वड्याई मेका घड़ी संभाली बसंत हंडोल कर दूजा महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद काया नगर एक बालक वसिया हिन पल फिर न रहाई अनक अपाव जतन कर थाकी बारंबार परमाई मेरे ठाकुर बालक इकत कर आन सतगुर मिले ता पूरा पाईए पज राम नाम निशान रहाउ एहो मृतक मड़ा शरीर है सब जग जित राम नाम नहीं वसिया राम नाम गुर उदक चुआया।

फिर हरिया हो आरसिया मैं निरखत निरखत शरीर सब खोजिया एक गुरमुख चलत दिखाया बाहर खोज मुए सब साकत हर गुरमती कर पाया दीना दीन दयाल पए हैं ज्यों कृष्ण बिदर घर आया मिले उस दामा पावनी तार सब किसे आगे दालद पंज।

करहें बखीली इकरती तेलना कटाई जानकी उस्तत है राम नामा दह दिस सुबा पाई निंदक साकत खाव ना सके तेल।

जल है समावे बसंत महला पंजवा घर कहला दो तुकिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुन साखी मन जप प्यार अजा मल।

कर नरेन ले मस्तक लाऊ कर कृपा देन रहाउ गनका उदरी हर कह तूत गज इंद्र त्यायो हर कियो मूख बिपर सदामे दाल पंज रे मन तू पी पज गोविंद बदक उदारे हो खम परहार कुबजा उदरी अंगुष्ट धार बिदर उदारे उदास्त पाई रे मन तू पी हर त्याय प्रहलाद रखी हर पैज आप बस्तर सीनत द्रौपदी रखी लाज जिन जिन सेव्या अंत बार रे मन सेव तू परह पार तन्नै सेव्या बाल बुद्ध त्रिलोचन गुरमिल भई सिद्ध बेणी कौ गुर कियो परगास रे मन तू पी होई दास जय देव त्याग्यो अहमेव।

भगत राख तिनका गुण अवगुण ना विचार्यो कोए। एहे बिद देख मन लगा सेव कबीर त्यायो एक रंग नाम देव हर जियो बसह संग रविदास त्याए प्रभ अनूप गुरु नानक देव गोविंद रूप बसंत महला पंजवां अनक जन्म भ्रमे जो न माहे हर सिमरन बिन नरक पाहे भगत बिहूना खंड खंड बिन बूझे जम देत दंड गोविंद भजो हो मेरे सदा मीत साच शब्द कर सदा प्रीत रहाउ संतोख ना आवत कहूं काज धूम बादर सब माया साज पाप करम।

राम क्रोध मन वास किया, सुपने नाम ना हर लिया। कब ही राजा कब मंगन हार, दुख सुख बांधो संसार। मन उधरन का

अपार कर कृपा लड़ले हो लाई नानक दास प्रभ की सरनाई बसंत की वार महल पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम त्याए कै हो हरिया पहाई कर्म लखन तै पाई है एह रुत सुहाई वन त्रिण त्रे पवन मौलिया अमृत फल पाई मिल साधु सुख उपजै लथी सब छाई नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ ना ताई पंजे बदे महाबली कर सच्चा टोआ अपने चरण जपायन विच दयो खुड़ोआ रोग सोग सब मिट गए नित नवान रोआ दिन रहन नाम त्याईंदा फिर पाए ना मोआ जिसते उपजिया नानका सोई फिर हुआ कितों उपजै कह रहे कह माहि समावे जी जंत सब खसम के कौन कीमत पावे कहन त्याईन सुन नित से भगत सहावे अगम अगोचर साहिबो दूसर लवे ना लावे सच पूरे गुर उपदेसिया नानक सुनावे बसंत बाणी भगतां की कबीर जी घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद मौली धरती मौलिया आकाश घट घट मौलिया।

संग ही चोर कर मुसन लाग रहाउ, जागे सुख देव अर अकूर, हनुमंत जागे तर लंकूर, शंकर जागे चरण सेव, कल जागे नामा जय देव, जागत सोवत बहु प्रकार, गुरमुख जागे सोई सार, इस देही के अधिक काम, कह कबीर पज राम नाम, जोए खसम है जाया, पूत बाप खेलाया, बिन श्रवणा खीर पिलाया, देखो लोगा कल को पाओ, सुत मकलाई अपनी माओ, रहाओ, पगा बिन हुरिया मारता, बदले बिन खिर खिर हासता, निंद्रा बिन नर पैसो है, बिन बासन खीर बलो है, बिन अस्थन गहू लवेरी, पैंडे बिन बाट कनेरी, बिन सतगुर बाट न पाई, कहो कबीर समझाई, प्रहलाद पठाए पर्ण साल, संग सखा बहु लिए बाल, मोको कहां पढ़ाव से आल जाल, मेरी पटिया लिख दे हो श्री गोपाल, नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, मेरो और पढ़न स्यो नहीं काम, रहाओ संडे मर के कहो जाए, प्रहलाद बलाए बेगताए, तू राम कहन की छोड़ बान, तुझ तुरत छडाऊ मेरो कहो मान, मोको कहां सताव हो बार बार, प्रभ जल थल गिर किए पहार, एक राम ना छोड़ो गुरहगार, मोको काल जार पावे मार डार, काड खड़ग को प्यो रिसाई, तुझ राखनहारु मोहे बताए, प्रभ थंब ते निकसे कै बिस्थार, हरनाक्ष छेदे

ना पार, प्रहलाद उधारे अनक बार। इस तन मन मधे मदन चोर, जिन ज्ञान रत्न हिरलीन मोर। मैं अनाथ प्रभ कहो काहे, को ना बेगूतो मैं को आहे। माधो दारण दुख सहयो न जाए, मेरो चपल बुद्ध स्यो कहां बसाए। रहाओ सनक सनंदन शिव सुकाद, नाभ कमल जाने ब्रह्माद। कब जन जोगी जटा तार, सब आपन अवसर चले सार। तू अथाह मोहे था नाही, प्रभ दीना नाथ दुख कहो काहे। मोरो जन्म मरण दुख आथ तीर, सुख सागर गुण रौ कबीर। नायक एक बन जारे पांच, बरद पचीसक संग काच। नौ बहिया दस गुण आहे, कसन बहतर लागी ताहे। मोहे ऐसे बनज स्यो नहीं काज, जेह घटै मूल नित बढ़ै ब्याज। रहाउ सात सूत मिल बन जकीन, कर्म पावनी संग लीन। तीन जगाती करत रार, चलो बन जा रा हाथ चार।

लूठ उतर समाई। ब्रह्म अग्न के लूठे अग्न पी जूठी पानी जूठा, जूठी बैस पकाया जूठी करसी परोसन लागा, जूठे ही बैठ खाया गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दीनी कारा कह कबीर तेई नर सूचे साची परी बेचारा। रामानंद जी।

ना चेतना चले मन भयो पंग रहाउ। एक दिवस मन भई उमंग, कस चंदन चोआ बहु सुगंध, पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माए।

यहां ना होई। सतगुर मैं बलिहारी तोर, जिन सकल बिकल भ्रम काटे मोर। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटे कोट कर्म। बसंत बाणी नाम देव जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। साहिब संकट वै सेवक भजै, चिरंकाल ना जीवै दो कुल लज्जै। तेरी भगत

कैसे संत जना राम नाम ना छाडे, गंगा गया गोदावरी संसार के काम नारायण सो प्रसन्न होए ता।

हों तर भी ना जानो मोको बाहां दे बीठला सहज अवल धूड़ मणि गाडी चालती पीछे तिनका लै कर हाकती जैसे पनकत थ्रू टिट हाकती सर तो मन चाली लाडू।

अपने भगत पर कर दया। बसंत बाणी रविदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तुझे सुजनता कछु नाही, पहरावा देखे ऊब जाए। गर्भवती

गुरमुख मन मानिया तिनके काज सुवारे रहाउ। जो जन दीन भये गुरु आगै तिनके दुख निवारी। आन दिन भगत करह गुरु आगै गुर कै शब्द सुवारी। हिरदय नाम अमृत रस रसना रस गावह रस बीचारी। गुर प्रसाद अमृत रस चीनिया ओए पावह मूख द्वारी। सतगुर पुरख अचल अचलह मत जिस दृढ़ता नाम अधारी। तिस आगै जियो देवो अपना हौ सतगुर कै बलिहारी। मनमुख ब्रह्म दूजै पाए लागी अंतर अज्ञान गुबारी। सतगुर दाता नदर ना आवै ना उरवार ना पारी। सर्वे कट कट रविया स्वामी सर्ब कला कल तहारी। नानक दासन दास कहते है कर कृपा ले हो उभारी। सारंग महला चौथा गोविंद की ऐसी कार कमाई। जो किछ करे सो सत कर मानो गुरमुख नाम रहो लिवलाई। रहाउ गोविंद प्रीत लगी अत मीठी अवर विसर सब जाई। अन दिन रहस भया मन मानिया ज्योति जोत मलाई। जब गुण गाए तब ही मन तृप्तै शांत वसै मन आई। गुर कृपाल भये तब पाया हर चरणी चित लाई। मत प्रगास भये हर त्याया ज्ञान तत् लिवलाई। अंतर ज्योत प्रगटी मन मानिया हर सहज समाध लगाई। हृदय कपट नित कपट कमावह मुखो हर हर सुनाई। अंतर लोभ महा गुबारा तोह कूटै दुख खाई। जब सो प्रसन्न भये प्रभ मेरे गुरमुख पर क्या लाई। नानक नाम निरंजन पाया नाम जपत सुख पाई। सार महला चौथा मेरा मन राम नाम मन मानी। मेरा ही रह सतगुरु प्रीत लगाई। मन हर हर कथा सुखानी रहाउ। दीन दयाल हो जन ऊपर जन देव हो अकथ कहानी। संत जना मिल हर रस पाया हर मन तन मीठ लगानी। हर कै

हृदय हर हर पानी पंच जना गुरु वस गतियाणी तो उन मन नाम लगानी जन नानक हर कृपा तहारी हर राम मैं नाम समानी। सारंग महला चौथा जप मन राम नाम पढ़ सार राम नाम बिन थिर नहीं कोई होर निफल सब विस्थार रहाओ। क्या लीजै क्या तजियै बौरे जो दिसै सो शार जिस बिख्या कौ तुम अपनी कर जानो छाड़ छाड़ जाहो सिर पार तिल तिल पल पल औद फुन काटै बूझ ना सकै गवार सो किछ करै जे साथ ना चाले।

चलै झूठ छोड़ जाए पासार। नानक संत सदा थिर निश्चल जिन राम नाम आधार। सारहु महला चौथा कर तीजा धुपदा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद काहे पूत झगरत हो संग बाप। जिनके जने बडीरे तुम हो तिन स्यों झगरत पाप। रहाओ जिस धन का तुम गर्व करत हो सो धन किसह न आप। खिन मह छोड़ जाए बिख्या रस तो लागे पछताप। जो तुमरे प्रभ होते स्वामी हर तिन के जाप हो जाप। अपदेश करत नानक जन तुमको जो सुनो तो जाए संताप। सार महला चौथा कर पंजवा दो पदे पड़ताल एक ओंकार। सतगुर प्रसाद जप मन जगन्नाथ जगदीशरो जग जीवनो मन मोहन स्यो प्रीत लागी। मैं हर हर हर टेक सब दिन सब रात। रहाओ हर की उपमा अनक अनक अनक गुण गावत। सुख नारद ब्रह्मादक तब गुण स्वामी गणन ना जात। तू हर बेअंत तू हर बेअंत तू हर स्वामी। तू आपे ही जान है अपनी भांत। हर कै निकट निकट हर निकट ही बसते ते हर के जन साधु हर पगात।

जप मान नरहरे नरहर स्वामी हर सगल देव देवा श्री राम राम नामा हर प्रीतम मोरा रहाउ जित ग्रह गुण गावते हर के गुण गावते राम गुण गावते तित ग्रह वाजे पंच शब्द वड भाग मथुरा तिन जन के सब पाप गए सब दुख गए सब रोग गए काम क्रोध लोभ मोह अभिमान गए तिन जन के हर मार कड्डे पंच चोरा हर राम बोलो हर साधु हर के जन साधु जगदीश जपो मन बचन कर्म हर हर अराधु हर के जन साधु हर राम बोल सब पाप गवाधु नित नित जागरण करहो सदा सदा आनंद जप जगदीश्वरा।

मेरा प्रीतम जन संतो मोहे मार्ग दिखलावे, तिस जन के हो मल मल धुआं पाऊ। हर जन को हर मिलिया, हर श्रद्धा ते मिलिया, गुरमुख हर मिलिया। मेरा मन तन आनंद भये, मैं देखिया हर राउ। जन नानक को कृपा पई, हर की कृपा पई, जगदीश्वर कृपा पई। मैं अनदिन सद सद सदा, हर जपिया हर नाउ। सारंग महला चौथा, जप मन निरभउ, सत सत सदा सत, निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी संभव।

दर्शन कहो कोट कोट ते तीस सिद्ध जति जोगी तट तीर्थ पर पवन करत रहत निराहारी किन जन की सेवा थाए पई जिनको कृपाल होवत बनवारी हर के हो संत भले ते उत्तम भगत भले

सब सृष्टि का प्रभु मेरे मन हर बोल हर पुरख अविनाशी रहाउ। हर का नाम अमृत हर हर हरि सो पिए जिस राम प्यासी। हर आप दयाल दया कर मेले जिस सतगुरु सो जन हर हर अमृत नाम च खासी। जो जन सेव है सद सदा मेरा हर हरि तिनका सब दुख भरम पहु जासी। जन नानक नाम नए ता जीवै ज्यों चात्रक जल पिए त्रिपतासी। सारंग महला चौथा जप मन श्री राम राम रमत राम सत सत राम। बोलो पैया सद राम राम राम रव रहया सर्वगे रहाउ। राम आपे आप आपे सब करता राम आपे आप आप सबत जगे। जिस आप कृपा करे मेरा राम राम राम राय। सो जन राम नाम लिव लागे राम नाम की उपमा देखो हर संत हो। जो भगत जना की पात राखै विच कल युग अगे। जन नानक का अंग किया मेरे राम राय दुश्मन दुख गए सब भगे। सारंग महला पंजवा चौपदे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सतगुर मूर्त कहो बल जाऊं अंतर प्यास चात्रक ज्यों जल की। सफल दर्शन कद पाऊ रहाओ अनाथा को नाथ सर्व प्रत पालक भगत वत्सल हर नाम।

मित नहीं पाईए सब तेरो खेल दिखाओ। साधन का संग साध स्यों गोसत हर साधन स्यों लिवलाओ। जन नानक पाया है गुरमत हर देहो दर्स मन चाओ। सारंग महला पंजवा हर जियो अंतर जामी जान करत बुराई मनुख ते छपाई साखी भूत पवान रहाओ। वैसनो नाम करत खट करमा अंतर लोभ जुठान संत सभा की निंदा करते।

करहे सब वर्ता जो सपरी दम्फान प्रभु पुलाए उजड़ पाए निफल सब कर्मान सो ज्ञानी सो वैष्णव पढ़िया जिस करी कृपा भगवान उन सतगुर सेव परम पद पाया उदरिया सगल विस्वान क्या हम कथ है किस कथ नहीं जान है प्रभ भावै तिवै बलान साध संगत की

सतगुरु बचन लहू रहाउ। क्वार कन्या जैसे संग सहेरी, प्रिय बचन उपहास कहो। जो सुरजन ग्रह पीतर आयो, तब मुख काज लजो। ज्यो कनको कुठारी चढ़ो, कबरो होत फिरो। जब ते सुध पए है बारह, तब ते थान थिरो। जो दिन रैन तौ लो बजो, मूर्त घरी पलो। बजाव नहारो ऊठ सधारियो, तब फिर बाज ना पयो। जैसे कुंभ उदक पूरे आने हो, तब ओह भिन्न दृष्टो। कहो नानक कुंभ जलै मह डारियो, अंबै अंब मिलो। सारंग महला पंजवा, अब पूछे क्या कहा। लैनो नाम अमृत रस नीको।

काजर मह परया बहोर बहोर फिर चारे काटे पेड़ दाल पर ठांडो खाए खाए मुश्कार है गिरो जाए रसातल परयो सिति सिति सिर पार है निर्वैर संग वैर रचाए पहुंच ना सके ग्वार है कहो नानक संतन का राखा पार ब्रह्म निरंकार है सारंग महला पंजवा अवर सब भूले भ्रमत ना जानिया एक सदाखर जा कै हृदय वसिया किन बेद है तत पछानिया रहाउ परविरत मार्ग जेता किश होई है तेता लोग पचारा जौ लो हृदय नहीं परगासा तौ लो अन्न अंधारा जैसी धरती साधे बहु बिद बिन बीजै नहीं जामै राम नाम बिन मुक्त ना हुई है टुटे नाही अभिमानै नीर बलोवै अत चरम पावे नैनू कैसे रिसै बिन गुर भेटे मुक्त ना काहू मिलत नहीं जगदीसै खोजत खोजत एह बिचारियु सर्व सुखा हर नामा कहो नानक तिस भयो प्राप्त।

एहो मन नहीं धीरै को है रे संत मलाई जप तप संयम पुन सब होम तिस अर्पो सब सुख जाई एक निमक प्रिया दर्शद खावै इस संतन कै बल जाई करो निहोरा बहुत बेनती सेवो दिन रह नाई मान अवमान हो सगल त्यागो जो प्रिय बात सुनाई देख चरित्र पई हों बिस्मन गुर सतगुर पुरख मलाई प्रभ रंग दयाल मोहे ग्रह मह पाया जन नानक तपत बुझाई सारी महला पंजवा रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही नरक कोर मह उर्द तप करता निमख निमख गुण गाही रहाओ अनक जन्म भ्रम तो ही आयो मानस जन्म दुलपाही गर्भ जोन छोड़ जो निकस्यो तो लागो अनठाही करह बुराई ठगाई दिन रहन निफल कर्म कमाही कण नाही तुहो गाहन लागे ताए ताए दुख पाही मिथ्या संग कूड़ लपटायो उर्ज

जो प्रभु मलाया जिस मस्तक लेख लिखाही। कहो नानक तिन जन बलिहारी जो अलिप रहे मन माही। सारंग महला पंजवां क्यों जीवन प्रीतम बिन माई। जाके बिसरत होत मृत का ग्रह मह रहन ना पाई रहाओ। जी ही प्राण को दाता जा कै संग सुहाई। करहु कृपा संतो मोहे अपनी प्रभ मंगल गुण गाई। चरण संतन के माथे मेरे ऊपर नैन हो तूर बाशाई। जिहे प्रसाद मिलिया प्रभ नानक बल बल ता कह हो जाई। सार महला पंजवां वा अवसर कह हो बल जाई। आठ पहर अपना प्रभ सिमरन वड भागी हर पाई रहाओ। भलो कबीर दास दासन को उत्तम सैन जन नाई। ऊच ते ऊच नाम देहो समदर्सी रविदास ठाकुर बन आई। जियो पिंड तन तन साधन का एहो मन संतरे नाई। संत प्रताप परम सब नासे नानक मिले गुसाई। सार महला पंजवां मनोरथ पूरे सतगुरे आप सगल पदार्थ सिमरन जाके। आठ पहर मेरे मन जाप रहाओ। अमृत नाम स्वामी तेरा जो पीवै तिस ही त्रिपतास। जन्म जन्म के किलबिख नस है आगे दरगाह हुए खलास। शरण तुम्हारी आयो करते पार ब्रह्म पूर्ण अभनास। कर कृपा तेरे चरण त्याव नानक मन तन दर्श प्यास। सार महला पंजवां कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन कहां लभाइए आ

यह अघावन पान को अकाल मूर्त है साध संतन की था हरने की ध्यान को वाणी मंत्र महापुरखन की मन है उतारन मान को खोज लहो नानक सुख थाना हर नामा विश्राम को सार महला पंजवा मन सदा मंगल गोविंद गाय रोग सोग तेरे मिट है सगल अग निमख ही है हर नाम त्याय रहाओ छोड़ सियानप बहो चतराई साधु सरनी जाए पाए जो हुए कृपाल दीन दुख भंजन जमते होए धर्म राय एक सबिन नाही को दूजा आनना बियो लवे लाए मात पिता भाई नानक को सुखदाता हर प्राण साई सार महला पंजवा हर जन सगल उधारी संग के पये पनीत पवित्र मन जन्म जन्म के दुखारे रहाओ मार्ग चले तिन्नी सुख पाया जिन स्यो गोष्ट से तरे बूढ़त कोर अंधकूप मह ते साधु संग पार परे जिनके भाग बड़े हैं भाई तिन साधु संग मुख जोरे तिनकी धूर बांचे नित नानक प्रभ मेरा कृपा करे सार महला पंजवा हर जन राम राम राम त्याय एक पलक सुख साध समागम।

पतित के पातक उत्तर है, हर नामा उर तार है। जो जो सुने राम जस निर्मल, ताका जन्म मरण दुख नासा, कहो नानक पाई है वड़ भागी।

मान करो अब मान बोलो भूल चूक तेरी प्रिय क्रिया रहाओ निकट सुनो हर पेखो नाही परम परम दुख परिया होए कृपाल गुरलाहे पार दो मिलो लाल मन हरिया एक निमख जे बिसरे स्वामी जानो कोट दिन सलाख बरिया साध संग

तुम ही सुगर सुजाना सगल जोग अर ज्ञान ध्यान एक निमख ना कीमत जाना तुम ही नायक तुम है शत्रपत तुम पूर रहे भगवाना पामु दान संत सेवा हर नानक सद कुर्बाना सार महला पंजवा मेरा मन चीत आए प्रियरंगा विसरयो तंद बंद माया को रजन सबाई जंगा रहाओ हर सेवो हर हृदय बसावो हर पाया सतसंगा ऐसो मिलो मनोहर प्रीतम सुख पाए मुख मंगा प्रियो अपना गुर बस कर दीना भोगों भोग न संगा निरपौ भय नानक पौ मिटिया

आद मेरे श्रवण हो पूरे देहात्रय अंक सुमानी रहाओ छूटर ते गुर की सुहागन हर पायो सुगुण सुजानी जे घर मह बैसन नहीं पावत सो थान मिलियो बासानी उनके बास आयो भगत बचल जिन राखी आन संतानी कहो नानक हर संग मन।

दर्शन देख पए मन आनंद गुर कृपा ते छूटा रहाउ बिखम थान बहुत बहुत धरिया अनक राख सुरूपता बिखम गार कर।

के दुख सहामा गोविंद भजन के निर्भय व्यापारी हर रास नानक राम नामा सार महला पंजवा मेरा मन मिष्ट लगे प्रिय बोला गुरबाह पकड़ प्रभ सेवा लाए सद दयाल हर ढोला रहाओ प्रभ तू ठाकुर सर्व प्रित पालक मोहे कलत्तर सहत सब गोला मान तान सब तू है तू है एक नाम तेरा मैं बोला जे तख्त बसाल है तो दास तुम्हारे कास बढ़ाव है के तक बोला जन नानक के प्रभ पुरख बधाते मेरे ठाकुर अगह अतोला सार महला पंजवा रसना राम कहत गुण सोहं एक निमख पाए समावे देख चरित मन मोहं रहाओ जिस सुनिए मन हुए रहस्यत हृदय मान दुख जोहं सुख पायो दुख दूर परायो बाण आई प्रभ तोहं किल विख गए मन निर्मल होई है गुर काटे माया द्रोहं कहो नानक मैं सो प्रभ पाया करन कारण समरथोहं सारं महला पंजवा नैनहुं देखियो चलत तमाशा सब हूं दूर सब हूं ते नेरे अगम अगम घट।

द्वार बना है भक्त वशल गुण तासा अंध कूप में दीपक बलेओ गुर हृदय कियो परगासा कहो नानक दर्श पेख सुख पाया सब पूरन होई आसा सारंग महला पंजवा चरण है गोविंद मार्ग सुहावा आन मार्ग जेता किश ताई ते तो ही दुख हावा रहाओ नेत्र पनीत पये दर्श पेखे हस्त पनीत टहलावा हृदय पनीत हृदय हर बसेओ मस्त पनीत संत तुरावा सर्ब निदान नाम हर हर कै जिस कर्म लिखिया तिन पावा जन नानक कहो गुर पूरा भेट्यो सुख सहजे आनंद बिहावा सारंग महला पंजवा त्यायो अंत बार नाम सखा जह मात पिता सुत भाई ना पहुंचे तहां तहां तू रखा रहाओ अंध कूप ग्रह मह तिन सिमरियो जिस मस्तक लेख लिखा खुले बंधन मुक्त गुर कीनी सब तू है तू ही दिखा अमृत नाम पिया मन तृप्तिया अघाए रसन चखा कहो नानक सुख सहज मैं पाया गुर लाही सगल तिखा सार महला पंजवा गुर मिले ऐसे प्रभु ते आया पयो कृपाल दयाल दुख भंजन लगे ना ताती बाया रहाओ जेते सास सास हम लेते तेते ही गुण गाया निमख न बिसरे करी न बिसरे सद संगे जात जाया हौ बल बल बल बल चरण कमल कहो बल बल गुर दरसाया कहो नानक काहू परवाहा जो सुख सागर में पाया।

परगासा कट कट हर हर डीठा रहाओ पार ब्रह्म आजो नी संभव सर्व थान घट बीठा पयो प्राप्त अमृत नामा बल बल प्रभ चरणीठा सत संगत की रेण मुख लागी किए सगल तीर्थ मजनीठा कहो नानक रंग चलूल पए है हर रंग न लह मजीठा सारंग महला पंजवा हर हर नाम दियो गुर साथे निमख बचन प्रभ हियरै बसेओ सगल

जुतिया आस बराथे नैन त्रिपतासे देख दरसावा गुर कर धारे मेरे माथे कहो नानक मैं अतुल सुख।

पूल पूल बेख खाई रहाओ प्रभ सुंदर चतुर अनूप बधाते तिस स्यों रुच नहीं राई मोहन स्यों बावर मन मोहयो झूठ ठगौरी पाई भयो दयाल कृपाल दुख हरता संतन स्यों बन आई सगल निदान करै मह पाई कहो नानक जोत समाई सारंग महला पंजवा वंग प्रिय प्रीत चीत पहलरिया जो तौ बचन दियो मेरे सतगुर तौ मैं साज सिंगरिया रहाओ हम भूले हैं तुम सदा अभूला हम पतत तुम पतत उधरिया हम नीच बिरख तुम मैलागर लाज संग संग बसरिया तुम गंभीर तीर उपकारी हम क्या बपरे जंतरिया।

कार्य सब सवरे अहंग रोग सगल ही खया कोट पराध खिन मह खो पई है गुर मिल हर हर कहया पंच दास गुर वसगत कीने मन निश्चल निर्भया आए ना जावे ना कत ही डोले थिर नानक राजया सार महला पंजवा प्रभ मेरो इते उत सदा सहाय मन मोहन मेरे जी को प्यारो कमन कहां गुन गाई रहाओ खेल खलाए लाड लडावे सदा सदा अनदाई प्रतपाल बारक की न्याई जैसे मात पिताई तिस बिन निमक नहीं रह सकी है बिसरना कब हूं जाई कहो नानक मिल संत संगत ते मगन पए लिवलाई सारंग महला पंजवा अपना मीत स्वामी गाईए आसना अवर काहू की कीजे सुखदाता प्रभ त्याईए रहाओ सुख मंगल कल्याण जिसह कर तिस ही सरणी पाईए किसह त्याग मनुख जे सेव हो तो लाज लोन होए जाइए एक ओट पकरी ठाकुर की गुर मेल मत बुद्ध पाईए गुण निधान नानक प्रभ मिलिया सगल चुकी मोहताइए सारंग महला पंजवा ओट सतानी प्रभ जियो मेरे दृष्ट न लियावो अवर काहू को मान महत प्रभ तेरे रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने काड लिया बिख केरे अमृत नाम।

सूझै प्रभ बिन कहो को किस पह जासी ज्यों जान हो त्यों राखो ठाकुर सब किस तुम ही पासी हाथ दे राखे प्रभ अपने सद जीवन अपनासी कहो नानक मन अनंद भया है काटी जम की फासी सारंग महला पंजवा मेरो मन जत कत तुझ सुमहार हम बारक दीन पिता प्रभ मेरे ज्यों जान है त्यों पारे रहाल जब भूखो तब भोजन मांगे अगाए सुख सघारे तब अरोग जब तुम संग बसतो छुटकत होए रवारे कमन बसेरो दास दासन को थापियो थापन हारे नाम न बिसरे तब जीवन पाइए बिनती नानक एह सारे सारंग महला पंजवा मन ते पै पहो दूर परायो लाल ब्याल गुलाल लाडले सहज सहज गुण गायो रहाव गुर बचनात कमात कृपाते बहुर न कतहुं तायो रहत उपाद समाद सुख आसन भगत वच्छल ग्रह पायो नाद बनोद कोड आनंदा सहजे सहज सुमायो करना आप करावन आपे कहो नानक आप आपायो सार महला पंजवा अमृत नाम मनह आधारु जिन दिया तिस कह कुर्बान गुरपूरे नमस्कारु रहाओ बूझी तृष्णा सहज सुहेला काम क्रोध बिख जारु आए ना जाए बसै एह ठाहर जह आसन रंकारु एक प्रगट एक गुप्ता एक तुंडू कारु आदमा अंत प्रभ सोई कहो नानक साच बीचारु सारंग महला पंजवा बिन प्रभ रहन ना जाए करी सर्ब सुख ताहू कै पूरन जा कै सुख है हरी रहाओ मंगल रूप प्राण जीवन तन सिमरत आनंद कना बड समरथ सदा सद संगे गुण रसना कमन पना थान पवित्रा मान पवित्रा पवित्र सुनन कहन हारे कहो नानक ते पवन पवित्रा जा मह संत तुम्हारे सारंग महला पंजवा रसना जपती तू ही तू ही मात गर्भ तुम ही प्रतपालक मृत मंडल एक तू ही।

सह संगी ऊहा नाही जह पारी तिन स्यो राच माच हित लायो जो काम नहीं गावारी हौ नाही नाही किश मेरा ना हमरो बस चारी करन करावन नानक के प्रब संतन संग उधारी सार महला पंजवा मोहनी मोहत रह ना होरी साधक सिद्ध सगल की प्यारी टुटे ना काहू तोरी रहाओ खट शास्त्र उचरत रसनागर तीर्थ गमन ना थोरी पूजा चक्कर बर्त नेम तपिया ऊहा गैल ना छोरी अंध कूप मह पतत होत जग संत हो करहो परम गत मोरी साध संगत नानक पयो मुक्ता दर्शन पेखत पूरी सारी महला पंजवा।

के हरेउ ऊहा ले तरेउ जैसे बासा मास देत चाटली देवनहार बसारेउ अंदुले ज्यों सफरी उदर पर है बह हाटली साध बकार बकार झूठ रस जह

सेवक की आप की ओ बंधान आद जगाद सेवक की राखै नानक को प्रभ जान। सारंग महला पंजवा तू मेरे मीत सखा हर प्राण मन तन जियो पिंड सब तुमरा एहो तन सीतो तुमरे तान रहाओ। तुम ही दिए अनक प्रकारा तुम ही दिए मान सदा सदा तुम ही पात राखो अंतर जामी जान। जिन संतन जानिया तू ठाकुर ते आए परवान जन का संग पाइय वडभागी नानक संतन कै कुर्बान। सारंग महला पंजवा।

ते ऊचो अंत नहीं मर जात। वर्ण ना साखो नानक महिमा एक रहे बिस्माद सारंग महला पंजवा।

कहाउ समझ अचेत चेत मन मेरे कथी संतन अकथ कहानी लाभ लै हो हर हृदय अराध हो छुटकै आवन जानी उदम सकत सियाणप तुमरे देहे ता नाम बखानी से भगत भगत से लागे नानक जो प्रभु पहानी सारी महला पंजवा तनवंत नाम के बनजारी सांझी करहो नाम तन खाट हो गुर का शब्द विचारे रहाओ छोड़ हो कपट होए निर्वैरा सो प्रभ संग निहारी सच तन बन जो हो सच तन संचो हो कबहू ना आव हो हारी खात खर्चत किसन खुटत नाही अगंत परे पंडारी कहो नानक सोबा संग जाव हो पार ब्रह्म कै द्वारे सारंग महला पंजवा प्रभ जी मोहे कमन अनाथ बेचारा कमन मून ते मनुख करया एहो पर

हर के नामहीन मत थोरी, सिमरत नाहे श्री तर ठाकुर, मिलत अंध दुख घोरी रहाओ। हर के नाम स्यों प्रीत न लागी, अनक भेख बहु जोरी, टूटत बार न लागै ताको, ज्यो गागर जल फोरी। कर कृपा भगत रस दीजै, मन खचत प्रेम रस खोरी। नानक दास तेरी सरनाई, प्रभ बिनयान न होरी। सारंग महला पंजवां, चितवो वा अवसर मन माहे, हुए अकत्तर मिलहो संत साजन, गुण गोविंद नित गाहे रहाओ। बिन हर भजन जेते काम करिय है, तेते बिरथे जाहे, पूर्ण परमानंद मन मीठो, तिस बिन दूसर नाहे। जप तप संयम कर्म सुख साधन, तोलना कछु ऐ लाहे। चरण कमल नानक मन बेदेओ, चरण है संग समाहे। सारंग महला पंजवां, मेरा प्रभु संगे अंतर जामी, आग्या कुशल पाशै खेम सूखा, सिमरत नाम स्वामी रहाओ। साजन मीत सखा हर मेरे, गुण गोपाल हर राया, बिसरना जाई।

तिस सोए उद्म करो दर्शन पेखन कहो कर्म प्राप्त होए। गुर प्रसादी दृष्ट निहारो दूसर नाही कोए, दान दे नानक अपने को चरण जीवा संत तोए। सारू महला पंजवा जीवत राम के गुण गाए, करहु कृपा गोपाल बीठले बिसरना कब ही जाए रहाओ। मन तन धन सब

तेरी सरनाई ज्यो भावै तिवै चलाई सारंग महला पंजवा मन रे नाम को सुख सार आन काम विकार माया सगल दी सह शार रहाव ग्रह अंध कूप पतत प्राणी नरक घोर गुबार अनक जोनी भ्रमत हारे हो भ्रमत बारंबार पतत पावन भगत बच्छल दीन कृपा तार कर जोड़ नानक दान मांगे साध संग उधार सारंग महला पंजवा विराजित राम को प्रताप आद बियाद उपाद सब नासी।

मन तन आत्म त्राप काम क्रोध लोभ मद मत्सर साधु कै संग खाप भगत वचल भय काटन हारे नानक के माई बाप सारंग महला पंजवां आतुर नाम बिन संसार त्रिपत न होवत कुकरी आसा इत लागो बिखिया चार रहाओ पाए ठगौरी आप पलायो जन्मत बारो बार हर का सिमरन निमख ना सिमरियो जम कंकर करत खुआर हो कृपाल दीन दुख पंजन तेरिया संत है की रवार नानक दास दर्स प्रभ जाचे मन तन को आधार सारंग महला पंजवां मैला हर के नाम बिन जियो तिन प्रभ साचे आप भुलाया बिखै ठगौरी पियो रहाओ कोट जन्म भ्रम तो बहु भांति थित नहीं कतहु पाई पूरा सतगुर सहज ना भेटिया साकत आवै जाई राख ले हो प्रभ समृत दाते तुम प्रभ अगम अपार नानक दास तेरी सरनाई पव जल उतरियो पार सारंग महला पंजवां रमण कौ राम के गुणबाद साध संग त्याई परमेश्वर अमृत जाके स्वाद रहाओ सिमरत एक अचुत अबनासी बिनसे माया माद सहज आनंद अनहद धुन बाणी बहुर न पये बिखाद सनकादक ब्रह्मादक गावत गावत सुख प्रहलाद पीवत अमेओ मनोहर हर रस जप नानक हर बिस्माद सारंग महला पंजवां कीने पाप के बहु कोट दिन सरैणी थकत नाही कतह नाही छोट रहाव महाबज्जर बिख ब्यादी सिर उठाई पोट उगर गन्या खिनह पीतर जमह ग्रासे झूट पशु परेत उष्ट गर्धव अनक जोनी लेट भज साध संग गोविंद नानक कछ ना लागै फेट सारंग महला पंजवां अंधे खावह बिसु के गताक नैन श्रवन शरीर सब हुट्यो सास गयो तत घाट रहाओ अनाथ रिझान उदर लै पुख है माया गईया हाट किल बिख करत करत पछताव है कबू ना साक है शांत निंदक जमदूती आए संघारेओ देव है मूड उपर मटाक नानक आपन कटारी आपस को लाई माने अपना की नो फाट सारंग महला पंजवां टूटी निंदक की अद बीच जन का राखा आप स्वामी बेमुख को आए पहुंची मीच रहाव उसका कहया कोई ना सुनी कहीं ना बैसन पावे इहां दुख आगे नरक पुंचे बहु जोनी परमावे प्रगट भया खंडी ब्रह्मणी कीता अपना पाया नानक शरण निरपहु करते की आनंद मंगल गुण गाया सारंग महला पंजवां तृष्णा चलत बहु प्रकार पूर्ण होत न कतहु बात है अंत प्रतिहार रहाओ सांत सूख ना सहज उपजे यह इस व्यवहार आप पर का

पर वार रहाओ। कर मस्तक धार्यो मेरे माथे, साध संग गुण गाए, तुमरी कृपा ते सब फल पाए, रसक राम नाम त्याए, अब चलनी मतराई सतगुर, कबहू डोलत नाही, गुर नानक जब भये दयारा, सर्व सुखा निद पाही। सारंग महला पंजवां, निभहि नाम की सच खेप, लाभ हर गुण गाए नित धन, बिखै माहे अलेप रहाओ। जी जंत सगल संतोखे, अपना प्रभ त्याए, रतन जन्म अपार जीत्यो।

मन मोहिउ अचरजता के स्वाद रहाउ। मात पिता बंदप है सोई मन हर को अहलाद। साध संग गाए गुन गोबिंद बिन सेउ सब परमाद। डोरी लपट रही चरन संग ब्रह्म पै सगले खाद। एक आधार नानक जन किया बहुर ना जोन परमाद। सारंग महला पंजवा माई री माती चरण समूह। एक सबिन हो आन ना जानो द्वितीया भाउ सब लूहु रहा। त्याग गोपाल अवर जो करना ते बिखिया के खूह। दर्श प्यास मेरा मन मोहयो काडी नरक ते तुहू। संत प्रसाद मिलियो सुख दाता बिनसी हूं मैं हू। राम रंग राते दास नानक मौल्यो मन तन जूहू। सारंग महला पंजवा बिनसे काच के व्यवहार। राम भज मिल साध संगत यह जग मह सार रहाव। ईत ऊत ना डोल कतहू नाम हृदय तार। गुर चरण बोहत मिलियो भागी उतरियो संसार। जल थल महियल पूर रहियो सर्वनाथ अपार। हर नाम अमृत पियो नानक आन रस सब खार। सारंग महला पंजवा ताते करन पलाहा करे महा विकार मोह मद मातो। सिमरत नाही हरे रहाओ साध संग जपते नारायण तिनके दोख जरे। सफल दे तन ओए जन्मे प्रभ कै संग रले। चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध सभी ऊपर साध भले। नानक दास धूर जन बांचे उदरह लाग पले। सारंग महला पंजवा हर के नाम के जन कांखी। मन तन बचन एही सुख चाहत प्रभ दर्श देख है।

पुर दर्श त्यानी निकट वर्तन सा सदा सुहागन दह दिस साई जानी प्रिय रंग रंग रती नारायण नानक तिस कुर्बानी सारंग महला पंजवा त्वा चरण आसरो ईस तुम्हें पछानू साख तुम्हें संग।

तू बेअंत अपरंपर स्वामी गुर कृपा कोई लाख है। बिन बकने बिन कहन कहावन अंतर जामी जाने जां को मेल लए प्रभ नानक से जन दरगाह मानी। सारंग महला पंजवा चौपदे घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर भज आन कर्म बेकार मान मोह ना बुझत तृष्णा काल ग्रस संसार रहाउ खात पीवत हस्त सोवत औद बिति आसार नरक उदर परमंत जल तो जमह की निसार पार द्रोह करत बेकार निंदा पाप रत कर चार बिना सतगुर बूझ नाही तम मोह महा अंधार बिख ठगौरी खाए मूठो चेतना सिरजनहार गोविंद गुप्त होए रहो नियारू मातंग मत अहंकार कर कृपा प्रभ संत राखे चरण कमल आधार कर जोर नानक सरने आयो गोपाल पुरख अपार सारंग महला पंजवा कर सेवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद शुभ बचन बोल गुण अमोल किंकरी बेकार देखरी विचार गुर शब्द त्याए महल पाए हर संग रंग करती।

सर्वरी प्रीत प्यार प्रभ सदारी दयार काए आन आन रुचि है हर संग संग खची है जो साध संग पाए कहो नानक हर त्याए अब रहे जमह मेल सारंग महला पंजवा कंचना बहु दत करा भूम दान अर्प धरा मन अनक सोच पवित्र करत नाही रे नाम तुल मन चरण कमल लागे रहाओ चार वेद जेहव भने दस अष्ट खष्ट सरवन सुने नहीं तुल गोविंद नाम तुने मन चरण कमल लागे वर्त संद सोच चार क्रिया कुंत निराहार अपरस करत पाक सार निवली कर्म बहु विस्तार धूप दीप करते हर नाम तुल ना लागे राम दयार सुन दीन बेनती देहो दर्श नैन पेखो जन नानक नाम मिष्ट लागे सारंग महला पंजवा राम राम राम जाप रमत राम सहाई रहाओ संतन कै चरण लागे काम क्रोध लोभ त्यागे गुरु गोपाल भये कृपाल लभदे अपनी पाई बिनसे भ्रम मोह अंध टूटे माया के बंद पूर्ण सर्वत्र ठाकुर नह को बैराई स्वामी सो प्रसन्न भये जन्म मरण दुख गए संतन कै चरण लाग नानक गुन गाई सारंग महला पंजवा हर हरे हर मुखो बोल हर हरे मन तारे रहाओ श्रवन सुनन भगत करन अनक पातक पुनः चरण शरण परन साधु आन वान बिसारे हर चरण प्रीत नीत नीत पाम नाम महापनीत सेवक भय दूर करन कलमल दुख जारे कहत मुकत सुनत मुकत रहत जन्म रहते राम राम सार पूत नानक तत बीचारे सारंग महला पंजवा नाम भगत मांग सन।

जन की रेन बांछ दैन हार स्वामी सर्ब कुशल सुख विश्राम आनंदा आनंद नाम जम की कछ नाही त्रास सिमर अंतर जामी एक सरन गोविंद चरण संसार सगल ताप।

ता जो साध संग पागरों रहाव दृष्टो कस संग न जाय मान त्याग मोहा एक हर प्रीत लाए मिल साध संग सोहा पायो है गुण निदान सगले आस पूरी नानक मन आनंद पए गुर बिकम गार तोरी सारंग महला पंजवा मन बेरागैगी खोजती दरसार रहाओ साधु संतन सेवकै प्रियो ही अरै त्यायो आनंद रूपी पेख कै हौ महल पावोंगी काम करी सब त्याग कै हौ शरण परूंगी नानक स्वामी घर मिले हौ गुर मनाऊंगी सारंग महला पंजवा ऐसी होए परी जानते दयार रहाओ मातर पितर त्याग कै मन संतन पाहे बिचायो जात जन्म कुल खोइया हौ गावो हर हरि लोग कटम्ब ते टूटिया प्रभ किरत किरत करी गुरमुखो उपदेसिया नानक सेव एक हरी सारंग महला पंजवा लाल लाल मोहन गोपाल तू कीत हस्त पाखान जंत सर्ब मैं प्रतपाल तू रहाओ नह दूर पूर हजूर संगे।

नौ परी चुनातकार सुंदर अनग भाव करत फिरत बिन गोपाल तुहे रहाओ तीन पौने लपटाए रही काच कर्म ना जात सही उनमत अंध तंद रचत जैसे महासागर होहे उदरे हर संत दास काट दीनी जम की फास पतत पावन नाम जाको सिमर नानक ओहे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सारंग महला नौवा हर बिन तेरो को ना सहाय का की मात पिता सुत बनता को काहू को पाई रहाओ तन धरनी अर संपत सगरी जो मान्यो अपनाई तन छूटै कछ संग ना।

जगत सब मिथ्या ज्यों सुखना रह नाई सारंग महला नौवा कहां मन बिखिया स्यों लपटाही या यग महकू रहन ना पावे एक आवह एक जाही रहाओ कां को तन धन संपत कां की का स्यों नेहो लगाई जो दिसै सो सगल बनासै ज्यो बादर की शाही ताज अभमान सरन संतन गहो मुक्त हो हे शिन माही जन नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपने पी नाही सारंग महला नौवा कहां नर अपनो जन्म गवावे माया मद बिखिया रस रचियो राम शरण नहीं आवे रहाओ इह संसार सगल है सुपनो देख कहां लोभावे।

जन नानक सो जन मुक्ता राम भजन चित लावे सारंग महला नौवां मन कर कबहू ना हर गुण गायो बिख्या सकत रहो निस बासुर कीनो अपनो पायो रहाओ गुर उपदेश सुनियो नह कानन पर दारा लपटायो पर निंदा कारण बहु तावत समझियो नह समझायो कहां कहो मैं अपनी करनी जिह बिद जन्म गवायो कह नानक सब औगन मोह मह राख लेहो सरनायो राग सारंग अष्टपदियां।

सूझै पाए मोख द्वारा, जिन दर सूझै से कदे ना बगाड़े। सतगुर बूझ बुझाई सत संयम करनी किरत कमावे, आवण जान रहाई से दर साचै साच कमावे। जिन गुरमुख साच आधारा, मन मुख दूजै परम भुलाए, ना बूझै विचारा। आपे गुरमुख आपे देवै, आपे कर कर वेखै, नानक से जर थाए पए हैं।

करन करावन अपाए समावन सगल सत्र पत बीठा रहाउ। राणा राव राज भय रंका उन झूठे कहन कहायो। हमरा राजन सदा सलामत ताको सगल घटा जस गायो। उपमा सुनहो राजन की संतो कहत जेत पहुंचा। बेशमार वद साहदा तारा ऊचे ही ते ऊचा। पमन परोयो सगल अकारा पावक काष्ट संगे। नीर तरन कर राखे एकत कोए ना किसी ही संगे। काट काट कथा राजन की चाल कर कर तुझे उमाहा। जी जंत सब पाछे करया प्रथमे रिजक समाहा। जो किछ करना सो आपे करना मसलत काहू दीनी। अनक जतन कर करह दिखाए साची साखी चीनी। हर भगतां कर राखे अपनी दीनी नाम बढ़ाई। जिन जिन करी अवग्या जन की ते तैं दिए रुढ़ाई। मुक्त भए साध संगत कर तिनके अवगन सब पर हरिया। तिनको देख भए कृपाला तिन भव सागर तरिया। हम नाने नीच तुमे बद साहिब कुदरत कौन बीचारा। मन तन शीतल गुरदर्श देखे नानक नाम आधारा। सारग महला पंजवा अष्टपदी घर छेवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद अगम अगाध सुनो जन कथा। पार ब्रह्म की अचरज सभा रहाउ। सदा सदा सतगुर नमस्कार गुर कृपा ते गुण गाए अपार। मन भीतर होवे परगास ज्ञान अंजन अज्ञान बनास। मित नाही जाका विस्थार सोभा ताकी अपर अपार। अनक रंग जाके गने ना जाहे सोग हरख दोहु मैं नाहे। अनक ब्रह्मे जाके वेद तुन करह अनक महेश बैस ध्यान धरह। अनक पुरख अंसा अवतार अनक इंदर उभे दरबार। अनक पवन पावक अरनीर अनक रतन सागर दाद खीर। अनक सूर ससियर नख्यात अनक देवी देवा बहुपात। अनक बसुदा अनक कामतेन अनक पार जात अनक मुखवेन। अनक आकाश अनक पाताल अनक मुखी जपिया गोपाल। अनक शास्त्र सिमरत पुराण अनक जुगत होवत बखियान। अनक सरोते सुनह निदान सर्व जी पूर्ण भगवान। अनक धर्म अनक कुमेर अनक वर्ण अनक कनक सुमेर। अनक सेख नवतन नाम ले पार ब्रह्म का अंत ना ते। अनक पुरिया अनक तह खंड अनक रूप रंग ब्रह्मांड। अनक बना अनक फल मूल आपह सूक्ष्म आपह असथूल। अनक जुगाद दिनस अर रात अनक परलो अनक उत्पात। अनक जी जाके ग्रह माहे रमत राम पूर्ण सर्ब ठाए। अनक माया जाकी लखी ना जाए अनक कला खेले हर राय। अनक तुनत ललत संगीत अनक गुपत प्रगटे तह चीत। सब ते ऊच भगत जा कै संग आठ पहर गुण गावह रंग। अनक अनाहद आनंद चुनकार वा रस का काश अंत ना पार। सत पुरख सत स्थान ऊच ते ऊच निर्मल निर्वाण। अपना किया जन है आप आपे घट घट रहे हो बे आप। कृपा निदान नानक दयाल जिन जपया नानक ते पहे निहाल। सारंग संत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सब देखिए अनपह का दाता कट कट पूर्ण है अलपाता। कट कट पूर्ण कर बिस्थिरन जल तरंग स्यो रचन किया। अब रस माने भोग कटाने आन ना बिया कोथिया। हर रंगी एक रंगी ठाकुर संत संग प्रभ जाता। नानक दर्श लीना ज्यों जल मीना सब देखिए अनपह का दाता।
कौन उपमा देवो कमन बढ़ाई, पूर्ण पूर रहो सब ठाई, पूर्ण मन मोहन कट कट सोहन, जब खिंचे तब शाई, क्यों न अराध हो मिलकर साधु हो, करी मोहतक बेला आई, अर्थ दर्ब सब जो किस दिसे, संग न कछु हूं जाई, कहो नानक हर हर अराध हो।

अंग अंग सुखदाई पूर्ण ब्रह्माई थान थान अंतर देसा बंधन ते मुक्ता कट कट जुगता कह ना सको हर जैसा देख चरित नानक मन मोहयो पूछे दीन मेरो ठाकुर कैसा कर कृपा अपने पह आया तन सोरदा जेह चरण बसाया चरण बसाया संत संगाया अज्ञान अंधेर गुआया भया प्रगास हृदय उलास प्रभ लोड़ींदा पाया दुख नाठा सुख घर मह बूठा महा आनंद सहजाया।

की धुन एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला दूजा गुर कुंजी पाहु निवल मन कोठा तन छत नानक गुरबिन मन का ताक न उगड़े अवर न कुंजी हाथ महला पहला ना पी जय रागी ना दी वेद ना पी जय सुरती ज्ञानी योग ना पी जय सोगी की तैरोज ना पी जय रूपी माली रंग ना पी जय तीत पवे नंग ना पी जय दाती की तै पुन ना पी जय बाहर बैठिया सुन ना पी जय भेड़ मरह भिड़ सूर ना पी जय केते होए धूड़ लेखा लिखिए मन कै पाए नानक पी जय साचे नाए महला पहला नव शे खटका करे विचार निस दिन उचरै पार अठार तिन पी अंत न पाया तोहे नाम बिहून मुक्त क्यों होए नाभ वस्त ब्रह्म अंत ना जानिया गुरमुख नानक नाम पछाणिया पौड़ी आपे आप निरंजना जिने आप उपाया आपे खेल रचायोन सब जगत सबाया त्रै गुण आप सिरजियन माया मोह वधाया गुर प्रसादी उबरे जिन पाणा पाया नानक सच वरतदा सब सच समाया।

देखे तंदे लाई, किसै थोड़ा किसै अगला, खाली कोई नाही। आवह नंगे जाही नंगे, विचे करह वथार, नानक हुक्म ना जानिए अग्गे काई कार। महला पहला, जिन सथाप जिया को भेजे, जिन सथाप ले जावे।

आवे मूल मत परवाना एहो नानक आख सुनाए करनी उपर होए तपावस जे को कह कहाए पौड़ी गुरमुख चलत रचाय उन गुण प्रगटी आया गुरबाणी सद उच्चरै हर मन वसाया सकत गई भ्रम कटिया शिव जोत जगाया जिनकै पोतै पुन है गुरपुरख मलाया नानक सहजे मिल रहे हर नाम सुमाया सलोक महला दूजा सा चले बन जा रिया लिखिया देवै नाल लिखे उपर हुक्म होए लइए वस्त सुमाल वस्त लई बन जारी वखर बद्दा पाए के इलाहा लै चले एक चले मूल गवाए थोड़ा किने ना मंगियो किस कहिए साबास नदर तिन्ना को नानका जे साबत लाए रास महला पहला जुड़ जुड़ विछड़े विछड़ जुड़े जीव जीव मोए मोए जीवे केतियां के बाप केतियां के बेटे केते गुर के ले हुए आगे पाछे गणत ना आवे क्या जाति क्या हुण हुए सब करना किरत कर लिखिए कर कर करता करे करे मन मुख मरिए गुरमुख तरिए नानक नदरी नदर करे पौड़ी मनमुख दूजा परम है दूजा लोभाया कूड़ कपट कमावंदे कूड़ो आलाया पुत्र कलत्र मोह हेत है सब दुख सबाया जमदर बद्दे मारी है परम है परमाया मनमुख जन्म गवाया नानक हर पाया सलोक महला दूजा जिन वडियाई तेरे नाम की तेरते मन माहे नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाहे नानक अमृत मने माहे पाइए गुर प्रसाद तिन्नी पीता रंग सिउ जिनको लिखिया आद महला दूजा कीता क्या सलाही है करे सोए सलाहे नानक एक ही बाहरा दूजा दाता नाहे करता सो सलाही है जिन कीता आकार दाता सो सलाही है जे सब सह दे आधार नानक आप सदीव है पूरा जिस भंडार वड्डा कर सलाही है अंत ना पारावार पौड़ी हर का नाम निदान है सेवे है सुख पाई नाम निरंजन उच्चरा पत सिओ कर जाई गुरमुख बाणी नाम है नाम हृदय वसाई मत पंखे रू वस होए सतगुरु त्याई नानक आप दयाल होए नामे लिव लाई सलोक महला दूजा किस सिओ कैसा बोलना जे आपे जाने जान चीरी जा की ना फिरे साहिब सो परवान चीरी जिसकी चलना मीर मलक सालार जो तिस भावे नानका साई भली कार जिन्ना चीरी चलना हाथ

की पढ़िया सच ध्यान पानी चेतना धुपै मुख पीता तिख जाए पानी पिता जगत का फिर पानी सब खाए पौड़ी नाए सुनिए सब सिद्ध है रिद पिछे आवे नाए सुनिए नौ निध मिले मन चिंदिया पावे नाए सुनिए संतोख होए कबला चरण ते आवे नाए सुनिए सहजी उपजे सहजी सुख पावे गुरमति नाउ पाईए नानक गुण गावे सलोक महला पहला दुख विच जम्मन दुख मरन दुख वर्तन संसार दुख दुख अगे आखिए पढ़ पढ़ करह पुकार दुख किया पन्ना खुलिया सुख ना निकलियो कोए दुख विच जियो जलाया दुखिया चलिया रोए नानक सिफती रतिया मन तन हरिया होए दुख किया अग्नि मारी है ई दुख दारू होए महला पहला नानक दुनिया पास रंग पशु हूं पास खे पशु पास कमावनी पी पास परिया दे जां जियो विचों कढ़िए पशु परिया जाए अग्गे लेखे मंगिए होर दसूनी पाए पौड़ी नाए सुनिए सुच संयमो जम नेड़ ना आवे नाए सुनिए घट चानना अनेर गुआवे नाए सुनिए आप बुझिए लाहा ना पावे नाए सुनिए पाप कटिए निर्मल सच पावे नानक नाए सुनिए मुख उजले नाउ गुरमुख त्यावे सलोक महला पहला कर नारायण सभा नाल पूज करे रखे नवाल कुंगू चन्नन फुल चढ़ाए पैरी पै पै बहुत मनाए माणुआ मंग मंग पहने खाए अंधी कमी अंध सजाए।

हुक्म चलाए अपने करमी वह कलाम, नानक सच्चा सच नाए सच सभा दीबान पौड़ी, नाए मने सुख उपजे नामे गत होई, नाए मने पत पाईए हिरदय हर सोई, नाए मने पव जल लंघिए फिर बिघन ना होई, नाए मने पंथ प्रगटा नामे सब लोई, नानक सतगुर मिले नाओ मनिए जिन देवे सोई। श्लोक महला पहला। पुरियां खंडा सिर करे इक पैर ते आए, पौन मार मन जप करे सिर मुंडी तले दे, किस ऊपर ओह टिक टिक किसनो जोर करे, किसनो कहिए नानका किसनो करता दे, हुक्म रहाए अपने।

सब कारण करता करी देखै वारु वार जे चुपै जे मंगै दात करे दातार एक दाता सब मंगते फिर देखै आकार नानक ए मैं जानिया जीवै देवन हार पौड़ी नाए मन्या सुरत उपजै नामे मत होई नाए मन्या गुण उच्चरै नामे सुख सोई नाए मन्या भ्रम कटिया फिर दुख न होई नाए मन्या सालाहिया पापा मत धोई नानक पूरे गुर ते नाओ मन्या जिन देवै सोई सलोक महला पहला शास्त्र वेद पुराण पढ़मता ऊ कारणता अजानता जा बूझै ता सूझै सोई नानक आखै कूक ना होई महला पहला जा हो तेरा ता सब किश मेरा हो नाही तू होवै आपे सकता आपे सुरता शक्ति जगत परोवै आपे भेजे आपे सदे रचना रच रच वेखै नानक सच्चा सच्ची नाई सच पवै धुर लेखै पौड़ी नाम निरंजन अलख है क्यों लखया जाई नाम निरंजन नाल है क्यों पाईऐ पाई नाम निरंजन वरतदा रव्या सब ठाई गुर पूरे ते पाईऐ हिरदै दे दिखाई नानक नदरी कर्म होए गुर मिलिऐ पहाई सलोक महला पहला कल होई कुत्ते मुही खाज होआ मुरदार कूड़ बोल बोल भौंकना चूका धर्म बीचार जिन जी वंदिया पत नहीं मोया मंदी सोए लिखिया होए नानका करता करे सो होए महला पहला रन्ना हुईया बोधिया पुरस होए सयाद सील संयम सोच पन्नी खाना खाज आहाज शर्म गया घर अपने पाते उठ चली नाल नानक सच्चा एक है और ना सच्चा पाल पौड़ी बाहर भस्म लेपन करे अंतर गोबारी खिंता झोड़ी बहु भेख करे दुर्मत अहंकारी साहिब शब्द ना ऊचरे माया मोह पसारी अंतर लालच भरम है भरमै गावारी नानक नाम ना चेतई जुवै बाजी हारी सलोक महला पहला लख सिउ प्रीत होवै लख जीवन क्या खुशियां क्या चाओ विछड़िया विस होए विछोड़ा एक घड़ी मह जाए जे सो वरिया मिठा खाजे पी फिर कौड़ा खाए मिठा खादा चित न आवे कौड़तन ताए जाए मिठा कौड़ा धोवै रोग नानक अंतव गुत्ते भोग चक चक चखना झगड़ा चाख चक चक जाहे चखै तिन पास महला पहला कापड़ काठ रंगाया रंग तर गच कीते बागे बाग साध सहज कर मन खेलाया तै सह पासो कहन कहाया मिठा करकै कौड़ा खाया तिन कौड़ै तन रोग जमाया जे फिर मिठा पेड़ै पाए तौ कौड़तन चूकस माए नानक गुरमुख पावै सोए जिसनों प्राप्त लिखिया हुए पौड़ी जिनकै हिरदै मैल कपट है बाहर तो आया कूड़ कपट कमावन दे कूड़ प्रगति आया अंदर हुए सो निकलै नह छपै छपाया कूड़ै लालच लगिया फिर जूनी पाया नानक जो बीजै सो खावना करतै लिख पाया सलोक महला दूजा कथा कहानी बेदी आनी पाप पुन बीचार दे दे लैना लै लै देना नरक सुर्ग अवतार उत्तम मध्यम जाति जिनसी परम पवै संसार अमृत बाणी तत्व खानी ज्ञान ध्यान विच आई गुरमुख आखी गुरमुख जाती सुरती कर्म त्याई हुक्म साज हुक्मै विच रखै हुक्मै अंदर वेखै नानक अगो हउमै तुटै तां को लिखिया लिखै महला पहला वेद पुकारे पुन पाप सुर्ग नरक का बीयो
जो बीजै सो उगवै खांदा जाणै जीओ ज्ञान सलाहे वड्डा कर सचो सच्चा नाउ सच बीजै सच उगवै दरगाह पाइयै थाउ वेद वपारी ज्ञान रास करमी पल्लै होए नानक रासी बाहरा लद न चलिया कोई पौड़ी निम बिरख बहु संची है अमृत रस पाया बिसियर मंत्र वसाई है बहु दूध पी आया मनमुख अभिन न भिजई पत्थर नवाया बिख मह अमृत सिंची है बिख का फल पाया नानक संगत मेल हर सब बिख लह जाया।

ला पहला मनो जे अंधे कूप कहया बिरद ना जाननी मन अंधे ऊंधे कवल दिसन खरे कुरूप एक कह जान है कहया बुझ है ते नर सुगड़ स्वरूप एक ना नाद ना वेद ना गी रस रस कस ना जानंत एक ना शुद्ध ना बुद्ध ना अकल सर अखर का प्यो ना लहंत नानक से नर असल खर जे बिन गुण गर्भ करंत पौड़ी गुरमुख सब पवित है धन संपै माया हर अर्थ जो खर्च दे देंदे सुख पाया जो हर नाम त्याईंदे तिन तोट ना आया गुरमुखा नदरी आमदा माया सुट पाया नानक भगता होर चेतना आवे हर नाम समाया सलोक महला चौथा सतगुर सेवन से वड भागी सच्चा शब्द जिन्ना एक लिव लागी ग्रह कतंब मह सहज समाधि नानक नाम रते से सच्चे बैरागी महला चौथा गणत सेव ना होवे कीता थाए ना पाए शब्द साध ना आयो सच ना लगो पाओ सतगुर प्यारा ना लगे मन हठ आवे जाए जे एक विख अगाहां भरे ता दस विखां पछाहां जाए सतगुर की सेवा चाकरी जे चलह सतगुर पहाए आप गुआए सतगुरु नो मिले सहजे रह समाए नानक तिन्ना नाम ना विसरे सच्चे मेल मलाए पौड़ी खान मलूक कहाएंदे को रहन ना पाई गढ़ मंदर गच गीरियां किस साथ ना जाई सोएन साखत पौन वेग त्रिग त्रिग चतुराई शक्ति अमृत प्रकार करह बहु मैल वधाई नानक जो देवै तिसह ना जाननी मन मुख दुख पाई सलोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके जे संतर भव थके भेख तारी दूजे पाए नाओ कदे ना पाइन दुख लागा अत पारी मूर्ख अंधे त्रै गुण सेव है माया कै व्यवहारी अंदर कपट उधर भरन कै ताई पाठ पढ़ है गवारी सतगुर सेवे सो सुख पाए जिन्हों मैं विचों मारी नानक पढ़ना गुणना एक नाओ है बूझै को बीचारी महला तीजा नांगे आवना नांगे जाना हर हुक्म पाया।

सहजे हर रस पीजे, नानक सुखदाता सदा सलायो, रसना राम रवीजे। पौड़ी गढ़ काया शिंगार बहु भांत बनाई, रंग परंग कतीफिया पहरह धर्म आई, लाल सफेद दुलीचिया बहु सभा बनाई, दुख खाना दुख भोगना गर्भै गर्भाई, नानक नाम ना चेत्यो अंतले छुड़ाई। सलोक महला तीजा, सहजे सुख सुती शब्द समाए, आपे प्रभ मेल लई गल लाए, दुबदा चूपी सहज सुपाए, अंतर नाम वसया मन आए, से कंठ लाए जे भन कढ़ाए, नानक जो तुर मिले से हुण आन मलाए। महला तीजा, जिन्नी नाम वसारिया क्या जप जप है होर, बिस्ता अंदर कीत से मुठे तंदे चोर, नानक नाम न ना विसरे झूठे लालच होर। पौड़ी नाम सलाहन नाम मन अस्त्र जग सोई, हिरदय हर हर चितवे दूजा नहीं कोई, रोम रोम हर पुचरै खिन खिन हर सोई, गुरमुख जन्म सकार था निर्मल मल खोई, नानक जीवन दा पुरख त्याया अमरा पद होई। सलोक महला तीजा, जिन्नी नाम वसारिया बहु कर्म कमावह होर, नानक जानपुर बद्दे मारी है ज्यो सन्नी उपर चोर। महला पंजवा, तरत सुहावड़ी आकाश सुहंदा जपंदिया हर नाउ, नानक नाम मिहूनिया तिन तन खावह काउ। पौड़ी नाम सलाहन भाउ कर निज महली वासा, ओए बहुड़ जोन ना आमनी फिर होहे ना बनासा, हर से तीरंग रव रहे सब सास ग्रासा, हर का रंग कदे ना उतरे गुरमुख परगासा, ओए कृपा कर कै मेलियन नानक हर पासा। सलोक महला तीजा, जिचर इहो मन लहरी विच है हउ मैं बहुत अहंकार, शब्द साध ना आवई नाम ना लगे प्यार, सेवा थाए ना पवई तिसकी खप खप हुए खुआर, नानक सेवक सोई आखी है जो सिर धरे उतार, सतगुर का भाणा मन ले शब्द रखे उर तार। महला तीजा, सो जप तप से

करनी पव कटी है, नानक पावे पार महला तीजा। सच पराणा ना थी है, नाम ना मैला होए, गुर कै भाणे जे चले बहुड़ ना आवन होए। नानक नाम वसारे है, आवन जाना दुए पौड़ी। मंगत जन जाचै दान, हर देहु सुपाए। हर दर्शन की प्यास है, दर्शन तृप्ताए। खिन पल घड़ी ना जीवऊं, बिन देखे मरा माए। सतगुर नाल दिखालिया, रल रहिया सब थाए। सुत्या आप उठाल दे, नानक लिव लाए। सलोक महला तीजा, मनमुख बोल ना जाननी। उना अंदर काम क्रोध अहंकार।

आपे श्रेष्ठ उपायन आप करे विचार। नानक किसनो आखी है सब वरते आप सत्यार। महला तीजा हर गुरमुख तिनी अराध्या जिन कर्म प्राप्त होए। नानक हो बलिहारी तिन कहो जिन हर मन बसिया सोए पौड़ी। आस करे सब लोक बहु जीवन जानिया नित जीवन को चित गढ़ मंडप सवारिया। वलवंच कर अपाव माया हेरे आणिया जमकाल निहाले सास आव घटै बेतालिया। नानक गुर सरनाई उबरे हर गुर रखवालिया। सलोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित वाद वखाण दे माया मोह सवाए। दूजै पाए नाम वसारिया मन मूरख मिलै सजाए। जिन कीते तिसै ना सेवनी देंदा रिजक समाए। जम का पाहा गलहो ना कटिए फिर आवह जाए। जिनको पूर्व लिखिया सतगुर मिलिया तिन आए। अन दिन नाम त्याए दे नानक सच समाए। महला तीजा सच वणंज है सच।

करे मूर्ख आप गणाए नानक बिन बूझे किनै ना पायो फिर आवे जाए महला तीजा मन आनंद भया मिलिया हर प्रीतम सरसे सज्जन संत प्यारे जो तुर मिले ना विचड़ है कबहू जे आप मेले करतारे अंतर शब्द रविया गुर पाया सगले दुख नवारे हर सुख दाता सदा सलाही अंतर रखा उरतारे मनमुख तिनकी बखीली के करे जे सच्चा शब्द सवारे उना दी आप पात रख सी मेरा प्यारा शरणागत पए गुरुद्वारे नानक गुरमुख से सुहेले पए मुख उजल दरबारे पौड़ी स्त्री पुरख है बहु प्रीत मिल मोह वधाया पुत्र कलत्र नित वेख है विकसै मोहि माया देश परदेश धन चराए आन मोहे पाया अंत होवे वैर विरोध को सकै ना छडाया नानक बिन नावे त्रिग मोह जित लग दुख पाया सलोक महला तीजा गुरमुख अमृत नाम है जित खादै सब भुख जाए तृष्णा मूल ना हो गई नाम वसै मन आए बिन नावे जे होर खाना तित रोग लगै तन धाए नानक रस कस शब्द सलाहना आपे लय मलाए महला तीजा जिया अंदर जियो शब्द है जित सह मेलावा होए बिन शब्द जग अनेर है शब्दे प्रगट होए पंडित मोनी पर पड़ थके भेख थके तन धोए बिन शब्द किनै ना पायो दुखिए चले रोए नानक नदरी पाई है कर्म प्राप्त होए पौड़ी स्त्री पुरख है अत नेहो बह मंद पकाया दिसदा सब किस चल सी मेरे प्रभ पाया क्यों रही है थिर जग को कढ़ो उपाया गुर पूरे की चाकरी थिर कंध सबाया नानक बख्श मलायन हर नाम समाया सलोक महला तीजा माया मोहे वसारिया गुर का भउ हेत अपार लोभ लहर सुध मत गई सच न लगे प्यार गुरमुख जिन्ना शब्द मन वसै दरगाह मूख द्वार नानक आपे मेल लए आपे बख्शन हार महला चौथा नानक जिस बिन घड़ी ना जीवना विसरे सरै ना बिंद किस स्यों क्यों मन रूसी है जिस है हमारी चिंद महला चौथा सामने आया चिम चिमा हर गुरमुख नाम त्याए दुख भुख काड़ा सब चुकाए सी मीहू गुठा शहबर लाए सब धरत पई हरियावली अन जमया बोहल लाए हर अचिंत बुलावे कृपा कर हर आपे पावे थाए हर तसै त्याव संत जन हो जो अंते लय छाए हर कीरत भगत आनंद है सदा सुख वसै मन आए जिन्ना गुरमुख नाम आराध्या तिन्ना दुख भुख लह जाए जन नानक तृपतै गाए गुण हर दर्शन देहो सुभाए पौड़ी गुर पूरे की दात नित देवै चढ़ै सवाइया तुस देवै आप दयाल ना छपै छपाइया हिरदै कवल परगास उन मन लिव लाइया जे को करे उस दी रीस सिर छाई पाइया नानक अपड़ कोई ना सकई पूरे सतगुर की वडियाइया सलोक महला तीजा अमर वे परवाहो है तिस नाल सियाणप ना चलई ना हुज्जत करनी जाए आप छोड़ सरनाए पवे मन लए रजाए गुरमुख जम डंड ना लगई हौ मैं विचों जाए नानक सेवक सोई आखी है जे सच रह लिवलाए महला तीजा दात जोत सब

नानक आप कराए करता जो तिस पावे साई गल चंगेरी। पौड़ी महला पंजवा सच खाना सच पहनना सच नाम आधार गुरपुर मेलाया प्रभ देवन हार। भाग पूरा तिन जागया जपया निरंकार साधु संगत लग्या तरिया संसार। नानक सिफत सलाह कर

सत अंत ना चलत संगात कहत कबीर राम भज बौरे जन्म अकारत जात राजा श्रमित नहीं जानी तेरी तेरे संतन की हों चेरी रहाओ हस्तु जाए सो रोवत आवै रोवत जाए सो हस्सै बस्तु होए होए सो उजर।

मन बिखिया बन जाए, भूलो रे ठगमूरी खाए रहाओ। जैसे मीन पानी में रहे, काल जाल की सुध नहीं लहे, जेह बा स्वादी लीलत लोह,

माया कारण श्रम अत करे, सो माया ले गाडे तरे, अत संचे समझे नहीं मूड, तन धरती तन होए गयो धूड़, काम क्रोध तृष्णा अत जरै,

पूरा दास अनिन मेरो निज रूप दर्शन निमुख त्राप त्रई मोचन परसत मुकत करत ग्रह कूप रहाउ मेरी बांदी भगत छिडावै।

अन पावनी भगत नहीं उपजे, भूखे दान ना दीना रहाओ। काम ना बिसरियो, क्रोध ना बिसरियो, लोभ ना छूटियो देवा। पर निंदा मुखते नहीं छूटी, निफल पई सब सेवा। बाट पार घर मूस बिरानो, पेट भरे अपराधी। जेहे परलोक जाए अपकीरत, सोई अविद्या साधी। हिंसा तो मन ते नहीं छूटी, जी दया नहीं पाली। परमानंद साध संगत मेल, कथा पनीत ना चाली। छाड़ मन हर बेमुखन को।

हर के संग बसे हर लोक, तन मन अर्प सर्बस सब अर्प्यो, आनंद सहज तुन झोक रहाओ, दर्शन पेख पय निर्भिखे, पाए है सगले थोक, आन बस्त स्यो काज न कछु है, सुंदर बदन अलोक, श्याम सुंदर ताजे आन जो चाहत,

हर बिन कौन सहाई मन का, मात पिता भाई सुत बनता, हित लागो सब पन का रहाउ, आगे कौ किस तुलहा बंद हो, क्या परवासा धन का, कहां बसासा इस भांडे का, इतना कलागे ठन का, सगल धर्म पुन फल पाव हो, तूर बांच हो सब जन का, कह कबीर सुन।

पुर तारा मलार मोहल्ला पहला जिन धन पिर का साधना जानिया सा बिलख बदन कुमलानी पई नरासी कर्म की फासी बिन गुर भरम पुलानी बस कना मेरा पिर कर आया बल जावा गुरे अपने प्रीतम जिन हर प्रभयान मलाया रहाउ नौ तन प्रीत सदा ठाकुर स्यों अन दिन भगत सुहावी मुक्त भये गुरदर्श दिखाया जुग जुग भगत सुभावी हम थारे त्रे पवन जग तुमरा तू मेरा हो तेरा सतगुर मिलिया निरंजन पाया बहुर ना भवजन फेरा अपने पिर हर देख बगासी तो धन साच शिंगारू अकुल निरंजन स्यो सच साची गुरमत नाम अधारू मुक्त पई बंधन गुर खोले शब्द सुरत पत पा।

पीतर अमृत सोई जन पावै, जिस गुर का शब्द रत्न आचार रहाउ। दुख सुख दो सम कर जाने, बुरा भला संसार शुद्ध बुद्ध सुरत नाम हर पाई। सत संगत गुर प्यार एहन सलाहा हर नाम प्रापत, गुरदाता देवन हार गुरमुख सिख सोई जन पाए। जिसनु नदर करे करतार, काया महल मंदिर घर हर का तिस मह राखी जोत अपार। नानक गुरमुख महल बलाइय हर मेले मेलन हार। मलार महला पहला घर दूजा,

संबंध नानक कर्म होवै जपिए कर गुर पीर सच समावै एहो शरीर मलार महला तीजा चौपदी कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद निरंकार आकार है आपे आपे परम पलाई कर कर करता आपे वेखै जित पावै तित लाए सेवक को एहा

ब्रह्मा बिशन में हिस्सा यह त्रिगुण माया जिन जगत पलाया जन्म मरण का सहसा गुरु प्रसादी एको जाने चूके मनो अंदेसा हम दीन मूर्ख आ

बुद्ध बदा तैसा इहो संसारा जिस ते होआ तिसे समाना चूक गया पासारा मलार महला तीजा जिन्नी हुक्म पछाणिया से मेले हों मैं शब्द जलाए सच्ची भगत करह दिन राती सच रहे निवलाए सदा सच हर वेख दे गुर कै शब्द सुपाए मन रे हुक्म मन सुख होए प्रभ पाणा अपना भावदा जिस बख्शे तिस बिघन ना कोई रहाउ त्रै गुण सभा धात है ना हर भगत ना पाए गत मुक्त कदे ना होवे हों मैं कर्म कमाए साहिब भावे सो थीऐ पयै किरत फराए सतगुर भेटै मन मर रहै हर नाम वसै मन आए तिसकी कीमत ना पवै कहना किशु ना जाय चौथै पद वासा होया सच्चै रहै समाय मेरा हर प्रभ अगम अगोचर है कीमत कहन ना जाय गुर प्रसादी बुझिऐ शब्दे कार कमाय नानक नाम सलाहे तू हर हर दर शोभा पाए मलार महला तीजा गुरमुख कोई विरला दूजै जिसनो नदर करे गुर बिन दाता कोई नाही बख्शे नदर करे गुर मिलिया शांति उपजै अनदिन नाम लय मेरे मन हर अमृत नाम ते आए सतगुर पुर

आनंदे त्रिपतास्ते सत्य नाम समवाहि आनंदेन हर रव्या हृदय अंतर सहज समाद लगाही सतगुर शब्दी इहो मन भेदिया हृदय साची बाणी मेरा प्रभ अलख न जाई लखिया गुरमुख अकत कहानी आपे दया करे सुख दाता जपिए सारिंग पाणी आवन जाना बहुड़ ना होवै गुरमुख सहज ते आया मन ही ते मन मिलिया स्वामी मन ही मन समाया साचे ही सच साच पतीजै विचों आप गवाया।

अंतर वसिया अलख्य पीवा गुरमुख होए न खाई। नानक जिस भावै तिसे आपे देवै भावै तिवें चलाई। मलार महला तीजा तो तुके सतगुर ते पावै घर दर महल सोथान। गुर शब्दी चूकै अभमान जिनको ललाट लिखिया धुर नाम। अन दिन नाम सदा सदा त्यावह साची दरगाह पावह मान रहाउ। मन की बिद सतगुर ते जानै अन दिन लागै सद हर स्यों ध्यान। गुर शब्द रते सदा बैरागी हर दरगाह साची पावह मान। इह मन खिलै हुक्म का बांधा एक खिन मह दह दिस फिर आवै। जाय आपे नदर करे हर प्रभ साचा ता इहो मन गुरमुख तत्काल वस आवै। इस मन की बिद मन हू जानै बूझै शब्द विचार। नानक नाम त्याए सदा तू भव सागर जित पावह पार। मलार महला तीजा जियो पिंड प्राण सब तिसके घट घट रहे समाई। एक सबिन मैं अवर ना जाना सतगुरु दिया बुझाई। मन मेरे नाम रहो लिवलाई अदृष्ट अगोचर अपरंपर करता। गुर कै शब्द हर त्याई रहाउ मन तन पीजै एक लिव लागै सहजे रहे समाई। गुर प्रसादी भ्रम पौ भागै एक नाम लिवलाई।

हे गुरमत बुद्ध पाई मन तन प्राण धरी तिस आगै नानक आप गवाई मलार महला तीजा मेरा प्रभ साचा दुख निवारण शब्दे पाया जाई भगती राते सद बैरागी दर साचै पत पाई मन रे मन स्यों रहो समाई गुरमुख राम नाम मन भीजै हर सेती लिव लाई रहाउ मेरा प्रभ अति अगम अगोचर गुरमत दे बुझाई सच संयम करनी हर कीरत हर सेती लिव लाई आपे शब्द सच साखी आपे जिन ज्योति ज्योत मलाई देही काकी पौन बजाए गुरमुख अमृत पाई आपे साजे सब कारै लाए सो सच रहिया समाई नानक नाम बिना कोई किश नाही नामे दे वडाई मलार महला तीजा हम मैं बिख मन मोहया लद्या अजगर पहारी गरड़ो शब्द मुख पाया हम मैं बिख हर मारी मन रे हम मैं मोह दुख भारी एहो भवजल जगत न जाई तरना गुरमुख तार हर तारी रहाउ त्रै गुण माया मोह पसारा सब वरतै आकारी तुरिया गुण सत संगत पाई नदरी पार उतारी चंदन गंध सुगंध है बहु बासना बहकार हर जन करनी उत्तम है हर कीरत जग विस्थार कृपा कृपा कर ठाकुर मेरे हर हर हर उरतार नानक सतगुर पूरा पाया।

नानक कवन बिद करे क्या कोए सोई मुकत जाको कृपा होए अन दिन हर गुण गावे सोए शास्त्र वेद की फिर कूक ना होए मलार महला तीजा प्रम प्रम जोन मनमुख परमाई जम काल मारे नित पत गुआई सतगुर सेवा जम की कान चुकाई हर प्रभ मिलिया महल घर पाई प्राणी गुरमुख नाम त्याए जन्म पदार्थ दुबदा खोया कौडी बदले जाए रहाउ कर कृपा गुरमुख लगे प्यार अंतर भगत हर हर उरतार भवजल शब्द लंघावन हार दर साचै दिसै सचियार बहु कर्म करे सतगुर नहीं पाया बिन गुर परम भूले बहु माया हउ मैं ममता बहु मोह बधाया दूजे पाए मनमुख दुख पाया आपे करता अगम अथाहा गुर शब्दी जपिए सच लाहा हाजर हजूर हर वे परवाहा नानक गुरमुख नाम समाहा मलार महला तीजा जीवन मुक्त गुरमति लागे हर की भगत अन दिन सद जागे।

मन मुख मोहे मुग्ध गुवार, अन दिन धंधा करत विहाई, मर मर जम्मह मिले सजाए, गुरमुख राम नाम लिव लाई, कूड़ै लालच ना लपटाई, जो किछ होवै सहज सुभाई।

जाय, बिन भागा नाम ना पाया जाय, बहुविध थाका कर्म कमाय, त्रै गुण बाणी वेद विचार, बिख्या मैल बिख्या व्यापार, मर जन्म है फिर होए खुआर, गुरमुख तुरिया गुण उरतार, गुर माने माने सब कोए, गुर बचनी मन शीतल होए, चहु जुग सोभा निर्मल जन सोए, नानक गुरमुख विरला कोए, राग मलार महला चौथा, कर पहला चौपदी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अन दिन हर हर त्यायो हिरदय, मत गुरमत दुख वसारी, सब आसा मनसा बंधन टूटे, हर हर प्रभ कृपा तहारी, नैनी हर हर लागी तारी, सतगुर देख मेरा मन बिगस्यो, जन हर भेट्यो बनवारी, रहाव जिन ऐसा नाम वसारिया, मेरा हर हर तिसकै कुल लागी गारी, हर तिसकै कुल पर सूत ना करियो, तिस विधवा कर महतारी, हर हर आन मलावो गुर साधु, जिस अहनस हर उरतारी, गुर डीठै गुर का सिख बिगसै, ज्यों बारक देख महतारी, तन पिर का एक ही संग वासा, विच हौं मैं पी

जमुना गोदावरी सरस्वती ते करह उदम धूर साधु की ताई। किलविख मैल भरे परे हमरे विच हमरी मैल साधु की धूर गवाई। तीर्थ अठ सठ मजन नहाई सत संगत की धूर परी उड नेतनी। सब दुरमत मैल गवाई रहाओ जाहर नवी तपै भगीरथ आनी। केदार थाप्यो महसाई कांसी कृष्ण चरावत गाऊ। मिल हर जन शोभा पाई जितने तीर्थ देवी थापे। सब तितने लोचे हैं धूर साधु की ताई। हर का संत मिल

नानक ललाट होवै जिस लिखिया तिस साधु धूर दे हर पार लंघाई। मलार महला चौथा तिस जन को हर मीठ लगाना जिस हर हर कृपा करे तिस की भूख दुख सब उतरे जो हर गुण हर उचरे जप मन हर हर हर निस्तरे गुर के बचन करन सुन त्यावे भव सागर पार परे रहाउ तिस जन के हम हाट बिहाजे जिस हर हर कृपा करे हर जन को मिलिया सुख पाइए सब दुर्मत मैल हरे हर जन को हर भूख लगानी जन तृप्तै जा हर गुण बिचरे हर का जन हर जल का मीना हर बिसरत फूट मरे जिन एह प्रीत लाई सो जाने कह जाने जिस मन धरे जन नानक हर देख सुख पावे सब तन की भूख तरे। मलार महला चौथा जितने जी जंत प्रभ कीने तितने सिर कार लखावे हर जन को हर दीन वडाई हर जन हर कारे लावे सतगुर हर हर नाम जरडावे हर बोलो हो गुर के सिख मेरे भाई हर भौजल जगत तरावे रहाउ जो गुर को जन पूजे सेवे सो जन मेरे हर प्रभ पावे हर की सेवा सतगुर पूजो हो कर कृपा आप तरावे परम भूले अज्ञानी अंधले भ्रम भ्रम फूल तरावे निर्जियो पूज है मड़ा सरीव है सब बिरथी काल गवावे ब्रह्म बिंदे सो सतगुर कही है हर हर कथा सुनावे तिस गुर को साधन भोजन पाठ पटंबर बहु विद सतकर मुख संचो हो तिस पुन की फिर टोट न आवे सतगुर देव प्रतख हर मूरत जो अमृत बचन सुनावे नानक भाग भले।

बसियो मेरा सतगुर ते संत भले पल भांत तिन देखे मेरा मन बिगसै हो तिनकै सद बल जांत ज्ञानी हर बोलो दिन रात तिनकी तृष्णा भूख सब उतरी जो गुरमत राम रस खांत रहाव हर के दास साध सखा जन।

अगम गोचर नाम हरि उत्तम हर कृपा ते जप लया सत संगत साध पाई वट भागी संग साधु पार पया मेरा मन आनंद ने आनंद पया गुरु प्रसाद नाम हर जपया मेरे मन का भ्रम पौ गया रहाउ जिन हर गाया जिन हर जपया तिन संगत हर मेलोह करमया तिनका दर्श देख सुख पाया दुख हम मैं रोग गया जो अनदिन हृदय नाम त्यागे है सब जन्म तिन्ना का सफल भया वे आप तरे श्रेष्ट सब तारी सब कुल भी पार पया तुदे आपे आप अपाया सब जग तुदे आपे वस कर लिया जन नानक को प्रभ कृपा तारी बिख डुबदा काढ़ लिया मलार महला चौथा गुर प्रसादी अमृत नहीं पिया तृष्णा भूख न जाई मन मुख मूड जलत अहंकारी हम मैं विच दुख पाई आवत जात बिरता जन्म गवाया दुख लागे पछताई।

साध हर जन बोलत श्री राम नामा मिल साध संगत हर तोर रहाउ हर तन बन जोहो हर तन संचोहो जिस लागत है नहीं चोर चातरक मोर बोलत दिन राती सुन कन हर की कोर जो बोलत है मृग मीन पंखेरु सो बिन हर जापत है नहीं होर नानक जन हर कीरत गाई छूट गयो जम का सब शोर मलार महला चौथा राम राम बोल बोल खोजते बड भागी हर का पंथ को बतावे हौता कै पाए लागी रहाउ हर हमारो मीत सिखाई हम हर सिओ प्रीत लागी हर हम गावे हैं हर हम बोल हैं और द्वितीया प्रीत हम त्यागी।

बहु बिंजन मिसटाए करी पाक साल सोच पवित्रा हुन लाभ हो भोग हर राय दुष्ट बदारे साजन रहस्य एह मंदर घर अपनाए जो ग्रह लाल रंगियो आया तो मैं सब सुख पाए संत सभा ओट गुरपूरे तुर मस्तक।

खीर आधार बारिक जब होता बिन खीरे रहन ना जाई सार संभाल माता मुख नीरे तब ओहो तृप्त अघाई हम बारक पिता प्रभ दाता भूलह बारक अनक लख बरिया अनठौर नाही जह जाता रहाऊ चंचल मत बारक बपरे की सर्प अग्न कर मेले मात पिता कंठ लाए राखे आनंद सहज तब खेले जिसका पिता तू है मेरे स्वामी इस बारक भूख कैसी नव निध नाम निदान ग्रह तेरे मन बांचे सो लैसी पिता कृपाल आग्या एह कीनी बारक मुख मांगे सो देना नानक बारक दर्श प्रभ चाहे मोहे हृदय बस है नित चरना मलार महला पंजवा सगल विधि जुर आहर करया तजियो सगले अंदेसा कार्ज सगल आरंभियो।

गुर कार्य हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुखदाता, छोड़ ना जाई दूरे। मलार महला पंजवां, राज ते कीट, कीट ते सुरपत, कर दोख जठर कौ भरते, कृपा निद छोड़ आन को पूज है, आत्म घाती हरते, हर बिसरत ते दुख दुख मरते, अनक बार ब्रह्म है बहु जोनी, टेक न काहू तरते रहाउ, त्याग स्वामी आन को चितवत, मूड मुग्ध खल खरते, कागर नाव लंघ है कत सागर, बिरथा कथत हम तरते, सेव ब्रंच असुर सुर जेते, काल अगन मह जरते, नानक सरन चरण कमलन की, तुम ना दार हो प्रभ करते।

त्यागी हम एक खेन तिस बिन रह ना सको प्रीत हमारी लागी रहा उनके संग मोहे प्रभ चित आवे संत प्रसाद मोहे जागी सुन उपदेश भय मन निर्मल।

सरल एक ताकी गुर सतगुर पुरख सुखदाई एक निमख मह मेरा सब दुख काटिया नानक सुख रैन बेहाई मलार महला पंजवा बरस मेघ जी तिल बिल मना लाओ बरस प्यारे मन सधारे होए आनंद सदा मन चाओ रहाओ हम तेरी धर स्वामिया मेरे तू क्यों मनो बसारे।

कहो नानक मेरो बन्यो सुहागो पत शोभा भले अचारी मलार महला पंजवा प्रीतम साचा नाम त्याय दुख दर्द बिनसै भव सागर गुर की मूर्त हृदय बसाए रहाउ दुश्मन हत्ते दुखी सब व्यापे हर सरनाई आया राखन हारे हाथ दे राख्यो नाम पदार्थ पाया कर कृपा किलविख सब काटे नाम निर्मल मन दिया गुण निदान नानक मन वसिया बहुड़े दुख ना थिया मलार महला पंजवा प्रभ मेरे प्रीतम प्राण प्यारे प्रेम भगत अपनो नाम दीजै दयाल अनुग्रह तारे रहाउ सिमरो चरण तुहारे प्रीतम हृदय तुहारी आसा संत जना पह करो बेनती मन दर्शन की प्यासा बिसरत मरण जीवन हर मिलते जन को दर्शन दीजै नाम आधार जीवन धन नानक प्रभ मेरे कृपा कीजै मलार महला पंजवा अब अपने प्रीतम स्यों बन आई राजा राम रमत सुख पायो बरस मेघ सुखदाई रहाउ एक पल बिसरत नहीं सुख सागर नाम नमै निद पाई उदहत भयो पूर्ण भावी को पेटे संत सहाई सुख उपजे दुख सगल बनासे पार ब्रह्म लिवलाई तरियो संसार कठिन भय सागर।

मेरे आनंद मंगल सुख पाया रहाउ मिटे कलेश त्रिशन सब पूजी पार ब्रह्म मन त्याया साध संग जन्म मरण निवारी बहुर न कतहु ताया मन तन नाम निरंजन रातहु चरण कमल लेव लाया अंगीकार कियो प्रभ अपने नानक दास शरणाया मलार महला पंजवां बिसरत क्यों जीवे ओए जीवन चितह उलास आस मिलवे की चरण कमल रस पीवन रहाउ जिनको प्यास

ए मर जाही मन का नराव रहे आ जगदीश्वर देखत सदा हजूरे नानक राव रहे हो सब अंतर सर्ब रहे आ पर पूरे मलार महला पंजवा हर कै भजन कौन कौन ना कारी खग तन मीन तन मृग तन ब्राह तन साधु संग उधारी रहाऊ देव कुल दैत कुल जख किन्नर नर सागर उतरे पारी जो जो भजन करे साधु संग ताके दुख बदारे काम क्रोध महा बिख्या रस इनते भय नरारे दीन दयाल जप

अंतर्जामी सब मह वरतै ता भौ कैसा पहाई संग सहाई छोड़ ना जाई प्रभ दिसै सबनी ठाई अनाथा नाथ दीन दुख भंजन आप लिए लड़ लाई हर की ओट जीवह दास तेरे

बिन गुर पूरे कोर अंधार मेरे मन गुर गुर करत सदा सुख पाई गुर उपदेश हर हृदय वस्यु सास ग्रास अपना खसम त्याई रहाउ गुर के चरण विटोह बल जाऊ गुर के गुण अन दिन नित गाऊ गुर की धूड़ करूं इशनान साची दरगाह पाईए मान गुर बोहिथ भवजल तारनहार गुर भेटे ना होए जोन अवतार गुर की सेवा सोजन पाए जा को कर्म लिखिया तुर आई।

नानक गुर पार ब्रह्म जाकी कीम न पाई। मलार महला पंजवां गुर के चरण हृदय वसाई। कर कृपा प्रब आप मलाई, अपने सेवक को लय प्रभ लाई। ताकी कीमत कही ना जाई, कर कृपा पूर्ण सुख दाती।

राखे सब जनत, गुण गावहु नित नित भगवंत, एको करता आपे आप, हर के भगत जान है प्रताप, नावे की पैज रखदा आया, नानक बोले तिसका बुलाया, मलार महला पंजवां, गुर सरनाई सगल निदान, साची दरगाह पाईए मान, प्रम पौ दुख दर्द सब जाई, साध संग सद हर गुण गाई, मन मेरे गुर पूरा सलाही, नाम निदान जपो दिन राती, मन चिंदे फल पाई रहाउ, सतगुर जे वडे अवर ना कोई, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सो।

सगर किए नह दुख सा कहलाहे। पज सरन साधु नानका मिल गुण गोबिंद गाहे। मलार महला पंजवां प्रिय की सोभ सहावनी नीकी। हा हा हू हू गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी नीकी। रहाउ तुनत ललत गुनगह अनक भांत बहु विध रूप दिखावनी नीकी। गिर तार जल तल भवन भरपुर घट घट लालन शामनी नीकी। साध संग रामैया रस पायो।

फिर भावै प्रेम सखाई, तिस बिन घड़ी नहीं जग जीवा, ऐसी प्यास तसाई रहाओ, सरवर कमल किरण अकासी, बिगसै सहज सुपाई, प्रीतम प्रीत बनी अब ऐसी, ज्योति ज्योत मलाई, चात्रक जल बिन प्रियो प्रियो टेरे, बिलप करे बिललाई, कनहर कोर दसो दिस बरसै, बिन जल प्यास न जाई, मीन नवास उपजै जल ही ते, सुख दुख पुरब कमाई, खिन तिल रह न सकै पल जल बिन, मरन जीवन तिस ताई, तन वांदी पिर देस नवासी, सच्चे गुर पह शब्द पठाई, गुण संग्रह प्रभ हृदय नवासी, भगत रती हर खाई, प्रियो प्रियो करै सबै है जेती, गुर भावै प्रियो पाई, प्रियो नाले सद ही सच संगे, नदरी मेल मलाई, सब मह जियो जियो है सोई, घट घट रहे आसमाई, गुर प्रसाद घर ही परगासिया, सहजे सहज समाई, अपना काज सुवारो आपे, सुख दाते गोसाई, गुर प्रसाद घर ही फिर पाया, तौ नानक तपत बुझाई, मलार मोहल्ला पहला, जागत जाग रह गुर सेवा, बिन हर मैं को नाही, अनक जतन कर रहन ना पावे, आच काच धर पाही, इस तन धन का कहो गर्भ कैसा, बिन सतबार न लागे बबरे, हम मैं गर्भ खपै जागे ऐसा, रहाऊ जय जगदीश प्रभु।

अंजन कागद कोट एहो जग है बपरू रंगन चेहन चतराई नानी सी बूंद पवन पत खोए जन्म मरे खिन ताई नदी उप कंठ जैसे कर तरवर सरपन कर कर मार।

बचनी भिखिया गुरमत जारी मन तन हेम भय सच पाया हर की भगत निरारी जेती है तेती तुद जाचे तू सर्ब जिया दयाला तुमरी सरन परे पत राखो साच मिले गोपाला बांधी तंद अंध नहीं सूजे बद्धक कर्म कमावे सतगुर मिले ता सूजस बूजस सच मन ज्ञान समावे निर्गुण दे साच बिन काची मैं पूछूं गुरे अपना नानक सो प्रभ प्रभु दिखावे बिन साचे जग सुपना मलार महला।

मैं तन थाकी सच मत हृदय समाई रूखी बिरखी ऊडो भूखा पीवा नाम सुपहाई लोचन तार ललता बिललाती दर्शन प्यास रजाई प्रिया बिन श्रृंगार करी तेता तन तापे कापर अंग ना सुहाई अपने प्यारे बिन एक खिन रह ना सको बिन मिले नींद ना पाई फिर नजीक ना बूझे बकड़ी सतगुरु दी याद खाई सहज मिलिया तब ही सुख पाया तृष्णा शब्द बुझाई कहो नानक तुझते मन मानिया हिम्मत कहन ना जाई मलार महला पहला।

रहाउ सतगुर शब्दी पादर जान गुर कै तकिए साचै तान नाम संभाल सरूड़ी बाण थै पावै दर लहस प्राण ऊडा बैसा एक लिवतार गुर कै शब्द नाम आधार ना जल डूंगर ना ऊंची तार निज कर वासा कह मागना चालन हार जित कर वसै है तू है बिद जान है बीजो महल ना जापै सतगुर बाजो समझ ना होवी सब जा

गुर शब्द संयापे एक मूर्ख अंधे मुग्ध गुआर एक सतगुर कै पै नाम आधार साची बाणी मीठी अमृत धार।

अचार करै विवेक बुद्ध पाई पुरखै पुरख मलाई धातुर बाजी संसार अचेत है चलै मूल गवाई लाहा हर सत संगत पाई करमी पल्लै पाई सतगुर विण किन्हें ना पाया मन वेखो हृदय विचार वड भागी गुर पाया भव जले उतरे पार हर नामा हर टेक है हर हर नाम आधार कृपा करो गुर मेलो हर जियो पावो मोख द्वार मस्तक ललाट लिखिया धुर ठाकुर मेटना ना जाय नानक से जन पूर्ण होए जिन हर भाणा पाए मलार महला तीजा वेद बाणी जग वर्तदा त्रै गुण करे बीचार बिन नावै जम डांड सह मर जन्मै वारु वार सतगुर भेटे मुक्त।

हर हर नाम त्याई रहाउ। हरे अपने भाणे सिष्टि उपाई, हरे आपे दे आधार। हरे अपने भाणे मन निर्मल किया, हर स्यों लागा प्यार। हर कै भाणे सतगुर भेटिया, सब जन्म सवारन हार। वाह वाह बाणी सत है, गुरमुख बूझै कोई। वाह वाह कर प्रभ सलाही है, तिस जे वड़े अवर ना कोई। आपे बख्शे मेल लई,

कमल प्रगास तित काट नामे नाम निवास हऊ मैं भगत करे सब कोई ना मन पीजे ना सुख होए कह कह कहने आप जनाई बिरथी भगत सब जन्म गवाई से भगत सतगुर मन पाई अन दिन नाम रहे लिवलाई सद ही नाम वेख है हजूर गुर कै शब्द रहया भरपूर आपे बख्शे दे प्यार हम मैं रूप वड्डा संसार गुर कृपा ते एहो रोग जाई नानक साचे साच समाई राग मलार शंत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रीतम प्रेम भगत के दाते अपने जन संग राते जन संग राते दिन सराते एक निमुख मनो ना विसरै गोपाल गुण निज सदा संगे सर्ब गुण जगदीसरै मन मोहे लीना चरण संगे नाम रस जन माते नानक

पतत पावन भगत वत्सल कृपा सिंध स्वामिया संत संगे भजन संगे रौ सदा अंतर जामिया कोट जन्म परमंत जोनी ते नाम सिमरत तारी नानक दर्श प्यास हर जियो आप लेहो संहारी हर चरण कमल मन लीना प्रभ जल जन तेरे मीना जल मीन प्रभ जियो एक तू है भिन्न आन ना जानिया गह पुजा लेवो नाम देवो तो प्रसादी मानिया।

बिनवंत नानक शरण तिनकी, जिन्नी हर हर त्याया वार मलार की महला पहला, राणे कैलाश तथा मालदे की धुन एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला तीजा, गुर मिले है मन रहसीय, जो उठे परम शिंगार, सब दिसे हरियावली सर भरे सुभर ताल, अंदर रचे सच रंग ज्यो मंजीठे लाल, कमल विकसे सच मन गुर कै शब्द निहाल, मनमुख दूजी तरफ है वेखो नदर निहाल, थाही पाथे मिर्ग ज्यो सिर दिसे जमकाल, खुदया तृष्णा निंदा बुरी काम क्रोध विकराल, इनी अखी नदर ना आवई जिचर शब्द ना करे विचार, तुद भावै संतोखी।

पौड़ी तू सच्चा सच्यार जिन सच वरताया बैठा ताड़ी लाए कवलश पाया ब्रह्म वड्डा कहाई अंत ना पाया ना तिस बाप ना माए किन तू जाया ना तिस रूप ना रेख वर्ण सवाया ना तिस भुख प्यास रज्जा ताया गुरमह आप समोए शब्द वरताया सच्चे ही पति आए सच समाया। श्लोक महला पहला वैद बुलाया वैद की

नानक चूर मरह दोहागनी जिन अवरी लागा ने हो महला दूजा सावण आया हे सखी जल हर बर सुनहार नानक सुख समन सोहागनी जिन सह नाल प्यार पौड़ी आपे सिंह पवाए मल्ला खाड़ा रचिया लथे पड़थू पाए गुरमुख मचिया मनमुख मारे पछाड़ मूर्ख कचिया आप भिड़ै मारे आप आप कारज रचिया सबना खसम एक है गुरमुख जानिए हुक्मी लिखै सिर लेख बिन कलम मसवाणिए सत संगत मेलाप जितै हर गुण सदा वखाणिए नानक सच्चा शब्द सलाही सच पछाणिए।

वरसै लाए झड़ी नानक पाणै चलै कंत कै सो माणी सदा रली महला तीजा क्या उठ उठ देखो बपणे किस मेघै हाथ किस नाही जिन इहो मेघ पठाया किस

सब कर्ण पलाहा करी पौड़ी सोहर सदा सरेवी है जिस करत न लागे वार आडाने आकाश कर खिन मह ताहे उसार नहार।

सिफत भंडार उथै हाथ ना अपड़ै कूक ना सुनिए पुकार उथै सतगुर बेली होवै कड ले अंती वार इना जनता नो होर सेवा नहीं सतगुर सिर करतार।

नित त्याई है, सदा सदा सुख होए। नानक अमृत सदे वरसदा, गुरमुख देवै हर सोए। महला तीजा, कलमल होई मे

संबाहि जित खादै सुख उपजै फिर दुख न लागै आई पौड़ी हर जियो सच्चा सच तू सच्चे लहै मलाई दूजै दूजी तरफ है कूड़ मिलै ना मिलिया जाई आपे जोड़ विछोड़ै।

जो हर चरणी रहे लिवलाय। ज्यो जल मह कमल अलिप्त है ऐसी बणत बणाई, से सुखिए सदा सोहणे जिन विचो आप गवाय। तिन सोग वजोग कदे नहीं जो हर कै अंक समवाय। सलोक महला तीजा नानक सो सलाही है, जिस वस सब किश होए तिसै सरे विहो प्राणी हो, तिस बिन अवर ना कोई। गुरमुख हर प्रभ मन वसै ता सदा सदा सुख होए, सहसा मूल ना होवई सब।

वरसै कृपा तार नानक गुरमुख नजरी आया हर आत्म राम मरार पौड़ी अतुल क्यों तोलिए बिन तोले पाया ना जाए गुर कै शब्द विचारिए गुण मह रह समाए अपना आप आप तोलसी आपे मिले मलाई तिसकी कीमत ना पवे कहना किशु ना जाए हौ बलिहारी गुरे अपने जिन सच्ची बूझ दित्ती बुझाई जगत मुस्से अमृत लुटिए मनमुख बूझ ना पाई विण नावे नाल ना चलसी जासी जन्म गवाई गुरमती जागे तिन्नी घर रखिया दूतां का किस ना वसाई सलोक महला तीजा बबीहा ना बिललाए ना तरसाए एहो मन खसम का हुक्म मन नानक हुक्म मन्या ते खोतरै चढ़ै चवगल वन।

छुट्टी है आपे बख्शन हार आपे वेखै सुने आप सब सह दे आधार सब मह एक वरतदा सिर सिर करे विचार गुरमुख आप विचारी है।

तू तनी तू सब किसे आपे आप दूजे किस जानी मानस कूड़ा गर्भ सच्ची तुद मणि आवा गौण रचाए उपाय।

गुणवंती मैल पाया अवगुणवंती दूर अंतर तेरा हर वसै गुरमुख सदा हजूर कूक पुकार ना होवे नदरी नदर निहाल नानक नाम रते सहजे मेले शब्द गुरु कै काल महला तीजा बाबीहा बेनती करे कर कृपा देहो जी दान जल बिन प्यास ना उतरै

विचार त्रै गुण सर्ब जंजाल है नाम ना धरे प्यार गुण छोड़े औगण कमाम दे दरगाह हुए खुआर जुए जन्म तिन्नी हारिया केते आए संसार सच्चा शब्द मन मारिया अहनस नाम प्यार जिन्नी पुरखी उरतारिया सच्चा अलख अपार तू गुणदाता निदान है असी अवगण यार जिस बख्शे सो पाए सी गुर शब्दी विचार सलोक महला पंजवा रात ना विहावी साकता जिन्ना विसरे नाउ राती दिन सुसुहेलिया नानक हर गुण गाउ महला पंजवा रतन जवे हर मान का हब्बे मणि मथन नानक जो प्रभ पाणिया सच्चा दर सोहन पौड़ी सच्चा सतगुर सेव सच संभालिया अंत खलोआ आई जे सतगुरे अगै घालिया ओहे ना सकै जमकाल सच्चा रखवालिया गुर साखी जोत जगाए दीवा बालिया मनमुख विण नावै कूड़ियार फिर है बेतालिया पशु मानस चम पलेटे अंदरों कालिया सबो वरतै सच सच्चै शब्द निहालिया ना

कै सहज सुपाई, मेघ वर्ष दया कर गुड़ी शह पर लाई, बबी हे कूक पकार रह गई।

मन तन सच्चा सच मन सच्चे सच्ची सोए अंदर सच्ची भगत है सहजे ही पत होए। कलयुग में घोर अंधार है मनमुख राह न कोय सेवड़ भागी नानका जिन गुरमुख प्रगट हो।

सदा तिसकै सद बलिहारै जाउ गुरमुख शब्द संभालियै सच्चे के गुण गाऊ नानक नाम रते जन निर्मले सहजे सच समाउ पौड़ी पूरा सतगुर सेव पूरा पाया पूरा कर्म त्याए पूरा शब्द मन वसाया पूरा ज्ञान ध्यान मैल चुकाया हर सर तीर्थ जान मनुआ नाया शब्द

बन्ना शाज देन दुआई से मर है जिनको देन से जाहि नानक हुक्म ना जापई किथे जाहि समाहि फसल आहारी।

अक सियो प्रीत करे अक सिद्धा, अक डाली बह खाए खसमै भावे ओहो चंगा, जे करे खुदाए खुदाए नानक दुनिया चार दिहाड़ी।

शब्द सलाही है अंतर प्रेम प्यार विण प्रीति भगत ना हो गई विण सतगुर ना लगे प्यार तू प्रभ सब तुध सेम दे एक ढादी करे पुकार देह दान संतोखिया सच्चा नाम मिले आधार सलोक महला पहला राती काल कट है दिन काल सिज्जै काया होए पराल वर्तन वर्त्या सर्ब जंजाल भुलिया चुक गया तपताल अंधा चख चख पया चेर पिछै रोवह लिया वह फेर बिन बूझे किस

तीर्थका नाऊ चौधरी कूड़ी पूरे थाऊ नानक गुरमुख जानिए कल का इहो नियाउ महला पहला हरना बाजा तै सिकदारा इना पढ़िया नाऊ फांदी लगी जात पहाइन अग्गै नाही थाऊ सो पढ़िया।

पलंग पौकै कोप खुआर हुए फक्कड़ पिटे अंध चुपै चंगा नानका विण नावे मोहे गंध। महला पहला राजमाल रूप जात जोबन पंजे ठग इनी ठगी जग ठगिया।

यार जा एक मर होहे जहीर एक देखा हिन खुटे नाही एक सदा फिर है फकीर हुक्मी साजे हुक्मी ताहे एक चसे महलाख सबको नथ है नथिया बख्शे तूड़े नथ वरना चेहना बाहरा लेके बाज अलख क्यों कथिया क्यों आखिया जापै सचो सच करना कथना कार सब नानक आप अकथ अकथ की कथा सुने रिद बुद्ध सिद्ध ज्ञान सदा सुख हुए महला पहला।

घोर बुद्धि मिथ्या बिन सच्चे व्यापार जन्म व्यर्थया अंत ना पारावार ना किन्ही पाया सब जग गर्भ गवार तिन सच ना पाया चले नाम सार तावन तत्या।

आप खाम पूजै हिकमत खुदाया मानतवाना तू कुदरती आया सग नानक दे बान मस्ताना नित चढ़ै सवाया आतस दुनिया

तुद फिर दूजा को नहीं, तू रहे आसमाई, तेरी गत मित तू है जानदा, तुद कीमत पाई, तू अलाखे गोचर अगम है, गुरमत देखाई, अंतर अज्ञान दुख भरम है, गुर ज्ञान गवाई, जिस कृपा करह तिस मेल लह, सो नाम ते आई, तू करता पुरख अगम है, रविया सब ठाई, जित तू लाए सचिया इत को लगे, नानक गुण गाई, शुद्ध

गोपालराय अकुल निरंजन भगत दान दीजै जाचह संत जन रहाउ जाचै घर दिग दिसै सराय क्या वैकुंठ भवन चित्रशाला सप्त लोक समान पूरी अले जाचै घर लक्ष्मी कुवारी चंद सूरज दीवड़े कौतक काल बपड़ा कोटवाल सो करा सिरी सो ऐसा राजा श्री नरहरि जाचै घर कलाल ब्रह्मा चतुर्मुख डांवड़ा जिन विश्व संसार राची ले जाचै घर ईश्वर बावला जगत गुरु तत सारखा ज्ञान पाखी ले पाप पुन जाचै डांगिया द्वारै चित्र गुप्त लेखिया तर्म राय।

जाचै पसमति सुए सारा जात्रि पवनपति जाचै कारे कूर्मा पाल सहसरफनी बासक सेज वालुआ अठारह पार बनास्पति मालनी सिनवै करोड़ी मेघ माला पानी हारिया नाख परसेव जाचै सुरसरी सप्त समुंद जाचै कड़खली एते जी जाचै वर्तनी सो ऐसा राजा त्रे पवन धनी जाचै कर निकट वर्ती अर्जन ध्रुव प्रहलाद अम्बरीक नारद नेजै सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बान वै हेला एते जी जाचै है करी।

तू जो दयाल कृपाल कहियत है हत पुज भयो अपारला फेर दिया देहरा नामे को पंडियन को पिछवारला मलार वाणी भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद नागर जना मेरी जात बख्यात चम्वारं हृदय राम गोविंद गुण सारंग रहाओ सुश्री सलल कित बारो नीरे संत जन करत नहीं पानं सुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरसरी मिलत नह होए आनं तर तार अपवित्र कर मानिए रे जैसे कागरा करत बीचारं भगत पागौत लिखिए तेहि ऊपर पूजिए कर नमस्कारं मेरी जात कुट बांडला ढोर ढो अंता नित है बनारसी आस पासा अब

मानिय है शेख शहीद पीरा, जा कै बाप वैसी करी पूत ऐसी सरी। तिहू रे लोक प्रसिद्ध कबीरा, जा के कुटंब के ढेड सब ढोर टवंत फिर है। अजहो बनारसी आस पासा, आचार सहत बिपर करह डंडौत। तिन तने रवदास दासान दासा मलार, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मृत प्यारो प्राणनाथ कमन भगत ते, साध संगत पाई।

जप मन राम नाम परगास हर के संत मिल प्रीत लगानी विचे ग्रह उदास रहाओ हम हर हृदय जपियो नाम नर हर प्रभु कृपा करी कृपास अन दिन अंत भया मन बिगसिया उदम भय मिलन की आस हम हर स्वामी प्रीत लगाई जितने सास लिए हम ग्रास किल बिख दहन भय खिन अंतर टूट गए माया के फास क्या हम किर्म क्या कर्म कमाव है मूर्ख मुग्ध रखे प्रवतास अवगन आरे पाथर पहारे सत संगत मिल तरे तरास जेती सृष्ट करी जगदीशर ते सब ऊच हम नीच बिख्यास हमरे अवगुण संग गुर मेटे जन नानक मेल लिए प्रभ पास कानड़ा महला चौथा मेरा मन राम नाम जपियो गुरवाक हर हर कृपा करी जगदीशर दुर्मत दूजा पाओ गयो सब चाक रहाओ नाना रूप रंग हर केरे घट घट राम रवियो गुपलाक हर के संत मिले हर प्रगटे उगर गए बिख्या के ताक संत जना की बहुत बहु शोभा जिन उर तारियो हर रस कर साक हर के संत मिले हर मिलिया जैसे गऊ देख बछराक हर के संत जना मह हर हर ते जने उत्तम जनक जनाक तिन हर हृदय बास बसानी छूट गई मुश्की मुश्काक तुमरे जन तुम ही प्रभ किए हर राख ले हो आपन अपनाक जन नानक के सखा हर पाई मात पिता बंद पहर साक।

परे बिख बिखिया सतगुर काढ लिए दे हाथ रहाव स्वामी अपै निरंजन नरहर तुम राख ले हो हम पापी पात काम क्रोध बिखिया लोभ लुभते काष्ट लोहो तरे संग साथ तुम वड पुरख वड अगम अगोचर

राम तेहाय सत संगत मिल साधु पाथ हर हर कथा सुनी मिल संगत हर हर जपेओ अकथ कथ काथ हमरे प्रभ जगदीश गुसाई हम राख लेहो जगन्नाथ जन नानक दास दास दासन को प्रभ करहु कृपा राखो जन साथ।

कानड़ा महला चौथा पाज रामो मन राम जिस रूप नारेख वडाम सत संगत मिल पाज राम बड़ हो भाग मथाम रहाउ जित ग्रह मंदर हर होत जास तित कर।

कुल सगल तरादु कानड़ा महला चौथा। हर जस गावो भगवान जस गावत पाप लहान, मत गुरमत सुन जस कान हर हो किरपान रहाओ। तेरे जन त्याव है एक मन एक चित, ते साधु सुख पाव है जप हर हर नाम निदान। उस्तत करह प्रभ तेरिया मिल साधु साध जना, गुर सत गुरु भगवान जिनकै हृदय तू स्वामी। ते सुख फल पाव है ते तरे भव सिंध, ते भगत हर जान तिन सेवा हम लाए हरे हम लाए हरे। जन नानक के हर तू तू तू तू तू भगवान। कानड़ा महला पंजवा घर दूजा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद। गाइया गुण गोपाल कृपा निद दुख बदारन सुखदाते सतगुर। जा को भेटत हुए सगल सिद्ध रहाओ, सिमरत नाम मन साधारै वोट पराधी खिन महतारै। जा को चीत आवै गुर अपना ताको दुख नहीं तिल सुपना। जा को सतगुर अपना राखै सो जन हर रस रसना चाखै। कहो नानक गुर कीनी मया हलत पलत मुख उजल भया। कानड़ा महला पंजवा अरादो तुझै स्वामी अपने। उठत बैठत सोवत जागत सास सास सास हर जपने।

रसन अनक बार कर बंदन संतन ऊहां चरण गोविंद जी के बस न रहाओ अनक भांत कर द्वार न पावो होए कृपाल ता हर हर त्यागो कोट कर्म कर दे न सोदा साध संगत मह मन प्रबोधा तृष्णा बूझी बहु रंग माया नाम लैत सर्व सुख पाया पार ब्रह्म जब पाया।

तैन संतन की संग साधु का हर नामा जप परम गते रहाओ पूजा चरना ठाकुर सरना सोई कुशल जो प्रभु जियो करना सफल होत ए दुर्लभ देही जा कौ सतगुर मया करे ही अज्ञान भरम बिनसै दुख डेरा जा कै हृदय बसह गुर पैरा साध संग रंग प्रभ त्याया कहु नानक तिन पूरा पाया कानड़ा महला पंजवा भगत भगतन हूं बन आई तन मन गलत भये ठाकुर स्यो।

राज जोबन धन बहुर बहुर फिर ताया सुख पाया तृष्णा सब बुझी है शांत पाई गुण गाया बिन बुझे पशु की न्याई भ्रम मोहे व्याप्यो माया साध संग जम जेवरी काटी नानक सहज समाया। कानड़ा महला पंजवा हर के चरण हृदय गाए शीतला सुख शांत मूरत सिमर सिमर नित त्याय रहाओ सगले आस होत पूरन कोट जन्म दुख

साधु हर हरे गुण गाए, मान तन धन प्राण प्रभ के, सिमरत दुख जाए रहाओ, ईत ऊत कहां लुभाव है, एक स्यो मन लाए, महा पवित्र संत आसन, मिल संग गोबिंद त्याय, सगल त्याग सरन आयो, नानक लेहो मलाए, कान

आन दा सुख सहज मूरत तिस आन नाही भांत सिमरत एक बार हर हर मिट कोट कसमल जात गुण रमंत दुख नासह रिद भयंत शांत अमृता रस पियो रसना नानक।

तो परम राख लीजै काट बेरी रहाओ बूढ़त संसार सागर उदरे हर सिमर रत्नागर शीतला हर नाम तेरा पूर्णो ठाकुर प्रभ मेरा दीन दर्द निवार तारन हर कृपा निद पतत उदारन कोट जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुर नाम दरडायो कानड़ा महला पंजवा धन ओह प्रीत चरण संग लागी कोट जाप ताप सुख पाए आए मिले पूर्ण बड़ भागी रहाओ मोहे अनाथ दास जन तेरा अवर ओट सगली मोहे त्यागी भोर भरम काटे प्रभ सिमरत ज्ञान अंजन मिल सोवत जागी तू अथाह अत बड़ो स्वामी कृपा सिंध पूर्ण रत लागी नानक जाचक हर हर नाम मांगै मस्त ज्ञान धरियो प्रभ पागी कानड़ा महला पंजवा उचल कठोर कपट कामी ज्यों जान है त्यों तार स्वामी रहाओ तू समरथ सरन जोग तू राख है अपनी कल तार जाप ताप नेम सुच संयम नाही इन विदे छुटकार गर्त घोर अंध ते काढ़ो प्रभ नानक नदर निहार कानड़ा महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नारायण नरपत नमस्कार है ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे रहाओ कवन कवन कमन गुण कहिए।

सब पला ही हैरे, हार नहीं सब जीतै, सोग नाही सदा हर की हैरे, छोड़ नाही किस लेतै, कहो नानक जन हर हर हर है, कत आवै कत रमतै, कानड़ा महला पंजवां, कि ये को प्रीतम बिसर ना जाए, तन मन गलत भए तिह संगे, मोहनी मोहे रही मोरी माए रहाउ, जय जय पै कहो बिरथा हो अपनी, तेऊ तेऊ गहे रहे अटकाए, अनक भांत की एकै जाली, ताकि गंठ नहीं शोराए, फिरत फिरत नानक दास आयो, संतन ही

अरबिंद खोजत खोजत रतन पायो बिसरी सब चिंद रहाओ चरण कमल हृदय धार उतरिया दुख मंद राज धन परवार मेरा सर्ब सो गोविंद साध संगम लाभ पायो नानक फिर ना मरंद कानड़ा महला पंजवा घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रभ पूजो नाम अराध गुर सतगुर चरणी लाग हर पाव हो मन आगाद जग जीतो हो गुर कृपाद रहाओ अनक पूजा मैं बहु विद खोजी सा पूजा जे हर पवास माटी की एह पुत्री जोरी क्या एह कर्म कमास प्रभ बहा पकर जिस मार्ग पावहु सो तुद जंत मलास अवर ओट मैं कोई ना सूजै एक हर की ओट मैं आस क्या दीन करे अरदास जो सब घट प्रभु निवास प्रभ चरणन की मन प्यास जन नानक दास कहियत है तुमरा हौ बल बल सद बल जास कानड़ा महला पंजवा घर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगत उदाहरण नाम प्रिय तेरा नव निध नाम निधान हर केरा हर रंग रंग रंग अनुपेरा काहे रे मन मोहे मगनेरा नैन देख साध दर्शे।

टुलेरै, दर्शन प्यास बहुत मन मेरै, मिल नानक देव जगत गुर केरै, कानला महला पंजवां, ऐसी कौन विदे दर्शन परसना रहाउ, आस प्यास सफल मूरत, उमंग ही यो तरसना।

ईत हस्त पूर्ण सब संगा रहाव वर्त नेम तीर्थ सहत गंगा जल हेवत भूख अरनंगा पूजा चार करत मेलंगा चक्कर कर्म तिलक खाटंगा दर्शन भेटे बिन सतसंगा हठ नग्रह अत रहत बटंगा हौ रोग व्यापै चुकै ना पंगा काम क्रोध अत त्रिशन जरंगा सो मुक्त नानक जिस सतगुर चंगा कानड़ा महला पंजवां कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक बूझ गई गई मिल साध जना पंच भागे चो

अनाथ नाथ सनाथ संतन कोट पाप विनाश मन दर्शन की प्यास प्रभ पूर्ण गुणतास कृपाल दयाल गोपाल नानक हर रसना गुण गाय कानड़ा महला पंजवा वार वारों अनक डारो सुख प्रिय सुहाग पलक रात रहाऊ कनक मंदिर पाठ सेज सखी मोहे नाहे इन स्यों तात मुक्त लाल अनक भोग बिन नाम नानक हात रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रिय संग सुख बेहात।

जाप मना हर जाप जो संत वेद कहत पंथ गाखरु मोह मगन अहंताप रहाउ जो राते माते संग बपरी माया मोह संताप नाम जपत सो जन उदरह जिसह उदार हो आप बिन सजाए मोह पै परमा नानक संत प्रताप कानड़ा महला पंजवा कर दसवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद ऐसो दान देहो जी संतो जाप जियो बलिहार मान मोही पंच दोही उर्ज निकट बसेओ ताकि सरन साधुआ दूत संग निवार रहाओ कोट जन्म जोन भ्रम्यो हार परयो द्वार कृपा गोविंद भई मिलियो नाम आधार दलभ जन्म सफल नानक पाव उतार पार कानड़ा महला पंजवा घर ग्यारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सहज सुभाए आप।

जाए करह बसाए गुण ननान प्रगट्यो एह चोले चरण लुभाए आनत जाए थान थनाए सर्व समाए रसक रसक नानक गुण बोले कानड़ा महला पंजवा गोविंद ठाकुर मिलन दुराई परमत रूप अगम अगोचर रहियो सर्व समाई रहाओ कहन भवन नाही पायो पायो अनक उकत चतुराई जतन जतन अनक उपावरी तौ मिलियो जो किरपाई प्रभु दयार किरपार किरपा निद जन नानक संतरे नाई।

अरबिंद शासन निसपोर रहाउ लाए प्रीत कीन आपन टूटत नहीं जोर प्राण मन धन सर्वसु हर गुण निजे सुख मोर ईत ऊत राम पूरन निरखत रिद खोर संत सरन तरन नानक बिन से ओ दुख कोर।

मृत निकट निकट सदा ही हर हरे हरे पाज कहत नानक सुनो रे मूड बिन भजन भजन भजन अहला जन्म गई कानड़ा अष्टपदियां।

वह सुख पावे, सतगुर सेव समावे गुर हाउ। भगत जना की खिन खिन लोचा, नाम जपत सुख पावे गु। अनरस साध गए सब नीकर, बिन नावे किस ना सखावे गु। गुरमत हर हर मीठा लागा, गुर मीठे बचन कढावे गु। सतगुर बाणी पुरख पुरखोतम, बाणी स्यों चित लावे गु। गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रव्या, मन पीना निज कर आवे गु। तह अनहत धुनी बाजह नित बाजे, नीचर धार चुआवे गु। राम नाम इक तिल तिल गावे, मन गुरमत नाम समावे गु। नाम सुनह नामो मन पावे, नामे ही तृप्तावे गु। कनक कनक पहरे बहु कंगना, कापर

हर हर नाम तुरावे गु जो जो जपै सोई गत पावे ज्यो ध्रुव प्रहलाद समावे गु रहाउ कृपा कृपा कृपा कर हर जियो कर कृपा नाम लगावे गु कर कृपा सतगुरु मलाव हो मिल सतगुरु नाम त्यावे गु जन्म जन्म की हम मन लागी मिल संगत मन लह जावे गु ज्यो लोहा तरियो संग कास्ट लग शब्द गुरु हर पावे गु संगत संत मिल हो सत संगत मिल संगत हर रस आवे गु बिन संगत कर्म करे अभिमानी कड पानी की कड़ पावे गु भगत जना के हर रखवारी जन हर रस मीठ लगावे गु खिन खिन नाम दे वडियाई सतगुर उपदेश समावे गु भगत जना को सदा निव रही है जन निवह ता फल गुण पावे गु जो निंदा दुष्ट करह भगता की हरनाक्ष ज्यो पच जावे गु ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावे गु जो जो भगत होए सो पूजो हो परमन परम चुकावे गु जात निजात देख मत परम हो सुख जनक पगी लग त्यावे गु जूठन जूठ पई सिर ऊपर खिन मनुआ तिल ना डलावे गु जनक जनक बैठे सिंघासन नौ मुनि धूर लै लावे गु नानक कृपा कृपा कर ठाकुर मैं दासन दास करावे गु कानड़ा महला चौथा मन गुरमत रस गुण गावे गु जिहवा एक होए लख कोटि लख कोटि कोट त्यावे गु रहाउ सहस फनी जप्यो सेख नागे हर जपत्या अंत न पावे गु तू अथाह अत अगम अगम है मत गुरमत मन ठहरावे गु जिन तू जप्यो तेई जन नीके हर जपत्या कौ सुख पावे गु बिदरदासी सुत छोक शोहरा कृष्ण अंक गल लावे गु जल ते ओपत पई है कासत कासत अंग तरावे गु राम जना हर आप सुवारी अपना बिरद रखावे गु हम पाथर लोहो लोहो बड पाथर गुर संगत नाव तरावे गु ज्यो सत संगत तरयो जुलाहो संत जना मन पावे गु खरे खरोए बैठत उठत मार्ग पंथ त्यावे गु सतगुर बचन बचन है सतगुर पाधर मुक्त जनावे गु सासन सास सास बल पाई है निह सासन नाम त्यावे गु गुर प्रसादी हम मैं बूझे तौ गुरमत नाम समावे गु सतगुर दाता जी जीअन को भागहीन नहीं पावे गु फिर एह वेला हाथ न आवे पर तापै पछतावे गु जे को भला लोड़ै भले अपना गुरु आगै टह टह पावे गु नानक दया दया कर ठाकुर मैं सतगुर भस्म लगावे।

दुख पावै गो अनेक जन्म बिछड़े मेरे प्रीतम कर कृपा गुरु मलावै गो सतगुर मिलत महा सुख पाया मत मलीन बिगसावै गो हर हर कृपा करहु जग जीवन मैं श्रद्धा नाम लगावै गो नानक गुरु गुरु।

जय तल कुंडे गुर अंकस शब्द दरड़ावै गु रहाउ चल तो चले चले दह दह दिस गुर राखै हर लिव लावै गु सतगुर शब्द दे हृदय अंतर मुख अमृत नाम चवावै गु बिसियर बिसु परे है पूरन गुर गरुड़ शब्द मुख पावै गु माया पोयंग तिस नेड़ ना आवै बिख चार चार लिव लावै गु स्वान लोभ नगर मह सबला गुर खिन मह मार कढावै गु सत संतोख धर्म आन राखी हर नगरी हर गुण गावै गु पंकज मोह निगरत है प्राणी गुर निगरत काड कढावै गु त्राहे त्राहे शरण जन आई गुर हाथी दे निकलावै गु सुपनंतर संसार सब बाजी।

खाए खर्च देवह बहुतेरा, हर दिन दे तोट ना आवैगो। राम नाम धन है हृदय अंतर, तन गुर सरनाई पावैगो। नानक दया दया कर दीनी, दुख दालद पंज समावैगो। कानड़ा महला चौथा, मन सतगुर सरन त्यावैगो। लोहा हिरन होवे संग पारस, गुण पारस को होए आवै गुरहाउ। सतगुर महापुरख है पारस।

आई, जतन माया के काम न आई, राम ते आए सब फल पाई, तन तन ते बड़ भागिया, सतसंग जागे नाम लागी, एक स्यों लिव लागिया, तज मान मोह बिकार साधु, लग तरहु तिन कै पाए, बिनवंत नानक शरण स्वामी, बड़ भाग दर्शन पाई, मिल साधु नित भजह नारायण, रसक रसक स्वामी गुण गायन, गुण गाए जीवह हर अमयो पीवह, जन्म मरना भागे, सतसंग पाइय हर त्याय, बहुड़ दुख ना लागे, कर दया दाते पुरख बधाते, संत सेव कमायन, बिनवंत नानक जन तूर बांछ, हर दर्स सहज समायन, सगले जंत भजो गोपाल, जप तप संयम पूरन काल, नित भजो स्वामी अंतर जामी, सफल जन्म सबाया, गोविंद गाइय नित त्याय, प्रवान सोई आया, जप ताप संयम हर हर निरंजन, गोविंद धन संग चाल, बिनवंत नानक कर दया दीजै, हर रत्न बंध हो पाल, मंगल चार चोज अनंदा, कर कृपा मिले परमानंदा, प्रभ मिले स्वामी सुखा गामी।

हरि जित पावहि सब फल फलना। सलोक महला चौथा। हर हर नाम त्याए मन हर दरगाह पावह मान। जो इच्छा है सो फल पाए सी गुर शब्दीन लगे ध्यान। किल विख पाप सब कटी है हो मैं चुकै गुमान। गुरमुख कमल विगसिया सब आत्म ब्रह्म पछान। हर हर कृपा धार प्रभु जन नानक जप हर नाम। महला चौथा। हर हर नाम पवित्र है नाम जपत दुख जाए। जिनको पूर्व लिखिया तिन मन वसिया आई। सतगुर कै भाणे जो चले तिन दालद दुख लह जाए। अपने भाणे किने ना पायो जन वेखो मन पति आई। जन नानक दासन दास है जो सतगुर लागे पाई। पौड़ी तू थान थनंतर भरपूर है करते सब तेरी बणत बनावनी। रंग परंग शिष्ट सब साजी बहु बहु विद भांत उपावनी। सब तेरी जोत ज्योति विच वरत है गुरमति तुदै नावनी। जिन होए दयाल तिन सतगुर मिलै मुख गुरमुख हर समझावनी। सब बोलो हो राम रमो श्री राम रमो। जित दालत दुख भुख सब लह जावनी। सलोक महला चौथा। हर हर अमृत नाम रस हर अमृत हर उरतार। विच संगत हर प्रभु वरतदा बुझो हो शब्द विचार। मन हर हर नाम त्याया विख हो मैं कड्डी मार। जिन हर हर नाम ना चेतियो तिन जूए जन्म सब हार। गुर टुठे हर चेताया हर नामा हर उरतार। जन नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार। महला चौथा। हर कीरत उत्तम नाम है विच कल युग करनी सार। मत गुरमत कीरत पाई है हर नामा अर हुर हार। वड भागी जिन हर त्याया तिन सौंपया हर भंडार। बिन नावै जे कर्म कमावणे नित हों मैं होए खुआर। जल हस्ती मल नवाली है सिर भी फिर पावै शार। हर मेलो सतगुर दया कर मन वसै एकंकार। जिन गुरमुख सुना

आपे वरतै सब जगत किया बणजारा सब ज्योत तेरी ज्योति विच करते सब सच तेरा पासारा सब त्यावह तुद सफल से गावह गुरमति हर निरंकारा सब चवह मुख हो जगन्नाथ जगन्नाथ जग जीवनो जित भवजन पार उतारा सलोक महला चौथा हमरी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जप है इयाणिया हर तुम वड अगम अगाह हर देहो प्रभु मत उत्तमा गुर सत गुर कै पग पाह सत संगत हर मेल

हर करहो कृपा जग जीवना, गुर सत गुर मेल दयाल, गुर सेवा हर हम पाईया, हर हुआ हर कृपाल, सब आसा मनसा विसरी, मन चूका आल जंजाल, गुर तुठे नाम दरडाया, हम किए शब्द निहाल, जन नानक अतुट धन पाया, हर नामा हर धन माल पौड़ी, हर तुम वड वड्डे वड्डे वड ऊचे, सब ऊपर वड्डे वडौना, जो त्यावह हर अपरंपर हर हर, हर त्याए हरे ते होना, जो गावह सुनह तेरा जस स्वामी, तिन काटे पाप कटोना, तुम जैसे हर पुरख जाने मत गुरमत, मुख वड वड भाग वडोना, सब त्याव हो आद सते, जुगाद सते, प्रतख सते।

नाम उपजे तृष्णा भुख सब जाय नानक नामे रतिया नामो पल्ले पाई पौड़ी तुदे आपे जगते पाए कै तुदे आपे वसगत कीता एक मनमुख कर हरायन एक ना मेल गुरु तिना जीता हर उत्तम हर प्रभ नाम है गुरबचन सुभागै लीता दुख दालद सबो लह गया जा नाउ गुरु हर दीता सब सेव हो मोहनो मन मोहनो जग मोहनो जिन जगत अपाए सबो वस कीता श्लोक महला चौथा मन अंतर हों मैं रोग है भ्रम पूले मन मुख दुर्जना नानक रोग बंजाए मिल सतगुर साधु सज्जना महला चौथा मन तन ताम संगा

जगदीशर करते अपरंपर पुरखे अतोल हर नाम त्यागो मेरे गुर सिखो हरि उत्तम हर नाम अमोल जिन त्याया हृदय दिन सरात ते मिले नहीं हर रोल वड भागी संगत मिले गुर सत गुर पूरा बोल सब त्याग हो नर नारायणो नारायणो जित चूका जम झगड़ चगोल श्लोक महला चौथा हर जन हर हर चौंदिया सर संध्या गावार नानक हर जन हर लिव उबरे जिन संध्या तिस फिर मार महला चौथा अखी प्रेम कसाइया हर हर नाम पिखन जे कर दूजा देख दे जन नानक काढ दे चन पौड़ी जल थल महियल पूर्णो अपरंपर सोई जी जंत प्रित पाल दा जो करे सो होई मात पिता सुत प्रात मीत तिस बिन नहीं कोई घट घट अंतर राव रहया जपे हो जन कोई सगल जप हो गोपाल गुण प्रगट सब लोई श्लोक महला चौथा गुरमुख मिले से सजना हर प्रभ पाया रंग जन नानक नाम सलाहे तू लुड लुड दरगह वान्य महला चौथा हर तू है दाता सब सदा सब जी तुम्हारे सब तुदै नो अराध दे दान दे प्यारे हर दाता दातार हाथ कढ़िया मीह उठा संसारी अनजमिया खेती भाओ कर हर नाम समारे जन नानक मंगै दान प्रभ हर नाम अधारे पौड़ी इच्छा मन की पूरी है जपी है सुख सागर हर के चरण अराधी है गुर शब्द रतनागर मिल साधु संग उधार हुए हाटै जम कागर जन्म पदार्थ जीती है जप हर बैरागर सब पवो हो शरण सतगुरु की बिन सह दुख दागर श्लोक महला चौथा हौ टुंडेंदी सज्जना सज्जन मैंढै नाल जन नानक अलख ना लखिया गुरमुख दे दिखाल महला चौथा नानक प्रीत लाई तिन सच्चै तिस बिन रहन ना जाई।

हारे तुमरे तू बड़ पुरख पिता मेरा माया रहाउ हर के नाम असंख अगम है अगम अगम हर राया गुणी ज्ञानी सुरत बहु कीनी एक तिल नहीं कीमत पाया गोविंद गुण गोविंद सद गाव है गुण गोविंद अंत ना पाया तू अमित अतोल अपरंपर स्वामी बहु जपिया था ना पाया पुस्तत कर है तुमरी जन माधो गुण गाव है हर राया तुम जल निद हम मीने तुमरे तेरा अंत ना कतहु पाया जन को कृपा करहो मधुसूदन हर देव हो नाम जपाया मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है जन नानक गुरमुख पाया कल्याण महला चौथा हर जन गुण गावत हसया हर हर भगत बनी मत गुरमत तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहाउ गुर के पग सिमरो दिन राती मन हर हर हर बसया हर हर हर कीरत जग सारी कस चंदन जस कसया हर जन हर हर हर लिव लाई सब साकत खोज पया ज्यो किरत संजोग चल्यो नर निंदक पग नागन शोहे जलिया जन के तुम हर राखे स्वामी तुम जुग जुग जन रखिया कहां पया दैत करी बखीली सब कर कर झर परिया जेते जी जंत प्रभ किए सब काले मुख ग्रसिया हर जन हर हर हर प्रभ राखी जन नानक सरन पया कल्याण महला चौथा मेरे मन जप जप जगन्नाथे गुरुपदेश हर नाम ते आयु सब किल बिख दुख लाथे रहाउ रसना एक जस गाए ना साकै बहु कीजै बहु रसनथे बार बार खिल पल सब गाव है गुण कह ना सकह प्रभ तुमंथे हम बहु प्रीत लगी प्रभ स्वामी हम लोचे हैं प्रभ दिखन थे तुम बड़ दाते जी जीन के तुम जान हो हम बिर थे कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभ का कहो तिन कहो क्या दिन थे सब तन मन अर्पों अर्प अरापों कोई मिले प्रभ मिल थे हर के गुण बहुत बहुत बहु सुबा हम तुष कर कर बरन थे हमरी मत वसगत प्रभ तुमरे जन नानक के प्रभ समरथे कल्याण महला चौथा मेरे मन जप हर गुण अकथ संथ।

यहाँ की भगत मेरा प्रभ मान हर के चोज वडान देख जान जो खोटा खरा एक निमख पछान ताते जान को आनंद भया है।

हम बारिक मुगध ज्ञान पिता समझावेंगे सुत खिन खिन भूल बिगार जगत पित पावेंगे जो हर स्वामी तुम देहो सोई हम पावेंगे मोहि दूजी नाही ठौर जिस पह हम जावेंगे जो हर पावे भगत

तरस रे परस परस गुण गाई है, नानक तत तत स्यो मिलिये, हीरे हीर बेधाई है, कल्याण महला पंजवा, मेरे लालन की शोभा, सद लव तन मन रंगी शोभा रहाउ, ब्रह्म महेश सिद्ध मुनिंदरा, भगत दान जस मंगी, जोग ज्ञान ध्यान सेख लागे, सगल जपह तरंगी।

ज्ञान भुगत सुरत शब्द तत बेते जप तप अखंडली ओत पोत मिल जोत नानक कछु दुख ना डंडली कल्याण महला पंजवा कौन बिद ता की कहां करूं धरत ध्यान ज्ञान शस्त्र गया अजर पद कैसे जरूर रहाउ बिशन महेश सिद्ध मुन इंद्रा कै दर सरल परू काहू पहराज काहू पह सुरगा कोट मदे मुक्त कहू कहो नानक नाम रस पाई साधु चरण गहू कल्याण महला पंजवा प्राण पत दयाल पुरख प्रभ सखे गर्भ जून कल काल जाल दुख बनासना।

भगवान गुरपुरे सो प्रसन्न भए सदा सुख कल्याण रहाउ सर्व कार्य सिद्ध भए गाए गुण गोपाल मिल साध संगत प्रभु सिमरे नाठिया दुख काल कर कृपा प्रभ मेरिया करो दिन रहन सेव नानक दास शरणागति हर पुरख पूर्ण देव कल्याण महला पंजवा प्रभ मेरा अंतर जामी जान कर कृपा पूर्ण परमेश्वर निश्चल सच शब्द निशान रहाओ हर बिन आन न कोई समरथ तेरी आस तेरा मन तान सर्व कटां के दाते स्वामी देहे सो पहरन खान सुरत मत चतरा।

जपन संग जम काल तिस ना खामनो मुकत जुगत अनक सूख हर भगत लवै ना लामनो प्रभ दर्श लुभद दास नानक बहुड़ जोन ना धामनो कल्याण महला चौथा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद रामा राम रामो सुन मन भीजै हर हर नाम अमृत रस मीठा गुरमत सहजे पीजै रहाउ काष्ट मह ज्यो है बै संतर मत संयम काढ़ कढ़ीजै राम नाम है जोत सबाई तत गुरमत काढ़ लीजै नौ दरवाज नवे दर फीके रस अमृत दसवें चुईजै किरपा किरपा किरपा कर प्यारे गुर शब्दी हर रस पीजै काया नगर नगर है नीको विच सौदा हर रस कीजै रतन लाल अमोल अमोलक सतगुर सेवा लीजै सतगुर अगम अगम है ठाकुर भर सागर भगत करीजै किरपा किरपा कर दीन हम सारिंग एक बूंद नाम मुख दीजै लालन लाल लाल है रंगन मन रंगन कौ गुर दीजै राम राम राम रंग राते रस रसक घटक नित पीजै वसुधा सप्त दीप है सागर कड कंचन काढ़ तरीजै मेरे ठाकुर के जन इन्हो ना बांछ है हर मांग है हर रस दीजै साकत नर प्राणी सद भूखे नित भूखन भूख करीजै तावत ताए तावह प्रीत माया लख कोसन को बिथ दीजै हर हर हर हर हर जन उत्तम क्या उपमा तिन दीजै राम नाम तुल और ना उपमा जन नानक कृपा करीजै कल्याण महला चौथा राम गुर पारस परस करीजै हम निर्गुणी मनूर अत फीके मिल सतगुर पारस की जय रहाओ सुर्ग मुक्त बैकुंठ सब बांछ है नित आसा आस करीजै हर दर्शन के जन मुक्त ना मांग है मिल दर्शन तृप्त मन तीजै माया मोह सबल है भारी मोह कालख दाग लगीजै मेरे ठाकुर के जन अलिपत है मुक्ते ज्यो मरगाई पंक ना पीजै चंदन वास पुयंगम वेड़ी किव मिलिया चंदन लीजै काड़ खड़ग गुर ज्ञान करारा बिख छेद छेद रस पीजै आन आन समदा बहु कीनी पल बै संतर पसम करीजै महा उगर पाप साकत लारकीने मिल साधु लूकी दीजै साधु साध साध जननी के जिन अंतर नाम तरीजै परस न परस भये साधु जन जन हर भगवान दिखीजै साकत सूत बहु गुरजी भरिया क्यों करतान तनीजै तंत सूत किस निकसै नाही साकत संग ना कीजै सतगुर साध संगत है नीकी मिल संगत राम रवीजै अंतर रतन जवे हर मानक गुर किरपा ते लीजै मेरा ठाकुर वड्डा वड्डा है।